मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 जून सन 2026 स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे

0: स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 6:05 हो रहे हैं, ये वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। तो प्रस्तुत है आराधना कार्यक्रम। समर्पण भक्ति कोई व्यापार या सौदा नहीं, यह तो ईश्वर के चरणों में प्रेम का निरंतर और निस्वार्थ प्रवाह है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

सच्ची भक्ति में मांगने की कोई इच्छा नहीं होती, बल्कि यह ईश्वर और भक्ति के बीच का एक पवित्र और निस्वार्थ प्रेम है। श्रोताओं लीजिए सुनिए मुकेश के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

0: प्रभु का नाम जपो मन मेरी। श्रोताओं, सुबह की शुरुआत यदि ईश्वर की आराधना से की जाए तो पूरा दिन सुखमय और शांतिमय व्यतीत होता है। आप लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, आप कहीं मत जाइएगा, अपने रेडियो सेट के करीब रहिएगा, हम बस अभी हाजिर होते हैं।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ।
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। और श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हमारे सब कर्मों पर उस परम पिता परमेश्वर की नज़र है, साथ ही हमारा अंतर्मन भी सब कुछ जानता है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। तो हे प्रभु, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और सदा सद्मार्ग पर चलाए रखिएगा। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं पंडित जसराज के स्वर में गए इस लक्ष्मी नारायण की स्तुति को।

हरि का नाम नहीं जपा तो क्या किया। इस जीवन की सार्थकता है ईश्वर की आराधना करने में, तो हे मन जप ले हरि का नाम। श्रोताओं लीजिए सुनिए अनूप जलोटा के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

0: हरि नाम का प्याला पीकर चला चले मतवाला। श्रोताओं, इसी भक्ति रचना के साथ अब भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना समाप्त होता है। हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विचार विंदु कार्यक्रम। विचार विंदु कार्यक्रम में आज आप शरदचंद चट्टोपाध्याय के विचार सुनेंगे।
1: एक बार अवकाश प्राप्त अध्यापक अघोरनाथ अधिकारी स्नान के लिए गंगा घाट की ओर जा रहे थे। कपड़े उठाए पीछे पीछे चल रहा था शरद। एक टूटे हुए घर के भीतर से एक स्त्री के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई दी। ये करुण स्वर सुनकर अधिकारी महोदय ठिठक गए। बोले, ये कौन रोता है, क्या हुआ इसे? शरद ने उत्तर दिया, मास्टर मुशाय, इस नारी का स्वामी अंधा था। लोगों के घरों में कामकाज करके ये उसको खिलाती थी। कल रात इसका वो स्वामी मर गया। ये बहुत दुखी है। दुखी लोग बड़े आदमियों की तरह दिखाने के लिए जोर जोर से नहीं रोते। उनका रोना दुख से विदीर्ण प्राणों का क्रंदन होता है। मास्टर मुशाय, ये सचमुच का रोना है। छोटी आयु के बालक से रोने का इतना सूक्ष्म विवेचन सुनकर अघोर बाबू विस्मित हो उठे। वे कलकत्ता रहते थे। लौटकर उन्होंने अपने एक मित्र से इस घटना की चर्चा की। मित्र ने कहा, जो रुदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वो साधारण बालक नहीं है। बड़ा होकर वो निश्चय ही मनस्तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। एक बार एक विद्यार्थी ने शरदचंद्र से पूछा, लोग कहते हैं श्रीकांत आपकी जीवनी है, क्या ये सत्य है? शरद हंसे, बोले, तुम क्या कहते हो, हम कैसे जानेंगे, हम तो पूछते हैं। वो फिर गंभीर हो गए। कहा, उपन्यास लिखने बैठने पर कोई हूबहू अपनी कथा नहीं लिखता, उसी तरह अपने को छोड़कर कोई सार्थक सृष्टि भी नहीं होती। विद्यार्थी ने फिर पूछा, आपके साहित्य में पतिताएं बहुत हैं, इसका क्या कोई विशेष कारण है? ये सुनकर वे अनमने हो उठे। उनकी तीक्ष्ण दृष्टि उदासी से भर उठी। कहीं बहुत दूर से जैसे बोल रहे हों, कहा, नहीं जानता विशेष कारण क्या है। मैं बहुतों को जानता हूं, अपनी आंखों से देखा है। उनमें ऐसी वस्तु है जो बड़ों बड़ों में नहीं है। त्याग, धर्म, दया, माया, प्रेम, मनुष्य में जो कुछ अच्छा है उसका उनमें अभाव नहीं है। भद्रता के मोह में पड़कर इसे अस्वीकार करूं तो इससे बड़ा अधर्म क्या होगा? कोई मनुष्य केवल काला ही है, उसमें कोई सुधरने योग्य वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं होता। एक बार एक साहित्यिक गोष्ठी में एक बंधु ने पूछा, आपने सतीत्व की प्राचीन धारणा के विरुद्ध एक रिवोल्ट खड़ा कर दिया है, क्यों, ये समझाइए। शरदचंद्र ने उत्तर दिया, मैंने रिवोल्ट खड़ा नहीं किया, ये तो युग का प्रभाव है। कोई धारणा या वस्तु बहुत प्राचीन काल से चली आई है, इसी कारण वो सही नहीं है। कुछ भी हमेशा के लिए सही नहीं हो सकता। सतीत्व

0: पूर्ण मनुष्यता का एक अंग है। वो मनुष्यता पर हावी नहीं हो सकता। कर्तव्य और अधिकार का संबंध ऐसा अविच्छिन्न है कि एक न रहे तो दूसरा निरर्थक हो जाता है।
1: श्रोताओं, विचार विंदु कार्यक्रम में अभी आप शरदचंद चट्टोपाध्याय के विचार सुन रहे थे। इसी के साथ विचार विंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:35 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज हमारे किसान भाई सुनेंगे पशु आहार में खनिज तत्वों का महत्व, और इस विषय पर डॉक्टर त्रिभुवन यादव से बातचीत की है श्री कृष्ण नारायण शर्मा ने।
1: किसान भाई, आप में से बहुत लोग पशुपालन करत हैं, और पशु के हो चाहे भाई मनुष्य के, अगर संतुलित आहार और शरीर में खनिज तत्वन के और अन्य तत्वन के अगर भरपूर मात्रा ना हो तो शरीर का विकास नहीं होता है, बुद्धि का विकास नहीं होता, हड्डी का विकास नहीं होता। ठीक ही तरह पशु के भी अगर संतुलित आहार और खनिज तत्वन की कमी हो तो उसे तरह तरह के बीमारी हो सकत है, रोग हो सकत है, और पशुपालन में एक तरह से नुकसान हो सकत है। खासतौर अगर दुधारू पशु हैं तो उनके दुग्ध उत्पादन में असर पड़ सकत है, या पशु अगर खेती के जुताई में काम आते हैं तो उनके अगर कमजोर हो जी हैं तो उसे भी नुकसान होता है। आज जो बातचीत का विषय हो पशु आहार में खनिज तत्वों का महत्व, ये पे जानकारी दे विशेषज्ञ के तौर पे हमारे बीच में डॉक्टर त्रिभुवन यादव जी आल बटे। भैया यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ही जानल चाहब कि कौन कौन से तत्व हैं पशु आहार में जौन पशुन के दिहल जा सकत है, उस सब पहले थोड़ा सा सारे आहार के जौन तत्व हैं वो कहाँ हैं उके बता दें, फिर आगे खनिज तत्वन पे बात हुई।
2: पशुपालक भाइयों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जो पोषक तत्व हैं उनसे जो है निर्मित होता है, और उनमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट है जो हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता
1: जी,
2: है
1: जी।
2: वसा है, उससे भी हमें ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है। प्रोटीन है जो शरीर का निर्माण में सहयोग करता है। विटामिन्स हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। मिनरल्स भी इसी कड़ी में शरीर की मजबूती देता है,
1: जी,
2: हाँ, और शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता तैयार करता है। साथ साथ में पानी की तो अति आवश्यकता होती शरीर में, ज्यादातर पोर्शन जो है इसका पानी का ही रहता है।
1: बिल्कुल भैया, एक दुआ है ना कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, तो पानी तो यहाँ हालांकि दो अर्थ में हो लेकिन पानी की आवश्यकता तो शरीर के लिए सबसे ज्यादा है, और वो भी पेयजल जो है पिए लायक रहे, स्वास्थ्यवर्धक रहे, अन्यथा पानी से बीमारी भी हो सकत है। अब खनिज तत्व कौन कौन से हैं जो उनकी आवश्यक है पशुन के लिए?
2: पशुपालक भाई, खनिज तत्वों में मुख्य रूप से देखें तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, कोबाल्ट, आयरन, निकेल और मैग्नीज, सिलिनियम, इन जो तत्वों की जरूरत है, खनिज तत्व जो हैं
1: जी,
2: इनकी शरीर में आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल, और इनके शरीर के निर्माण में जो भूमिका हो वो का हो, मतलब ये तत्वों से शरीर के कौन चीज का निर्माण होता है, थोड़ा सा यू के बताओ।
2: पशुपालक भाइयों, शरीर का जो लगभग 3% भाग है वो खनिज पदार्थों से बना हुआ
1: जी
2: है, जिसमें से लगभग 30 से 40 तरह के खनिज तत्व शामिल हैं, और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा कैल्शियम और फास्फोरस का है, जिसका

0: सबसे ज्यादा योगदान कंकाल तंत्र बनाने में है।
1: बिल्कुल, तो आदमी में भी देखा जाए तो हड्डी का बीमारी मैक्सिमम कैल्शियम से ही होता है।
0: जी जी, कंकाल तंत्र में हड्डियां और दांत के भाग मुख्य हैं।
1: जी,
0: जिसमें अगर देखा जाए तो जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, इनका प्रतिशत बहुत ही ज्यादा है और लगभग लगभग आधे से ज्यादा प्रतिशत इन्हीं का है।
1: पूरा पशु हो चाहे मनुष्य हो, के शरीर का ढांचा वही पे खड़ा हो कैल्शियम के ही।
0: जी
1: जी,
0: और इसमें कुछ जो छोटे जिनकी कम आवश्यकता पड़ती है उनको ट्रेस एलिमेंट कहा जाता है।
1: जी,
0: और उनकी वो उनका कार्य ये होता है कि वो शरीर में जैसे जो क्रियाविधियां चल रही हैं शरीर के अंतर्गत, उनका वो संचालन करते हैं या नियंत्रण करते हैं। और जैसे हम एक उदाहरण के तौर देखते हैं कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, मतलब जहाँ लिक्विड का मटेरियल है एक सेल से दूसरे सेल में किस तरह से चल जाएगा, इसका वो नियंत्रण करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जैसे आप देखें कि ब्लड है एक लिक्विड ही है, लिम्फ है वो भी एक लिक्विड है, इसके इसका जो पीएच मान होता है वो हमेशा न्यूट्रल बनाना बहुत जरूरी होता है शरीर का, तो ये उसको न्यूट्रल बनाने का काम यही मिनरल्स ही करते हैं।
1: जी जी।
0: और देखें शरीर के डाइजेशन में कहीं पे हमें क्षारी मीडियम चाहिए, कहीं पर हमें अम्लीय मीडियम माध्यम चाहिए।
1: जी जी।
0: तो उन जगहों पर भी इनका रोल होता है। और इन्हीं एलिमेंट्स का रोल होता है। और कुछ ऐसी क्रियाएं जो शरीर में चलती हैं जिसके लिए ये कोएंजाइम का काम करते हैं, जो शरीर की क्रिया को तेज कर देते हैं, जहां जरूरत होती वहां पे धीमी कर देते हैं। अब सबसे ज्यादा देखें तो दुग्ध उत्पादन और प्रजनन के पर इन मिनरल्स का बहुत प्रभाव होता है,
1: दुधारू पशु में या जो गाभिन पशु हैं।
0: जी, विकास के लिए और दुग्ध उत्पादन के लिए इनका बहुत बड़ा रोल है। इसमें देखें तो जैसे कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बढ़ती है तो दुग्ध उत्पादन का
1: प्रतिशत बढ़ जाता
0: है, प्रतिशत बढ़ जाता है।
1: जी जी।
0: और जैसे इनकी मात्रा घटती है दूध भी घट जाता है, साथ साथ में आप देखेंगे कि जो है पशु जो है उसके शरीर में भी विकार पैदा होने लगता है।
1: जी जी।
0: क्योंकि जब पशु को उसका कैल्शियम और फास्फोरस मिनरल चीजें नहीं मिल पाती हैं तो जो हड्डियों में पहले से जमा है उनका क्षरण होने लगता है, तो उससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। शरीर में अब उसको हम दूसरे भाषा में बोलते हैं कि उपापचयी या मेटाबॉलिक डिजीज होने वाली हो गई है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि मैग्नीशियम टिटेनी हो गई है, इसका मतलब होता है कि उस पशु के श्रवण के दौरान, दूध श्रवण के दौरान ज्यादा मैग्नीशियम का क्षरण हो गया है, अब वो उसको शरीर से प्राप्त नहीं हो पा रहा है और जो हम उसको बाहर से उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।
1: जी, जी।
0: तो उसमें उस तरह के लक्षण आएंगे। मिल्क फीवर भी उसी तरह का एक बड़ा मेटाबॉलिक डिजीज है।
1: और कौन कौन बीमारी होते हैं जो ये तत्वों के अभाव में,
0: और तत्वों के सभी जितने तत्व हैं ये जब इनकी शरीर में कमी पड़ती है तो वो एक लक्षण जरूर प्रदर्शित करते हैं, जिससे अनुमान लग जाता है कि हाँ इस तत्व की कमी है शरीर में। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे शरीर में आयोडीन की कमी हो गई। आयोडीन ऐसा खनिज तत्व है जिसकी वजह से शरीर में बीएमआर, जिसको कहते हैं कि शरीर की उपापचयी क्रियाएं संचालित होती हैं, ये रेगुलेशन का काम करता है। तो अब इसके उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करता है और थायरॉक्सिन एक हार्मोन के बनाने में भी ये सहयोग करता है। तो अगर आयोडीन की कमी पड़ जाती है तो उन ग्रंथियों से जिससे इसका श्रवण होता है वो गले में होती हैं और उनके श्रवण शरीर की आवश्यकता है, इसलिए उनको बढ़ना पड़ता है। और वो अब होते होते क्या होती हैं, ग्रंथियां फूल आती हैं, उनको इतनी जरूरत को पूर्ति करने के लिए वो अपने आप स्वतः फूल आती हैं। तो कहते हैं कि गला में
1: थोड़ा सा एक सवाल हम ही जानल चाहब कि गांव के किसान जो हो हरा चारा भूसा या कुछ सीमित मात्रा का चारा जानत है, तो संतुलित आहार के तौर पे कौन कौन चीज के इस्तेमाल करें जो में सभी का सभी तत्व जो आप बतावत हुए कि ओके थोड़ा, क्योंकि वैज्ञानिक चीज तो उनके समझ से परे हो, तो आप वो बतावें जो चारा देवल जाए उनमें का का मात्रा हो चाहिए, कौन कौन चीज दें जोने से उनके पूरा संतुलित आहार या खनिज तत्वन को उनमें भरमार हो, जो चारा खियावत है उनमें का चीज दें।
0: पशुपालक भाइयों, संतुलित आहार के लिए प्रोटीन, प्रोटीन से संबंधित जो है जितने भी फलीदार फसलें हैं
1: जी,
0: सब ये उपयोगी हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा होती है। और ज़्यादातर पशु हमारे जो है फाइबर की के लिए ये बाजरा जई ये सब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जो हैं कॉन्सेंट्रेट राशन से दी जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि पशुपालक भाइयों आप कॉन्सेंट्रेट

0: का राशन रखिए जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल और विटामिन्स के जो है कॉम्बिनेशन बना हुआ हो, तो इसकी जरूरत पड़ती है।
1: भैया डॉक्टर त्रिभुवन यादव जी, आप पशु आहार में खनिज तत्वों के महत्व पे अपने पशुपालक भाई के बहुत अच्छी जानकारी देना, आशा किसान भाई से लाभ उठे हैं, पशुपालक भाई लाभ उठे हैं, आपके जानकारी देते बहुत बहुत धन्यवाद।

कृषि जगत कार्यक्रम में अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे पशु आहार में खनिज तत्वों का क्या महत्व है और इस विषय पर बातचीत की डॉक्टर त्रिभुवन यादव से श्री कृष्ण नारायण शर्मा ने। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर राजेंद्र दयाल की वार्ता सुनेंगे। वार्ता का विषय है जलने पर प्राथमिक उपचार।
1: जलना एक प्रकार की चोट है और आज की व्यस्त दिनचर्या में मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति ने कभी न कभी जलन जरूर महसूस की होगी, छोटी या बड़ी वो चाहे किसी चीज़ से आई हो। जलना कई प्रकार से संभव है। अधिकतर आग, गर्म धातु या उबलते तरल पदार्थ से लोग जल जाते हैं। इनके अतिरिक्त ऊष्मा, रासायनिक पदार्थ, विद्युतीकरण, विकिरण या रेडिएशन से भी जलने का घाव हो सकता है। गंभीर रूप से जलने पर मांसपेशियाँ, वसा या शरीर की चर्बी तथा हड्डियाँ तक जल जाती हैं। छोटे बच्चे एवं बूढ़े व्यक्ति जलने से अधिक प्रभावित होते हैं। जलने से शरीर कई प्रकार से प्रभावित हो सकता है। ये निर्भर करता है कि चमड़ी या शरीर की कितनी गहराई प्रभावित हुई है। यदि जला हुआ भाग कुछ इंच से अधिक है अथवा हाथ के कोई बड़े भाग, चेहरा, पैर, जांग या जोड़ जल गया है तो दूसरे व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए। जले हुए भाग को कई भागों में या कई श्रेणियों में इसको बांटा जा सकता है। प्रथम श्रेणी, इसमें चमड़ी की केवल ऊपरी सतह ही जलती है, जलने के स्थान पर सूजन हो जाती है एवं लालिमा रहती है, जलन होती है, पीड़ा होती है, जला हुआ भाग सफ़ेद पड़ सकता है एवं सामान्यतः यह 3 से 7 दिन में ठीक हो जाती है। इसका उपचार यह है कि रोगी को तुरंत जलने के स्रोत से दूर हटाना चाहिए, शरीर पर से जले हुए कपड़े तुरंत हटा देना चाहिए, जली हुई त्वचा पर ठंडा पानी डाला जा सकता है, सावधानीपूर्वक जली हुई त्वचा को साफ करके उस पर एंटीबायोटिक क्रीम जैसे सिल्वर सल्फाडाइजिंग क्रीम लगाना चाहिए, साफ पट्टी से जले हुए भाग को कवर कर देना चाहिए या ढक देना चाहिए, परंतु पट्टी ढीली होनी चाहिए, आवश्यकता हो तो टेटनस का टीका भी लगवाया जाता है। द्वितीय श्रेणी, इसमें त्वचा की ऊपरी सतह के साथ साथ बीच की सतह भी जल जाती है। इसमें जलन, सूजन एवं दर्द तो होता ही है, जला हुआ भाग सफ़ेद पड़ जाता है एवं छाले निकल आते हैं। ये छाले एक प्रकार के तरल पदार्थ से भरे हुए होते हैं। इस श्रेणी में जलने के घाव ठीक होने पर निशान पड़ जाता है, जिसको कि हम स्कार कहते हैं। घाव भरने में कितना समय लगेगा ये घाव की गहराई पर निर्भर करता है। इसका उपचार यह है कि जले हुए भाग को अच्छी तरह साफ कर सुखाना चाहिए, उस पर एंटीबायोटिक क्रीम लगाना चाहिए, रोगी को लेटा देना चाहिए एवं जले हुए भाग को थोड़ा ऊंचा करके रखना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर त्वचा की ग्राफ्टिंग भी कराई जाती है। प्रभावित जोड़ को आराम देने के लिए एक प्रकार की पट्टी जिसको स्प्लिंट बोलते हैं वो लगाई जाती है। बेहतर होगा कि प्राथमिक उपचार के बाद रोगी को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए, क्योंकि शरीर में पानी की कमी से पूरा करने के लिए उसे ग्लूकोज वगैरह देना हो सकता है। यदि शरीर का अधिक हिस्सा जल गया है तो संक्रमण रोकने के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, खून चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। जलन की तृतीय श्रेणी, इसमें त्वचा की तीनों सतहें या परतें जल जाती हैं। इसमें पसीने की ग्रंथियाँ, बालों की जड़ें, तंत्रिकाएँ नष्ट हो जाती हैं। रोगी को पीड़ा कम रहती है क्योंकि जो जला हुआ भाग है वो बहुत गहरा होता है। जला हुआ भाग छूने पर सफ़ेद नहीं पड़ता, इसमें छाले भी नहीं पड़ते हैं, चमड़ी मोटी और काली हो जाती है, विकृत हो जाती है। पानी की अत्यधिक कमी के कारण रोगी की हालत गंभीर हो जाती है। घाव में चारों तरफ से कसाव के कारण रक्त प्रवाह रुक जाता है।

0: एवं जला हुआ भाग विकृत हो जाता है। ठीक होना एवं उसमें समय लगना गहराई पर निर्भर करता है। यदि शरीर का 60% या उससे अधिक जल जाए तो मृत्यु हो सकती है। मृत्यु का कारण सदमे से भी होना हो सकता है या फिर अधिक समय बीत जाने पर सेप्टिसीमिया से होता है या जिसको जहर बात कहते हैं। इसका उपचार यह है कि रोगी को तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए, उसे ऑक्सीजन एवं पानी चढ़ाना होता है, अधिक जली हुई त्वचा को काट कर निकाल देते हैं, उसकी मरहम लगाकर पूरे शरीर को ढक कर रखा जाता है। जलने से बचाव में सबसे आवश्यक यह है कि घरों में धुएं के से बजने वाले अलार्म लगवाना चाहिए, बच्चों को सुरक्षा एवं बचाव के तरीकों को बताना चाहिए, खाना बनाते समय ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए जिससे जल्दी आग फैलती हो, घरों में आग बुझाने वाला यंत्र जो बाजार में भी उपलब्ध है अवश्य रखना चाहिए।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप डॉक्टर राजेंद्र दयाल की वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था जलने पर प्राथमिक उपचार कैसे करें, और इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। संदेश टू सोल्जर कार्यक्रम का प्रसारण शाम 4 बजे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। शाम 6:30 बजे भारत और बांग्लादेश के मध्य ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर इंग्लैंड में खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के मैच का आंखों देखा हाल सुनिएगा। प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। और अब लीजिए सुनिए प्रयागराज केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रीरामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुनिएगा सुबह 7 बजे और 7:10 पर फिल्मों से भजन कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। सुबह 7:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन आप सुनेंगे और दोपहर 12:15 बजे पंडित DR परवर्तीकर का दत्तात्रेय वीणा वादन हम आपको सुनवाएंगे। सुबह 8:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति सुंदरम तिवारी की है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप राजेश कुमार के स्वर में गाए गीत और भजन सुनिएगा सुबह 9:50 पर। सुबह 10:05 पर लोकमाधुरी कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं मल्लिका चटर्जी और डॉक्टर राजकुमार। सुबह 10:30 पर लोकगीत कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं आशीष कुमार और साथी। इनके स्वर में गाए लोकगीत का आप आनंद लेंगे। एक ही कलाकार कार्यक्रम का प्रसारण दिन में 11 बजे किया जाएगा। प्रस्तुति दीपक राय की है और बोलते नगमे कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुनिएगा दिन में 11:30 बजे। आपके पसंद के फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आपकी पसंद में। प्रस्तुति मधु कुमार की है। दोपहर 1:15 पनघट कार्यक्रम में आज की बात होगी बच्चों में नैतिक शिक्षा का महत्व। लोकगीत सरोज सिन्हा के स्वर में सुनिएगा, साथ ही सुनिएगा वंदना श्रीवास्तव की लिखी कहानी। रसोई घर से मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने के फायदे के बारे में बताया जाएगा। शाम 5:15 युवाणी कार्यक्रम में चर्चा होगी ग्रामीण युवाओं के लिए अवसर और चुनौतियों पर। प्रेरणापुंज में विनोबा भावे पर होगी बातचीत। ये थी जानकारी प्रयागराज केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

एहसास की धूप छाओं में, हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: विभागानुसारम् अद्य पश्चिम राजस्थान क्षेत्रे झंझावातस्य संभावना अपि वर्तते। अत्रावधेयम् यत् अद्य बिहार पूर्व मध्य प्रदेश पूर्व उत्तर प्रदेशस्य च नाना स्थानेषु उष्ण तरंगस्य अनुमानम् अपि विभागेन अनेन प्रकटीकृतम्। अपरत्र अद्य देहल्याम् आंशिक रूपेण मेघाच्छादनम् न भविष्यति। सहैव अपराह्णे सायंकाले वा विद्युद्गर्जनेन वृष्टेः संभावनापि वर्तते। सम्प्रति क्रीडा वार्तासु आईसीसी महिला टी20 विश्व कप स्पर्धायाम् अद्य भारतस्य सम्मुखीकरणं बांग्लादेशेन सह भविष्यति। स्पर्धेयं मैनचेस्टर नगरस्य एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफोर्ड क्रीडांगणे आयोज्यते। या भारतीय समयानुसारं सायंकाले 7 वादने समारप्स्यते। हरमनप्रीत कौरस्य नेतृत्वे भारतीय महिला दलं विमेन इन ब्लू सम्प्रति स्वसमूहे द्वितीयं स्थानं भजते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं सुबह के 7 बज रहे हैं, लीजिए सुनिए श्रीरामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडेकर और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

पुण्यात्मा काकभुशुंडी के आश्रम पहुंचकर ही पक्षीराज गरुड़ का संशय, माया जनित मोह और भ्रम दूर हो गए थे। किंतु उनकी ये जिज्ञासा अवश्य बनी हुई थी कि ऐसा क्यों कर हुआ, ये भी कि काकभुशुंडी ने कौवे का शरीर और श्री रामचरित का अक्षुण्ण भंडार कैसे और कहां पाया। उन्होंने अपनी ये जिज्ञासा काकभुशुंडी के सम्मुख प्रकट की। गरुड़ की ये जिज्ञासा सुनकर काकभुशुंडी हर्षित हुए और उन्होंने सविस्तार अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाई। फिर ये भी बताया कि कौवे के शरीर वाले जन्म में ही उन्हें श्री राम की अखंड भक्ति के साथ साथ इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इसी कारण कौवे के शरीर से उन्हें अत्यधिक प्रेम था और वे अपना ये शरीर त्यागने का विचार भी नहीं करते, क्योंकि ये वेद वर्णित सत्य है कि शरीर के अभाव में भगवान का भजन नहीं हो सकता।

श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। और अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्मों से भजन कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला भजन हम आपके लिए लेकर आए हैं शागिर्द फिल्म से, और इस भजन को अपने स्वर से सजाया है लता मंगेशकर ने। मजरूह सुल्तानपुरी जी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है। तो आनंद लीजिए इस भजन का।

आन परी में तेरे द्वार। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला भजन, जिसे हम लेकर आए हैं गोपी फिल्म से, और इस भजन को अपनी आवाज़ से सजाया है मोहम्मद रफ़ी जी ने। राजेंद्र कृष्ण जी की रचना है, कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया है। तो ये भजन चला आपके रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, इसी भजन के साथ फिल्मों से भजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। कहा, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में राज्यों को करना चाहिए काम। लखनऊ अग्निकांड में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और प्रदेश भर में कल से मौसम के शुष्क रहने की संभावना। पूर्वी जिलों में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में आयोजित प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित यह बहुमाध्यम मंच केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को निर्बाध रूप से एकीकृत कर सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रभावी योजना और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने नागरिकों को ठगने के लिए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसे मामलों का सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा समन्वित, संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित पंजीकरण और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में LDA ने विभागीय जांच कर दोषियों को चिन्हित कर लिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि आग की चपेट में आई इमारत का नक्शा वर्ष 2014 में पास किया गया था। इसके बाद वर्ष 2016 में LDA ने मानकों का पालन न करने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। विभागीय जांच में तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS स्तर के अधिकारियों की लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संसुष्टि की गई है।
2: तो इसमें जो दोषी लोग हैं, हम लोगों ने अपनी आंतरिक जांच कर ली है। जो दोषी लोग हैं उस समय जो तैनात प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी रहे हैं उनके विरुद्ध, और साथ ही साथ निर्माण करने में जिन लोग का निश्चित रूप से सहयोग रहा होगा 16-17 में तैनात जो अधिकारीगण थे उनके विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई के लिए शासन भेज दिया है। और हम लोग शासन से अनुरोध भी कर रहे हैं कि सख्त से सख्त इन लोगों पर कार्रवाई की जाए।
0: अग्निकांड में घायल हुए 7 लोगों को इलाज के

0: बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू से डिस्चार्ज कर दिया गया है। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह ने बताया कि एक गंभीर रूप से घायल युवक की हालत भी अब स्थिर है। इस बीच प्रदेश भर में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम द्वारा कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान लगातार जारी है। गौतमबुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि वहां जांच के दौरान 2 कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया। अयोध्या में सीएफओ महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए 2 टीमें बनाई हैं, जो फायर सेफ्टी की जांच के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं।
1: जो दुखद घटना हुई है लखनऊ में, की क्रम में हमारे जिले में 36 हम लोगों ने कोचिंग को रजिस्टर किया हुआ फायर सर्विस में, उन सभी को हम एक अभियान के तहत 2 टीमें हम लोगों ने बनाई हुई है, एक चेकिंग ड्राइव शुरू किया हुआ है। छोटी मोटी कमी मिल रही है तो उसको इमीडिएट रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहे हैं, अगर कहीं कोई बड़ी कमी मिलती है तो निश्चित रूप से फिर उस पर कार्रवाई की जाए।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत इन्वेस्टर्स रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो के माध्यम से प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, सेक्टोरल पॉलिसीज, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी आदि की प्रगति से अवगत कराते हुए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश की जानी मानी कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और कई निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को लेकर बेहद सकारात्मक माहौल बना है।
2: भारत के 3S का एक मॉडल बना है, जहां सेफ्टी है, जहां पर स्टेबिलिटी है और स्पीड है। एक मजबूत रूल ऑफ लॉ के स्टेट के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आपको मिलेगा। एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस यूपी के अंदर आपको मिलेगी।
0: भारत में ताजिकिस्तान के राजदूत लुकमोन बोबो कालोन ज्यादा ने कल रामपुर स्थित रजा लाइब्रेरी और संग्रहालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियां भारत और ताजिकिस्तान की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। रजा लाइब्रेरी के निदेशक पुष्कर ने बताया कि ताजिकिस्तान और भारत के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जल्दी ही एक समझौता ज्ञापन MOU भी किया जाएगा।
3: तो भारत के बीच में सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग किस प्रकार का हो सकता है, उस दिशा में हमने बातचीत भी की और आने वाले समय में हम वहां के संस्थानों और रामपुर हजार पुस्तकालय के बीच में समझौता ज्ञापन करेंगे। एक विशेष बात यह आई कि कुछ ग्रंथ यहां पर कजाकिस्तान से सीधा संबंध रहा और वो उस स्क्रिप्ट को और उस भाषा के अध्ययन के लिए मुझे हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब ने कहा है कि वो वहां से स्कॉलर्स हमारे यहां भेजेंगे जो उसका अध्ययन कर सकें। और
0: राज्य सरकार ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को सहमति प्रदान कर दी है। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया, मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS कॉरिडोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति देने वाला दूरगामी कदम सिद्ध होगा
4: और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि RRTS को मुजफ्फर होते हुए हरिद्वार तक ले जाने के लिए DPR तैयार करने का निर्देश दिया है। उस DPR के लिए 6.43 करोड़ की स्वीकृति भी प्रदान करती है। शासन से इसके लिए पत्र जारी हो गया है। मंडलायुक्त मेयर को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और जो DPR इसकी तैयार होनी है, जितना हिस्सा मेयर के अंदर आएगा उसका पैसा मेयर का प्राधिकरण और जितना हिस्सा मुजफ्फरनगर जनपद में आएगा उसका पैसा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण खर्च करेगा।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
5: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट

0: तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने कल से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिजिटल मंचों के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। कहा, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में ई-जीरो FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में राज्यों को करना चाहिए काम। लखनऊ अग्निकांड में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित। तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 PCS अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित। कहा, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और प्रदेश भर में कल

0: करना चाहिए काम। लखनऊ अग्निकांड में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने विभागीय जांच में दोषियों को किया चिन्हित, तत्कालीन 19 अभियंताओं और 6 पीसीएस अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग को किया संबोधित, कहा पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में निवेश के लिए बना है सकारात्मक माहौल। और प्रदेश भर में कल से मौसम के शुष्क रहने की संभावना, पूर्वी जिलों में 28 जून तक कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन सुना रहे हैं। राग है नट भैरव।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन सुन रहे थे, राग था नट भैरव। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। लीजिए सुनिए देशगान।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।

0: समाचार दिल्ली।
1: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
2: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गई है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी, नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकुए

0: के यूमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
1: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुजुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: membership requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया और एआई पर मबनी टीबी के खात्मे और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। आज उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थी। 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू होगी। 26 तिजारती पासेस जारी किए गए हैं। अमरीकी विफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को वोट देने के लिए शहरियत के सबूत को पेश करने की जरूरत को नाफिज करने से रोक दिया है। वेनेजुएला में आज सुबह 7.5 की शिद्दत का शदीद जलजला महसूस किया गया जिससे कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफाज के लिए आईसीटी पर मबनी प्लेटफॉर्म प्रगति की 52वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्टों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने साइबर जराइम और डिजिटल गिरफ्तारी से मुतालिक धोखाधड़ी की शिकायतों का भी जायजा लिया। जनाब मोदी ने एआई पर मबनी टीबी के खात्मे और साइबर धोखाधड़ी से सख्ती से निमटने की जरूरत पर भी जोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मीटिंग के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 4 रियासतों में सड़क, बिजली, सनअती कॉरिडोर और मेट्रो रेल शोबों में 4 बड़े बुनियादी ढांचों के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी में इजाफा करना, सनअती तरक्की को आगे बढ़ाना और आवामी फलाह बहबूद वगैरह शामिल हैं। वजीर आजम ने इस बात की जरूरत पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में ताखीर की वजह से लागत में इजाफा होगा और शहरी बरवक्त फवायद से महरूम रह जाएंगे। उन्होंने वजारतों और रियासती सरकारों को हिदायत दी कि वो एक मोड मिशन में जेर इल्तवा मामला हल करें और उनकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने मनसूबों की निगरानी और बेहतर मनसूबाबंदी के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के मौसर इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की पेशरफ्त का भी जायजा लिया और बेदारी और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की कोशिशों में एनसीसी कैडेट्स और माई भारत रजाकारों को शामिल करने की भी तजवीज रखी। वजीर आजम ने कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दरमियान मजबूत तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी के मामलों पर तेजी से काम करने के लिए E0FIR मैकेनिज्म के निफाज और अवामी बेदारी मुहिम की जरूरत पर भी जोर दिया। नई दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त की याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून साल 1975 को पामाल किया गया था। ये हर उस शख्स को खिराज अकीदत पेश करने का दिन भी है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थीं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 1975 को आज ही के दिन उस वक्त के सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद ने अंदरूनी खलफशार से पैदा होने वाले खतरात का हवाला देते हुए आईन की दफा 352 के तहत मुल्क में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इस इमरजेंसी का ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अदालती सूरत हाल के सबब किया गया था जिसने उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी की क्यादत में हुकूमत की कानूनी हैसियत व जवाब को नुकसान पहुंचाया गया था। इसके नतीजे में आमिला ने मुकम्मल इख्तियार अपने हाथ में ले लिए थे और रियासत पर मरकज का ज्यादा कंट्रोल हो गया था। इमरजेंसी के ऐलान के बाद आईन में हासिल बहुत से तहफुजात को दफा 358 के तहत मुअत्तल कर दिया गया था। तकरीर और इजहार राय की आज़ादी, एक जगह जमा होने और आने जाने की आज़ादी समेत ان حقوق کو ختم کر دیا گیا تھا جس کی ضمانت دفعہ 19 کے تحت دی گئی تھی. شہریوں کو ان کے حقوق کی خلاف ورزی کے لیے عدالتی چارہ جوئی کرنے کے حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا. اخباروں پر پری سینسرشپ

0: नाफिज कर दी गई थी। यहां तक कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया था, जो प्रेस की आजादी की तहफुज का एक कानूनी इदारा है। इसी मुद्दत के दौरान आईनी तरमीम के जरिए इमरजेंसी का ऐलान करने के सदर जमहूरिया के फैसले पर सवाल करने से रोक दिया गया था और वजीर आजम लोकसभा के स्पीकर के इंतखाब को अदालती जांच पड़ताल से मुस्तस्ना कर दिया गया था। सकाफत की वजारत आज नई दिल्ली में चलने वाले प्रोग्रामों की इख्तितामी तकरीब का एहतमाम कर रही है, जो इमरजेंसी के निफाज के बाद से 50 साल मुकम्मल होने का एक मौका है। इस मौके पर संविधान हत्या दिवस के साथ जमहूरियत हमेशा कायम रहे से मुतालिक एक नुमाइश के अलावा संविधान हत्या दिवस पर एक मुख्तसर फिल्म की नुमाइश की जाएगी। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत इस प्रोग्राम की सदारत करेंगे। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर।
1: उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत के तकरीबन 6 साल के वक्फे के बाद कल दोबारा शुरू होने की तवक्को है। पिथौरागढ़ जिले में थारचूला इंतजामिया के मुताबिक भारतीय ताजिरों का पहला दस्ता कल तिब्बत में तकलाकोट बाजार के लिए रवाना होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तिजारती अफसर और धारचूला सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM आशीष जोशी ने कहा कि पहले मरहले के तहत 26 तिजारती पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 ताजिर और 9 मुआविन शामिल हैं। गंजी में इस अमल में सहूलत के लिए एक कस्टम ऑफिस भी खोला गया है। जनाब जोशी ने कहा कि ताजिरों ने लिपु लेक दर्रे के नजदीक वाके गांव के गोदामों में पहले ही अपनी अशिया जमा कर ली हैं। इंतजामिया को 103 से ज्यादा ताजिरों की दरखास्तें मौसूल हुई हैं। दूसरे मरहले के तहत दीगर 25 ताजिरों को इजाजत दी जाएगी। ताजिरों की मदद के लिए इंतजामिया ने लिपु लेक दर्रे तक अशिया की नकलो हमल की गरज से नबी ढांग के नजदीक खच्चरों और घोड़ों का भी इंतजाम किया गया है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहां पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेकर पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की, उसमें भी एक आपसी सहमति से नबी ढांग के समीप ही एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: भारत चीन सरहदी तजारत का आगाज पहले 1991 में हुआ था, लेकिन 2020 में कोविड-19 वबा के मद्देनजर इसे मुअत्तल कर दिया गया था। आकाशवाणी न्यूज देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू आज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डे से मुल्क की पहली हब एंड स्पोक बैन अल-अक़वामी फजाई खिदमात का आगाज करेंगे। वो कल काशी पहुंचे थे और उन्होंने हवाई अड्डे पर बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी मुआयना किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत अपनी ब्रिक्स सदारत 2026 के तहत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स वुजराए तवानाई की मीटिंग की मेजबानी करेगा। दो रोजा मीटिंग में 3 अहम तरजीहात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिनमें तवानाई की यकीनी फराहमी और पायदारी, तवानाई तक रसाई और मुशावरत, नीज टेक्नोलॉजी और इख्तिरा शामिल हैं। ब्रिक्स के तमाम रुकन मुमालिक के तवानाई के वुजरा और सीनियर अफसरान अहम शोबों में तावुन को मजबूत करने के लिए इस दो रोजा मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस साल भारत की ब्रिक्स सदारत का मौजू लचकदारी, इख्तिरा, तावुन और पायदारी का कयाम है। देही तरक्की का महकमा आज नई दिल्ली में एक कौमी वर्कशॉप का इनेकाद करेगा, जो देही तरक्की में मस्नूई जहानत के इस्तेमाल पर मरकूज होगी। देही तरक्की की वजारत ने बताया कि मजकूरा एक रोजा तकरीब भारत के देही इलाकों की तरक्याती जरूरियात को जदीद तरीन तकनीकी इख्तिरात से मरबूत करने का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म होगी। नीति आयोग, दी इंडिया AI मिशन, सरकर्दा सनती मुशावरती इदारे और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जैसे कलीदी शराकत दार देही तरक्की को फरोग देने में मस्नूई जहानत के इम्कान पर तबादला ख्याल करेंगे। अमरीका के एक विफाकी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया को इंतखाबात से मुतालिक उनके पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज्यादातर हिस्सों को नाफिज करने से मुस्तकिल तौर पर रोक दिया है, जिसमें वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियत के दस्तावेजी सबूत की शर्त की तजवीज भी शामिल है। बोस्टन में अमरीकी जिलाई अदालत की जज डेनिस कैस्पर का यह फैसला दरअसल उनके एक साल पहले जारी करदा उबूरी हुक्म इम्तनाई को मुस्तकिल पाबंदी में तब्दील करता है, जिसमें उन्होंने इंतखाबात में इस्लाहात के लिए जनाब ट्रंप की कई कोशिशों को आरजी तौर पर रोक दिया था। जज कैस्पर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आईन इंतखाबात को मजबूत करने का इख्तियार रियासतों और कांग्रेस को

0: देता है ना के सदर को। और उन्होंने मजीद कहा कि जनाब ट्रंप की शराइत इख्तियारात की तकसीम की खिलाफ वर्जी करती हैं। वेनेजुएला में याराकाई रियासत के युमारे कस्बे में आज सुबह 7.5 शिद्दत का शदीद जलजला महसूस किया गया। अमरीकी अर्जियाती सर्वे के मुताबिक इससे पहले वेनेजुएला में सैन फेलिप में 7.2 शिद्दत का जलजला महसूस किया गया था। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जलजले से वेनेजुएला के कराकस में कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के एक बड़े हिस्से में जलजले की शिद्दत काफी महसूस की गई, जिससे जनूबी अमरीकी मुल्क वेनेजुएला में शहरियों के तहफ्फुज के निजाम को अलर्ट कर दिया गया है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज बरतानिया की राजधानी लंदन के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि ये दौरा भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती समझौते CETA और अगले महीने की 15 तारीख को कंपेनियन डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC के निफाज से कबल हो रहा है। अपने दौरे के दौरान जनाब गोयल बरतानिया के कारोबार और तजारत के वजीर पीटर काइली के साथ आला सतही बाहमी मीटिंग करेंगे। मुजाकरात के दौरान तजारती मुआहदे के निफाज के लिए तैयारियों पर तवज्जो दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के वजीर आजम निकोल पेशिन्यान और उनकी पार्टी को आर्मेनिया में हाल ही में मुनक़िदा पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी को कल सुबह अपने आर्मेनियाई हममनसब की तरफ से एक फोन कॉल मौसूल हुई। जनाब मोदी ने मगरबी एशिया में हालिया वाकयात के बाद ईरान में फंसे हुए भारतीय शहरियों के इनखिला में सहूलत फराहम करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि उन्होंने अहम शोबों में भारत और आर्मेनिया के दरमियान गर्मजोशी और कसीर जहती शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा किया। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली कर्नाटका, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। खवातीन के ICC T20 आलमी कप में आज ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे मैनचेस्टर में एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफल्ड में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की कयादत में भारतीय टीम फिलहाल ग्रुप ए में दूसरे मकाम पर है, जिसने 3 मैचों में से 2 मैच जीते हैं और बांग्लादेश भी 2 मैच जीत चुका है, लेकिन वो कम नेट रन रेट की वजह से चौथे मकाम पर है। भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराने के बाद T20 आलमी कप में अपनी मुहिम का आगाज किया था। इसके बाद उसने नेदरलैंड्स को 95 रन से हराया था, लेकिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हार हुई थी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबार की शह सुर्खी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने जनूबी कोरिया के दौरे पर गए वजीर खारजा एस जयशंकर के बयान को शह सुर्खियों में जगह देते हुए लिखा है, यकसा नजरिया, बामी एतमाद वाले मुल्कों को मिलकर काम करने की ज़रूरत। अखबार की एक और सुर्खी है, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा, भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान को आईना दिखाया। अखबार इनकलाब की एक अहम सुर्खी है, अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर की, अमरीकी सदर को सियासी झटका, डोनाल्ड ट्रंप ने बेमानी इकदाम करार दिया। इसके अलावा कोलकाता में जेर तामीर गोदाम की छत गिरने से 5 मजदूरों की हलाकत की खबर भी अखबार में नुमाया है। अखबार की दीगर अहम बैन अवी खबरें इस तरह हैं, इसराइल को अमरीकी फौजी इमदाद पर इंतजार कम करना होगा, नेतन्याहू का बयान।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया और AI पर मबनी TB के खात्मे और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। आज उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थी। 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू होगी। 26 तिजारती पासेस जारी किए गए हैं। अमरीकी विफाखी जज ने ट्रंप इंतजामिया को वोट देने के लिए शहरियत के सबूत को पेश करने की जरूरत को नाफिज करने से रोक दिया है। और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में खवातीन के आईसीसी

0: टी ट्वेंटी आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 8:45 हो रहे हैं और ये वक्त है आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज का। नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कुछ ही पलों में, उससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
5: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
4: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
5: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
4: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
5: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। ध्वनिताल की तरंगों पर मैं आपकी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं आपके अपने कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। श्रोताओं, आज है 25 जून और आज का दिन बहुत ही खास है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें स्वतंत्रता के मूल्य को समझने और उसकी रक्षा के लिए एकजुट होने की प्रेरणा देता है। और अब हम आपको बताते हैं कि आज नमस्कार प्रयागराज में हम मना रहे हैं विश्व नाविक दिवस। श्रोताओं, प्रकृति हमें हर पल कुछ नया करने की प्रेरणा देती है। उसके हर मूवमेंट में छुपा होता है एक संदेश। जीवन चलने का नाम है, रुकना या थकना नहीं। जब हम बात करते हैं कि रुकना नहीं है और थकना नहीं है, तो याद आ जाते हैं समुद्र की लहरों या नदियों की लहरों से अठखेलियाँ करते हुए नाविक, जिन्होंने अपने जान को हर पल जोखिम में डाला होता है। आप सबको बता दूं, आज हम मना रहे हैं विश्व नाविक दिवस। 25 जून को हर साल ये दिवस समुद्र और नाविकों के सम्मान में मनाया जाता है। नाविक शब्द से समानता है पुत्र पुर्तगाल की खोजी यात्री वास्को डी गामा का बोध होता है। दोस्तों, वो इतिहास का पहला यूरोपीय नाविक था जिसने समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत तक की यात्रा की। वास्को डी गामा के अलावा भारतीय पौराणिक कथाओं में भी नाविक का बहुत ही उल्लेख किया गया है। नाविक, जिसे केवट भी कहा जाता है, इसका विशेष महत्व है। केवट ने प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को गंगा नदी पार कराई थी और तब से नाविकों का सम्मान बहुत बढ़ गया। नाविक वे लोग हैं जो नाव चलाते हैं, जलयान या पनडुब्बी आदि चलाते हैं या उस पर कोई अन्य जिम्मेदारी निभाते हैं, उन्हें नाविक कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नाविक कौन है? श्रोताओं, हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन लगता है कि आप सोच रहे होंगे कि नीलम बहुत बातें करती है भाई। आपसे जब रूबरू होते हैं तो बातों का सिलसिला ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, लेकिन हम आपको सुनवाते हैं नाविकों के सम्मान में एक खूबसूरत सा गीत। आप ज़रूर बताइएगा कि

श्रोताओं, नाविकों का तो सहारा नदिया किनारा ही होता है। और श्रोताओं, हमने आपको कहा था कि हम आपको बताएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा नाविक कौन है। तो श्रोताओं, आपको हम बता दें कि एलना मैकआर्थर, इनको कौन बोल सकता है। मैकआर्थर ने अपनी अटूट दृढ़ता और साथ ही अपनी कमजोरियों को खुलकर प्रकट किया, इसी वजह से ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई। उन्होंने अपनी हर समुद्री यात्रा की वीडियो रिकॉर्डिंग किया और लोगों को समुद्री यात्रा की कठिनाइयों और उसकी पीड़ा से अवगत कराया। कितना कठिन काम करता है एक नाविक, इसी वजह से मैकआर्थर को दुनिया का सबसे बड़ा नाविक होने का खिताब मिला। हर साल नाविक दिवस मनाने की थीम अलग अलग होती है। इस वर्ष की थीम है हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में नाविकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना है। समुद्री पेशे से जुड़े खतरों, कठिनाइयों और सामाजिक चुनौतियों के प्रति समाज को जागरूक बनाना है। नाविकों के अधिकारों की रक्षा, उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार और कल्याण को बढ़ावा देना है इस दिवस को मनाने का खास उद्देश्य है। दोस्तों, इस दिवस को मनाने की घोषणा सन 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन द्वारा की गई थी। वैश्विक व्यापार का लगभग 90% परिवहन समुद्री मार्ग से होता है। आपको पता था? नहीं ना? तो भाई, इसलिए तो हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं कि आपको तरह तरह की नई नई जानकारियों से अवगत कराएं। तो भाई, हम आपको बता रहे थे कि 90% परिवहन

मार्ग समुद्री से होता है। ये सारे काम नाविकों द्वारा जैसे खाद्यान्न, दवाइयाँ, कच्चा माल, ईंधन एक देश से दूसरे देश तक पहुँचाई जाती है। इस कार्य के लिए वे लंबी अवधि तक समुद्र में रहकर कठिन पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना भी करते हैं, जिससे उनका मानसिक और सामाजिक जीवन बहुत प्रभावित होता है। तो क्यों ना हम उन नाविकों के सम्मान में एक दिन मनाएं जो अपनी जान को हथेली पर सिर्फ हमारे लिए रखकर चलते हैं।

तो श्रोताओं, अब मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि हम क्यों मनाते हैं विश्व नाविक दिवस। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलने के वादे के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दे अपनी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव को। प्रस्तुति सुंदरम तिवारी की थी। खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज।

0: केंद्र से किया जा रहा था। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
4: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
3: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
4: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
3: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
4: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से?
6: अनजान ऐप से बचें।
7: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं मैडम एक्स फिल्म से, और इस गीत को अलका याग्निक ने अपनी आवाज से सजाया है। रचना की है इंदिवर ने और अनु मलिक का संगीत है, और इस गीत में अलका याग्निक किसी के दिल को जीतने की बात कह रही हैं। देखिए श्रोताओं।

अलका याग्निक जी ने जब ये गीत गाया तो लोगों ने कहा कि भाई आपने तो हमारा दिल अपनी आवाज़ से ही जीत लिया, क्या बात है। और अब अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं शबनम फिल्म से, और इस गीत को अपनी खूबसूरत सी आवाज़ से सजाया है मोहम्मद रफ़ी जी ने, रचना की है जावेद अनवर ने और उषा खन्ना का संगीत है। तो भाई जब बात मनाने और रूठने की हो गई है तो दीवाना तो भाई कहता है कुछ इस तरह से।

0: कुछ अच्छा सा नाम रख दीजिए, ये गुजारिश है एक मोहब्बत करने वाले की। बहरहाल रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, अपने रेडियो सेट के रहिएगा करीब।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं खुशियां बांटिए,
2: नशा नहीं जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और अब हम आपको सुनवाते हैं हेनो फिल्म का गीत लता मंगेशकर जी की खूबसूरत सी आवाज में। और इस गीत की रचना श्रोताओं रविंद्र जैन ने की थी, और रविंद्र जैन जी का ही संगीत है। क्या खूब कहा है रविंद्र जैन जी ने कि बेदर्दी तेरे प्यार का, बेदर्दी तेरे प्यार में दीवाने हो गए। देखिए क्या गा रही हैं लता जी।

होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 9:15 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए जिले की हलचल, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बस्ती और बदायूं जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित सिंह का।
1: प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूर्ण होने पर बस्ती विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बस्ती में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सर्किट हाउस में सुपोषित कार्यक्रम के अंतर्गत पहुंची महिलाओं को किट वितरण किया। साथ ही साथ जिले में चल रहे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष से पूर्ण होने पर उनके द्वारा दिए गए अनेक योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 12 वर्षों का स्वर्णिम काल पूरा किया है। उनके नेतृत्व में भारत देश की तस्वीर बदली है और तकदीर भी बदली है और एक नई सोच के साथ भारत ने एक नई दिशा की ओर बढ़ने का संकल्प लिया है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी और उन्होंने अपनी सरकार का लक्ष्य गरीब कल्याण योजनाओं के साथ शुरू किया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि
2: 4,128 करोड़ रुपए की हमारी 383 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी और इन परियोजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम चलाए गए हैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद उनको रिवाइवल के प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किए जिसमें जो पहले 2 सुगर मिल रिवाइव किए गए।
1: बस्ती जिले में खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में प्राकृतिक खेती विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश एवं देश के विभिन्न किसान कृषि वैज्ञानिक अधिकारियों तथा बड़ी संख्या में किसानों ने सहभाग कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने किसानों से आह्वान किया कि वे कृषि विज्ञान के तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त कर प्राकृतिक खेती को अपनाएं तथा कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग को न्यूनतम प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है बल्कि किसानों की उत्पादन लागत को कम कर उनकी आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बस्ती जिले में मुहर्रम के दौरान निगरानी के लिए 1400 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इस दौरान निकलने वाले जुलूस और मजलिसों के मद्देनजर पर्याप्त पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस क्रम में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मुहर्रम को लेकर अधिकारियों ने पीस कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में मुहर्रम को लेकर थाना क्षेत्र वासियों से सुझाव मांगा गया। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से मानक के अनुरूप संपन्न कराने की अपील किया। जिला अधिकारी कृतिका जोशा ने बताया कि
3: जनपद में लगभग 1952 ताजिए रखे जाएंगे जिनकी निगरानी के लिए 1400 के ऊपर के CCTV कैमरेज लगे हुए हैं। जुलूस की जो संख्या है वो 127 है। इसको लेकर के पुलिस की सभी ड्यूटीज लग गई है एज वेल एज प्रशासन की ओर से भी सभी मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लग गई है।
1: बस्ती में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर असम प्रभारी और पूर्व लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी ने बस्ती स्टेडियम में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में भाग लेते हुए योगाभ्यास किया और लोगों को नियमित योग अपनाने का संदेश दिया। योग दिवस इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर स्वस्थ जीवन के लिए योग के महत्व को समझा और नियमित योग करने का संकल्प लिया। लखनऊ में कोचिंग संस्थान की घटना के बाद बस्ती जिले के सभी कोचिंग संस्थानों में मानक की चेकिंग की जा रही है। फायर सेफ्टी समेत एंट्री और एग्जिटिंग की चेकिंग की जा रही है। जिले में भी पुलिस विभाग के साथ फायर टीम और DIOs लगातार चेकिंग कर रहे हैं। टीम ने सबसे पहले कटरा क्षेत्र के लक्ष्य एकेडमी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लगे फायर सेफ्टी एक्सपायर मिले। तत्काल ही संस्थान को फायर सेफ्टी को लेकर चेतावनी जारी की गई। मानक विहीन कोचिंग संस्थान चलाने पर अधिकारियों ने कड़ी आपत्ति जताई साथ ही मानकों को पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए। क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने एक कोचिंग संस्थान के चालक को निर्देश दिया कि वहीं इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी ने बताया कि शासन और उच्चाधिकारियों के निर्देश पर संयुक्त टीम द्वारा कोचिंग और लाइब्रेरी सेंटरों की चेकिंग कराई जा रही है।
0: बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का।
4: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर आधारित बदायूं के डैड परिसर में आयोजित 4 दिन

0: उसी प्रदर्शन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। जनप्रतिनिधियों, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों आदि ने सेल्फी प्वाइंट पर तस्वीरें लेकर पलों को यादगार बनाया। बदायूं जनपद के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन एवं पर्यावरण डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने बीते दिनों प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में पहले दिन से ही आगंतुकों में सरकार की योजनाएं जानने के लिए भारी उत्साह देखा गया। आगंतुकों ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव से पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुँचा रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं में स्टार्टअप, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और निःशुल्क खाद्यान्न वितरण जैसी योजनाएं शामिल रहीं। प्रदर्शनी का आयोजन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। बदायूं स्थित कृष्णा लॉन में बदायूं से लखनऊ के लिए नई ट्रेन संचालित होने के संबंध में बीते दिनों आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने कहा कि ये बदायूं जनपद की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि बदायूं से लखनऊ के लिए रेल सेवा संचालित किए जाने की मांग को लेकर वो लंबे समय से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के समक्ष लगातार प्रयासरत थे। केंद्रीय राज्य मंत्री बी एल वर्मा ने बताया,
1: आज मुझे खुशी है कि बदायूं से सीधी ट्रेन लखनऊ के लिए जनता की बहुत पुरानी डिमांड थी चलने जा रही है, इसकी स्वीकृति मिल गई और बहुत जल्दी तिथि तय करके बदायूं से हरी झंडी दिखाई जाएगी। यहां से सुबह 5:25 पर ट्रेन यहां से चलेगी और शाम को वापस भी आ जाएगी।
0: बदायूं की जिलाधिकारी अवनीश राय ने बीते दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन की सुगमता से सुलभ कराने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से माइक्रो प्लान बनाकर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने 28 जून से प्रारंभ हो रहे पल्स पोलियो अभियान के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान अंतर्गत ब्लॉक स्तर नोडल अध्यापकों का संवेदीकरण, स्थानीय निकायों पर संवेदीकरण, ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी की संवेदीकरण आदि कार्य समय पर पूर्ण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि संबंधित सभी बैठकर समय से पूर्ण कराकर अभियान को सफल बनाया जाए। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने 28 जून 2026 से पल्स पोलियो दिवस पर सभी प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी व जिला पंचायत राज अधिकारी को पल्स पोलियो दिवस के दिन बूथ का उद्घाटन संबंधित ग्राम प्रधान से करवाने को निर्देशित किया। बदायूं बीते दिनों राष्ट्रीय नीति 2020 के अंतर्गत सतत शिक्षण पद्धति एवं कार्यप्रणाली विषय पर एक फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य संसाधन व्यक्तियों के रूप में प्रोफेसर साजिद जमाल और डॉक्टर अहमद मुस्तफा सिद्दीकी, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अध्यापन कार्य से जुड़े हैं, ने शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों, छात्र केंद्रित शिक्षा, नवाचार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर आधारित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि व जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि योग हमें फिट रखता है और जो फिट है वही हिट है। इस अवसर पर सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, MLC प्रतिनिधि शारदेन्दु पाठक, नोडल अधिकारी व राज्य आयुक्त GST नितिन बंसल, जिलाधिकारी अवनीश राय सहित अन्य अधिकारी व आमजन आदि मौजूद रहे। योग दिवस पर योग प्रशिक्षकों ने सभी को योग करवाया। जनपद के प्रभारी मंत्री व प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन एवं पर्यावरण डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में कोरोना वैक्सीन से देश के लोगों की हिफाजत की।
2: हम आज इस योग दिवस पर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के दीर्घायु की कामना करते हैं। ये योगा को इतना ज्यादा पॉपुलर हिंदुस्तान में करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया को योग का लाभ बताया।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल। आपने सुनी बस्ती और बदायूं जिले की हलचल। इसी के साथ ही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 400।
5: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
6: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग, जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़।

0: और 100.3 FM आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: श्रोताओं लीजिए सुनिए देश गान।

श्रोताओं, अभी आप देश गान सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। सुबह के 9:30 होने वाले ही अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने वीडियो सेट के करीब।

0: आज
1: आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेज़बान मोहम्मद सईद अख्तर। आदाब कबूल फरमाएं सामाइन, आज के इस खुसूसी ओबी प्रोग्राम में हम मौजूद हैं द क्लार्क्स अवध होटल में, जो अपनी बेहतरीन मेहमान नवाजी, आला मेयार की खिदमात, लजीज खानों के लिए खास शोहरत रखता है। खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं बल्कि तहजीब, सकाफत और जौक का आईना भी होता है। एक अच्छे खाने के पीछे शेफ की मेहनत, तख्लीकी सलाहियत और बरसों का तजुर्बा शामिल होता है। आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं और हमारे साथ हैं होटल के मारूफ शेफ भीकम प्रसाद साहब, जो हमें खानों की तैयारी, जदीद रुझानात और इस शोबे के मुख्तलिफ पहलुओं से

0: एक गोश्त फलकनुमा है जो बहुत फेमस है, हाँ, और एक पनीर हजरत महल है,
1: पनीर हजरत
0: महल है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: और एक सब्ज गलावट, ये सब्ज गलावट वेजिटेरियन है। तो वैसे तो यहाँ का सारा ही कुछ फेमस है, रेस्टोरेंट ही फेमस है, लेकिन ये चीजें आदमी आंख बंद करके ऑर्डर देता है, गोश्त फलकनुमा ले आओ, या हजरत महल पनीर, या फिर अगर हमको किसी को खिलाना होता है साहब वेज में हमको क्या खिलाना है, कबाब चाहिए, तो उसको खिलाते हैं सब्ज गलावट।
1: सब्ज गलावट
0: ये सब तो यहाँ की मशहूर डिश है, और बनाने को तो बहुत चीजें बनाते हैं।
2: एक बेहतरीन खाना तैयार करने के लिए किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए?
0: सबसे बेहतरीन खाना बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा उसकी जड़ में।
1: बिल्कुल,
0: जैसे खाना बनाते हैं आपको उसमें जिंजर गार्लिक डालनी है, तो हाथ साफ सुथरे नहीं है जैसा देखा जाता है।
1: बिल्कुल,
0: लोग क्या करते हैं हाथ साफ नहीं है,
1: काट देते हैं,
0: या प्याज छीला और ठीक से छीला नहीं, उसमें काली लगी होती कई जगह,
1: बिल्कुल
0: वो साफ नहीं हुआ, तो वो फिर खाना में आगे से सही नहीं होगा, कुछ ना कुछ कमी है, अगर आपने छोड़ दी तो वो कमी आगे जाके दिक्कत पैदा करेगी। तो वो आप वहाँ से शुरू करें, पहले अपने आप को, आपके कपड़े साफ हों, आपके हाथ साफ हों, आपके नाखून कटे हुए हों, उसके बाद आप जो काम करें वो साफ सुथरा हो। आप गोभी काट रहे हैं या जो भी काट रहे हैं या जो भी बना रहे हैं वो पहले धुला हुआ हो, ऐसा नहीं कि भिंडी जैसे ही बाजार से आई आपने काटा शुरू कर दिया। उसको काटते हैं पहले, उसको धोते हैं, फिर उसका पानी सुखाते हैं, उसके बाद में साफ सुथरा के, अगर आप साफ से काम करेंगे तो आपका काम भी आगे से अच्छा ही होगा और साफ सुथरा होगा। तो शुरू तो वहाँ से करते हैं।
1: खाने की तैयारी में मैयार और सफाई को यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम जरूरी है?
0: जैसे कि हम कोई ग्रेवी बनाते हैं, ग्रेवी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ग्रेवी नहीं है तो कुछ आइटम तो बन जाएंगे पर ज्यादा नहीं बन सकते।
1: अच्छा,
0: तो ग्रेवियां बनाते हैं हम 3-4 किस्म की, एक रेड ग्रेवी बनाते हैं, एक व्हाइट ग्रेवी बनाते हैं, और एक ब्राउन ग्रेवी बनाते हैं।
1: जी,
0: वैसे चार होती हैं, एक पालक ग्रेवी बनाते हैं, पर पालक की कम बिकता है, कुछ आइटम है उसके जो चार, इसलिए वो उससे बनाते हैं, और ये सब तीन ग्रेवियों के आइटम ज्यादा होते हैं।
1: अच्छा,
0: जैसे हजरत महल भी इसी ग्रेवी में है, लाल रेड ग्रेवी में, बटर चिकन भी इसमें ही है, चिकन टिक्का भी इसमें ही है, ऐसे कई चीजें हैं, तो तीन ग्रेवी हम पहले से रेडी करते हैं।
1: अच्छा,
0: अब इनको रेडी करने के लिए आपको जिंजर गार्लिक चाहिए, तो जिंजर गार्लिक को साफ सुथरा करना पड़ेगा, महीन काटिए, फिर उसको बढ़िया धोइए, धोने में छिलके बिलके निकालिए, छिलके निकालने के बाद फिर उसको पेस्ट बनाइए, पेस्ट बना के अलग रखते हैं, काजू का भिगा के बढ़िया से धो के फिर उसका पेस्ट बना के अलग रखते हैं, टमाटर प्यूरी टीन में आती है उसको लेके हम काट के डब्बे से बाहर निकाल के बॉल में करके फिर उसको रेडी करके पहले से रखते हैं, तेल हमारे पास है कि नहीं, वो भी कौन सा है, साफ सुथरा है कि नहीं, वो रखते हैं, फिर जिस बर्तन में बनाना है फिर उस बर्तन को साफ सुथरा रखते हैं। ये सब तो हो गई तैयारी, बनानी तो हम इसके बाद शुरू करते हैं,
1: तैयारी पहले करते हैं,
0: हाँ,
1: फिर बनाने की
0: फिर शुरू करते हैं,
1: बनाना शुरू करते हैं।
0: क्योंकि उस टाइम में हमने तेल डाल दिया, अब प्याज ढूंढ रहे हैं, प्याज लाए तो जल गई, जब तक है या कुछ और लाए जल गई, इसलिए हमने वो पहले से पूरा रेडी कर लेते हैं ताकि हमको बीच में रुकना नहीं पड़े। जैसे यहाँ की दाल फलकनुमा वो भी काफी मशहूर है, फेमस है, और ये दाल भी हमने इम्तियाज कुरैशी से ही सीखी है, अभी भी रेस्टोरेंट में दिल्ली में दाल बुखारा के नाम से बहुत फेमस है,
1: दाल बुखारा के नाम से
0: दाल के वहाँ पे फेमस है, वो तो बेचारे अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बुखारा रेस्टोरेंट उन्होंने ही शुरू किया है।
1: अच्छा अच्छा,
0: ये दाल भी हमने उन्हीं से सीखी।
1: आजकल लोगों के खाने के जौक में क्या तब्दीली आई?
0: आजकल के लोग बहुत चेंज हो गए
1: जी।
0: क्योंकि जैसे भी अभी हमारे वहाँ लोग आते हैं खाना खाने, तो उनके जो कई बार ऐसा भी होता है जो उनके माँ बाप होते हैं वो तो हमारे वहाँ खाना खाते हैं, अब उनके बच्चे आते हैं, उनको चाहिए पिज्ज़ा, किसी को चाहिए पिज्ज़ा, किसी को चाहिए मोमो, तो उसके लिए एक नया रेस्टोरेंट हमने खोला हुआ है यहाँ पे, तो हमने देखा कई बार उनके माँ बाप यहाँ बैठे हैं, उनसे बात की, कितने लोग हैं आप लोग, बोला हम लोग आठ लोग तो आठ हैं पर चार लोग नीचे बैठे हैं। नीचे क्यों बैठे हैं? वो सब बच्चे हैं, उनको किसी को पिज्ज़ा चाहिए, किसी को मोमो चाहिए, किसी को डोसा चाहिए, तो वो सब नीचे ले आते हैं।
1: अच्छा,
0: तो आजकल के लोगों में और पहले के लोगों में यही डिफरेंस है, आज लोगों को चिकन मुगलई वो नहीं खाएंगे, बिरयानी तो खाएंगे शौक से, लेकिन उनको पिज्ज़ा भी चाहिए, उनको मोमो भी चाहिए, किसी को डोसा चाहिए, सर्व करते हैं। अगर आपको विशेष रिक्वायरमेंट है, अगर आपके मान लीजिए एक बच्चा है, अब उसको एक डोसा चाहिए या फिर एक बर्गर चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, तो ऑर्डर लेके हम नीचे से मंगा देते हैं।
1: अच्छा, नीचे मंगा देते हैं?
0: मंगा देते हैं, वो सर्व कर देते हैं यहाँ पे। अगर आपको बहुत से लोग आते हैं उनको पिज्जा चाहिए
1: जी,
0: तो हम जो लोग क्रस में ऑर्डर करके वहाँ मंगा देते हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन इस पर बनेगा वो जो लोग क्रस में ही
1: सही।
0: जो जहाँ बनता है वही बनेगा।
2: अवध की रवायती खानों की क्या खसूसियात है?
0: देखिए, अवध की खसूसियत क्या है, अवध तो एक क्षेत्र है जो पहले भी था,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और बाद में आए मुगल
1: जी,
0: तो उन लोगों ने अपने हिसाब से इसको सेट कर दिया,
1: बिल्कुल,
0: अब ये अवधी और मुगलई हो गया।
1: अच्छा,
0: तो अवधी खाने तो पहले ही बढ़िया थे, लेकिन नॉन वेज कम था। ये जो मुगलई खाना है उसमें खास बात उसकी ये है, बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग पुराने लोग करते हैं, नए लोग तो नहीं, पुराने लोग क्या करते हैं,

0: ये भी हमने बहुत पुराने के लोगों से ही सीखा है, मुगलों का खाना जो बनाते थे या जो उस टाइम के कारीगर थे
1: जी जी,
0: वो डालते सब कुछ थे
1: जी।
0: जैसे बड़ी इलायची हुआ, तेज पत्ता हुआ, दालचीनी हुआ, केसर हुआ, हम भी वो सब डालते हैं
1: जी।
0: खास बात उनमें जो थी हम भी वही करते हैं, ये सब दिखना नहीं चाहिए।
1: अच्छा,
0: अब लोग क्या करते हैं, कहीं आप जाइए वो तेज पत्ता भी डाल देंगे, दालचीनी भी डाल देंगे, मगर वो आपको जब सर्व करेंगे दिखता है। मुगलई खाने का ये खासियत नहीं है।
1: अच्छा,
0: आप सब डालिए लेकिन खाने वाले को ये पता लगे कि टेस्ट बढ़िया है, क्या क्या पड़ा है ये सिर्फ बनाने वाले को पता होना चाहिए। तो बहुत ही फाइन खाना चाहिए, बहुत फाइन, बहुत साफ सुथरा।
1: जी जी।
0: ये नहीं कि आपने उसमें तमाम लकड़ी पकड़ी डाल दी और वैसे ही सर पर दिया, ये उसकी खास बात है।
1: एक शेफ को किन सलाहियतों और खूबियों का हामिल होना चाहिए?
0: आजकल तो बहुत ज्यादा लोग एक्सपेक्ट करते हैं
1: जी।
0: कोई भी कंपनी आजकल का शेफ को चाहती है कि ये शेफ सब कुछ देखे
1: जी।
0: मतलब खाना भी बनाना आना चाहिए, इंग्लिश बोलनी भी आनी चाहिए, गेस्टों से बात भी कर ले और यहाँ स्टाफ को डील भी कर ले
1: जी।
0: जो हमारा स्टाफ नहीं बनाता वो बना के भी दिखा दे और वो किसी किचन को किसी नए रास्ते पे ले जाए, नई नई चीजों का इंट्रोडक्शन करे, कोई नया नई चीज लाता रहे, ये भी चाहते हैं। तो आजकल के शेफ को तो ये सब आने चाहिए आजकल के शेफ से, क्योंकि क्या होता है वहाँ जब बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ गए होंगे इंस्टीट्यूट में अब, तो वहाँ पे लोग बता देते हैं साहब आपको तो ये बना देंगे, आपको ये बना देंगे। हकीकत तो ये है वो बनाएंगे और बनेंगे आप, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप बहुत मेहनत कर सकते हैं
1: तब आइए।
0: सबसे पहला ज्यादा करना पड़ता है जो रियल में आपको पहले ड्यूटी अदा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे आए और फिर आप टाइम देख रहे हैं कि साहब 5 बज गया, 6 बज गया या 8 बज गया।
1: इसमें टाइमिंग की कोई लिमिट
0: नहीं है। अगर आपको छुट्टी भी 10 बजे होनी है या 10 बजे आपने सोचा है या किसी से कोई इंतजार कर रहा है और 10 बजे कोई गेस्ट आ गया तो आप छोड़ के नहीं जा सकते।
1: बिल्कुल
0: 12 भी बज जाएगा, कभी आपको थोड़ा पहले भी टाइम मिल जाएगा। तो इसमें आपको मेहनत ज़्यादा चाहिए। दूसरा, आदमी को थोड़ी परवाह भी होनी चाहिए। अगर एक दिन गया एक दिन नहीं गया, सरकारी नौकरी नहीं है, और अगर सरकारी नौकरी भी होती है होटल में तो ये सारी जिम्मेदारियाँ उसकी हैं, वो बाहर की तरह नहीं कर सकता। होटल में अगर करना है तो आपको सब कुछ मिलेगा पर आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। जैसे आपको कंपनी जूते भी देती है, यूनिफॉर्म भी देती है और सुविधा खाने पीने की भी देती है, चाय पानी की देती है, तो आपसे उतनी उम्मीद भी रखती है कि आप ये करेंगे आप वो करेंगे। तो ये सभी करना पड़ता है और करना चाहिए भी। तो हम नए लोगों से ये कहना चाहेंगे जिनको भी,
1: नौजवानों को आप यही मशवरा देना चाहेंगे?
0: हाँ, ये मशवरा देना चाहेंगे कि अगर जो उनको किचन में आने का शौक है, क्योंकि होटल में तो कई डिपार्टमेंट हैं,
1: बहुत डिपार्टमेंट
0: यहाँ मेंटेनेंस भी है और यहाँ पे F&B सर्विस भी है, प्रोडक्शन है किचन में भी है, तो किचन को प्रोडक्शन कहते हैं
1: जी।
0: जो आदमी किचन में आना चाहता है मतलब प्रोडक्शन में करना चाहता है, ज़्यादा नॉलेज हम तो उसी के रखते हैं
1: जी।
0: और हम उसके लिए एडवाइस बता कर सकते हैं, क्योंकि हमको सबसे अच्छा किचन ही लगता है। हाँ, किचन में ही लगता है और एक तरीके से कहा जाए तो किचन को होटल का बैकबोन भी मानते हैं।
1: सही बात,
0: क्योंकि किसी भी होटल में जाएं आप तो सोचेंगे इसका खाना कैसा है, चलो खाना खा के देखते हैं, या अगर आपको खाना उसका पता है कि अच्छा है तभी आप जाएंगे, और आपको पता है बेकार है
1: तो क्यों जाएंगे।
0: तो इसलिए आप खाना खाएं ना खाएं वो अलग बात है, लेकिन अब नाम तो खाने के सुन के जाते हैं।
1: बिल्कुल, खाने का नाम
0: सुन के जाते हैं।
1: जगह उस होटल में जाओ यार ये चीज़ डाल
0: बढ़िया मिलेगी। यही वजह है कि जो हमारे वहाँ फलकनुमा में
1: जी,
0: आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ती
1: है।
0: अगर आप कहें साहब हमको 10 लोगों को आना है तो हमारे पास टेबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले बुक हो जाती है 5-7 बजे से पहले ही पहले।
1: अच्छा,
0: 7 बजे पहले बुक करना,
1: फोन कॉल पे बुक होता है।
0: बुक का कोई पैसा लगता नहीं है, बस आपको पहले से बुक कराना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेबल खाली मिलती है। और नहीं तो फिर
1: हम डायरेक्ट आए तो मुश्किल हो गया।
0: हाँ, मुश्किल हो जाएगा, कभी कभी तो मिल जाएगी
1: जी,
0: पर कभी कभी ऐसा भी होगा अब वेट करना पड़ेगा। अक्सर ही ऐसा हो जाता है, वेट करना पड़ता है एक मंगल को छोड़ के, क्योंकि मंगल को लोग एक गजल भी नहीं होती, तो मंगल को कम लोग भी आते हैं, जिनको ज़्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए ऐसे लोग आते हैं। तो हम लोगों का काम तो हो ही जाता है, ऐसे लोग बहुत हैं जिनको शोर शराबा नहीं चाहिए, बाकी सब दिन होता है। हम उन लोगों को ये कहना चाहेंगे कि जिन लोगों को किचन में आना है वो लोग घर से ये तैयार होके आए कि हमको ज़्यादा मेहनत करनी है और शेफ बनना है। तो ऐसा नहीं है कि वो शेफ बनना भी बहुत कठिन, कठिन बात नहीं है, बन जाएंगे। पर यह कड़ी मेहनत चाहिए, ड्यूटी का कोई टाइम ही नहीं। ये सोच के आए कि हम 10 घंटे भी कर लेंगे और 12 घंटे भी कर लेंगे, तो 10 घंटे 12 घंटे भी करें।
1: टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ये कह सकते हैं बिल्कुल।
0: क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देंगे तो अपना पूरा काम कर नहीं पाएंगे,
1: कर ही नहीं पाएंगे बिल्कुल।
0: होटल क्या होता है, सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है,
1: बिल्कुल सही बात,
0: और रात को 12 बजे तक चलता ही चलता है। ये तो नॉर्मल है, वैसे तो 24 घंटे चलता है। हमारा रेस्टोरेंट भी यहाँ पे है जो लोग

0: घंटे चलता है,
1: लोग रहते भी हैं
0: 24 घंटे चलता रहते भी हैं,
1: बिल्कुल सही बात।
0: जनरली वैसे ब्रेकफास्ट चलता ही है,
1: बिल्कुल,
0: तो ड्यूटी ज़्यादा करनी पड़ती है, ड्यूटी ज़्यादा करिए
1: जी। आपके कैरियर का कोई ऐसा यादगार तजुर्बा जो हमारे सामने को आप शेयर करना चाहेंगे?
0: हाँ, तजुर्बा हमने कई लोगों से, यहाँ हम रेस्टोरेंट मिल चुके हैं कई सेलिब्रिटी,
1: अच्छा,
0: हाँ, जिसमें से हमको एक खास लगता है, एक मैडम आई आई क्या है अभी, वो शिल्पा सेट्टी,
1: अच्छा अच्छा,
0: नाम सुना होगा आपने,
1: जी जी, हीरोइन है।
0: तो वो उनको खाना खिलाने के लिए बैठाया हमने,
1: जी जी,
0: उन्होंने बोला आपका, हमको गोश्त फलनवा पसंद है,
1: अच्छा,
0: और बहुत पहले आए थे यहाँ और आज वही खाना है उनको,
1: अच्छा,
0: ठीक, खिलाया उनको गोश्त फलनवा। खाने के बाद ये तो बहुत लोगों के साथ में हुआ है, कई लोगों को हम खिला चुके, पर उनके साथ याददाश्त इसलिए है क्योंकि उसके बाद जब हम उनसे मिलने गए, कहने लगे हम तो इंतजार करते, उनका एक बेटा है वो भी साथ में था,
1: अच्छा,
0: हस्बैंड भी थे, तीन लोग थे, हम तो इंतजार ही कर रहे थे कि आप आए,
1: अच्छा,
0: हाँ, गोश्त फलनवा हमको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने खुद हमको बोला कि आपके साथ हमको एक फोटो खींचनी,
1: अच्छा अच्छा,
0: फोटो है हमारे पास अभी भी कहीं,
1: अच्छा, बहुत खूब,
0: तो ये यादगार है। और एक वो आती हैं मालिनी अवस्थी,
1: अच्छा,
0: वो भी जब आती हैं
1: तो
0: अभी भी
1: यही आती हैं, फलनुमा,
0: हाँ, तो फलनुमा ही आती हैं,
1: अच्छा अच्छा
0: अच्छा, बहुत से गेस्ट हैं जो फलनुमा में ही आते हैं,
1: जी जी,
0: लेकिन वो लोग आएंगे यहीं,
1: आएंगे ही,
0: हाँ, फलनुमा ही आएंगे,
1: फलनुमा ही आएंगे,
0: उनको आप रास्ते में रोक नहीं सकते।
1: आखिर में हमारे सामान के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
0: आजकल के खाने, देखिए खाने सब अच्छे हैं
1: जी,
0: लेकिन आजकल के जनरेशन को तो खाने वही पसंद आते हैं, हम अपने घर में भी देखते हैं
1: जी,
0: छोटे बच्चों को मैगी चाहिए, मगर हमारे ख्याल से तो वो खाने खाने चाहिए जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हो। मैगी ठीक है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि सेहत के लिए बहुत बढ़िया होगी,
1: बहुत बढ़िया, बिल्कुल,
0: क्योंकि उसमें क्या क्या पड़ा है ये हमको खुद नहीं मालूम, हम जो खाना बनाते हैं उसमें क्या क्या पड़ा है ये हमको मालूम, घर में आपकी मदर खाना बनाती हैं उसमें क्या क्या पड़ा है उनको मालूम है,
1: बिल्कुल,
0: और वो क्या क्या अपने बच्चे को खिला रही हैं ये उनको मालूम
1: है,
0: तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं डाल रही जिससे वो नुकसान करें, खाना तो घर का ही अच्छा होता है। आजकल के लोगों को हम तो वही बताएंगे, खाना वो खाएं जो उनको खुद मालूम हो इसमें क्या क्या होता है,
1: क्या होता है, बिल्कुल,
0: अब इसमें पता ही नहीं क्या क्या होता है, जैसे बाजार में तमाम सॉस आते हैं, उन्होंने बोतल उठाई और डाल दिया, उस बोतल में क्या है बनाने वाले को भी नहीं मालूम,
1: नहीं मालूम, बिल्कुल,
0: क्योंकि उसको मालूम ये वाइट सॉस है डाल दिया, ये रेड सॉस है
1: डाल दिया।
0: रेड सॉस में टमाटर कितना है और कद्दू कितना है कि नहीं है ये भी पता नहीं, तो फिर आपको वही खाना चाहिए जो आपको मालूम है,
1: मालूम,
0: खाना कुछ भी खाएं सब अच्छा है, और जो पुराने खाने हैं जैसे कि हम लोग जो मुगलाई खाना है आपको, तो आप गोश्त फलनवा खाइए, हांडी चिकन खाइए, पराठा खाइए, सीरमाल खाइए, बिरयानी खाइए, बहुत कुछ खाने के लिए है,
1: बिल्कुल,
0: वेजिटेरियन खाना है तो आपको सब गिलावट खाइए, पनीर अफगानी खाइए, आलू खाइए, तंदूरी आलू खाइए, तंदूरी पराठा खाइए, आलू पराठा खाइए, पराठा दही खाइए, खाने लिए भी बहुत कुछ है, पर मेन कहने का मतलब हमारा यही है कि आपको वो सब खाने चाहिए जिसमें आपको पता है कि इसमें क्या है,
1: क्या है,
0: अब आपको पता ही नहीं है क्या है,
1: खाते
0: चले गए फिर आप कहेंगे हमारी गैस बन रही है या हमारा पेट दर्द हो रहा है, वो होने के पूरे चांस रहते हैं।
1: बहुत शुक्रिया सामाई, ये थे भीकम प्रसाद शेफ साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और खानों की दुनिया से मुतालिक दिलचस्प मालूमात हमारे सामाईन तक पहुंचाई, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामाईन, उम्मीद है आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी, आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है, फिर मिलेंगे किसी और दिन, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद सईद अख्तर को दीजिए इजाज़त, आदाब।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से उर्दू प्रोग्राम, आज की पेशकश थी जायका।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
6: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
5: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
6: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
7: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
8: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
7: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार।

0: धन्यवाद, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपना यह नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओ, लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं राजेश कुमार। आज आप इनके स्वर में गए गीत और भजन का आनंद लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं राजेश कुमार के स्वर में गाया ये भक्ति रचना।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपने राजेश कुमार के स्वर में गाए गीत और भजन का आनंद लिया। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने वाले ही कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के लिए डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचागत

0: परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। देश भर में आज इससे जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। यह अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और ऊर्जा का उपयोग तथा समानता और प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। वेनेजुएला में आज 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी कराकास और आसपास के क्षेत्रों में कई इमारतें ढह गई हैं और बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विद्यार्थियों की कक्षाएं और गैर जरूरी गतिविधियां अगले आदेश तक स्थगित करने की घोषणा की है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को भी सक्रिय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। खेलों में ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ग्रुप ए के इस मैच में थापेलो मासेको ने दक्षिण अफ्रीका के लिए एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज सुबह मैक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर अपने विश्व कप समूह चरण के 3 मैच जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 10:05 हो रहे हैं और ये वक्त है लोक गीतों से सजे कार्यक्रम लोकमाद्री का। लोकमाद्री कार्यक्रम में आज की हमारे कलाकार हैं मल्लिका चटर्जी और डॉक्टर राजकुमार। तो सबसे पहले हम आपको मल्लिका चटर्जी के स्वर में गाए इस गंगा गीत को सुनवाते हैं।

श्रोताओं, इसी के साथ लोक माधुरी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा। सुबह के 10:30 बज रहे हैं, लीजिए सुनिए लोकगीत कार्यक्रम। लोकगीत कार्यक्रम में आज आप आशीष कुमार और साथियों के स्वर में गाए लोकगीत का आनंद लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं आशीष कुमार और साथियों के स्वर में गाया ये देवी गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार हैं मदन मोहन। प्रस्तुति दीपक राय की है और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहा है आपका रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर।

के शहजादे कहे जाने वाले मदन मोहन ने अपनी रूहानी धुनों, बेहतरीन शास्त्रीय संगीत के उपयोग और संजीदा रचनाओं से भारतीय संगीत जगत में अमिट छाप छोड़ी है। उनके जीवन और संगीत सफर से जुड़े कुछ खास पहलू इस तरह हैं। आपका जन्म 25 जून 1924 को बगदाद, इराक में हुआ था। संगीत में गहरी रुचि से पहले उन्होंने कुछ समय तक भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में भी काम किया। बाद में वे ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े। उन्होंने बतौर संगीतकार पहली बार 1950 में आई फिल्म आँखें से शुरुआत की। उन्होंने अपने 25 साल के करियर में तकरीबन 100 फिल्मों में अपनी शानदार संगीत दिया। मदन मोहन की गज़लें बेहद लोकप्रिय हुईं। उनकी रचनाओं को स्वर देने वाले प्रमुख गायकों में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद शामिल हैं। लता मंगेशकर, जिन्होंने उन्हें गज़लों का शहजादा कहा था, हमने चर्चा की आँखें फिल्म की, तो क्यों न कार्यक्रम की शुरुआत इसी गीत से की जाए जिसे अपनी आवाज़ दी है उमा देवी ने, जिनका नाम था टुन टुन। याद तो होगा ही। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत आँखें फिल्म से। रचना भारत व्यास की है, जाहिर सी बात है संगीत निर्देशन मदन मोहन का ही होगा, मोरी अटरिया पर।

मदन मोहन ने जो धुनें तैयार की वो उस वक्त उस ज़माने के हिसाब से पॉपुलर तो थी ही, लेकिन आज भी उतनी ही लोकप्रिय हैं, ख़ास तौर से उन लोगों के बीच जो पुराने गीतों के शौकीन हैं। एक गीत हमने लिया है

उन्हें फिल्म दस्तक जो 1970 में आई थी इसके लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो जाहिर सी बात है कि दस्तक फिल्म का गीत तो बनता है। आइए सुनते हैं।

मदन मोहन एक आम प्रेमी की आवाज़ बन करके उभरे। लता मंगेशकर ने उन्हें गज़लों का शहज़ादा कहा था तो यूं ही नहीं कहा था। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आखिरी दांव फिल्म से।

अपने करियर में 100 फिल्मों के लिए उन्होंने संगीत दिया, तो ये बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए भी कि कुछ चुनिंदा गीत, लेकिन फिर भी प्रयास तो किया जा सकता है। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है आपकी परछाइयां फिल्म से, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। गीत के बोल राजा मेहदी अली खान के हैं और संगीत मदन मोहन का।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: बात चली थी तलत महमूद की। मदन मोहन ने आपके लिए भी संगीत दिया, तो क्यों ना एक ऐसा गीत सुना जाए जो तलत महमूद की आवाज़ में हो। हमने इसे लिया है अदा फिल्म से। गीत बेहज़ादा लखनवी के हैं और संगीत निर्देशन तो उनका है ही। आइए सुनते हैं।

प्रेम के बारे में। प्रेम कभी भी अपने महबूब को बदनाम नहीं करता, फना हो जाता है, मिट जाता है, बर्बाद हो जाता है, बेआबरू हो जाता है, लेकिन अपने महबूब को बेआबरू नहीं करता। तो यह है कार्यक्रम का अंतिम गीत इस संदेश के साथ, लिया है अनपढ़ फिल्म से।

फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना संगीतकार मदन मोहन की जिंदगी और उनके कुछ फिल्म नगमे। इस कार्यक्रम में आपने जिन फिल्मों के नगमे सुने उनके नाम हैं आंखें वो कौन थी, दस्तक, आखिरी दांव, आपकी परछाइयां, अदा और अनपढ़। अब आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम ख़त्म करने की अपने रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर को दीजिए इजाज़त।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। आइए सुनते हैं बोलते नगमे। स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का है, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की। बोलते नगमे।

0: بولتے نغمے श्रोता नमस्कार, वंदना जी नमस्कार,
1: नेहा जी नमस्कार, और सभी सुनने वालों को भी हमारा नमस्कार।
0: और बोलते नगमे में देखिए, बड़े सारे नगमे ये कह रहे हैं कि अरे भाई मेरे ऊपर भी तो बात की जाए, क्योंकि मैं वही गीत हूँ जिसने सिनेरियो को ही बदल कर रख दिया।
1: और हमारी कोशिश भी यही होती है कि हर सप्ताह जो हमारी मुलाकात हमारे दोस्तों से हो, तो हम गीतों के ज़रिए उन भावनाओं पर बात करें जो भावनाएं हमारे दिल में कभी खुशियां जगाती हैं, कभी उदासी का मौसम ले आती हैं, कभी हमारे जीवन को एक नया रंग, नया अर्थ

0: दे देती हैं। तो देखिए, ये जो गीत होते हैं लगता है कि हमारे भावनाओं का ही वो प्रतिनिधित्व कर रहे हों।
1: सच है, मतलब ये समझ में नहीं आता है कि जब हम खुश होते हैं, हम क्रोध में होते हैं, या हम रूठे हुए होते हैं, या फिर आँखों में जब आंसू होते हैं, कैसे हम ही अपने भावों को शब्द नहीं दे पाते। और कुछ गीतकार ऐसे हैं जैसे आनंद बख्शी साहब, वो भावों को देख लेते हैं और उन्हें शब्दों में ढालते हैं, और फिर आवाज़ की तो बात ही न कीजिए। सुर साम्राज्ञी के अगर उस बोल पर आवाज़ मिल जाए तो मुझे लगता है कि सदी का गाना बन जाता है।
0: बात कुछ कुछ तो समझ में आ रही है नेहा जी, बात नहीं गीत समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली कौन सा गीत होगा ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं सोच रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, दिमाग पर जोर डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इस पर तो कई गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखे हैं और कई गीत लता जी ने गाए भी हैं, लेकिन मुझे इस समय थोड़ी सी मुश्किल पे

0: और कुछ गीतकार ऐसे हैं जैसे आनंद बख्शी साहब, वो भावों को देख लेते हैं और उन्हें शब्दों में ढालते हैं और फिर आवाज़ की तो बात ही न कीजिए। सुर साम्राज्ञी के अगर उस बोल पर आवाज़ मिल जाए तो मुझे लगता है कि सदी का गाना बन जाता है।
1: बात कुछ कुछ तो समझ में आ रही है नेहा जी, बात नहीं गीत समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली कौन सा गीत होगा ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं सोच रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, दिमाग पर जोर डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इस पर तो कई गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखे हैं और कई गीत लता जी ने गाए भी हैं, लेकिन मुझे इस समय थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है कि कौन सा गीत होगा जो आपने चुना होगा।
0: देखिए सुधीर श्रोता, इस बार मैं जीत गई हूँ, मैं पहली बार, क्योंकि मैंने क्लू दिया था, वंदना जी ने नहीं पकड़ा शायद। नहीं, अब नहीं, टाइम आपका समाप्त हो गया है। मैंने लास्ट में बोला था कि आंखों में आंसू होते हैं और कैसे गीतकार यानी आनंद बख्शी साहब उसको देख लेते हैं, अब मैं बताऊंगी, है ना। तो सुधीर श्रोताओ, हम लोग हंस रहे हैं लेकिन जब आप इस गीत को सुनेंगे तो वो जो भाव हैं, जब दिल टूटता है तो शायद आवाज़ भारी हो जाती है ना, हम अपनी उस रूह को तलाश रहे होते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को।

0: अचानक से हमारा स्टूडियो कितना ठहर सा गया ना, होता ही कुछ ऐसा है जब कोई प्यार में होता है। पता नहीं कितने सारे स्वप्न दो लोग मिलके सजाते हैं कि एक छोटी सी बगिया होगी, बगिया में तरह तरह के फूल होंगे, और देखिए कुछ ऐसी चीज़ें भी हैपन हो जाती हैं परिवार वालों के साथ, आसपास वालों के ज़रिए, जिससे शायद वो जो स्वप्न बन रहा होता है वो बनता ही चला जाता है, अचानक से उसमें टूटन आ जाता है।
1: प्रेम का स्वरूप तो ऐसा ही होता है, कभी बे इंतहा खुशी तो कभी बेतहाशा आंसू, उदासी, दुख, दर्द, विरह, मिलन, ये सारे जो भाव हैं, ये सारे जो मूड्स होते हैं अलग अलग हमारे दिल के, वो सब प्रेम में इस तरह से जाहिर होते हैं कि एक पहली सा सब कुछ नज़र आता है कि किस पल मौसम किस करवट बदल जाएगा कोई नहीं जानता है। और जब इस गीत को हम सुन रहे हैं तो बहुत सारी भावनाएं हमारी भी इस गीत के साथ शामिल हो जा रही हैं। और ये जो फिल्म है वो है बॉबी, 1973 में जो बनी थी, जिसका निर्माण और निर्देशन राज कपूर साहब ने किया था और पटकथा ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी थी। और दोस्तों, डिंपल कपाड़िया ने मुख्य भूमिका निभाई है हीरोइन की, उनकी ये पहली फिल्म है। तो ऋषि कपूर साहब ने भी हीरो के रूप में पहली उनकी जो एंट्री होती है वो बॉबी फिल्म के साथ ही होती है। इसके पहले ऋषि कपूर साहब नज़र आए थे राज कपूर अभिनीत फिल्म मेरा नाम जोकर में, और ये फिल्म राज कपूर के दिल के बेहद करीब थी, उनका सपना थी, लेकिन सपना उस समय टूट गया जब मेरा नाम जोकर को वो

सफलता नहीं मिली जो वो चाह रहे थे और बहुत तरह से नुकसान उन्हें उठाना पड़ा व्यावसायिक रूप से भी, तब उन्होंने बॉबी फिल्म का निर्माण किया था। और जब बॉबी पर्दे पर आई तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई।

0: देखिए ज़रा इस गाने के जो बोल हैं, दिल की बुझती रहे प्यास, यानी हर दिल हर भावना की चाहत होती है, वो उसे पूर्ण होते हुए हर काया देखना भी चाहती है। तो बहुत सुंदर होता है जब वो भाव पूर्ण नहीं होते हैं, तो जब टूटने की आवाज़ आती है, तो लता जी तो मुझे लगता है कि इस कदर उन्होंने गाया है, ऐसा लगता है जैसे दिल की पुकार हो, अरदास हो, कि सीने में ही दिल के कई टुकड़े हो जाते हैं, यानी हमने जो स्वप्न देखा है उसको टूटते हुए महसूस करना बहुत भारी जान पड़ता है। बहुत सुंदर लिरिक्स हैं, बहुत सुंदर आवाज़। एक और बात मुझे इस गीत की बहुत ख़ास लग रही है कि ये जो गम होते हैं वो शायद सबके नसीब में नहीं होते, वो कुछ लोग ही खास होते हैं जिनके नसीब में ये जो गम है वो आते हैं। ये शायद गीत ही हैं जब हमारे बुरे वक्त में, कठिन परिस्थितियों में हमको थामते हैं और आगे निकल जाने की प्रेरणा भी देते हैं।
1: और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई है वो है इस फिल्म का संगीत, जो कि जादुई जान पड़ता है। और अमूमन जब हम राज कपूर साहब की बात करते हैं दोस्तों, तो उनकी फिल्मों का संगीत शंकर जयकिशन के साथ ही पूरा होता है, लेकिन जब बॉबी फिल्म बनाई तो उन्होंने, राज कपूर साहब ने यानी, पहली बार संगीतकार के रूप में चुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। और जब लक्ष्मी प्यारे की जोड़ी बॉबी फिल्म के साथ जुड़ती है तो एक नया संगीत स्थापित होता है फिल्म संगीत जगत में।

0: इस गीत की जब हम पहली लाइन सुनते हैं दोस्तों मुखड़े के अंतर्गत अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, तो ये जो गीत है वो प्रेरित जान पड़ता है बाबा शेख फरीद जो कि एक सूफी संत रहे हैं, उनका एक दोहा है जिसमें वो बात कहते हैं कि कागा सप्तन खाइयों चुन चुन खाइयों मांस दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस।
1: हा मतलब सब कुछ ले जाओ लेकिन इन्हें ना नष्ट करना, क्योंकि यही वो सहारा है जिनके जरिए मैंने जो स्वप्न देखे हैं इन्हीं आँखों में तो रचे बसे हैं। मैं बार बार पलके उठाऊंगी या बंद करके भी उन सारे स्वप्न

0: सपनों को देख सकती हूँ। आह बहुत बहुत आनंद है इस गीत में और बहुत गहराई भी है। सच में अच्छा लगा इसको सुनकर और बात करके। अब चलते हैं अपने नए गीत की ओर।
1: अब जब हम आगे अगले गीत की तरफ चल रहे हैं तो देखिए, हम इस बार जो गीत चुनकर लाए हैं, जहाँ पर बातें हो रही हैं मासूम से प्रेम की, यानी वो मोहब्बत जो एक कच्ची उम्र के साथ पलती बढ़ती है और अपना एक नया रूप लेती है, वो कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी होता है। और ऐसी ही एक फिल्म आई थी 80 के दशक में ही, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी साहब का गीत है, लता जी की आवाज़ है और लता जी के साथ एसपी बाला सुब्रमण्यम। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, फिल्म है एक दूजे के लिए और गीत ऐसा जो एक अनजानी सी डोर में हमें इस मजबूती के साथ बांध देता है कि बस उस बंधन को हम जीवन पर्यंत छुड़ा नहीं पाते हैं। और ये बंधन बड़ा ही खूबसूरत होता है, प्यार भरा होता है।

0: जिस गीत का मुखड़ा इतना सुंदर हो, आगे ये अंतरा अभी तो नहीं सुना, लेकिन जब हम लोग सुनेंगे और बातें करेंगे तो ऐसा लगता है कि वो जो जादू वाली बात हम लोग कहते रहे हैं वो फिर से जादू महसूस करेंगे। देखिए कितना सुंदर है एक भाव जो दो लोगों के बीच पनपता है, उस बंधन को शायद हम नाम नहीं दे पाते, लेकिन शुरुआत में जानते भी नहीं हैं कि ये ख़ास तरह का एहसास जो खुशी देता है, जो शायद सारी खायनात से मुलाकात भी करवाता है, वो पनपने लगा है। उसका कोई नाम शुरू में सूझता ही नहीं, महसूस ही नहीं होता, लेकिन हाँ एक समय ऐसा आता है जब शायद ये लगता है कि किसी और के बगैर रहना थोड़ा मुश्किल है।
1: और नेहा जी, वो अंतरा बिल्कुल तैयार है जिस अंतरे की आप बात कर रही थी, जहाँ पर ये बात कही जा रही है कि एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए, कच्चे धागे में बंधा चला आए। तो देखिए यहाँ पर भी प्रेम इसी तरह से उजागर हो रहा है कि जैसे कोई दीपक होता है और एक पतंगा, एक परवाना जो होता है वो बस दीपक के जलने भर का इंतज़ार करता है और उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता है, अपनी जान से भी चला जाता है, लेकिन जो क्षण भर का जीवन मिला है उस दीपक के साथ, उस दीपक के प्रकाश में जो वो अपने अस्तित्व को पहचानता है, वही प्रेम होता है और वही एक सच है। जहाँ पर चीज़ें बहुत क्षणिक जान पड़ती हैं लेकिन उसका जो रंग होता है वो बड़ा ही गहरा होता है, बड़ा ही असरदार होता है। तो चलिए हम भी सुनते चलें इस अंतरे को।

0: समझ गया।
1: इसमें रति अग्निहोत्री जी ने जो ये गुलाबी रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, बहुत सुंदर। मुझे इस गाने का ये जो कैमरा वर्क है, पूरा सीन है, समुद्र के किनारे ये जो शूट हुआ है, और प्रेम कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रकृति के पास से ही जन्म लेता है और वहीं पर फलता फूलता है। बहुत सटीक इस गाने को शूट किया गया है। ये जब बात होती है कि सामने जिससे लगाव रख रहे हैं उसी के नाम का जो कंगना है, ये सुहाग की निशानी मानी जाती है कि आप उसी के नाम का कंगन धारण करेंगे, और चाहे ये ज़माना कितना ही आड़े आ जाए लेकिन उस भाव में, उस प्रेम में इतनी ताकत है कि उसे पूर्ण करेंगे, उसी राह पर चलेंगे। मुझे लगता है कि ये साहस वाला काम है।
2: बिल्कुल नेहा जी, और देखिए प्रेम तो साहस का ही एक तरह से पर्याय ही होता है, क्योंकि साहस के बिना प्रेम निर्जीव है। और दोस्तों हम आपको ये भी बताते चलें कि एक दूजे के लिए ये फिल्म, इसका निर्देशन के बाला चंद्र साहब ने किया था, और उन्होंने अपनी ही बनाई एक फिल्म जो कि तेलुगु भाषा में बनी थी, मारो चरित्र, ये उसी की रीमेक रही है। और उत्तर और दक्षिण भारतीय भाषाई जो एक तरह से संघर्ष है, जो विवाद है, उसके बीच जो एक कहानी जन्म लेती है, प्रेम से जो भरी हुई है, बहुत ही पाकीज़ा है, मासूम सी है, जो कि कालजयी बन गई, और कालजयी बना ये खूबसूरत सा गीत।

0: பரவாயில்லையே, நீ நல்லா பாடுற.
1: கியா
0: தும்
1: தேரே மேரே பீச் மே.
2: पता है जो शब्द इस गाने में गाए हैं, परवा इल्ले नल्ला पादिरा, तो जो रति अग्निहोत्री होती हैं, लता जी की आवाज़ उनकी आवाज़ से मेल कराई गई है, तो कहते क्या इतना अच्छा लगता है कि दो लोग वो जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते लेकिन इंटेंशन, लगाव और फ्रिक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, कैसे मैच कर जाती है. जैसे जन्म के समय हर बच्चा या बच्ची भाषा नहीं जान रहे होते हैं, उनको सिखाते हैं तो, इसका मतलब सबसे पवित्र रूप में क्या है, भाव. और जब हम इस गानों की श्रृंखला में चल रहे हैं जिन गानों ने सिल्वर स्क्रीन को नए अर्थ दिए हैं, तो एक फिल्म आई थी कयामत से कयामत तक, उसमें जूही चावला जी थी आमिर खान साहब, दोनों कितने छोटे मासूम से लेकिन अभिनय के

0: मामले में एकदम परिपक्व पक्के।
1: जी हाँ नेहा जी, और देखिए इसी मासूमियत की छांव तले जो मासूम सा प्रेम पनपता है, उससे गढ़ी गई जो फिल्में पर्दों पर आई हैं, उन्हीं में से कुछ गीतों को चुना है इस बार हमने। और जब आप बात कयामत से कयामत तक की कर रही हैं, तो ये फिल्म 90 के दशक में आई थी और इसने सफलता का वो परचम लहराया जो आज तक देखने वालों के दिलों में पुख्ता है। तो अब ये जो बातें चलेंगी वो क्या कुछ कहेंगी वो हम पहले सुन लें, क्योंकि कोई पुकार सी हो रही है, वो एक इंतज़ार जो पूरा होने के मकाम पर आ चुका है। तो किस तरह से राहतें दी जा रही हैं एक दूसरे को वो सुन।

0: जरा इंतजार। कई बार लोग धैर्य नहीं रखते और इस गाने में मजरूफ सुल्तानपुरी साहब कहते हैं कि एक जरा इंतजार, अगर इंतजार करना थोड़ा भारी पड़ रहा हो तो देखो ये जो सदाएं हैं, ये जो अजान है, समय की पुकार है, उसको जरा हम दोनों ही सुने। तभी वो अगले पल कहते हैं कि ये जो तूफान अंदर चल रहा है, ये जो अंधेरा है, कैसे नहीं छटेगा। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे इन गीतकारों ने जीवन को, भावों को देखा है। और निर्देशक ने शूट किया हू बहू प्यारी सी जूही चावला। ऐसा लगता है जैसे मासूमियत उस समय उन पर मेहरबान है। तभी सिल्वर स्क्रीन पर जब ये गाना रिलीज हुआ और मैंने रेडियो सेट पे, उस समय मैं बहुत छोटी थी, हाँ थी छोटी थी लोगों को ये सुनते हुए जहन में याद है कि सुना करते थे, पहले के रेडियो सेट थोड़े डिफरेंट आते थे ना
1: जी।
0: और उसमें जब ये लोग गाना सुनते थे तो लोग शायद थोड़ा वॉल्यूम तेज कर दिया करते थे, ये हम सुनेंगे, तो ये जादू ही होता रहा हो।

और आगे अगर हम बढ़े नेहा जी, तो देखिए ये जो गीत है इसका संगीत बिल्कुल अलग रूप में हमें सुनाई पड़ता है, और इससे जुड़ी एक बात हम ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, इस फिल्म को जब बनाया जा रहा था, मंसूर खान साहब ने इस फिल्म को बनाया है, तो संगीत की जब बात आई तब ये निर्णय लिया गया कि संगीत का काम, इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए राहुल देव वर्मन साहब को। लेकिन फिर मंसूर साहब को लगा कि नहीं, कुछ नयापन एक होना चाहिए, रिदम में कोई एक ऐसी बात हो जो युवा हैं उन तक हम अपनी बातों को पहुंचा सकें, वो सरसता, वो शब्दों के ज़रिए वो अर्थ जो कहे जा रहे हैं वहाँ तक चीज़ें सरल रूप में पहुँच सकें, इसलिए एक नए संगीतकार को चुना गया, और ये संगीतकार थे महान संगीतकार चित्रगुप्त।

0: वंदना जी, सच में हम लोगों ने शुरू किया चलते चलते चलते, आज इस अंक के लिए कहाँ आ गए? नहीं, क्विक शॉट में जरा देखें ना, जो अखियों पर हमने बात की है ना, दूसरा ये जो एक अनजाना सा बंधन है जो पता ही नहीं चलता, और तीसरा कि रोके ये तूफान भी नहीं रोक सकता
1: जी।
0: नहीं, बहुत सुंदर। तो अब आप अपनी बात कहिए।
2: नेहा जी, मेरी बात तो वहीं जाकर टिक गई है जहाँ पर इस समय घड़ी की सुइयां दिखाई पड़ रही हैं, सामने नजर आ रही हैं, क्योंकि समय कुछ कह रहा है हमसे कि बस अब बातों को, गीतों को समेट लिया जाए और अगली बार जब हम आएंगे तो इन गीतों से गुलजार करेंगे बोलते नगमे की महफिल। तो दोस्तों, दीजिए हमें इजाजत।
0: नमस्कार,
2: बोलते नगमे।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बोलते नगमे, स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का था, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम में 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, बने रहे हमारे साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों ने बहुत काम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा

0: प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी की घटनाओं की जांच के तहत की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय किया है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 500 अंक के उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि से 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Venezuelan President Delcy Rodriguez has declared a state of emergency in the country following back-to-back earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5 caused multiple buildings collapse in Caracas and surrounding areas this morning. Addressing the nation, Ms. Rodriguez announced the suspension of classes for students and non-essential activities until further notice. The president said 32 people have died and more than 700 have been injured following a series of powerful earthquakes. Authorities are continuing rescue and recovery operations in the affected regions. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed sorrow over the devastation caused by the severe earthquakes in Venezuela. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on the 25th of June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah today paid homage to all those who stood firm in defence of democratic values during the emergency. In a social media post, Prime Minister Modi said the emergency was a direct assault on the Constitution. He said it witnessed the suspension of civil liberties, curbs on freedom of expression, and the arrest of political leaders, journalists, and

FM 100.3 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना सुनिए। थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज से प्राप्त सूचना के अनुसार मनीराज भारतीय पुत्र राजेश भारतीय जो पूर्वा खास लंका थाना औद्योगिक क्षेत्र के निवासी हैं 9 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनके बारे में विवरण इस प्रकार है। उम्र 20 वर्ष, एकहरा बदन, चेहरा लंबा, आँख गोल, ऊंचाई 5 फुट 6 इंच, रंग सांवला। इन्होंने कत्थई रंग की शर्ट और सफ़ेद पैंट पहनी हुई है। इनके बारे में कोई भी सूचना थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज को दी जा सकती है। खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। श्रोताओं, आपको अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य ओल्ड ट्रैफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर इंग्लैंड में खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 से युवाड़ी शाम 5:15 पर ग्रामीण युवाओं के लिए अवसर और चुनौतियां इस विषय पर चर्चा के अलावा आज के प्रेरणापुंज विनोबा भावे के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। इसी कार्यक्रम में हमारी शाम की सभा आरंभ होगी संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम से, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे शाम 4:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT दोपहर 2:30 पर। ग्रामीण बहनें अपना कार्यक्रम पनघट सुनेंगी 1:15 पर। बच्चों में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर चर्चा के अलावा सरोज सिन्हा के गाय लोकगीत और वंदना श्रीवास्तव की कहानी भी हम आपको सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम में। श्रोताओं के संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आपकी पसंद 12:30 पर, प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में पंडित DR पार्वतीकार का राग जौनपुरी में दत्तात्रेय वीणा वादन सुनिएगा आपसे थोड़ी देर बाद यानी 12:15 पर। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

ये प्रयागराज है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित DR पार्वतीकार का राग जौनपुरी में दत्तात्रेय वीणा वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं महावीर प्रसाद।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित डीआर पार्वतीकर का राग जौनपुरी में दत्तात्रेय वीणा वादन। आपके साथ तबले पर संगत की महावीर प्रसाद ने। अभी कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है। श्रोताओं के संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आपकी पसंद, प्रस्तुति मधु कुमार की है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम की शुरुआत इस शेर के साथ। गुरूर पैसे का जब लहजे में नजर आए तो फिर अदब का सलीका कहाँ समझ आए। लिबास महंगे हो तो किरदार मत भूलो, लिबास महंगे हो तो किरदार मत भूलो, कभी जमी पे भी बैठो अगर वक्त मिल जाए। जी हाँ, पैसे का गुरूर तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, ये तो आता और जाता रहता है। और ऐसे ही एक गीत की फरमाइश हमारे श्रोताओं ने की है। फिल्म का नाम है लावारिस और इस गीत की फरमाइश है इन श्रोताओं की। अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मजहर, मन्नत, गुरु कीरत, गुरु शब्द से।

0: मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, मुस्कान वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी, आर्यनगर से उत्तम सिंह जंघैल, मोरस जंघैल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी, दादनपुर प्रयागराज से विकास, नीतीश आर्या और इनके बहुत सारे मित्र। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
1: चार पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा

और मन कहता है कि जो सहज है वही सत्य है। जिन रिश्तों में आपके प्रयास से ज्यादा मजबूरी हो वहां ठहरना उचित नहीं। तो चलिए चलते हैं अपने कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ और फिल्म का नाम है धड़क और इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा। पुलिस लाइन प्रयागराज से मधु कनौजिया, गोविंद कनौजिया, गौरी कनौजिया, हनी कनौजिया, पाला कनौजिया। छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। तो सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: अंतर है।
1: दोस्तों, आज के समय ने एक बात बहुत ही सरल कर दी है, हर किसी का महत्व है, पर किसी की अनुपस्थिति से जीवन रुकता भी नहीं। जो बदल गए हैं उन्हें बदलने दीजिए, और जो बिछड़ गए हैं उन्हें शुभकामनाओं सहित जाने दीजिए। हर कहानी को अंत तक पकड़ कर रखना आवश्यक नहीं होता।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी पंक्तियां हैं कि बड़े होते होते हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, कम बोलना ज़्यादा समझना और हर बात पर दिल न लगाना। पर अजीब है, इन्हीं सब के बीच हम कहीं वो इंसान होना भूल जाते हैं जो छोटी छोटी बातों पर

खुश हो जाता था। समझदार होते होते थोड़ा सा मासूम होना छूट ही जाता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने गीत की तरफ। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज़। फिल्म का नाम है दिलवाले और इस गीत की फरमाइश हमें आई है मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद, आमना नसरीन, आसमा परी राबिया, आशु अहमद, गोविंदपुरा से दातार सिंह, संगीता तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, पटेल नगर महलौत से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप जजौरिया, आरजू जजौरिया और गुड्डू, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का दिल वाले फिल्म का ये गाना।

कहा गया है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। कुछ लोग सही वक्त पर मिलते हैं तो आसान लगते हैं, और वही लोग अगर आपको गलत वक्त पर मिल जाएं तो कहानी बन जाते हैं। अजीब है ना, इंसान वही रहता है पर वक्त बदलते ही रिश्ते भी बदल जाते हैं। शायद सही या गलत कुछ नहीं होता, बस वक्त अपना काम कर रहा होता है और हम कर रहे हैं अपना काम, यानी आपके पसंदीदा गीतों को सुनवाने का। और ये गीत आ गया है, फिल्म का नाम है जोश, और इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है। सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो। आजाद नगर से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां। जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया। छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, योगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा और दिशा। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब। तो सुनिए अपनी पसंद का जोश फिल्म का ये गाना। कितना

और अब हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ, और ये फिल्म का नाम है दिल तो पागल है। इस गीत की फरमाइश आई है गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति, जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देव कुमार और आर कुमार, रायगढ़ से उमा राज, जगदीश राज, दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और रेहान अंसारी, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज, संजय राज और शबनम पानो, सहारनपुर से महेंद्र, दीप्ति, यामिनी और नरेंद्र, खंडवा से दुर्गा कुमारी, सपना और राकेश। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति मधु कुमार की थी। अभी कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम में 292.4 मीटर यानी 126 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। एक आवश्यक सूचना सुनिए, दिनांक 26/6/2026 को शाम 6:30 से 7:15 तक विशेष फोन इन पंचायत घर कार्यक्रम हेलो पंचायत घर सजीव प्रसारित किया जाएगा। सभी ग्रामीण भाइयों बहनों से अनुरोध है कि वे अपने गाँव संबंधी समस्याएँ अथवा यदि कोई संदेश धन्यवाद उपस्थित अतिथि जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो 26/6/2026 को शाम 6:30 से 7:15 के बीच इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 2970462 और दूसरा नंबर है 2423649। प्रयागराज का स्टडी कोड 0532। व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी आप अपने संदेश हमें भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर से सुन लें 2970462 और 2423649। इलाहाबाद का स्टूडियो कोड 0532। व्हाट्सएप नंबर 8004926250। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 1 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे, उसके बाद इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली

0: और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on the 25th of June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to excesses in the emergency. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah today paid homage to all those who stood firm in defence of democratic values during the emergency. In a social media post, Prime Minister Modi said the emergency was a direct assault on the Constitution. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said the world is witnessing greater weaponization, higher risk-taking and politics suited to the social media era. Addressing the Jeju Forum for Peace and Prosperity 2026 in South Korea, Dr. Jaishankar said international cooperation is needed to confront challenges like COVID-19, acts of terrorism or the impact of extreme climate events.
2: The global south should be enabled with greater capacity and greater opportunities. This would also create new factors of global growth and provide global goods through common and shared endeavors. We cannot rely on a few to uphold rules and norms. The world must take more control over its own future.
1: Union Minister of Power Manohar Lal has said that India seeks to strengthen BRICS cooperation towards building energy systems. Inaugurating the 11th meeting of BRICS energy ministers in Gurugram today, the minister said affordable, reliable and sustainable energy is indispensable for achieving developmental aspirations and the sustainable development goals.
3: Future energy systems must balance sustainability with reliability. India is making significant investments across the entire energy value chain. India is laying the foundation for one of the world's largest digitally enabled electricity systems. More than 60 million smart meters have already been deployed, and this transformation will continue at scale in the coming years, empowering consumers while strengthening utility performance.
1: Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Nair.

0: आणि लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। भारतीय जनता पार्टी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है। मुल्क भर में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद आइन और जमहूरी इकदार के तहफ़ की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इमरजेंसी के 51वीं बरसी के मौके पर संविधान हत्या दिवस के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा,
1: एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का वह अभियान जिसमें जनता ही सब कुछ है, योजना का लाभ, उसका अंतिम उनका निष्कर्ष क्या है, वो अंतिम पायदान पर बैठे हुए जनता जनार्दन के व्यक्ति को इस योजना के साथ जोड़ना, परिणाम 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक नए मध्यम वर्ग के रूप में उभर करके अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देते हुए दिखाई देते हैं।
0: शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन राइडू ने आज वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे से पहली EZ कनेक्ट परवाज का इफ्तिताह किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक फ्लाइट भारत के कोने कोने को दुनिया से बगैर किसी रुकावट के जोड़ने के मकसद से शुरू की गई है। ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत मुसाफिर अपनी आखिरी बैनुल अक्वामी मंजिल के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरी कर सकते हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप भारत में किस शहर में रहते हैं, आप अपने बैनुल अक्वामी सफ़र का आगाज अपने शहर से ही कर सकते हैं।
2: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को ये हब एंड स्पोक मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। हवाई यात्रा या एयरपोर्ट आने से आपको पता है किस तरह से वो शहर को एक ताकत मिलती है, वो छोटा शहर नहीं रहता उसके बाद।
0: LDA ने लखनऊ के अलीगंज आतशजदगी मामले की महकमा जाती जांच करके कसूरवारों की शनाख्त कर ली है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के नायब सदर प्रथमेश कुमार ने बताया कि जिस इमारत में

0: आग लगी थी। उसका नक्शा 2014 में मंजूर किया गया था। इसके बाद 2016 में एलडीए ने मेयार पर पूरा ना उतरने पर इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। महकमा जाती इंक्वायरी में 19 इंजीनियर्स और 6 पीसीएस सतह के अफसरान की जानिब से गफलत पाई गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। आग में ज़ख्मी होने वाले 7 अफराद को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से इलाज के बाद फारिग कर दिया गया। दरियां असना फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम रियासत भर में कोचिंग इदारों की मुसलसल जांच कर रही है। गौतम बुद्ध नगर में सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि मुआयने के दौरान 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया गया है। अयोध्या में CFO महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अयोध्या इंतजामिया ने कोचिंग इंस्टीट्यूट का मुआयना करने के लिए 2 टीमें तश्कील दी हैं, जो न सिर्फ फायर सेफ्टी की जांच कर रही हैं बल्कि लोगों में बेदारी भी पैदा कर रही हैं। वज़ीराला योगी आदित्यनाथ आज संत कबीर नगर के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वो धनघटा तहसील के बांसवारी में वाक़े श्री बैजूनाथ धाम में 475 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 139 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद करेंगे। इसके साथ ही वज़ीराला प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कीमों के फायजीन को सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। रियासती हुकूमत ने मुजफ्फरनगर हरिद्वार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर के लिए DPR तैयार करने को रजामंदी दे दी है। रियासती हुकूमत में वज़ीर ममलकत कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुजफ्फरनगर हरिद्वार RRTS को कॉरिडोर मगरबी उत्तर प्रदेश की तरक्की को नई सिमत दिलाने वाला दूरंदेश कदम साबित होगा। महकमा मौसमियात ने कल से रियासत के मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। महकमे ने 28 जून तक मशरक़ी उत्तर प्रदेश में गर्मी की लहरों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक आज भी रियासत भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान है। भारत में ताजिकिस्तान के सफ़ीर बोबोल काली नजदान ने कल रामपुर में रज़ा लाइब्रेरी और म्यूज़ियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वहाँ महफूज शुदा नादिर नुस्खे हिंदुस्तान और ताजिकिस्तान के मुश्तरका सकाफती विरसे को समझने के लिए बहुत अहम हैं। रज़ा लाइब्रेरी के डायरेक्टर पुष्कर ने कहा कि ताजिकिस्तान और भारत के दरमियान सकाफती और तालीमी तआवुन को फ़रोग देने के लिए जल्द ही एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:15 हुए और ये समय है ग्रामीण बहनों के कार्यक्रम पनघट का। इसके पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें, एक आवश्यक सूचना सुनिए। दिनांक 26/6/2026 को शाम 6:30 से शाम 7:15 तक विशेष फोन इन पंचायत घर कार्यक्रम हेलो पंचायत घर सजीव प्रसारित किया जाएगा। सभी ग्रामीण भाइयों बहनों से अनुरोध है कि वे अपने गांव संबंधी समस्याएं अथवा यदि संदेश धन्यवाद उपस्थित अतिथि जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी जी तक पहुँचाना चाहते हैं तो वे 26/6/2026 को शाम 6:30 से 7:15 के बीच इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 2970462 और 2423649। प्रयागराज का एसटीडी कोड 0532। अब आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं और ये नंबर है 800492620। नंबर एक बार फिर सुन लें 2970462 और 2423649। प्रयागराज का स्टूडियो कोड 0532। व्हाट्सएप नंबर 800492620250। सूचना समाप्त हुई। अब सुनते हैं कार्यक्रम पनघट।

0: पनघट कार्यक्रम सुनर बैठी सब श्रोता बहनिहरन के चंपा और
1: सरस्वती के राम राम।
0: और बताओ सरस्वती बनी, घरे दुआरे के हाल चाल?
1: चंपा, घरे दुआरे के हाल चाल एकदम बढ़िया बाटे।
0: अच्छा,
1: देखा आज देव कितनी कृपा बरसावत हैं, है ना? गर्मी से आज कुछ तो राहत मिलत हुई ना।
0: आज देखा बाहर तनी धूपो कम है,
1: बहुत आराम मिल जाते देखा अगर ऐसा मौसम हो जाता तो। और बहनीहरन के तो घामे निकले के पड़त है, खेते में भी काम करे जाए के पड़त है, तो उन्हें के तो और आराम हो जात हुई।
0: बिल्कुल सही कहा तू बहनी। और देखा सरस्वती बहनी, स्कूल तो खुले वाला बा,
1: बिल्कुल
0: अब बहनीहरन के थोड़े बहुत और आराम मिलवे करी अब।
1: हाँ, लेकिन
0: लेके स्कूल जाएंगे
1: घरे में राहत
0: दो चार घंटा करती।
1: हाँ,
0: तो
1: इतना
0: आराम तो मिलवे करी।
1: उपद्रव मचाए रहे लइकवा सब घरे कि मत पूछा, संहारे से नहीं संभरते हैं सब।
0: बिल्कुल,
1: और कुछ
0: कोनो बात समझाओ तो जैसे लगा था सुनते नहीं है।
1: हाँ, और आजकल के लड़का चंपा इतना बदमाश हो गए हैं, अगर उन्हें कुछ समझावे कोशिश करा, सिखावे कोशिश करा, तो कहते हैं भाषणबाजी नहीं चाहिए, हम सही कह रहे हैं, आप कुछ दिन तो
0: अपने
1: मस्ती,
0: चुप रही है।
1: हाँ कुछ दिन मस्ती करने दो हम लोगों को, है ना?
0: अच्छा,
1: ऐसे सब बोलत है। तो देखा कैसे ये लइकन के समझावा जाए, सिखाया जाए, ये तो बहुत सिरदर्द बन गवा है।
0: बस दो चार दिन और अगर स्कूल लेके जाए लगी हैं तो मुना उन्हें अब इन्हें ना सिखाई जाए समझाई जाए तो स्कूल में भी ऐसे जा करी हैं, उपद्रव मचाई हैं। वहाँ से मास्टर लोग शिकायत लेके आई हैं कि तहा लड़का ऐसा करता है, तहा लड़का वैसा करता है।
1: और देखा चंपा बहनी, हम लोग तो जन है तो कुछ आराम पाई जाबे, लेकिन यह परेशानी यही तकलीफ वो लोग जा करके आप पर शिक्षक शिक्षिका के दी हैं,
0: वह
1: है ना?
0: तो
1: तो देखा हम सभी के कुछ सिखावे के चाहिए, कैसे हूँ करके ऐसन बनावे के चाहिए अपने लड़कन के कि वो जन है जहाँ जाएं हंसी खुशी बांटें और ऐसे अपने संस्कार का बढ़िया से इस्तेमाल करें, ताकि केहू के कोनो तरह के दिक्कत उनसे ना होए, बल्कि जहाँ वो
0: कम
1: रहें,
0: शिकायत मिले।
1: हाँ जहाँ भी वो जाएं, जहाँ भी वो रहें, वहाँ आसपास के सब लोगन खुश रहें, आनंदित
0: बिल्कुल
1: रहें,
0: सही कहा तू
1: है ना?
0: बहनी। तो देखा चला आज इसी बात पे चर्चा कर ली जाए, बच्चों में नैतिक शिक्षा का महत्व। तो देखा सोचती बहनी, सब बच्चन के बात तो करते रहे हम सब, मुना बच्चन में नैतिक शिक्षा जो है वो खाली बच्चन के विकास से नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा हुआ होते हैं।
1: बिल्कुल
0: कहे
1: सही कहा
0: कि
1: तो चंपा बहनी
0: बच्चा
1: तो।
0: जोन है कौनों भी देश के भविष्य होते हैं। जोने तरह एक मजबूत इमारत के बनावे के बड़े मजबूत नींव का आवश्यकता होते हैं, वही तरह एक अच्छा समाज और राष्ट्र के निर्माण करे के बड़े बच्चन में अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्य के हो बहुत आवश्यक होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तू चंपा
0: कहे
1: बहनी
0: कि
1: तू।
0: नैतिक शिक्षा बच्चन के सही और गलत में अंतर समझे के क्षमता प्रदान करत है, और इतने नहीं वो उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में उचित निर्णय लेवे के भी प्रेरणा देते हैं।
1: चंपा बहनी देखा,
0: हाँ
1: लड़कन बच्चन में हम सभी के गुण विकसित करे के जिम्मेदारी हम सबन के है ना?
0: बिल्कुल।
1: जैसे ईमानदारी के गुण हो, सहिष्णुता के गुण हो, इन आए कि केहू दुई बात बोल दिले तब तो बर्दाश्त नहीं कर सके, पलट के तुरंत जवाब देवे के है। ये सब हम सभी की सिखावे के पड़ी, कैसे अपने बड़े से सम्मान करे के है। आजकल के लड़कन में ये सब चीज़ दिखाई
0: हाँ,
1: नहीं
0: उनके अंदर
1: देते
0: दया
1: बिल्कुल,
0: होए चाहिए,
1: है ना?
0: करुणा होए चाहिए,
1: हाँ,
0: व्यवहार कैसे के साथे करे है।
1: अपने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी होवे की चाहिए, है ना? अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति जिम्मेदारी होवे की चाहिए, है ना? ये सब भावना के विकसित करी, उनकर चरित्र निर्माण करे के हमार तोहार जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल
1: लेकिन समस्या ये आई जाती है चंपा बहनी ना, कि उसमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर देते हैं हमरे सबे के बातें के, तो
0: बिल्कुल
1: कैसे उनका शिक्षा दिन जाए? तो हमें एक चीज समझ में आवत है कि कौनो भी चीज अगर हम बोल के समझावत ही, उसे बढ़िया तरीका है कि आचरण में हम सब भी लाए, धीमी आवाज में हम भी बोली और बड़न के
0: मधुर
1: समान हम भी
0: बोली।
1: करी, है ना? और अगर कोई बड़ा हमके बात समझावत है तो हम ओका चुपचाप से पहले सुनी समझी, और कई बार हम सब इसे करते कि पलट के तेजी से जवाब देते थे,
0: हाँ, तो
1: वह
0: बच्चे को
1: व्यवहार लड़कन देखत है,
0: बिल्कुल
1: ना? तो देखा अपने आचरण में भी बदलाव करे, ताकि लड़कन ओका समझे कि देखा वो ऐसे करती तो कितना अच्छा लागत है, तो हमके भी ऐसे ही
0: करे
1: करे के
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: और देखा सरस्वती बहनी, आज के जो आधुनिक युग है में विज्ञान और तकनीकी के जो जीवन के आसान बनाए दिया है, मुना यहाँ के साथ कई चुनौती के सामना भी अपने सामने आई जाते हैं। जो इंटरनेट है, मोबाइल है, फोन है और सोशल मीडिया है,

0: एकर तो प्रभाव बढ़त जात है मुना, एकर कभी कभी होता है गलत इस्तेमाल भी हो जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा तू
0: तो
1: चंपा
0: इससे
1: बहनी।
0: का होता है।
1: और एकरे संपर्क में रहे से लड़कन बच्चन इतना ज़्यादा एकरे संपर्क में रहते ना कि कहीं ना कहीं जैसे उनके व्यवहार का भी मशीनीकरण हो गया है
0: बिल्कुल
1: ना, एकदम मशीन की तरह लड़का बच्चा भी करे लगे हैं। देखा एक समय उनकर बन गया है, अभी स्कूल जाए के है, फिर स्कूल से आए के जो ना ट्यूशन व्यूशन पढ़े चला जाते हैं, फिर खाए के फिर जो ना फिर रात के अपन घर के जो ना स्कूल से काम मिला हो का सबका निपटावे का है, फिर दूसरे दिन फिर तैयार हो के, और बाकी चीज़ से उनका कोनो मतलब ही नहीं। जैसे परिवार में मतारी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका कुछ सहयोग कर दें, प्यार से बैठ के कुछ
0: हाँ, कुछ
1: बतियाए
0: कोनो
1: लें।
0: काम करते तो मैं थोड़ा सा उनके सहायता कर दें कि मिला थोड़ा सा
1: उस
0: हमहूँ
1: पे
0: कहिए।
1: आपन आपन जो ना वही जो तू बतावत रहू है ना, इंटरनेट का समय चलत है तो आपन
0: बिल्कुल
1: आपन मोबाइल लेके सब वही में लगा रहते हैं और एक कई चीज़ देखत रहते हैं, उन्हें में वही में उनकर मन लगा रहते हैं और
0: बिल्कुल
1: नया कुछ सीख भी ना ही करते हैं।
0: और देखा जाए समय तो का हुआ कि सुबह नाश्ता अपन सो उठे बस फोन में चला, छुट्टी भर ना यही
1: हाँ
0: चल रहा फोन
1: सबसे
0: दिन भर,
1: पहले
0: बस फोन
1: सबसे पहले।
0: केहू ना केहू फोन मांग मांग के चलावा करिए दिन भर। और बताओ सोचती बहनी तहल गदेलवा का करता है दिन भर
1: बस
0: पूरे
1: देखा यही सब जो भी अभी
0: नाश्ता
1: बस
0: खाना बस पर फोन,
1: हाँ
0: टीवी
1: फोन
0: फोन टीवी फोन
1: बिल्कुल
0: छुट्टी
1: बिल्कुल
0: भर।
1: बिल्कुल। और जैसे हम तो से बता रही,
0: हाँ
1: जहाँ उनका कुछ बोल दा ई काम करा तो बस बिगड़ जाते हैं और सुने के एकदम बिल्कुल इच्छा उनकर ना ही रहत। तो हम एक तरीका अपना ही चंपा
0: ओका
1: बहनी कि इनका टोक अब हम कम कर दिए है, अब हम उनका बहुत प्यार से मीठा मीठा बोल के काम करवावत ही है ना।
0: हाँ, बिना डांटे के बजाय हम
1: हाँ
0: उनसे प्यार से
1: अब
0: बोल के
1: हमके
0: काम करें,
1: कितनों गुस्सा आए, हमको
0: लेकिन
1: खुद के
0: हम
1: समझावे के पड़ा था
0: अपने अंदर
1: कि
0: गुस्सा दबाए
1: देखा अब
0: के
1: इनके हम पकड़ न पाई भाई, अब हमके बदले की पड़ी। तो हमके अंदर से कितनों गुस्सा आए, हम अपने अब जवान के एकदम मीठा कह लेती और उनका
0: बिल्कुल
1: प्यार से बोल बोल के दिन भर काम करवावत रहती।
0: हाँ
1: हाँ चला पढ़ाई कैला, चला पानी भर के रख दा।
0: हाँ तो थोड़ा काम
1: हाँ
0: में जब लगा रही है तो फोन थोड़ा दूर रही।
1: बस देखा यही चला कि हम सबके अपनावे के है। टोके
0: बिल्कुल
1: से ना आजकल के लड़का बच्चा बहुत बुरा मान जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तू बहनी। तो सस्ती बहनी तो इतनी अच्छी सी बत कही होई गए, तो उठू निक के गौने सुनवाए दो हमें।
1: चला तो का एक ठे पूर्वी सुनाई देती चंपा बहनी, सरोज सिन्हा से, मोरा सजना न चाहे गवनुआ।
0: चलो सुन।

0: सरस्वती बहनी,
1: हाँ चंपा,
0: मोरा सजना ना चाहे गवनवा, देखा दिनवा बीतल जाला हो। कितना नी गवनई रही।
1: बहुत बढ़िया गवनई रही। और देखा अब समय है तो का एक हम कहानी सुनवाओ, शुभ अशुभ का चक्कर आ लहू का रंग। सुनावत ही वंदना श्रीवास्तव।
0: तो चला सुन लिया जाए।

हमारी कहानी के शीर्षक है सुबह सुबह के चक्कर। एक गांव माँ सरजू नाव के मेहरारू रहत रही। वो बहुत ही मेहनती, सीधी सादी और भगवान के भक्ति करे वाली रही। लेकिन एक बात उकरी मन में भरी बैठी रही सुबह सुबह के बारे में। अगर भोरवे माँ उके घर के सामने से कौनो खाली घड़ा दिखाई जाए लेके जा, तो बस ओकर मूड खराब हो जाए, वो कमोवे टार देत रही है। अगर कौनो मेहरारू काली साड़ी पहरे दिखाई जाए तो वो रास्ता बदल देत रही। दूध उबल के कहूं गिर जाए तो सोचे बस अब तो सब सत्यानाश है बा। कौनो छीक दे सवेरे विधवा दिखाई जाए तो ओकर दिमाग खराब हो जात रहा। ओके एक ठो बिटिया रही सुंदर के फूलमती, पढ़ी लिखी होशियार। एक दिन ओकरे रिश्ता बरे लड़का आवे वाले रहे। सरजू बहुत ही खुश रही। लेकिन जैसे ही आंगन बहारे चली झाड़ू के डंडा टूट के गिर गवा, कुछ सिकिया बिखर गए। बस

परेशान हो गए, चिल्लाए लगी, हाय दैया, ये तो बहुत अशुभ हुआ, अब का करी, हम का करी, हे राम हम का करी। दोपहर माँ कुल मेहमान आए, बातचीत भी भय, लेकिन लड़का पक्ष के कुछ बातन से पता चला कि वो सब दहेज के लालची हैं, दहेजो मांगत हैं, रिश्ता बिना भय वो सब चले गए। सरजू रोवत रोवत पड़ोस की दादी से कहे लागी, देखूं अम्मा, हम कहत रहे ना, सबेरवा अशुभ हो गवा रहा, काम तो बिगड़ रहा, लेकिन दादी राम प्यारी बहुत ही समझदार। वो मुस्कुराई, कहे लगी, बहुरिया, रिश्ता झाड़ू टूटे से ना ही बिगड़ा, रिश्ता टूटा है उन लोगन के लालच से। सरजू चुप तो हो गए, पर मन से बिसेख गा नहीं। कुछ महीना बाद फूलमती के दूसरा रिश्ता आवा, लड़का पक्ष पढ़ा लिखा संस्कारी और सरकारी नौकरी वाला रहा, परिवारों बहुत अच्छा रहा, रिश्ता तय हुई गवा। ब्याह के एक दिन पहले सरजू के हाथ से पूजा के थरिया गिर गए, नारियल लुढ़क गवा, फूल बिखर गवा, अब तो सरजू फिर से परेशान।

उ सब चले गए। सरजू रोवत रोवत पड़ोस की दादी से कहे लागी, देखू अम्मा हम कहत रहे ना, सबेरवा अशुभ हो गवा रहा, काम तो बिगड़ रहा। लेकिन दादी राम प्यारी बहुत ही समझदार, उ मुस्कुराई कहे लगी, बहुरिया रिश्ता झाड़ू टूटे से ना ही बिगड़ा, रिश्ता टूटा है उन लोगन के लालच से। सरजू चुप तो हो गए पर मन से बिसेख गा नहीं। कुछ महीना बाद फूलमती के दूसर रिश्ता आवा। लड़का पक्ष पढ़ा लिखा संस्कारी और सरकारी नौकरी वाला रहा, परिवारों बहुत अच्छा रहा, रिश्ता तय हुई गवा। ब्याह के एक दिन पहले सरजू के हाथ से पूजा के थरिया गिर गए, नारियल लुढ़क गवा, फूल बिखर गवा। अब तो सरजू फिर से परेशान, हाय राम ये तो बहुत ही अशुभ हुआ, अब का हुई। दादी राम प्यारी बोली, अरे पागल बहुत परेशान ना हो, थरिया गिर गई है तो गिर जाए, मन ना गिरे बस, ई ध्यान धरो। अगले दिन ब्याह के बहुत खुशी खुशी से घड़ी आई गई, बहुत से संपन्न से अगले दिन ब्याह के बहुत खुशी खुशी संपन्न हुई गवा। सब कुछ बहुत ही कुशल मंगल से भवा। ब्याह के बाद फूलमती अपने घर में बहुत ही सुखी, सास ससुर देवर अपन आदमी सब है ओका बहुत ही माने। वो जब मायके लौट के आई अपने अम्मा सरजू के पास तो सब कुछ बताई। अब जाए के सरजू के मन का चैन पड़ा। एक दिन संध्या के चाय पकौड़ी के साथे दादी राम प्यारी फूलमती सरजू और गांव के ढेर औरतन सब हंसी ठहाका लगावत रही। तब सरजू दादी से पूछे लगी, दादी ये बताओ कि जौन बात हम अशुभ समझी है वो अशुभ काहे नहीं होता है। दादी समझावे लगी, देख बहुरिया हम मेहररुवन के ना बचपन से ढेर बात सिखाए जात है, ई मत करा उ मत करा, ई अशुभ है उ शुभ है, लेकिन सबकर असली मतलब तो शिक्षा से पता चलत है। हम सब शिक्षा से सही गलत के फैसला लेके चाहिए, शुभ अशुभ का मतलब तो कुछ और होत है। फूलमती बोली, का दादी का होत है? अरे शुभ के मतलब है घर में प्रेम, बड़न के सम्मान, छोटन से प्यार, मेहनत के कमाई, मन साफ करे, ई सब शुभ होत है। और अशुभ? अशुभ होत है झूठ, चुगली, ईर्ष्या, कलुष, बैर के भावना, अपमान, ई सब अशुभ होत है। केहू के छीके से, आँख फड़के से, साड़ी पहिरे से, झाड़ू टूटे से, बिलरिया के रास्ता काटे से कुछ अशुभ नहीं होता है। ई सबसे ज्यादा जरूरी है मनई के कर्म। बिल्कुल सही कहा था दादी तू, आज हमरे बात समझ में आई कि ई सब मन का भरम होवे और कछु नहीं। ओ दिन से सरजू के सोच बदल गए। अब अगर दूध उबल के गिर जाए तो हंस के कहत रही, चल बर्तन धोवाए जाए, बिल्लिया रास्ता काटे तो कहे, अरे बिल्लिया के ज्यादा जल्दी रही तब जल्दी चली गए। अब जब कौनो औरत सरजू से कहे, अरे बहिनी आज तो बड़ा अशुभ संकेत मिला, तो सरजू मुस्कुराए के जवाब दे, संकेत से ज्यादा जरूरी बा आपन सोच और आपन कर्म, आपन शिक्षा, आपन संस्कार। भगवान मन देखत है, झाड़ू और थरिया नहीं। ई बात सुन के सबके अंदर हिम्मत जाग जाए। हम सबन के असली शुभ प्रेम है, धैर्य, सेवा, सम्मान और अच्छे कर्म है। बाहरी संकेत तो बदलत रहा था, अच्छा चरित्र हमेशा अच्छा और शुभ फल देत है। हमारी कहानी के शीर्षक है लहू के रंग। सोनिया और मोनिया दुई बहन रही, सोनिया रंग माँ काली रही तो मोनिया खूबे गोरी। जब पढ़े के बाद चले तो महतारी बाप कहें, सोनिया से तय जरूर पढ़ ले, नाही तो तोर कैसे का होए, कैसे काम चले, रंग के चलते सोनिया के सबे दबावे। वही मोनिया गोर रही है तो ओकर ब्याह जल्दी होएगा। यहाँ सोनिया धीरे धीरे अपन पढ़त लिखत टीचर हुई गई और बाद माँ एक ठू दुहाजू लड़का से उन्हों का ब्याह होएगा। समाजों में तो ये चारों ओरी बिखरा बा कि हाँ गोरे मनई सुंदर होत है, चाहे गुड़ ढंग होए चाहे ना होए। कुछ समय बीता, जहाँ कलम का जरूरत पड़त है वहाँ पाउडर से काम नहीं चलत है। मोनिया जब देखा तब मैकेन रहा, न गुड़ रहा न ढंग रहा, तो जब देखो तब ससुराल से शिकायतों आवे, न लड़का पाल पावे न घर चलाए पावे। वहीं सोनिया अपन हर काम सिस्टम से करत रही। खैर दोनों बहन अपने अपने ससुराल में अपने अपने ढंग से जियत खात रही।
मोनिया के ससुरे से जब देखो तब

0: शिकायत करें दामाद जी, अम्मा ये एको काम नहीं कर पावत, अम्मा ये कुछ पढ़त लिखत नहीं, अम्मा ये लड़कन का दवाई तक नहीं दे पावत, अब का करें। वो तो जानते रही हैं कि खाली गोरेपन के मारे एका छोड़ दिए रही हैं। एक बार ई भवा कि मोनिया मायके आवे वाली हैं, तो भाई वो सुंदर रही हैं, उनके पापा जी राम दुलारे तुरंत बाजार भागे मिठाई लावे, वहीं रास्ता माँ जल्दबाजी माँ उनकर एक्सीडेंट हो गवा, सब लात फान के उनका अस्पताल ले गए। मोनिया और सब घर वाले वहीं पहुंच के रोए। खैर डॉक्टर साहब बोले इनको 2 यूनिट खून की सख्त जरूरत है, अगर इनको नहीं मिला तो इनकी जान नहीं बचेगी। तब सोनिया पहुंची। सोनिया कहे लगी का हुआ डॉक्टर साहब, का बात है बताइए मुझसे। तो डॉक्टर बोले कि देखिए इनको 2 यूनिट खून की सख्त जरूरत है, अगर इनको खून नहीं मिला तो इनकी जान नहीं बच पाएगी। तब सोनिया बोली डॉक्टर साहब आप हमार खून चढ़ाए दे, हमार और हमारे पापा के ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। डॉक्टर आश्चर्य से सोनिया के तरफ देखने लगे कि अरे तुम इतनी बढ़िया बात कैसे कर ले रही हो। सोनिया बोली डॉक्टर साहब हम पढ़े लिखे हैं, हम सब समझते हैं, आप बस जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब खून चढ़ाए, पिताजी के होश आए गवा। वो देखे तो सोनिया बगल के बेड पर लेटी है। वो पूछे एका का भवा, तब हल्की हल्की अधखुली आखन से सोनिया कहत रही पापा हम भले करिया हैं लेकिन खून तो आपे की तरह लाल है। डॉक्टर साहब कहने लगे आज आपकी जान आपकी इसी बच्ची की वजह से बची है, यही अपने समाजों में तो चारों ओर ही फैला बा करिया गोर के चक्कर। उनकर पापा बहुत ही पछताए कि हम खाली रंग रूप के मारे इतना पक्षपात किया, जन्म जिंदगी के लिए हमका सीख मिल गए, हमका क्षमा कर दो बिटिया, हम ना ही जाने कि इतना अच्छा गुण ढंग ऊपर हो चाहिए, इंसान के रंग रूप ना ही व्यवहार सुंदर हो चाहिए, वही से हम सब कर जीवन चलत है। वहीं अपनी बिटिया सोनिया और सब के साथ खुशी खुशी सब जने घर चले गए। तो हम देखत है कि हमका कभो भी रंग रूप कैसा है ए पर आदमी के ना परखे के चाहिए, आदमी के गुण ढंग व्यवहार से जरूर परखे के चाहिए।
1: सरस्वती बहनी कितना नीक के बंदना श्रीवास्तव बहनी, कितना नीक के बताई कहानी, एकदम मन गदगद हो गया सुन के।
2: हाँ और देखा बहुत शिक्षाप्रद कहानी रही दोनों कहानी है ना। देखा का गांव
1: का शहर
2: सब जगह हम देखत ही ये चीज आज भी जीवित है, है ना।
1: बिल्कुल
2: तू भी देखे हो अपने मोहल्ले में समाज में कि रंग के लेके चाहे जाति के लेके चाहे और कोनो चीज के लेकर
1: चाहे रंग हाँ कौनो भी जात हो कौनो
2: हाँ,
1: भी रंग
2: बहुत
1: हो,
2: चीज के लेकर
1: उंगली कटी के हाथ कटी तो खूने रंग सबके एक के हुई।
2: बिल्कुल सही कहत हो। और जब आप हम सभी एक पूर्व धारणा से ग्रसित हो जाती ना, ये बहुत बड़ी हम सभी की कमी है ना। तो जैसे ये कहानी से हम सभी की सीख मिला था कि एक पूर्व धारणा से ग्रसित न रहें बल्कि अपनी आंख से देखी चीज पे भरोसा करे के आदत डाले, जैसन देखा था सामने से वही पे भरोसा करें, ना कि सुनी सुनाई बातों पे, ना कि केहू के रंग देखें है ना, और बेटा बेटी में भेद करें, ये तरह का व्यवहार जो है हमका पीछे ढकेलत है।
1: बिल्कुल अब बहुत जगह ऐसा है कि सुबह सुबह है ना सुबह सुबह का चक्कर हाँ। बहुत जगह भी लिया जाता है कि ये फलानी देख लिया तो हमारा तो कम मिजाज गड़बड़ाई जाए।
2: बिल्कुल सही कहा तू चंपा भाई,
1: इन्हें देख लिया तो हमारी कहूँ जात है तो इन्हें देख लिया हमारा लागत आज काम हो ही नहीं, भले बाद में उनके काम हो जाए लेकिन उनके दिमाग में ये चीज आ जाए कि हमारा काम तो आजकल गड़बड़े हो गए।
2: हाँ और जाना तू चंपा बहनी हम सब का जो दिमाग है ना कंप्यूटर से कम ना ही होते, तू जैसे संदेश भेजबू वैसे ही कामों करत है, अगर तू अपने दिमाग में गलत संदेश भेजबू ना तो तोरे गलत परिणाम आगे आई। और तू अगर अपने अंदर विश्वास रखबू अंधविश्वास से परे विश्वास के बात करती,
1: बिल्कुल
2: अगर तू अपने दिमागे में मन में विश्वास रखबू कि देखा हम मेहनत करती हम समय के सही सदुपयोग करती तो हमका केहू के देखे और न देखे से असर न पड़ी है ना, तो हमार काम अच्छे हुई अगर हम मेहनत करती, तो अपने मेहनत पे अपने कर्म पे विश्वास रखें और ये सब चीजन से ऊपर उठें, और जो मनाई इन सब पे विश्वास नहीं करत वो जीवन में आगे चल करके अपने ध्वजा के फहरावत है।
1: बिल्कुल सही कहा तू बहनी। तो चला अब तुम्हें ठो नीक के हम गौने सुनवाई दी, चला तू तुम फिल्मी की सुनवाई दी नदिया के पार से, चला तुहू सुना बहनी हरे भी सुना।

0: सरस्वती बहनी,
1: हाँ चंपा,
0: आप देखा? हाँ
1: हाँ हमारे साथ ही चला रसोई घर में, है ना?
0: अच्छा।
1: हाँ अब इतना बढ़िया तो का गवनई सुना ही, अब तो चलबू ना।
0: बिल्कुल, काहे नाही।
1: चला आज रसोई घर में का बताइबू हम सब के।
0: आज रसोई घर में मिला है मिट्टी के बर्तन में खाना बनावे के फायदा।
1: अच्छा तबई
0: देखा
1: देखत रही 2 दिन पहले तू अपने जौनहा खूब खरीदारी करत
0: आवाज़ा तो
1: रहू।
0: मिली रहो जब बजरिया में तो
1: हाँ
0: हम खरीदत
1: ता
0: रहे।
1: हाँ हम कहा दही खूब झोरा भरे हैं ये चंपा हमार, तो आज एकर राज पता चला हमका। तो
0: बिल्कुल।
1: चला बतावा भाई काहे इतना मिट्टी के तू बर्तन ढोत रहू।
0: देखा सरस्वती बहनी, पहले एक समय में लोग सबके घर में मिट्टी के बर्तन का उपयोग होता रहा। मुना आज के जो आधुनिक युग आई के पाए तो सबके रसोई में देखबू स्टील के बर्तन दिखाई, एल्यूमिनियम के दिखाई, नॉन स्टिक जो चलाब वो दिखाई। मुना केहू के घर में मिट्टी के बर्तन तू नहीं देखबू। मुना मिट्टी के बर्तन आज भी अपन जन विशेषता है और स्वास्थ्य लाभ के कारण महत्वपूर्ण होता है। सबसे बड़ा लाभ यह है एक कि मिट्टी के बर्तन में भोजन जो है धीरे धीरे और सामान्य रूप से पकत है। जैसे का होते कि भोजन के जो पौष्टिक तत्व होते हैं
1: बरकरार
0: वो
1: रहता है।
0: नष्ट ना होते हैं और वह कर प्राकृतिक स्वाद भी बना रहता है।
1: और सौंधी सौंधी खुशबू भी
0: हाँ
1: आवत है दिखा।
0: और मिट्टी के बर्तन में पका हुआ भोजन जो होता है बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और सुगंधित भी सका सुंदर
1: हाँ
0: सुंधावत
1: देखा
0: है।
1: काहे मिट्टी के बर्तन जो ना हमारे प्रकृति से जुड़ा बाटे है एकदम, है ना?
0: और मिट्टी के देखा बर्तन में प्राकृतिक खनिज तत्व पाए जाते हैं जौन भोजन के साथ मिल के वह का और अधिक पौष्टिक बनावे में सहायता करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और इके अलावा भी मिट्टी के बर्तन में भोजन के जो अम्लता होते हैं वो भी संतुलित करे में भी मदद करते हैं जिससे
1: अच्छा
0: पाचन तंत्र बेहतर रहते हैं।
1: अच्छा
0: और सरस्वती बहनी सबसे बड़ी या कर ई खासियत है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनावे से कम तेल का इस्तेमाल होता है। ई बड़े ई स्वास्थ्य के बड़े लाभदायक माना जाता है। और यहाँ में बना भोजन जो होता है ना वो हल्का और सुपाच्य होता है जो कि आसानी से पच जाता है। और पर्यावरण की दृष्टि से भी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं और ये प्राकृतिक पदार्थ से बना होते हैं और एक उपयोग के बाद आसानी से मिट्टी में मिल भी जाते
1: हाँ
0: हैं।
1: जब टूट फूट
0: हाँ
1: जाए
0: टूट फूट
1: उपयोग के
0: जाए।
1: लायक न रहे तो पर्यावरण के नुकसान ना
0: और
1: ही
0: इससे
1: करते।
0: पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होते हैं। अब मिट्टी के बर्तन में भोजन के लंबे समय तक रख सकते हैं जैसे वो गर्म भी रहता है वो जब बनाओ थे ना। और कुछ सावधानी भी बरते होता है का क्योंकि मिट्टी के बर्तन के अगर जैसे हम सब बना लिए खाना तो का आराम से धोवें आराम से रखें।
1: हाँ भाई देखा नाजुक होता टूट फूट के डर
0: अब
1: रहा
0: बनावे के
1: था।
0: पहले हमें उसका इस्तेमाल करे के पहले उसका जब लावे बाजारी से तो उसका रख दें पानी में क्योंकि पानी पूरा सोख ले जैसे बहुत पानी सोखा था ना। अब देखो
1: ताकि
0: मटका
1: जौन
0: लेके
1: भी
0: आओ
1: हाँ
0: तो पानी धर
1: धूल
0: तो
1: गर्दा जौन चिपटा हुए में और बनावे के प्रक्रिया में बहुत इधर उधर से थोड़ा गंदगी भी आई जात है,
0: बिल्कुल
1: तो वो सब
0: वो
1: जौन है
0: सब
1: साफ करे
0: साफ
1: से।
0: हो जाए या फिर मैं पानी जितना मतलब सोखे खोई तो सोखे से तेल डाला हम सब में कढ़ैया तो मैं तेल डाला तो तेल सोख ली और
1: बिल्कुल।
0: जब पानी सोखे रहे बढ़िया से तो तेल ना ही सोखी ज्यादा।
1: फालतू हाँ फालतू तेल ना सोखी तो वो देखा पहले से एक तैयार करके रखे के पड़ी, है ना?
0: बिल्कुल
1: तो थोड़ा मेहनत तो बढ़ जाता है लेकिन इस
0: भले
1: मिट्टी के।
0: समय लागत है खाना बनाने में धीरे धीरे बनाता है समय लागत है लेकिन खाना कितना पौष्टिक बनाता
1: और
0: है।
1: देखा इम्मा
0: और देखा
1: चाहे चंपा बहनी देखा ये मिट्टी के बर्तन होते ना तो इम्मा हम सब आँच का ज्यादा तेज नहीं करित, मध्यम आँच पे पकावा थी तो मिट्टी के कारण तो पौष्टिकता बरकरार रहत है। जब आँच तेज नहीं करित उकरी कारण भी एकर पौष्टिकता जो है बराबर
0: बिल्कुल।
1: बनी रहा था।
0: और देखा गर्मी है इतना अब मटका भी देखो मिट्टी का लई आओ मटका अब मैं पानी भर के रखा धोई वोई के बढ़िया से कितना पानी पियो ठंडा भी रहते एकदम सौंधी सौंधी खुशबू भी आवत है
1: खुशबू भी आवत है और
0: एकदम
1: कितना
0: मन
1: तृप्त
0: मन एकदम प्रसन्न
1: हो
0: हो
1: जाता
0: जाता है।
1: है जैसे
0: हाँ
1: आत्मा जैसे तृप्त हो जाता
0: हाँ
1: है
0: ऐसे मन
1: वैसे
0: भी
1: लागत
0: तृप्त
1: है।
0: एकदम।
1: हाँ और देखा और दूसरे तरह से ठंडा करके पानी पी थी तो वही प्यास तो बुझ
0: हाँ
1: जाता
0: सर
1: है
0: फ्रिज
1: लेकिन
0: व्रिज के पानी
1: मन
0: होता ना
1: तृप्त ना ही होता
0: लेकिन
1: है।
0: जो मटका के पानी के स्वाद होता
1: बहुत
0: है
1: अंतर
0: वो
1: होता
0: फ्रिज के
1: है।
0: पानी के स्वाद नहीं मिले
1: बिल्कुल
0: कभो।
1: सही कहा तो चंपा बहनी। अजानत
0: हाँ
1: हूँ चंपा बहनी हमें लगा था ये जो मिट्टी के बर्तन के अब दोबारा

0: प्रचलन आएगा बाटे।
1: हाँ
0: एकर कारण यह है कि लोग अब समझत हैं कि हमन सबके इतना जन स्वास्थ्य खराब हो जाते, बेर बेर अस्पताल दौड़े के पड़त है, कहीं ना कहीं एकर कारण यह है कि हम सबे प्रकृति से दूर हो गए हैं।
1: बिल्कुल
0: तो अब अपनी गलती के सुधारे के समय आ गया है और धीरे धीरे हम सबे प्रयास करते कि प्रकृति की शरण में पुनः जाई।
1: पुनः जाई। तो चला ही बात पे, एक तुहा और निके गौने सुनवाई दी हम गाइड फिल्म से, चला तू सुना बहनिया ने भी सुना।

0: चंपा,
1: हाँ
0: अब
1: सुस्ती
0: देखा
1: रहनी।
0: इतना बढ़िया गीत सुनवाई दिए हो तू, अब
1: हाँ
0: समय है एक ठे महत्वपूर्ण संदेश सुन लिया जाए, अब बहनी हरन के भी सुना देवा जाए।
1: चलो सुन लिया जाए।
0: पनघट जहाँ बातन में होत है अपने पन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरन हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
2: हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
3: हमारा ईमेल एड्रेस है
4: pangatprogram@gmail.com, स्पेलिंग है PANGHAT

0: आर ओ जी आर ए डबल एम ई एट द रेट ऑफ जी एम ए आई एल डॉट सी ओ एम पनघट प्रोग्राम एट द रेट ऑफ जीमेल डॉट कॉम एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी एबीसीडी या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-492-6250। तो सखियन देर कौने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
2: बेसब्री से इंतजार रही।
3: बिल्कुल सरस्वती बहनी, हम सब के बहनियारन के इंतजार रही। और देखा घड़ी सारा करत है, घरे चले के बेला होत है, बहनियन से राम राम किया जाए।
4: राम राम, राम, राम बहनियारे।

अभी ग्रामीण बहन ने अपना कार्यक्रम पनघट सुन रही थी। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

0: locked down to only one thing in life. कि अगर वो नहीं हुआ तो everything is over. No, it is not that.
1: In football, South Africa advanced to the knockout phase of the FIFA World Cup for the first time with a 1-0 victory over South Korea in Monterrey this morning. In men's cricket, India A were 173/2 in the opening session of day one of the first multi-day test match against Sri Lanka A at the Galle International Stadium in Sri Lanka when reports last came in. In the ICC Women's T20 World Cup, India will take on Bangladesh in the Group A clash at the Emirates Old Trafford in Manchester today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. Harmanpreet Kaur-led women in blue are currently placed second in Group A, having won 2 out of 3 matches. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in the afternoon session today. The Sensex climbed 575 points to 77,566, while the Nifty jumped 173 points to 24,195 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Samvidhan Hatya Divas being observed today. Prime Minister Narendra Modi pays homage to those who defended democratic values during the emergency. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls for stronger collaboration amid global challenges, invokes Vasudhaiva Kutumbakam at Jeju Forum in South Korea. BRICS Energy Ministers meeting begins in Gurugram under India's BRICS 2026 chairship. Powerful earthquakes strike Venezuela back-to-back, causing multiple building collapses. State of emergency declared. South Africa advanced to knockout stage of FIFA World Cup for first time, defeating South Korea 1-0 in Monterrey. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
3: जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, 1 बरस बीत गया।
4: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्त गीत गया, 1 वर्ष

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
1: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
2: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस।
3: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
2: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
4: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जैकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SG

0: जीपीसी ने भी श्रीमान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फॉरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशंस को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह

0: टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज अन्य आईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं और ये समय है एनसीईआरटी के प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। तो आइए सुनते हैं।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के

जीवाश्म भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओ, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओ, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को

0: बताओ, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर, ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
3: Stephen, happy birthday to you.
4: Happy birthday to you, Stephen.
5: Thank you. How are you?
6: Happy birthday, Stephen. Thank you.
5: Congratulations.
6: Thank you.

0: Thank you so very much.
1: Hi, Martin. How are you?
2: Oh, fine, fine.
1: Thanks for coming in. Please come in. Please.
3: Oh, yes, sure. Yes. Why not? Why not?
2: Come, come. Hey.
3: Come.
2: John, please come here.
3: Oh, sure, hey. Sure. Yeah.
1: Join us for a drink, please.
4: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
5: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी

0: बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
1: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए, सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.

0: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
1: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
0: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
1: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
2: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
0: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
1: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
3: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
4: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
1: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
5: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
0: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
1: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम

0: में सूर्य और सौरमंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
1: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
2: हाँ।
1: गुड़िया गौरव सब तैयार?
3: हाँ जी बाजी, हम तैयार हैं।
1: वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
4: आग का गोला?
1: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
2: सूरज।
1: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
3: बहुत आसान पूछते हो।
1: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
3: अगली बार में बहुत मुश्किल।
1: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
2: हाँ।
1: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
3: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
1: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
5: वो तारा होता है।
1: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
6: वो रात और दिन भी बनाता है।
1: एकदम सही एकदम सही।
5: वो हमें धूप भी देता है।
1: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
3: धूप से हाँ। इतना अच्छी बात भी होती है।
1: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
3: विटामिन डी।
1: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
5: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
3: पेड़ों को खाना भी देता है।
1: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
3: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
1: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
3: हाँ।
6: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
1: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
3: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
1: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
3: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
5: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
1: ना।
5: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
1: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चो सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
3: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
1: बहुत बड़ा होता है
5: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
1: हम क्योंकि कहीं
3: दूर होता है, इसलिए
1: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
3: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
1: हाँ
5: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
1: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
2: सर्दी।
1: ओ ऐसी वाली सर्दी ना।
3: हाँ।
1: अच्छी लगती है सर्दी।
3: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
1: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
5: नहीं
1: है। सूरज आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता है।
2: फिर भी जीवन दाता है।
1: धरती काटे चक्कर इसके।
2: धरती काटे चक्कर इसके।
1: लगे ये चलता जाता है।
2: लगे ये चलता जाता है।
1: सर्दी गर्मी बनते।

0: इससे,
1: सर्दी गर्मी बनते इससे,
0: ये दिन रात बनाता है,
1: ये दिन रात बनाता है,
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
0: सूरज ये
1: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
2: मुझे एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
3: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
2: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ।
2: वो भी दस पूछेंगे,
0: दस पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
2: मौसी
0: डर जाती
2: है। और आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
3: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं और इसी के साथ संपन्न होती है हमारी ये सभा। हमारी शाम की सभा शुरू होगी 4 बजे से संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम से, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इस बीच हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर जारी रहेंगे।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शाम के 4 बजे आरंभ होती है हमारी सायंकालीन सभा। सभा की शुरुआत हम कर रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम से।
1: संदेश टू सोल्जर्स।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम शुरू हो गया है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स हमेशा की तरह से आज हमारे खास मेहमान एक सोल्जर जिनका नाम है कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। देश के कुछ बेहद टफ और सेंसिटिव रीजन्स में सर्व कर चुके हैं जिसमें कश्मीर घाटी से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स शामिल हैं। इसके अलावा 3 नए सैनिक स्कूल्स खड़े करना आसान काम नहीं होता। और भी कई शानदार अचीवमेंट्स और कीर्तिमान स्थापित करने वाले कर्नल वरुण वाजपेयी VSM हमारे साथ हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के हैं स्पेशल गेस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस शो में। और संदेश टू सोल्जर्स हमारा प्रोग्राम है जो डेडिकेटेड है हमारे सोल्जर्स को, हमारे सैनिकों को। तो आपने तो सैनिक स्कूल एक या दो नहीं, तीन तीन स्टैब्लिश किए हैं, तो जाहिर है हमारी उस पर बात होगी। लेकिन सर हम शुरुआत करेंगे अपने आज के शो की, और हम आपके बारे में जो हमने थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, ज्यादा हम आपसे ही बातचीत में जानेंगे कि शुरुआत आपकी किस तरह से हुई और आपने जो आर्मी ज्वाइन की इंडियन आर्मी, तो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली या फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से रहा?
1: जी मैं मूलतः लखनऊ का रहने वाला हूँ एंड आई कम फ्रॉम एकेडमिकली ओरिएंटेड फैमिली, जिसमें कि मूलतः ज़्यादातर लोग एकेडमिक्स और उससे जुड़े हुए अलाइड एस्पेक्ट्स में उन्होंने काम किया पूरा का पूरा। तो आई एम द एल्डेस्ट अमंग्स 3 सन्स ऑफ माई पेरेंट्स। तो घर में सभी लोगों का बेसिकली अकेडमी की तरफ रुझान ज्यादा था। तो टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन लाइक फोर्सेस, इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड वन फॉर एवरीबडी कि भाई ये कैसे। बट हाँ, मेरा शुरुआत से ही मन था, आई वॉज NCC कैडेट, तो बड़ा मन था कि हम फौज ही ज्वाइन करें। तो इसी से प्रेरणा लेते हुए देन आई क्लेयर्ड फॉर, आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन क्लेयर्ड फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और फिर IMA ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में आई गॉट कमीशन इन द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री फ्रॉम इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो हमारी रेजिमेंट जो है एक बड़ी यूनिक रेजिमेंट है जिसमें कि सारे के सारे ट्रूप्स जितने भी हैं वो सारे के सारे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही आते हैं। तो वी हैव सब्जेक्ट्स फ्रॉम जम्मू से लेकर वैली तक पूरा का पूरा, प्लस हाईलैंडर्स भी हैं जैसे कि द्रास में कारगिल से लेकर इस साइड उड़ी और पुंछ तक का पूरा पूरा।
0: ओके, मतलब पूरा वो
1: हाँ, तो हमारा ट्रूप्स का जो कॉम्पोजिशन है वो कम्प्लीटली JNK का ही है। तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज है, यही हमारी ऑपरेशनल एज भी हमको मिलती है। इसी की वजह से हम ऑपरेशनली इतना अच्छा कर भी पाते हैं JNK में।
0: ओके,
1: क्योंकि आप उन लोगों के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं जिनको, जो कि उस टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो इस तरह करते करते फौज में काफी टाइम कटा एंड देन आई वाज गिवन द टास्क टू सेट अप न्यू सैनिक स्कूल्स। तो वहां से एक एकेडमी के लिए ओरिएंटेड जर्नी भी आगे स्टार्ट हुई।
0: यानी कि जो एकेडमी का आपका जो फैमिली का रहा, तो वापस वो
1: वापस घूम फिर के वापस
0: घूम फिर करके आया। लेकिन सर जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई, जो आपने सर्व किया, जो सेंसिटिव एरियाज कहा जाए, बहुत ही टफ, मतलब उनको फ्रंटियर्स कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो वो बहुत ही टफ।

0: होगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा, उसके बाद के तो टास्क बाद में आए, वो कैसा था?
1: बिल्कुल, मिलिट्री के अंदर में इन्फेंट्री इज जनरली द कटिंग एज, जहाँ पे जिसको किसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं माना जाता है।
0: अच्छा।
1: तो इन्फेंट्री को सर्व भी करना पड़ता है पहाड़ों पे, तो जहाँ जहाँ पे यूनिट रही, जहाँ जहाँ पे हम लोग डिप्लॉय रहे, वहाँ वहाँ पे एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में जो भी योगदान दे पाए हम लोग वो देते
0: अच्छा।
1: रहे। जी, तो डिफिकल्ट, इट इज इंडीड डिफिकल्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आप कट ऑफ रहते हैं चीज़ों से। विंटर जो वैकेटेड पोस्ट होती हैं वहाँ, जहाँ से 5-5, 6-6 महीने भी आपको लग जाते हैं दोबारा वापस नीचे उतरने में, तो ऑपरेशनली इट्स अ डिफिकल्ट टेन्योर। यस।
0: ओके, तो उसमें सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो आज भी आपके साथ जुड़ा हो, आपको याद रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको याद आता हो?
1: जी, देयर आर नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेस। एक बार ऐसा था कि पोस्ट पे काफ़ी टाइम रहने के बाद जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है
0: जी,
1: तो आपकी आंखें और आपका दिमाग अट्यून्ड हो जाता है टू सी, बिकॉज आप ऑपरेशन में भी उसमें जा रहे हैं, एम्बुश में भी उसी बर्फ में जा रहे हैं,
0: सिचुएशन में
1: तो
0: बिल्कुल।
1: एवरीथिंग इज वाइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयरिंग वाइट क्लोथ, योर इग्लू इज वाइट, योर द आइस इन फ्रंट ऑफ यू इज वाइट। तो ग्रीनरी एक बहुत हम किसी भी इंसान के जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो पोस्ट से नीचे उतर के आने के बाद में नॉर्मल सब्जी खाना, लौकी को देखना, या चलती हुई बकरी और जानवरों को देखना, ये सब चीज़ें बड़ी अम्यूजिंग से लगने लगती हैं कुछ टाइम के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम डाउन एंड टेक अ वेकेट, टेक अ ब्रेक ऑल्सो फॉर अ वाइल, वो बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह के दुनिया भर के तमाम इंसिडेंसेस हैं।
0: जी,
1: ऑपरेशनली मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज वो चीज़ एक थोड़ा सा उसकी
0: अलग
1: सैंक्टिटी होती है, बट हाँ,
0: जी
1: फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस, बड़ा ही अलग तरीके का।
0: तो आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, VSM, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, और आप बात करेंगे आगे कि किस किस तरीके के फेजेस आए उनकी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए, और कब उनको VSM से नवाजा गया। तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर। आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी दुनिया भर में, और आप हमें SMS, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और साथ ही आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारे आज के मेहमान कर्नल वरुण वाजपेयी VSM से, नंबर है दिल्ली का कोड 01123421085, 2342108 5।

0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ। और आज के हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: सर, हमने बात करी कि किस तरह से आपने शुरुआत करी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका जो है वो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने कहा कि कहीं भी कोई फैमिली में भी दूर दूर तक कोई आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये काफ़ी पहला ही चैलेंज रहा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने 3 नए सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करने में बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया
1: जी।
0: बल्कि मिजोरम का सैनिक स्कूल तो आपने सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया
1: जी।
0: क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल करा और उसको कामयाब बनाया
1: जी? मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में एज अ रजिस्ट्रार आई थी, तो वहाँ पर तकरीबन 1.5 साल रहने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया कि मिजोरम में कैपिटल आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर के पास में एक छोटा सा जिला है, इसका एक छोटा सा हैमलेट है बेसिकली, चिंगचिप करके, वहाँ पे आपको सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करना है। तो फॉर मी, मेरे लिए बड़ा ही यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा कि इतने ही सेक्लूडेड से एरिया में जाके, बट हाँ, गवर्नमेंट का विजन था कि भाई राष्ट्रीय भावना और ये अवसर सबको दिए जाएं, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी फार फ्लंग क्यों ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ पे 2017 में मैं मिजोरम पहुंचा, और वहाँ पे चिंगचिप जगह है जो कि सरचिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटा सा एक एरिया है, वहाँ पे हमने सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश करने का बेड़ा उठाया। और तकरीबन साहब 7 महीने लगे हम लोग को, दिसंबर से लेकर अगले साल मई जून तक का, जिसमें बिल्डिंग भी बनवाई गई।
0: अच्छा।
1: जिन लोगों ने अपना लैंड डोनेट किया था उनको भी गवर्नमेंट ने इनकम पास किया साथ में, और हमने उन सबको जॉब भी दिए वहाँ पे।
0: अच्छा।
1: तो एक बार एक तरीके से स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के हमने सबको साथ में लेके काम किया।
0: साथ में लेकर
1: शुरुआत में बड़ी दिक्कतें भी आई, चर्च को एक कुछ अपने अप्रिहेंशन थे, बिकॉज दैट इज अ प्राइमरीली अ क्रिश्चियन बिलीफ स्टेट, तो चर्च से हमको मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी आई। बट बाद में जब उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे इनका पर्पस तो ये है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को आगे फौज में अवसर बनने का, फौज ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, तो देन इट वाज अ गुडविल विच वाज एस्टैब्लिश। फिर चर्च ने ही हमारा बड़ा हेल्प भी करी कि बाद में स्कूल का इनॉग्रेशन करने के टाइम पे आप मतलब उन्हीं के बेंचेस, उन्हीं के वो टेबल तक आई। बट इट वाज अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस अपने आप में। और सबसे अच्छी बात थी, सबसे बड़ा योगदान शायद चिमचक का ये रहा है कि स्कूल से शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर में गर्ल स्टूडेंट्स को लेने की, जो कि बाद में एनडीए तक था। तो 2018 में हमारा पहला बैच आया था जिसमें लड़कियों को भी हमने शामिल किया था।
0: अच्छा।
1: इस तरीके से अभी सभी सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स भी हैं, और एनडीए में भी लड़कियां पास आउट हो रही हैं, आईएमए भी जा रही हैं।
0: अच्छा।
1: ये अपने आप में बड़ा सुखद और बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था।
0: बिल्कुल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे आपने बताया कि जो चैलेंजेस आपको सामने करना पड़े वो तो, और पहला स्कूल खड़ा करने में, तो क्या आगे जो आपने बाद में किए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या वो चैलेंजेस फिर से वही सब दोबारा से सामना करना पड़ा या आसान हो गया था?
1: नहीं, एक बार चीजों को कर लेने के बाद थोड़ा तो मतलब मनोबल बढ़ जाता है, चीजें आसान भी हो जाती है। अरुणाचल वॉज ओके, झुंझुनू हैड इट्स ओन चैलेंजेस, बिकॉज झुंझुनू क्या है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है देश का जहाँ पे हर घर में फौजी है बेसिकली।
0: अच्छा।
1: तो अगर हम निकालें कि ऑन एवरेज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फौजीज, इस जिले में सबसे ज्यादा फौजीज हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में, तो यहाँ पे बच्चों को उन क्लास 6 में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल अपनी मदर के फोल्ड से निकल के बाहर आते हैं ना, कि घर में तो उनको हाथ से भी खाना खिला दिया जाता है कभी कभी, ऐसे बच्चों को स्कूल में लाके उनको सेटल करना

0: उनको बताना कि बच्चों कैसे उठना है, कैसे बिस्तर लगाना है, कैसे
1: जी
0: अपने शूज को पॉलिश करना है, कैसे अपने ड्रेस को लगाना है, कैसे यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑल्सो, कैसे कैसे अपना अपनी दिनचर्या को आगे लेके आना है, पढ़ना कैसे
1: मतलब
0: है।
1: पूरा लाइफ
0: तो
1: स्टाइल आप
0: जी, तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्कूल को स्टैब्लिश करने में इस टाइप के ये होता है कि जब आप जाते हैं एज अ फाउंडर प्रिंसिपल, तो आपके साथ में आपके कुछ लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग कॉलेज से पूल होके आए होते हैं।
1: ठीक है
0: फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे भर्तियों के माध्यम से टीचरों को लिया जाता है, कुछ स्टाफ को लिया जाता है, उसके बाद में बच्चे आते हैं। तो इतने कम स्टाफ के साथ में उनका मैस चलाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनका पूरा मेडिसिन और सबका इंतजाम भी करवाना, डे टू डे चैलेंजेस आर मतलब एक फाउंडर प्रिंसिपल के तरीके से मेरे पास मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे
1: जी
0: एंड आई टू वाइंड अप ओनली मतलब जब बच्चे सो जाते थे जाके। तो झुंझुनू वॉज इटसेल्फ अपने आप में अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों में इतना जोश था साहब कि
1: अच्छा
0: झुंझुनू में इन्होंने मतलब उस सैनिक स्कूल को एक ओएसिस में बनवा बना कन्वर्ट कर दिया। इट इज अ ग्रीन कैंपस नाउ, इतना
1: अच्छा
0: सुंदर है कि अगर आप इंटरनेट से भी देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ देखिए या मतलब घुस जाएंगे।
1: तो
0: तो
1: जबकि उसमें बताया जाता है कि झुंझुनू अपने आप में बहुत ही गर्म एक रीजन होता है,
0: जी
1: बड़ा गर्म
0: जी
1: इलाका है,
0: जी
1: तो उसमें इस तरीके से इसको बना पाना, तो
0: जी
1: ये मतलब आपकी अपनी कोशिश रही इसमें, कितने लोगों ने साथ दिया, और जो बच्चे आपने जैसे कहा
0: जी
1: कि वो तो जाहिर है वो तो सीख रहे हैं आपके
0: जी
1: साथ, तो
0: जी
1: क्या वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर रहे?
0: बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे तो स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गए थे। हम जो भी कर रहे थे बच्चों को साथ में लेके कर रहे थे। देखिए साहब,
1: तो एक बड़ी टीम हो गई थी
0: एक बड़ी
1: वो।
0: टीम हो गई। द इंटायर ऑब्जेक्टिव वॉज वेरी सेम कि ये अच्छे इंसान बने पहले, ये अच्छे
1: जी
0: सोल्जर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अपने आप बनेंगे बाद में। टू
1: बिल्कुल
0: इनकलकेट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन बींग ना, वो सेंस सिखाना, वो इंग्रेन करना उनके अंदर में, दैट वॉज द बिगर एंड द लार्जर एम। एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूँ कि इसमें से कई बच्चे अभी आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं,
1: अच्छा
0: कई लड़कियां बन चुकी हैं जो वहां पर गई थी। तो आई एम श्योर ये एक मूवमेंट है जो देश में बहुत दूरगामी परिणाम देगा आगे आके।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो जो बीज आपने वो बोया वो अब आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन के पेड़ बन रहा है, और
0: जी
1: वो फल फूल रहा है, सब तरफ फैल रहा है।
0: बिल्कुल
1: तो ये जो सिचुएशन आपने वहां की बताई, उसमें उन बच्चों को जैसे आपने कहा कि उनके घरों से, उनके माओ की गोद से निकाल करके लाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, पूरा लाइफ स्टाइल बदलना, उनको एक एक चीज सिखाना,
0: जी
1: वो मैनेजमेंट जो था, वो आपकी जो टीम थी उसमें कितने लोग थे, और किस तरीके से आपने उसको मतलब प्लान किया, मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया?
0: शुरुआती दौर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये दो लोग होते हैं। उसके साथ
1: अच्छा
0: साथ में 5 टीचर्स लिए आते हैं, 5 टीचर्स और करीब 6-7 का और स्टाफ। तो पूरे एक बड़े से कॉलेज को मैनेज पर 25 एकड़ से के आसपास के कैंपस को या 50 एकड़ के कैंपस को
1: जी
0: शुरुआत में मैनेज करने के लिए ले दे के आपके पास में गिनती की यही 12-15 लोग होते हैं।
1: बस
0: यही आपकी बैकबोन होते हैं, यही आपके लेफ्ट राइट, आपके आँख
1: ओके
0: कान नाक सब कुछ होते हैं। तो इन्हीं से ही सारा काम करना होता है। तो सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन, कि सबको मोटिवेट करके एक लार्जर एम से अलाइन करना कि हम सबका उद्देश्य देखिए साहब ये है, ये पहला बैच है, इसकी नींव अगर मजबूती रखी जा गई तो कम से कम ये आगे चल के सस्टेन करेगा आगे जाके,
1: बिल्कुल। और ये तो मतलब हमेशा के लिए
0: हमेशा के
1: एक
0: लिए।
1: बहुत बड़ी मिसाल भी बन गया। तो क्या कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा? कभी ऐसी मुश्किलें आई जहां लगा कि अब शायद ये हम पूरी तरीके से कामयाब शायद ना हो पाए?
0: नहीं साहब, चैलेंजेस बहुत आए बट दिमाग में ये चीज़ बहुत जरूरी, बहुत क्लियर थी कि ये
1: करना
0: एक
1: है
0: टफ फेज है, बट हाँ इससे निकल के आने के बाद में ये स्कूल जो तैयार हुआ है ये आगे से, ठीक है हम सब शायद फेड हो जाएंगे कितने कितने टाइम पे आके, बट ये
1: लेकिन
0: संस्थान
1: वो
0: रहेगा, इसकी एथॉस रहेगी, इसकी कार्यशैली रहेगी, और जो जो चीज़ें अभी करी गई ये शायद चलती रहेंगी आगे तक,
1: हमेशा के लिए वो
0: हमेशा
1: बन
0: के
1: गया, और वो
0: लिए।
1: हमेशा ही वहां से नए बच्चे निकल करके
0: जी
1: आते
0: जी
1: रहेंगे।
0: जी जी
1: तो ये
0: जी
1: बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके पूरे करियर का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा।
0: मैं बिल्कुल आप बात मैं मानता हूँ आपकी बात, ये सबसे सेटिस्फाइंग फेज था हमारे करियर का। और क्योंकि एक ऐसी चीज थी कि आप उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनको आपको जिनमें आपका भविष्य दिख रहा है आपका उनका, तो ये अपने आप में बहुत ही सुखद और बहुत ही अमेजिंग फेज था करियर का।
1: सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपको अनथक कड़ी मेहनत, एग्जेम्पलरी फोरसाइट, जबरदस्त फुल प्रूफ प्लानिंग, लीडरशिप और अपने कर्तव्य से बढ़कर दिए गए अटूट समर्पण के लिए, यही सब काम उसमें शामिल थे,
0: जी
1: जो राष्ट्रपति द्वारा आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था, तो कैसा महसूस हुआ आपको उस वक्त, वो क्षण, वो मोमेंट्स, और यही वो आपका काम था जिसकी बदले आपको VSM से सम्मानित किया गया,
0: जी
1: तो वो जो मोमेंट था?
0: देखिए साहब, कभी भी किसी रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया, काम तो अपनी सेवा भाव से अपने दम से किया पूरा का पूरा।
1: जी
0: हाँ, ये था कि तीन तीन स्कूल स्टैब्लिश करना अपने आप में एक अचीवमेंट था, जिसको हमने अचीवमेंट की तरह तो नहीं लिया, बट हाँ जिन लोगों ने, जो मेरे ऊपर से उच्च अधिकारी थे, उन्होंने
1: जी
0: इसको अचीवमेंट माना और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से ये सम्मान मिला, तो अपने आप में ये बहुत ही सुखद अनुभव था। इट वॉज एक्चुअली ए ट्रेमेंडस अचीवमेंट।
1: सर, ये आपके लिए अचीवमेंट था, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक मेडल था और ऑनर भी था।
0: जी
1: आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो मिलने वाले थे, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक एक एक अलग सी चीज है,
0: जी
1: बड़ा
0: जी
1: इंटरेस्टिंग रहा हो, तो वो बताइए हमें।
0: मुझे याद है जिस दिन ये अवार्ड डिक्लेयर करा

0: गया था, हमारी एक कोर्समेट ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारा नाम अवार्ड की लिस्ट में है।
1: जी
0: तो अपने आप में बस सबसे सबसे सुखद अनुभव था वो वाला। पर हाँ, यह फौज में बहुत चुनिंदा लोगों को ही इस तरह से अवार्ड
1: बिल्कुल
0: दिए आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा,
1: बिल्कुल
0: तो अपने आप में ये अवार्ड दिया जाना बहुत सुखद अनुभव था और बहुत प्रोत्साहन भी मिला इस चीज़ से कि आगे भी अच्छे करते रहना है।
1: बिल्कुल
0: जी
1: सर, एक चीज़ यहाँ पर हमें बताइएगा कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे वो आए, एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को।
0: जी देखिए, सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ। इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है,
1: ठीक है
0: जिसको कि NTA कंडक्ट कराता है। तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या पांचवें में
1: ओके
0: हैं,
1: जी
0: दे कैन अपियर इन द एग्जामिनेशन।
1: ओके
0: और इस एग्जाम को जब कंडक्ट कराया जाता है, उसमें अपनी अपनी चॉइस दी जाती है कि आप भाई आप किस स्टेट के नेटिव हैं,
1: अच्छा
0: किस राज्य के आप हैं नेटिव, और उसके बाद में कहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस जिस राज्य में आप अप्लाई करें, अगर आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य
1: जी
0: में अप्लाई करें, तो 70% सीट्स उस राज्य से भरी आती हैं
1: ओके
0: और 30% सीट्स अलग अलग राज्यों से भी भरी आती हैं, जिनका अलग अलग कुछ सीट नॉमिनेट होती हैं। तो
1: जी
0: ये रूल्स समय समय पर चेंज भी होते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। एंड इन स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही बच्चे को वहाँ पर दाखिला होता है। पर यह बात निश्चित है कि सैनिक स्कूल्स का जो उसमें जो ग्रूमिंग होती है, जो एक बच्चे के अंदर में एक एक आदर्श डाले आते हैं,
1: जी
0: जो उसके अंदर में एक डिसिप्लिन की
1: डिसिप्लिन
0: भावना डाली जाती है,
1: बिल्कुल
0: ये जीवन भर काम आती है। तो भले ही वो फौज में जाए या ना जाए, उद्देश्य तो जाना ही है, पर
1: बिल्कुल
0: अगर चूज करता है कि नहीं भी जाना है, हर बच्चे के अंदर में अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हो
1: जी
0: सकती हैं,
1: करियर को
0: चॉइस
1: लेकर
0: हो
1: के
0: सकती हैं,
1: जी
0: पर एक बात तो निश्चित है कि उस बच्चे को जीवन भर कम से कम एक सही दिशा, सही तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने का एक रास्ता जरूर मिल
1: यानी
0: जाता
1: कि
0: है।
1: बुनियादी तौर पर वो जो रूट्स हैं उसके वो
0: जी
1: मजबूत हो जाते
0: बिल्कुल
1: हैं और वो जैसे आपने कहा कि वो डिसिप्लिन और एक लाइफस्टाइल जो है पूरा वो बहुत ही
0: बिल्कुल
1: ऑर्गेनाइज हो जाता
0: यस
1: है।
0: यस
1: तो सर
0: यस
1: इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर है?
0: यस यस अगर गूगल करेंगे तो सैनिक स्कूल एडमिशंस की वेबसाइट भी अलग है, सैनिक स्कूल
1: ठीक है
0: सोसाइटी की वेबसाइट भी अलग है, और इन सभी स्कूलों की अलग अलग स्वयं की वेबसाइट भी है,
1: ठीक
0: जिसपे
1: है
0: कि जो लोग एडमिशन चाहते हैं वो जाके जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबडी हैज द डेटा विद हिम, तो सब लोग उस पर जाके देख सकते हैं, जिसको जहां पे चूज करना है दे हैव ऑप्शन।
1: ओके तो ये इन वेबसाइट से और सैनिक स्कूल सर्च करेंगे गूगल पर तो सारा
0: जी
1: प्रोसीजर सामने
0: जी
1: आ जाएगा
0: जी
1: उसके थ्रू। लेकिन आपने कहा कि जो 5वीं पास आउट कर रहे होते हैं बच्चे वो या
0: या जो
1: जो
0: पास आउट हो चुके
1: हो
0: हैं,
1: चुके हैं
0: हाँ
1: वो
0: 12 साल की लिमिट होती है,
1: 12 साल की
0: तो 10
1: लिमिट
0: से
1: है।
0: 12 के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
1: ओके हमारे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आगे भी हम उनसे बातचीत रखेंगे जारी और कुछ और भी उनके पहलू पर जिंदगी के और करियर के डालेंगे रोशनी। आप बने रहे हमारे साथ रेनबो पर। आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स। और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। सर, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने 3 नए सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश किया, कितना चैलेंजिंग था और कितने ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, और वही आपकी मेहनत और वही चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किए और उनको फुलफिल किया, जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने आपकी फीलिंग्स पूछी और हम फीलिंग्स अब देखना चाहेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये है मैसेज, जय हिंद सर जी, रजनीकांत हैं ये रघुनाथ पाटिल वार्ड 1 से। और इसके अलावा मैसेज है, हेलो सर, माय हार्टेस्ट सैल्यूट टू ऑनरेबल गेस्ट टुडे एंड जय हिंद टू ऑल आवर इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द कंट्री। आई बो माय हैट टू देम माय सेल्फ अंजलि दो अंजलि लोड फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्लीज शेयर माय मैसेज टू रेस्पेक्टेड सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आपका मैसेज जो है अंजलि, हमारे जो गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी, उन्होंने सुन लिया है। और एक मैसेज और है, ये शरद का मैसेज है, वो गुड इवनिंग सर, आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेजेस आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 01123421085। सर, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में। हम जानना चाहेंगे कि आपसे कि पीजीआई लखनऊ का जो आपका एक एक्सपीरियंस है, तो पीजीआई क्या है, क्या होता है और आप कैसे पहुंचे, क्योंकि पीजीआई लखनऊ के रजिस्ट्रार के तौर पर आप मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव भी ला रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: जी जी, वाइल्ड बीइंग इन सर्विस मुझे डेपुटेशन पे पीजीआई भेजा गया। मतलब पीजीआई में डेपुटेशन की ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलती हैं, जिनमें इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को का चयन होता है। तो डेपुटेशन के लिए 3 साल के लिए मुझे पीजीआई गया था मैं। तो वहाँ पे एज अ रजिस्ट्रार माई रोल वॉज प्राइमरली टू द मैनेजमेंट ऑफ अकेडमिक एक्टिविटीज, जिसमें कि जो हमारे DMMCH MDMS के जो पाठ्यक्रम हैं, प्लस जो हमारे यहाँ 2 कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका प्रबंधन, और प्लस डे टू डे एकेडमिक मैनेजमेंट पूरे इंस्टीट्यूट का, वो एक रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है।
0: तो ये बहुत ही एक अहम भी और बहुत ही मतलब टफ होता है, क्योंकि अब बिल्कुल ही एकेडमिक्स में आकर के

0: चीजों को संभालना.
1: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. कमिंग फ्रॉम अ इन्फेंट्री बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच वॉज हार्ड कोर ऑपरेशनल बैकग्राउंड से एक अकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वॉज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर. मैं तो उस प्रकार का व्यक्ति था कि मुझे हेमेटोलॉजी और हेपेटोलॉजी के बीच में ढंग से फर्क नहीं पता था. मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी मेडिसिन साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज के बारे में.
0: तो पहले आपको खुद सीखनी पड़ी वो
1: जी. बट हाँ, चार साल हो गए वहां पे. इन चार सालों में द एक्सपीरियंस हैज बीन ट्रेमेंडस. बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली और बहुत चीजों को कंट्रीब्यूट भी किया हम लोगों ने. सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स को हमने बढ़ा के उनकी संख्या काफी बढ़ी वहां पे. तो पहले 28 थे, अब करीब 41 हैं.
0: अच्छा.
1: हाँ, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में क्लिनिकल सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूटों में नंबर 3 पे आता है.
0: ओके.
1: एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई के बाद में.
0: ओके.
1: और यूपी के करीब 26-28 करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पे एक अवसर मिलता है.
0: अच्छा.
1: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा. ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी काफी
0: जी,
1: करी
0: जी.
1: और नए एकेडमिक कोर्सेज को, नर्सिंग कॉलेज को रीइंस्टेट करने में, उसकी जो ग्लोरी बनती है उसको वहां पे लाने में, तो उसमें काफी योगदान किया गया
0: जी. तो सर, अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी, उसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि करियर के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, तो पीजीआई उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है, रोल प्ले करता है, तो किस किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है?
1: देखिए, पीजीआई लखनऊ में है और एक चंडीगढ़ में भी है. जो लखनऊ वाला पीजीआई, दैट इज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. एंड इसमें यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज नहीं होते हैं, बट एमडी और एमएस कोर्सेज होते हैं और डीएम और एमसीएच कोर्सेज होते हैं, जो कि और प्लस पीएचडी भी हैं.
0: okay.
1: जो कि सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं. तो इनके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद में नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में अपियर करना पड़ता है. और जो लोग एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, जहां पे इनके अच्छे नंबर आते हैं, तो रैंक के माध्यम से उनको रिस्पेक्टिवली कॉलेज अलॉट किए जाते हैं. तो ये चूज कर सकते हैं. ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री. ऑटोनोमस है और सबसे अच्छी बात है यहाँ के डिपार्टमेंट्स पुराने हैं, यहाँ की लेगेसी बहुत रिमार्केबल है. और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है.
0: सर, जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे कितना फायदा हो रहा है अभी?
1: बहुत सारे बदलाव हैं. देखिए, आप प्राइमरी केयर होता है, फिर टर्शरी केयर, फिर ना सेकेंड प्राइमरी. अच्छा. होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी केयर होता है, उसके बाद क्वार्टनरी केयर भी होता है. तो अब संस्थान एक नए लेवल पर जा रहा है, कुछ स्तर पर जा रहा है, जहाँ पे टर्शरी केयर के बाद में अब हम क्वार्टनरी केयर की बातें करने जा रहे हैं. जहाँ
0: अगर हम एक लेमेन के हिसाब से समझें या आम भाषा के हिसाब से, तो उसको कैसे हम इसको समझेंगे कि ये कौन कौन से आप जो ये बता रहे हैं आप
1: संस्थान में? जैसे कि टर्शरी केयर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्पेशलाइज केयर होता है.
0: अच्छा.
1: कि जैसे कि आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए.
0: okay.
1: जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट सर्जरीज हो गई.
0: अच्छा.
1: ट्रीटमेंट
0: मतलब
1: हो गए.
0: yes.
1: जेनेटिक ट्रीटमेंट हो गए.
0: अच्छा.
1: तो इनका भी एक हायर लेवल होता है, इसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी केयर, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज को अमैलगमेट करके एक जगह पे.
0: अच्छा.
1: किसी भी पेशेंट के सारे रोगों का उपचार एक साथ करने की पद्धति निकाली जाती है. तो इन चीजों को अभी हम लोग लेके आ रहे हैं वहां पे. डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं. एंड वी विल टेक इट फर्दर इन अ बिग वे नाउ. सो पीजीआई इज गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर.
0: ओके.
1: हाँ. तो प्लस यहाँ पे ये है कि भाई जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे, उनको जो एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट को देखने में, डिफरेंट प्रॉब्लम को क्योर करने में ना, वो बहुत रिमार्केबल होगा.
0: सर, लेकिन एक चीज यहाँ पर हम ये भी महसूस करते हैं आपसे बातचीत करते हुए कि जो चैलेंजेस आपको सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करने में आए होंगे, ये तो मुझे और भी टफ महसूस हो रहा है कि इसको अपग्रेड करना, इतने हाईली सेंसिटिव जो ट्रीटमेंट आपने बताए उनको और बेहतर.
1: देखिए सर, दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट थे. सैनिक स्कूल में आई वाज द लीडर and I had all the people who under me and I could use them at my own disposal. यहाँ पे एक टीम है जो कि अलग अलग competencies, capabilities और अलग अलग environment से आती है. तो यहाँ पे एक टीम भावना को लेकर चलना, उनको सबको समन्वय के साथ लेकर चलना आगे, वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है. बिकॉज बड़ा इंस्टीट्यूट है, ज्यादा लोग भी हैं. तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं. यहाँ पे हम लखनऊ में बैठे हैं, वहाँ पे आप आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ थे जंगल में एक.
0: अच्छा.
1: तरीके से जहाँ पे बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी वहाँ पे, जहाँ फोन तक नहीं मिलता था उस टाइम पे. तो इन सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, प्रारूप हैं. बट द फैक्ट इज कि यस, बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग.
0: जी. तो लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एग्जॉशन आपको महसूस हो, आपको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे भी ब्रेक चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा?
1: देखिए सर, ब्रेक सबको लेना भी चाहिए, टफ टाइम्स आते हैं. बट टफ टाइम्स में वही कहावत नहीं कि भाई टफ टाइम्स डोंट लास्ट ना, बट टफ पीपल डू. तो भाई टफ पीपल डू लास्ट, तो वही वाली एक सच्चाई है कि जो इंसान मजबूत है, जो इंसान सहनशील है, जिसके अंदर में अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करने का दम है, तो वो लगा रहेगा, रास्ता निकाल लेगा अपने आप.
0: तो बिल्कुल, वो जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए, तो आप कभी भी थमते या रुकते नहीं है.

0: आप एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ते
1: फिर
0: हैं
1: आगे बढ़ते हैं
0: सर।
1: बिल्कुल।
0: इसी में पीजीआई के बारे में बात करें कि आपने पीजीआई के नर्सिंग कॉलेज को रीस्ट्रक्चर, इसका पुनर्गठन भी किया, तो वो कैसे किया गया, क्योंकि ये भी एक अलग, एक पूरा एक अपने आप में काम था, कार्य था।
1: जी, देखिए नर्सिंग कॉलेज एक नर्सिंग एक बैकबोन है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज की।
0: ओके
1: अच्छे नर्सेज ही अच्छे केयर को दे पाएंगे।
0: ठीक
1: डॉक्टर्स ने इलाज करना है, सर्जरी
0: बिल्कुल
1: करनी है, बट उसके
0: जी
1: बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या किसी भी मरीज की देखभाल है, केयर है, वो तो नर्स के जिम्मे आती है। तो अच्छा नर्सिंग का करिकुलम बनाना, अच्छे नर्सेज को ट्रेन करना, तो हम लोगों ने लखनऊ में इस कॉलेज को पूरा रिस्ट्रक्चर किया। कॉलेज चल रहा था पहले से, पर उसके
0: जी
1: अंदर में बहुत ही जो ब्रॉड लेवल के बदलाव हम लोग लेके आए, हमने कोर्स को, करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया, टीचर्स को लेके आए अच्छे, जो हमारा ट्रेनिंग को हमने और प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया,
0: जी
1: और उनके मेट्रिक्स को हमने किया। तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहाँ पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहाँ पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92, एंड
0: ओके
1: पीजीआई वॉज नॉमिनेटेड एज अ मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की या जहाँ जहाँ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं, इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए और बताइए कैसे आप

0: प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया
1: जी।
0: और उनके मेट्रिक्स को हमने किया। तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहां पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहां पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92 एंड पीजीआई वाज नॉमिनेटेड एज अ मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की या जहां जहां प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए और बताइए कैसे आप कैसे अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाया जाता है। तो ये अपने आप में
1: बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट
0: जी जी,
1: और जाहिर है बहुत टफ भी रहा होगा।
0: हाँ,
1: इसमें इसमें फिर किस तरीके का आपको,
0: इसमें सबका योगदान है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के फैकल्टी का, बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे। बट हाँ, सबको लेके चलना हो, ये बोलना कि नहीं साहब हमको इस स्टैंडर्ड को लेके ऊपर बढ़ाना है और जिस चीज के लिए भी ये जाना जाता है वो स्टैंडर्ड को हमको अचीव करना है। तो दैट इज हाउ वी कुड डू इट एंड इट केम टू अ लेवल।
1: बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहाँ भी है कि एक तो होता है कि आप एक बुनियादी तौर से मतलब बिल्कुल रूट से एक नई चीज खड़ी कर रहे हैं और एक है कि रीस्ट्रक्चर उसको करना, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ रहा होगा।
0: रीस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला जानना ये जरूरी होता है कि किन चीजों से आप लैक कर रहे हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि भैया ये चीज हमको पुल डाउन कर रही है, देन उनको स्ट्रीमलाइन करना और उनके अलाइड चीजों को साथ में इकट्ठा करना वो एक अलग टास्क होता है। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जो लोग कॉम्पिटेंट हैं
1: जी,
0: जो इस काम को कर सकते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करें, कैसे आप उनको एनर्जाइज करें, कैसे आप उनको कुछ ऐसे पर्क्स दें जो उनको थोड़ा अच्छा महसूस कराएं, और कैसे उनको एक सिस्टम में लेके साथ चलने के लिए प्रेरित करते रहें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
1: ये जितनी भी चीजें रही हैं यहाँ पर, वो जो आपका जो आर्मी का बैकग्राउंड था, वो जो ट्रेनिंग थी, वो सब जो सीख कर आप आए, तो वही यहाँ पर ज्यादा असरदार साबित हुई, उसी ने ही सबसे बड़ा इसमें आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की, अभी सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाए, ऑर्गेनाइज मैनर में कर पाए।
0: बिल्कुल, मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन, इसमें तो कोई दोराई नहीं है। कैसे आप हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलें, कैसे आप उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं। देखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान की कॉम्पिटेंसी में, हर इंसान की कैपेबिलिटी में फर्क होता है, पर इन कैपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसी को कैसे हार्नेस करा जाए, कैसे उसको सिस्टम में ज्यादा यूज किया जाए, कैसे उनको लेके चला जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड डेफिनेटली मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन फॉर द एंटायर एफर्ट एक्चुअली।
1: यानी कि वो जैसे हम अक्सर हम बात करते हैं जब भी हमारे पास आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स आते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आर्मी जो है वो हम उसका एक पार्ट जब बन जाते हैं तो वो एक अलग जिंदगी है, वो एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है,
0: जीवन शैली है
1: वो एक लाइफ
0: life,
1: और बहुत ही स्पेशल है,
0: समझता हूँ।
1: तो वो जैसे अब कहा जाता है कि एक थोड़ा बहुत वक्त जो है हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि थोड़ा बहुत समय वो उस ट्रेनिंग को दें ताकि वो उस डिसिप्लिन को भी समझें और सीखें और उनके मन में जो है वो देशभक्ति की भावना को लेकर के एक जज्बा पैदा हो
0: जी।
1: तो इस चीज में किस तरीके का हम कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी, अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं।
0: देखिए साहब, भारत बहुत बड़ा देश है और हमारी फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग इनफ, सो कंपलसरी जो कंसेप्शन होता है कि भाई सबको सैन्य में सेवा करनी करनी है, वो शायद यहाँ संभव ना हो पाए, बट हाँ ये जरूर है कि एनसीसी हो गया, स्काउट्स हो गया, इन सब की ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे पास एक युवा पीढ़ी मौजूद है जो कि फौज ज्वाइन करने के लिए तैयार है। आज भी देखिए भर्तियों में कितना भीड़ लगती है, आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज में देयर सो मेनी एप्लीकेंट्स, 10-12 लाख लोगों में से कुछ चुने हुए 400 लोग, 350-300 लोग अकेडमी पहुंच पाते हैं। तो देयर लॉट ऑफ एनर्जी इन द एनवायरमेंट, देयर लॉट ऑफ लाइक एंथुसियाज्म इन द यंगस्टर्स, जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई आर्मी में वो अपनी सर्विस दे पाएं, नेवी में जा पाएं, एयरफोर्स में जा पाएं। तो डेमोग्राफिकली इंडिया इज इनरिच्ड, वी हैव अ लॉट ऑफ यंग पीपल। हाँ, ये जरूर है कि गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करें, जो जिससे कि एटलीस्ट एक सैनिक होने पे जो प्राइड है ना वो बरकरार रहे। तो वो एक बहुत बहुत वो
1: सर, एक चीज यहाँ भी बताएगा कि जैसे जो शुरुआत है कि जब आप चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, जहाँ आपने बताया कि एनसीसी से शुरुआत हो सकती है और भी कई सारे ऐसे, तो कब से कर सकते हैं, क्या उसके लिए मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, एज फैक्टर है, एजुकेशन है, वो भी बताइएगा।
0: I also got a chance to stay in NCC battalion also. अच्छा। तो NCC में क्या होता है, दो विंग होते हैं, जूनियर डिवीजन होता है, सीनियर डिवीजन होता है। तो जूनियर डिवीजन में तो ए सर्टिफिकेट मिलता है, बट हाँ सीनियर डिवीजन की शुरुआत होती है क्लास ऑलमोस्ट 9-10 से।
1: अच्छा।
0: तो 9-10 से वो बच्चा जा सकता है सीनियर डिवीजन में और वो अपना NCC का 12th आते जाते अपना बी सर्टिफिकेट पास कर लेता है और 12th के बाद में वो ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सी सर्टिफिकेट कर सकता है। बट सी सर्टिफिकेट करने का एडवांटेज ये है कि उससे उस पर्टिकुलर कैडेट को एग्जाम में अपीयर करने से छूट मिल जाती है।
1: अच्छा।
0: तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में एक एनसीसी का एक कोर्स चलता है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल कोर्स, जिसमें इसके बाद में यू गेट अ कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द एकेडमी। तो एग्जाम आपको एसएससी एग्जाम पास करने की वजह से

0: आपको एग्जाम में अपेयर करने की छूट मिल जाती है. यू हैव टू अपेयर स्ट्रेट फॉर द SSB. SSB आपने पास कर लिया तो
1: अच्छा
0: आप यू कैन गो एंड ज्वाइन द अकेडमी विद रेगुलर कोर्स. तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है. तो हम जो मुझे लगता है कि NCC को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस में कंपलसरी करना चाहिए और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर में और ध्यान देना चाहिए. बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को ना एक लार्जर नेशनल एथॉस में इंक्लूड कर सकते हैं.
1: कम से कम उनके अंदर वो चीज, वो
0: राष्ट्रीय भावना और वो राष्ट्रीय स्पिरिट को वी कैन अपहोल्ड दैट स्पिरिट.
1: अपहोल्ड, बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज उनमें बरकरार रहनी चाहिए और उसके अंदर वो जोश जज्बा और देश देश से जुड़ने का भी एक ना उसके पास एक माध्यम होगा कि हाँ भाई क्यों वो अपने देश से मोहब्बत करता है और वो उस पर जानिशार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है. सर हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे और हम PGI के अंदर जैसे आपसे हमने बात करी, इतनी लंबी बात करी हमने, और उस पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसमें टेक्निकली की भी अब एडवांसमेंट हो रहा है, AI का भी इसमें शामिल किया जा रहा है जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है. तो जाहिर है AI हर जगह पर है, तो क्या उसमें उसकी भी कहीं पर जो है शामिल किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है उसको?
0: जी जी बिल्कुल.
1: तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे संदेश टू सोल्जर्स में और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं ताकि हम यहाँ पर आपके लिए प्ले कर सकें.
0: आप बॉर्डर का गाना चलाइए, संदेश से आते हैं.
1: तो आज के हमारे गेस्ट हैं संदेश टू सोल्जर्स के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM. आप सुन रहे हैं 1.6 देश के नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेनबो संदेश सोल्जर्स शायद के साथ, और ये हमारे आज गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी की फिल्म का ट्रैक. आप भी एंजॉय करें और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे आज गेस्ट से. 9868107070 नंबर है हमारा.

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, और हम बात कर रहे हैं वरुण से। हमने बात करी 3 नए सैनिक स्कूल जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए, उसके अलावा उनके आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में बात की, और हमने बात करी PGI लखनऊ के बारे में। सर, हम आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि PGI लखनऊ की आपने बात करी, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो अब AI का तो यूज हर जगह है, हर चीज में है
1: जी,
0: तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है और जो ट्रेनिंग है उसमें भी अब AI का बहुत यूज हो रहा है, तो PGI किस तरीके से AI के बारे में सोच रहा है या यूज कर रहा है?
1: देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप AI से अपने आप को अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: AI हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे आप मोबाइल यूज करें, चाहे आप किसी चीज को सर्च करें, कुछ भी करें
0: जी,
1: AI हैज बिकम अ प्रिंसिपल वे टू लिव योर लाइफ नाउ।
0: तो गलत है कि मतलब किस तरह से आप इसको देखते
1: जी
0: हैं?
1: नहीं, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। देखिए साहब, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज जब नहीं आती है तो इनेबलर होती है, कुछ चीज को इनेबल भी करती है, उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं
0: जी।
1: उसको दिक्कत नहीं आती जो उसके लिए तैयारी पहले से कर लेता है। अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहां पे भी AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है डायग्नोस्टिक में।
0: अच्छा,
1: बहुत बड़ा रोल होने वाला है चीजों को समझने में। अब जैसे आप, छोटी सी बात है,

0: मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि क्लिनिकल साइंसेज में, डायग्नोस्टिक में, एआई विल बी हैविंग अ मेजर रोल नाउ. कि आपने एमआरआई करा, एमआरआई को पढ़ने के लिए आपको क्लिनिशियन चाहिए, वो हमेशा चाहिए होगा. दे विल ऑलवेज बी अ मैन बिहाइंड अ टेक्नोलॉजी, दैट यू कैन नॉट नेगेट दैट, उसको आप नहीं दूर कर सकते. बट हाँ, 10 चीज़ों को कंपेयर करके, 10 एआई के जो एआई का जो डेटा बेस है उससे, उस इमेज को कंपेयर करके जो एक इन्फ्रेंस निकल सकता है
1: जी,
0: और उस डायग्नोसिस के बाद में जो बेटर इलाज निकल सकता है, इन सब चीज़ों में एआई का बहुत बड़ा रोल होने वाला है. तो पीजीआई में बहुत बड़े स्तर पे अभी एआई को हम लेके आएंगे अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर में, सर्जिकल टूल्स के अंदर में, और टेक्नोलॉजी को हम ऐसे एम्बेड करें, कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें, उस पर काफ़ी विचार विमर्श चल रहा है, काफ़ी काम चल रहा है. तो आई एम श्योर आने वाले टाइम पे एआई से आप दूर तो नहीं जा पाएंगे.
1: एआई विल, सर लोग बताते हैं कि सर अब जो एक मेडिकल एग्जामिनर है वो किसी रिपोर्ट को देखता है, अगर उसको वो एनालाइज करता है तो वो हो सकता है कि वो किसी हद तक परफेक्टली शायद उसको डायग्नोस ना कर पाए उस डिजीज़ को. लेकिन ये बताया गया है कि एआई बहुत ही कम समय में एकदम परफेक्ट उसको एनालाइज कर लेती है, तो ये किसी हद तक,
0: मैंने भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जहां पे ये देखा गया है कि एआई का जो असेसमेंट रहा है वो क्लिनिशियन के असेसमेंट के बिल्कुल पास रहा है, कभी कभी उससे बेटर भी हुआ है, और स्कोप ऑफ एरर काफी कम कर दिया है उसने. मैं ये बात तो हमेशा बोलूंगा कि देयर विल ऑलवेज बी अ इंडिविजुअल और मैन और अ क्लिनिशियन बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी. तो ह्यूमन इंटरफेस को तो आप निगेट नहीं कर सकते, बट ये जरूर है कि एआई के माध्यम से, एआई के आने से जो हमारा परफेक्शन है हम उसके और पास पहुंच सकते हैं. अपनी हम ट्रीटमेंट की पद्धतियों को, अपने इलाज की शैलियों को हम और रिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन रियली रीच आउट टू द रियल कॉज ऑफ द इलनेस इन अ शार्पर एंड अ फास्टर वे. दिस कैन डेफिनेटली बी अ बिग रेवोल्यूशन नाउ.
1: सर एआई पर हमने बात की, और एआई तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि जिंदगी का हिस्सा बन ही चुका है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में. हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर भी, जो फौज पर उसका क्या असर होता है, जो नए बच्चे जाते हैं उनका भी बात करेंगे. लेकिन पहले मैं मैसेज ले लूं जो मैसेज आए हुए हैं. ये मैसेज आया है, जय हिंद सर, सेवा मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद. मैं शबनम बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, और इनका सवाल भी है सर
0: जी,
1: इनका सवाल ये है कि किस आधार पर सैनिक स्कूल में दाखिला मिलता है, कृपया बताएं. हालांकि इस पर बात हमने की
0: जी जी जी,
1: तो एक बार और प्लीज अगर बता.
0: देखिए, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है
1: जी.
0: क्लास 5th पास बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं
1: जी.
0: 10 से 12 साल का एज लिमिट होता है. क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन किया जाता है. एग्जाम एनटीए कराता है, और सैनिक स्कूल एडमिशंस की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा. तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है, और किस तरीके से क्या क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्जाम में क्या चीज़ चेक करी जाती है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस, वो सारा कोर्स करिकुलम, एग्जामिनेशन का पैटर्न, सब कुछ मिल जाएगा. और इवन कोर्स में एग्जामिनेशन को के अपेयर करने के लिए जो गाइड्स होती हैं, किताबें होती हैं, कोचिंग्स होती हैं, वो भी उपलब्ध हैं. तो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे है आपके. यू जस्ट हैव टू गूगल सैनिक स्कूल एडमिशन, देन यू कैन गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन.
1: ओके
0: जी,
1: आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और ऑनलाइन अप्लाई भी आप वहीं से कर सकते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
1: सर एक मैसेज और है, गुड आफ्टरनून वाजपेयी सर एंड आरजे सर, जय हिंद टू यू एंड ऑल इंडियन आर्मी. आई सल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर द डेडिकेशन एंड फियरलेसली सर्विस टू आवर नेशन. I give respect from bottom of my heart myself, Shankar Lord from Gomo district, Dhanbad, Jharkhand. Vande Mataram, Bharat Mata ki Jai.
0: Bharat Mata ki Jai.
1: तो ये इनका मैसेज था, और भी मैसेजेस अभी हम देखते हैं. लेकिन हम सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या फौज पर भी सोशल मीडिया का असर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के कई कंट्रीज हैं ऐसी जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने उसको बैन किया हुआ है
0: जी.
1: तो
0: जी.
1: वो जाहिर है उसके अपने जो भी उसके हार्म्स हैं, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं, इसकी वजह से. तो हमारे यहाँ भी जो बच्चे हैं उसी दौर से गुजर रहे हैं, जो बच्चे, यही बच्चे जो होते हैं फिर ये जो इसी दौर से गुजर रहे होते हैं हम उसी जिंदगी में, लाइफस्टाइल में, तो वो सोशल मीडिया के भी काफी तक हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस हो जाता है. तो एनडीए में जब ये जाते हैं तो सोशल मीडिया का उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, क्या होता है, कैसे आप महसूस करते हैं, वो आपने अपने तौर पर जो चीज़ें देखी होंगी वो, तो उसको कैसे हैंडल भी करते हैं ये भी बताइएगा.
0: जी जी, देखिए साहब, सोशल मीडिया इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड नाउ, दुधारी तलवार है जिसके पॉजिटिव भी हैं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. बट क्या ये कम्युनिकेशन रियल है, क्या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, तो इसका उत्तर ना है. ये तो एक ऑनलाइन मोड का कम्युनिकेशन है जिसमें आप वर्चुअली बात कर रहे हैं एक दूसरे से
1: जी.
0: तो इस वर्चुअल एलिनेशन से होता क्या है कि हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी पर फर्क पड़ने लग जाता है.
1: ओके.
0: तो यही क्लास 12th पास लोग जो जवान जा रहे हैं फौज में, ये भी फोन पे ही, इनका फोन का एडिक्शन है.

0: ये लड़के जब एनडीए जा रहे हैं तो ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, सेम सोशल स्टाटा से, सेम सोशल सेगमेंट से उनको लिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप में उसके दुष्प्रभाव तो दिख रहे हैं।
1: जी
0: आजकल सबको पता है कि भाई एक टेबल पे जो लोग बैठे हैं 5 लोग, तो आपस में बातें नहीं कर रहे हैं खाना खाने के टाइम
1: अपने अपने
0: पे,
1: फोन पर वो
0: या वो गपशप नहीं लगा रहे हैं, पर वो अपने फोन पर लगे हुए हैं और रील्स को उंगली उनकी हिल
1: एग्जैक्टली
0: रही है
1: मैं
0: बस
1: वही पूछने
0: खाली।
1: वाला था सर, ये
0: जी
1: रील्स का जो एक तरह से वो हो गया है कि हैबिचुअल हो चुके हैं या एडिक्ट हो
0: जी
1: चुके हैं लोग,
0: जी जी
1: इसका कोई मतलब या असर भी, और दूसरी बात कि कैसे बचें इससे?
0: देखिए साहब, ये बहुत ज़रूरी है। तो जिन कंट्रीज ने देखिए अभी हाल में इसको इस पे बैन लगाया
1: बैन
0: है,
1: किए हैं जी
0: दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज। सो इन सब कंट्रीज में भी इस चीज़ का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि कैसे इससे एक पूरी एक जवान पीढ़ी, एक पूरी पौध खराब हो रही है।
1: बिल्कुल
0: जैसे हम बात करते थे ड्रग्स का दुष्प्रभाव क्या है और ना बुरी हैबिट्स का दुष्प्रभाव क्या है, तो
1: जी
0: ये भी अपने आप में इसका बुरी मतलब डबल एज सॉर्ड तो है ही। आप
1: एग्जैक्टली
0: जैसे मैंने
1: आपने जो
0: पहले
1: बताया
0: बोला,
1: जी
0: इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है अभी कि कैसे इंसान आपस का कम्युनिकेशन खराब हो गया है और कैसे इंसान इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दुनिया भर के स्नैपचैट और इन सब चीज़ों पे, कि उसको उनसे वही उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है जिससे बाहर
1: जी
0: निकल के
1: जी
0: आने
1: जी
0: में
1: जी
0: बड़ी
1: जी
0: तकलीफ हो रही
1: सर
0: है।
1: एक चीज़ ये भी बताई जाती है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से डिजाइन है नेचुरली कि वो कंफर्ट को ही
0: जी
1: एक्सेप्ट करता है, प्रेफर करता है,
0: जी जी
1: वो एफर्ट्स पर जाना ही नहीं चाहता।
0: जी
1: तो इससे बचने का कोई तरीका, जो क्योंकि जो फौज बच्चे जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं 12th पास करके जा रहे हैं, तो क्या उसका असर फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बन सकता है, हार्म कर सकता है?
0: देखिए साहब, ये बहुत सबसे ज़रूरी बात है कि पेरेंट्स को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए
1: जी
0: कि वो अपने बच्चों को उतना ही एक्सपोज करें उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में मोबाइल और लैपटॉप पे जितना आवश्यक है। हर चीज़ मोबाइल और हर चीज़ लैपटॉप के माध्यम से अवेयर कराना, उससे पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, किताबें भी ज़रूरी हैं।
1: किताबें जो
0: देखिए
1: हैं वो
0: साहब, आप
1: ऑनलाइन अगर आ गई तो उसका क्या कर
0: बिल्कुल
1: सकते हैं?
0: एयरपोर्ट जाइए, आप देखिए साहब, एक टाइम था कि बहुत लोग किताबें देखते मिलते थे, किताबें
1: जी
0: पढ़ते मिलते थे,
1: बिल्कुल
0: मैगजीन्स बिकना बंद हो गई, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन काफ़ी कम हो गया है। तो देयर द टाइम व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, पढ़ना के और भी तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं ऑनलाइन, आप नहीं जा
1: जी
0: सकते दूर उनसे, बट येस यू हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वेज ऑफ लर्निंग, ये बहुत आवश्यक है।
1: ये बहुत जरूरी है।
0: जी
1: और सर इसका जैसे हमने कहा कि जो फौज में नए बच्चे जाते हैं उन पर
0: जी
1: जो असर पड़ रहा है, वो आपने क्या महसूस
0: हाँ
1: किया है,
0: जी
1: और उसका फिर मतलब निवारण क्या है, मतलब उसे कैसे बचा जाए ताकि
0: देखिए
1: उसका नेगेटिव असर फिर लॉन्ग टर्म में उस तरफ ना जाए?
0: देखिए फौज में, आर्मी में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए कि
1: अच्छा
0: किस तरीके से दूर रहना है। देखिए फौज में बहुत सारी चीज़ें स्पियोनाज भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब ना कोई इंसान आपको गलत तरीके से आपको टैप कर सकता है ताकि आपसे
1: जी
0: इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए, तो इन सब से भी, ये भी सोशल मीडिया के तरीके से ही होता है। तो फौज ने तो इनफैक्ट फेसबुक पे और बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया है कि भाई,
1: अच्छा
0: कि एज सर्विंग सोल्जर यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोज ऐप्स ना।
1: अच्छा मतलब सोशल मीडिया अकाउंट
0: यस,
1: भी
0: अकाउंट
1: नहीं
0: भी
1: बना सकते हैं?
0: डिलीट कर दिए गए हैं, बैन लगा दिए गए
1: अच्छा
0: हैं, क्योंकि उन सब से भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होती है। आप भूल जाते हैं कभी कभी, आप कैरी ऑन हो जाते हैं भाई कि इन चीज़ों को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट देन समबडी इज मॉनिटरिंग यू ऑन द सोशल मीडिया इन चीज़ों से।
1: ओके
0: प्लस आपको पता ही कितने स्कैम्स चलते हैं, कितने फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी ईविल, आई अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज़ करना है ये बताना, समझाना, सिखाना बहुत ज़रूरी है।
1: तो सर ये तो बहुत टफ काम है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि वो एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो बच्चा हो या बड़ा हो तो उसे वो छूट नहीं पा रहा है,
0: छूट नहीं पा रहा है
1: तो
0: लोग।
1: क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे उनको मतलब बचाया जाए
0: देखिए कुछ चीज़ें
1: जब डेवलप
0: तो
1: कंट्रीज ऐसा कर रही हैं तब?
0: जी, जैसे डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं, कुछ चीज़ें पॉलिसी फ्रेमवर्क में आनी चाहिए हम लोग के, कि भैया एक बच्चे की ग्रोथ के जो बेसिक ईयर्स होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है। प्रॉब्ली दे वील कम टू अ टाइम, एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत में भी ये चीज़ें बैन करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो इस चीज़ों का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव हो गया है कि इनसे एक जनरेशन के अंदर में इम्पैक्ट
1: जी
0: आ गया है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों।
1: जी तो ये जो बातचीत आपसे रही है सर, ये बहुत ही इंसाइटफुल रही। आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, आपने जितने बड़े बड़े अचीवमेंट बताए अपने सैनिक स्कूल और पीजीआई को लेकर के, वो बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही मोटिवेटिंग है, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जिससे सुन रहे होंगे
0: जी
1: उनको भी गाइडेंस मिला होगा, खासतौर पर सैनिक स्कूल के एडमिशन को लेकर के जो लोगों ने हमसे बात की।
0: थैंक यू सो
1: तो
0: मच।
1: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद
0: थैंक यू
1: आपके
0: सो
1: आने के
0: मच।
1: लिए।
0: जी
1: कर्नल वरुण वाजपेयी हमारे साथ रहे, कर्नल वरुण वाजपेयी VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाने जा रहे हैं तीन देवियां फिल्म का गाना, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। गीत मजरू का है और संगीतकार हैं SG बर्मन।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएं, उससे पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुन लीजिए। कल यानी 26 जून 2026 को सायं 6:30 से 7:15 तक विशेष फोन इन पंचायत घर कार्यक्रम हेलो पंचायत घर सजीव प्रसारित किया जाएगा। सभी ग्रामीण भाइयों बहनों से अनुरोध है कि वे अपने गांव संबंधी समस्याओं अथवा यदि कोई संदेश धन्यवाद उपस्थित अतिथि जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो वे कल यानी 26 जून को शाम 6:30 से 7:15 के बीच फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हम आपको बता देते हैं, प्रयागराज का एसटीडी कोड है 0532 और फ़ोन नंबर 2970462 और दूसरा नंबर 2423649। व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर अपने संदेश भी आप हमें भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 0532 प्रयागराज का एसटीडी कोड है और फ़ोन नंबर है 2970462, दूसरा नंबर 2423649 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। सूचना समाप्त हुई और आइए अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म कुदरत से। गायिका हैं लता मंगेशकर, गीत के बोल लिखे हैं मजरू ने और इसकी धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

यादों की बारात। आइए सुनते हैं इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को। गीतकार हैं मजरू और संगीतकार आर डी बर्मन।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों बाद युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार. स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो युवानी में. मैं हूँ आपकी होस्ट दिव्या, और आज हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे. इसमें कौन सी नई बात है, हम हर बार कुछ अच्छी बातें करते हैं. लेकिन उसके साथ आज जो म्यूजिकल ट्रैक्स हम आपके लिए लेकर आए हैं ना, उस पे आपके पैर थिरकने से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे. लेकिन उससे पहले हम चलिए कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ अपने प्रोग्राम को सेट कर देते हैं. तो दोस्तों, कहा जाता है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती. आप भी जब सपने देखते होंगे तो भला उसको कोई लिमिट सेट करके देखते हैं क्या? नहीं ना. तो सपनों की जब कोई लिमिट ही नहीं होती और मेहनत की कोई पहचान नहीं होती, सपने ना तो शहर देखते हैं, ना गांव देखते हैं, ना वो ये देखते हैं कि वो किसी बड़े संसाधन के मोहताज हैं या नहीं हैं, या किसी विशेष परिस्थिति को देखते हैं. सपने तो बस एक बात जानते हैं, खुलकर उड़ना, आसमान में उड़ना, और बिना किसी लिमिट के उसको हर उम्मीद से, हर सोच से बाहर लेके जाना. और जब किसी युवा के मन में कुछ कर गुजरने की जो जुनून होता है, जो इच्छा होती है, वो जब आगे निकल जाती है तो वो किसी भी परिस्थिति को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बना ही लेता है. हमारा भारत गांवों का देश है. गांव केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारी जड़ों का आधार है. सुबह की ताज़ी हवा, खेतों की हरियाली, लोगों के बीच अपनापन और जीवन की सादगी, ये सब हमारे गांवों की पहचान है. और इन गांवों की सबसे बड़ी ताकत है वहां के युवा. आज का ग्रामीण युवा बदलते भारत का चेहरा है. वो केवल अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि अपने परिवार, अपने समाज और अपने गांव के विकास में भी योगदान दे रहा है. हम बहुत सारी कहानी सुनते हैं, बहुत सारे किस्से सुनते हैं, बहुत सारे जो फेमस पर्सनालिटीज़ के जीवन परिचय को जब पढ़ते हैं तो हम ये ज़रूर पढ़ते हैं कि वो किसी ना किसी गांव से बिलोंग करते थे और आगे चलकर वो एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति बने. तो अगर हम ये कह दें कि कोई व्यक्ति शहर में रह रहा है, कोई व्यक्ति जो है जो शहर में रहकर बहुत बड़ा नाम कमा रहा है, तो उसकी भी जड़ कहीं ना कहीं गांव से ही जुड़ी है. वो भी कभी ना कभी अपने गांव गया होगा, वहां की मिट्टी में खेला होगा, वहां के सौंधेपन को महसूस किया होगा. तो कोई भी गांव से

अलग नहीं है दोस्तों। अगर हम भारत के विकास की बात करें तो ग्रामीण युवाओं की चर्चा किए बिना बिना ये बात अधूरी रहती है, क्योंकि देश की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यह युवा आने वाले भारत की दिशा और दशा तय करता है। लेकिन हर सफर की तरह इस सफर में भी अवसर और चुनौतियाँ दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं। एक ओर संभावनाओं के नए द्वार खुले हुए हैं, तो दूसरी ओर कुछ बाधाएं आज भी हैं जो ग्रामीण युवाओं को प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आज के कार्यक्रम में हम इन्हीं अवसरों और इन्हीं चुनौतियों पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर अवसरों की बात करें तो आज के समय में पहले की तुलना कई ज़्यादा संभावनाएं हैं। हम देख रहे हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ का एक महासागर खुल चुका है। पहले जहां रोज़गार और शिक्षा अवसर मुख्यतः शहर तक ही सीमित रहते थे, लोगों को पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए शहर जाना पड़ता था, लेकिन आज जब तकनीक इतना विकसित हो चुका है, जो डिजिटल लाइफ है हमारी वो इतनी एक्सपेंड कर चुकी है कि तकनीक और डिजिटल क्रांति ने इस दूरी को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। आज का गांव में रहने वाला युवा ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, नए कौशल सीख रहा है और दुनिया भर की जानकारी अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपने आप को दे रहा है। इंटरनेट ने ज्ञान और अवसर दोनों के दरवाजे खोल दिए हैं, वो भी सबके लिए। इसी के साथ कौशल विकास का क्षेत्र भी मायने रखता है। ग्रामीण युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आया है उनके जीवन में। आज विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को कंप्यूटर, डिजिटल तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल रिपेयरिंग, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन, कृषि आधारित उद्योग और अन्य व्यावसायिक क्षेत्र में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे वे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और उसके साथ साथ स्वयं को रोजगार देना भी शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आज का युवा नौकरी ढूंढने के साथ साथ उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। कुछ वर्षों पहले तक स्टार्टअप शब्द केवल बड़े शहरों तक जुड़ा हुआ था, लेकिन आज गांव में भी युवा अपने नवाचार और रचनात्मक सोच के बल पर सफल स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं। कई युवा जैविक खेती, डेयरी उद्योग, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, फूड प्रोसेसिंग, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प और ग्रामीण पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी नए नए प्रयोग कर रहे हैं। कुछ युवा अपने स्थानीय उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं। इससे न केवल उनकी आय बढ़ रही है, बल्कि उनका जो क्षेत्र है वो भी पहचान पा रहा है, वो भी ग्लोबली लोगों के बीच में फेमस हो रहा है। तो सरकार भी स्टार्टअप युवाओं को देने के लिए कई सारे क्षेत्र उनके सामने रख रही है, उनके लिए दरवाजे खोल रही है और नई नई योजनाएं चला रही है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, कौशल विकास मिशन और विभिन्न स्वरोजगार योजनाएं युवाओं को आर्थिक सहायता तो दे ही रही हैं, साथ ही साथ प्रशिक्षण मार्गदर्शन भी प्रदान करा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य जो है केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। और आज जो कई युवा हैं दोस्तों, वो सरकारी सहायता और बैंक ऋण की मदद से अपने छोटे छोटे व्यवसाय तो शुरू कर ही रहे हैं, बल्कि उसे एक बहुत बड़ा स्टार्टअप भी बना रहे हैं और दूसरों को भी रोज़गार दे रहे हैं। मतलब खुद को तो रोज़गार दे ही रहे हैं, खुद के लिए तो आय का एक माध्यम स्थापित ही कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने साथ के, अपने इलाके के, अपने जो और भी युवा दोस्त हैं उनके, और भी जो लोग हैं जो अवसर की तलाश में हैं, उनको भी रोज़गार दे रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ शहर के ही लोग आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि गांव का जो युवा है वो भी कहीं ना कहीं अपने पैर स्टार्टअप लाइन में और विकास की लाइन में अपने आप को स्थापित कर चुका है। तो दोस्तों, अगर हम अब इस पे और आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि अपने प्रोग्राम का थोड़ा मूड सेटल करने के लिए एक म्यूज़िकल ब्रेक ले लेना होता है।

तो दोस्तों, इस ब्यूटीफुल से सॉन्ग ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं अपनी चर्चा पर, और हम बात कर रहे थे ग्रामीण युवा

0: युवाओं के सामने अवसर और चुनौतियां रोजगार के क्षेत्र में। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि कृषि के क्षेत्र में भी नए अवसर के केंद्र स्टार्टअप बन रहे हैं युवाओं के लिए। आधुनिक तकनीक, ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, जैविक खेती और कृषि स्टार्टअप ने भी खेती में नए स्वरूप अपने प्रस्तुत कर दिए हैं। आज युवा पारंपरिक खेती के साथ साथ वैज्ञानिक तरीके को अपनाकर भी बेहतर उत्पादन और अधिक आय अर्जित कर रहा है। लेकिन अगर जहाँ अवसर हैं वहाँ पे तो चुनौतियाँ भी होती हैं ना, तो अब ज़रा बात कर लेते हैं कुछ चुनौतियों पर जो उनके सामने हैं। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, या ये कहें कि बहुत ही सीमित है। आधुनिक संसाधनों और तकनीक सुविधाएं आज भी वहाँ पे पूरी तरीके से नहीं पहुँच पाई, और ये युवाओं की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है। इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता और असमानता भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। दोस्तों, कई प्रतिभाशाली युवा केवल जानकारी के अभाव में उपलब्ध अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि कौन सी योजनाएं उनके लिए उपयोगी हो सकती हैं या किस प्रकार से वे अपने कौशल को विकसित कर सकते हैं। और एक और बड़ी चुनौती है कि रोजगार के लिए उन्हें पलायन करना होता है। बेहतर अवसरों की तलाश में अनेक युवा अपने गांव से शहरों की ओर आते हैं। यहाँ ये स्थिति देखने को मिलती है कि वो उस पे पहले तो स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को वहाँ पे रोजगार ढूंढते हैं छोटे मोटे, तब जाके कहीं वो अपने अंदर की प्रतिभा को निखारने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे पाते हैं। ये स्थिति केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि ग्रामीण विकास को भी प्रभावित करती है। यदि स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यमिता के अधिक अवसर उपलब्ध हों तो इस समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा आर्थिक संसाधनों की कमी, मार्गदर्शन में अभाव, सामाजिक दबाव और कई बड़े आत्मविश्वास के इसमें हमको ये भी देखने को मिलता है कि कई बार उन्हें आत्मविश्वास की कमी भी से जूझना पड़ता है और युवा उसके कारण आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने कभी कठिन परिस्थितियों का सामना किया हो वो और बखूबी अपने अंदर की प्रतिभा को दूसरों के सामने दिखा पाते हैं और अपने सपनों को जीवित रख पाते हैं। उन्हें ही असाधारण सफलताएं प्राप्त होती हैं। दोस्तों, आज आवश्यकता है कि ग्रामीण युवा शिक्षा के साथ साथ कौशल, तकनीक और नवाचार को भी अपनाएं। केवल डिग्री ही नहीं बल्कि व्यावहारिक ज्ञान और नए कौशल भी उन्हें सफलता के मार्ग में ले जा सकते हैं। बदलते समय के साथ साथ स्वयं को भी अपडेट रखना बहुत आवश्यक है। याद रखिए, किसी भी युवा की पहचान उसके गांव या शहर से नहीं होती बल्कि उसकी सोच, उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प से होती है। गांव की पगडंडियों से निकलकर भी दुनिया की ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। जरूरत है तो केवल आत्मविश्वास की, सही दिशा की और निरंतर प्रयास की। आज का ग्रामीण युवा केवल अपने सपनों को साकार नहीं कर रहा है बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उसके पास भी वो क्षमता है जो गांव को सशक्त बना सकती है, समाज को नई दिशा दे सकती है और देश के विकास में नए आयाम को रच सकती है, उसको वहां तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, चुनौतियां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि इरादे मजबूत हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अवसर हमारे आसपास ही मौजूद हैं, बस उन्हें पहचानने और उनका सही उपयोग करने की आवश्यकता है।
1: जनक जनक जन

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी. और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर. हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर. हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर. नया भारत, नया आकाशवाणी.
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी.
5: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने. बीज तो कब के बो दिए.
4: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ.
5: हैं मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है.
4: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी. आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो. अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें. रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ.
6: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया.
7: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा.
6: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए.
7: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए.
6: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए.
7: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी.
8: तो दोस्तों, अब अपने कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए एक कहानी. कहानी का शीर्षक है मन का बोझ और कहानीकार हैं शांभवी मिश्रा. आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की आवाज़ में.
9: मन का बोझ. बेचैन करवट बदलती मैं उठकर बैठ गई. तकिए के नीचे से टटोल कर, क्लच ढूंढ कर, बिखरे बालों को समेट कर उस पर लगाया. थके मन के बोझिल आँखों से अधेरे कमरे में हवा के झोंके से सरसराते पर्दे के पीछे से खुले आसमान पे चमकता आधा चाँद देखने लगी, जो मेरी तरह ही कुछ उदास सा लग रहा था. धीरे से पलंग से उतरकर कमरे के बाहर आ गई.

निःशब्द चलकर छत का दरवाजा खोलकर अलसाई निढाल सी आराम कुर्सी पर बैठ गई। बार बार उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आज की घटना ने पुरानी गांठें खोल दी थीं। मन के इरादे पर चलचित्र की भांति वो दिन तैरने लगा। ऐसा लगा कि मानो कल ही की बात हो। कॉलेज का मेरा अंतिम वर्ष कब आ गया पता ही नहीं चला। मेरी क्लास में मेरे अलावा 30 लड़कियां और थीं। मैं थोड़ी संकोची, अंतर्मुखी, अपने में ही खोई रहने वाली लड़की थी। बातें हाय हेलो सबसे करती, पर खुलकर बातें करूं ऐसे दोस्त मेरे ना थे। सुधा ने दूसरी कॉलेज से बीए करके हमारे कॉलेज में एमए के लिए एडमिशन लिया था। वो मेरे स्वभाव से बिल्कुल अलग, खुश मिजाज, सुंदर, चुलबुली, बिंदास और आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की थी। वो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। कुछ दिनों में ही हम अच्छे दोस्त बन गए। एमए फाइनल ईयर परीक्षा की तिथि भी घोषित हो चुकी थी। मैं अपनी दोस्त सुधा के साथ ही जी जान से पढ़ाई में जुट गई। बहुत दिनों से सुधा कॉलेज नहीं आ रही थी। फोन भी बंद था। मैं उसे लेकर बहुत परेशान हो गई। मैं उसकी परिचित एक दो लड़कियों से उसके बारे में पूछने लगी, पर कुछ पता ना चला। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन ही मन सोच रही थी, आने दो उस सुधा की बच्ची को, फिर खबर लूंगी। पूरे 10 दिन बाद वो खुशी से चहकती हुई आई और बताया कि उसकी शादी तय हो गई है। लड़का किसी कंपनी में अच्छे पद पर था, अच्छी तनख्वाह पाता था। उसने कहा, चल आज कॉफी पीते हैं। मैंने कहा, नहीं यार, माँ इंतजार कर रही होगी। मैं उनसे बोल कर आई हूँ, आज पक्का उनकी आंखों का टेस्ट करवाने ले जाऊंगी। पापा को टाइम नहीं मिल पा रहा है ना। पर वो नहीं मानी, बोली, आज कॉलेज का लास्ट डे है यार, फिर एग्जाम शुरू हो जाएंगे और उसके फौरन बाद मेरी शादी है, तू चल ना यार। उसके इतना कहने पर मेरा मन भी पिघल गया। सोचा आधे घंटे में क्या ही बिगड़ जाएगा। उसकी स्कूटी पर बैठकर हम कॉलेज से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक नामी कॉफी शॉप पर पहुंचे। छत के एक कोने के टेबल पर सैंडविच और दो कॉफी का ऑर्डर देकर हम भी बातें करने में मसरूफ हो गए। हल्की ठंडी शाम होने लगी थी। अक्टूबर का तीसरा सप्ताह था। वो हल्की ठंडी हवा मन को शांत कर रही थी। एक घंटे बाद हम वहां से निकले। सुधा ने कहा, वो मुझे बस स्टॉप तक छोड़ देगी। अंधेरा होने लगा था, कभी इतना लेट नहीं हुआ था। मुझे डर लगने लगा, कहीं मेरी आखिरी बस न छूट जाए। सुधा ये बात जानती थी। 6 बजे के बाद फिर ऑटो रिजर्व करके घर जाना पड़ेगा, मुझे घर पहुंचने में लेट हो जाएगा। शायद इसी वजह से सुधा स्कूटी तेज चला रही थी। अब अंधेरा घिरने लगा था। स्ट्रीट लाइट्स की कतारें सड़क पे झिलमिलाने लगी थीं। बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए शॉर्टकट रास्ते पर वो मुड़ी तो एक झुरझुरी सी फैल गई बदन में। इस गली से निकलते ही 4 कदम पर बस स्टॉप था, वरना मेन रोड का लंबा चक्कर लगाकर स्टॉप तक पहुंचने में लगभग 15 मिनट लग जाते थे। बहुत सकरी सी गली थी। गली सुनसान पड़ी रहती थी। इस तरफ से हम जल्दी पहुंच जाएंगे, सुधा ने कहा। मैं चुप थी। गली में थोड़ी बहुत रोशनी थी। मेन रोड से ठीक पहले गली में अचानक स्कूटी किसी पत्थर से टकरा गई और उछल पड़ी। स्कूटी डगमगाती हुई किसी चीज से टकराई। इससे पहले कुछ समझ आता स्कूटी पलट गई। 5 मिनट बाद सुधा की धीमी आवाज आई, तुम ठीक हो? मेरे पैर और कोहनी में चोट आई थी। मेरा बैग दूर जा गिरा था। मैं लड़खड़ाते हुए उसके पास गई। वो भी तब तक उठ गई थी, उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। सुधा हिम्मत बटोर कर मेरे पास आई और स्कूटी की हालत देखी, जो खराब हो गई थी। उसने कहा, तू जा, तेरी बस आ गई है, मैं भी चली जाऊंगी, तू चिंता मत कर। मैं जैसे ही 2 कदम चली, अचानक चौंक कर चीख पड़ी। तब तक सुधा भी वहां आ गई। उसने देखा एक आदमी औंधे मुंह गिरा हुआ था। मैं निःशब्द रह गई, मुझे चक्कर आ गया। सुधा भी घबरा गई, हम दोनों बहुत डर गए थे, हाथ पैर कांपने लगे थे। सुधा ने कहा, तू जा, देख बस आ रही है। मेरे मुंह से एक शब्द ना निकला। उस आदमी को वैसी ही हालत में छोड़कर बस में बैठकर मैं कैसे घर पहुंची, कुछ भी याद नहीं। माँ मेरी हालत देखकर परेशान हो गई, लगातार पूछे जा

0: रही थी, क्या हुआ है क्या हुआ है। मैं इतना ही कह पाई कि रास्ते में गिर पड़ी थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। सारी रात छटपटाहट में बीती, बार बार वो आदमी आँखों के सामने घूम जाता, खुद को कोसती रही क्यों छोड़ आई ऐसे हालत में उसे। सुधा से भी कोई संपर्क ना हो पाया। सुबह सुबह पापा की आवाज़ सुनी। जाने क्या हो गया है लोगों को, कितने असंवेदनशील लोग हैं। माँ ने पूछा क्या हुआ तो पापा पढ़कर सुनाने लगे। अलकनंदा अपार्टमेंट के पीछे वाली गली में एक गरीब मजदूर घायल अवस्था में पाया गया। आधी रात को 10 बजे अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड ने जब देखा तो पुलिस को सूचना दी। उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है, पर देर से अस्पताल आने की वजह से पैर में लगी चोट से ज्यादा खून बह गया था। टिटनेस का खतरा था, इसलिए एक पैर काट दी गई। उसके परिवार में एक अंधी माँ के अलावा बीबी और 2 छोटी बेटियां हैं। मुझे समझ न आया कि उसके जिंदा होने पर खुश हूँ या उसके अपाहिज होने का शोक मनाऊं। मैं अपने मन के इस बोझ को किसी से ना बांट पाई। इसके बाद हमारी परीक्षा हो गई और सुधा की शादी के समय उससे मिली, पर इस विषय पे कोई बात ना हो पाई। उसकी शादी के बाद हमारा संपर्क भी टूट गया। वक्त के तह में यह घटना कैसे दब गई कुछ पता ना चला, पर आज शाम की एक घटना ने मुझे फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया। कुछ साल बाद मैं एक रिश्तेदारी में जा रही थी, वहाँ शादी थी। सड़क के किनारे एक जगह पर भीड़ देखकर ऑटो वाला रुक गया। उत्सुकतावश मैं भी उतर गई। भीड़ के बीच में देखा तो एक रिक्शा चालक खून से लथपथ बेसुध पड़ा था। लोग बातें करने में व्यस्त थे, कुछ वीडियो बना रहे थे, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। मैंने अपने ऑटो वाले को कहा कि चलो इसे उठाओ, तो वो बहाना बनाने लगा। फालतू पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना मैडम, मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैंने पक्का इरादा कर लिया था, कैसे भी करके इसे अस्पताल पहुंचाना है। मैंने वहां खड़े लोगों से कहा, सोचो कल आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो जाए और कोई मदद ना करे तो कैसा लगेगा। एक दूसरा रिक्शा वाला साथ चलने के लिए तैयार हो गया। एक दो लोगों की मदद से उसे ऑटो में लिटाकर अस्पताल में भर्ती कराया और घर लौट आई। पुलिस और अस्पताल की प्रक्रिया पूरी की, मन बहुत व्याकुल है, जाने वो बच पाएगा या नहीं। डॉक्टर कह रहे थे हालत बहुत गंभीर है, सिर पर चोट ज्यादा आई है, खून काफी बह गया है, खून चढ़ाना पड़ेगा। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था तो मेरा खून काम आ गया। अचानक फोन की घंटी की आवाज से मैं चौंक गई। घबराए मन से फोन कान पे लगाया तो उधर से आवाज आई, मैडम पेशेंट को होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर है। पलकें गीली हो गईं, मन से जैसे कोई बोझ कम होकर कतरों में बहने लगा। पूरब के आसमान की लाली मन का उजाला बनकर फैल गई। हवा के शीतल झोंके गालों को छूकर दुलराने लगी। सच में रात के बाद भोर बहुत सुहानी होती है। धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी। कहानी का शीर्षक था मन का बोझ और कहानीकार थी शांभवी मिश्रा। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, कभी कभी इतिहास में ऐसे व्यक्तित्व जन्म लेते हैं जो बिना किसी पद के, शक्ति या प्रसिद्धि की चाह के लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला देते हैं। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्ची महानता दूसरों के लिए जीने में है। आज के प्रेरणापुंज में हम बात करेंगे ऐसे ही महान व्यक्तित्व, समाज सुधारक, चिंतक और गांधीवादी नेता विनोबा भावे के बारे में। दोस्तों, एक छोटा सा किस्सा पहले मैं आपको सुनाती हूँ। कहा जाता है कि विनोबा भावे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज थे, लेकिन उन्हें केवल किताबों का ज्ञान नहीं चाहिए था, वे जीवन का सच्चा अर्थ समझना चाहते थे। एक बार उन्होंने अपनी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को जला दिया। जब लोगों ने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा किया क्यों, तो उन्होंने कहा कि उनका जीवन केवल नौकरी पाने के लिए नहीं है, बल्कि समाज की सेवा के लिए समर्पित है। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन उनके असाधारण व्यक्तित्व की पहचान बन गया। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गागोड़े गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने आध्यात्मिकता, अनुशासन और अध्ययन को अपनाया और इस पे गहरी रुचि रखी। वे संस्कृत, मराठी, हिंदी और कई अन्य विषयों के अच्छे ज्ञाता थे। युवावस्था में ही वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए और बाद में साबरमती आश्रम से जुड़ गए। दोस्तों, महात्मा गांधी के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे ये। गांधी जी ने उन्हें सत्य, अहिंसा और सेवा के मूल्यों को सिखाया और उन्हें उस पर चलने के लिए प्रेरित किया। यही कारण था कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी वे उसमें सक्रिय रहे और अपनी अहम भूमिका निभाई और कई बार जेल भी गए। लेकिन विनोबा भावे को सबसे अधिक पहचान उन्हें भूदान आंदोलन के जरिए मिली। यह आंदोलन केवल जमीन बांटने का अभियान नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने का प्रयास था। सन 1901

1951 में तेलंगाना के एक छोटे से गांव में कुछ भूमिहीन किसानों ने विनोबा भावे से ज़मीन दिलाने की गुहार लगाई। तब एक ज़मींदार ने स्वेच्छा से अपनी कुछ भूमि दान दे दी। इसी घटना से भूदान आंदोलन की नींव रखी गई। इसके बाद विनोबा भावे गांव-गांव घूमते और लोगों से आग्रह करते कि वह अपनी भूमि का कुछ हिस्सा भूमिहीन लोगों को दान कर दें। सोचिए दोस्तों, बिना किसी दबाव के, बिना किसी कानून और बिना किसी शक्ति के, केवल विश्वास और नैतिक प्रेरणा को बल बनाकर लाखों एकड़ भूमि लोगों को दान कर दी गई। यह दुनिया के सबसे अनोखे सामाजिक आंदोलनों में से एक माना जाता है। और विनोबा भावे ने शिक्षा, ग्राम स्वराज और महिला सशक्तिकरण जैसे नैतिक मूल्यों पर भी विशेष बल दिया। उनका विश्वास था कि भारत का विकास गांवों के विकास से ही संभव है। यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है, विशेषकर तब जब हम ग्रामीण युवाओं के अवसरों और चुनौतियों की बात कर रहे हैं। उनकी सेवा और इस योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। और उनका ये जीवन हमें यही सिखाता है कि बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक सच्चे पहल की, सेवा की भावना की और लोगों के प्रति प्रेम की जो भाव है उसकी ज़रूरत होती है, और वही बड़ा परिवर्तन लाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, हमारे प्रोग्राम में हम एक प्रश्न लेकर आते हैं हर बार अपने कार्यक्रम के अंत में और आप उससे जुड़ते हैं, उसका जवाब देते हैं। तो जो हमारा पिछला प्रश्न था वो ये था कि हर्षवर्धन के समय में उत्तर प्रदेश के किस नगर को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, और वो नगर था कन्नौज। कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। और इसका सही उत्तर देने वाले लोगों के नाम है आरव शर्मा, आदित्य वर्मा, अनन्या गुप्ता, प्रिया द्विवेदी, रोहन सिंह, विवेक मिश्रा, काव्या श्रीवास्तव और नेहा पांडे। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां भारत की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना यानी अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थापित किया गया था। फिर से प्रश्न मैं रिपीट कर दे रही हूँ, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां भारत की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना यानी अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थापित किया गया था। आप इसका उत्तर हमें दे सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि है yuvvaniald@gmail.com, और व्हाट्सएप कर सकते हैं 8004926250 पर। और इसी के साथ आप हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं हमारे वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ज़रिए और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के ज़रिए। तो वैसे तो हमारा प्रोग्राम समाप्ति की ओर है, लेकिन चलते चलते हम आपको सुनवाते हैं ये एक खूबसूरत सा गीत। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम आपको इतने सारे गीत सुनवाए अपने प्रोग्राम में, इतनी अच्छी अच्छी बातें की, और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप चाहे गांव से हों, चाहे शहर से हों, चाहे किसी भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो अपने आप को, आप बस अपने मन में दृढ़ संकल्प रखिए और अपने लक्ष्य के प्रति कुछ कर गुजरने की चाह रखिए, आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। इसी के साथ मैं दिव्या लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युव वाणी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश

0: भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है, 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है, विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे दें इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले हमारे कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। पहले सुनिए इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

आज शाम 6:30 से आप सुनेंगे भारत और बांग्लादेश के मध्य ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर इंग्लैंड में खेले जाने वाले आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। मैच का आंखों देखा हाल हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और अभी एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कुछ हमारे खास खास कार्यक्रमों पर। कल सवेरे 6:20 पर सुनिएगा हमारा साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम गांधी चर्चा। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे कमाल अहमद से की गई बातचीत, मोटे अनाज की खेती। सुबह 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव की वार्ता, सेप्टिसीमिया कारण लक्षण और उपचार। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर सुनिएगा पंडित भजन सोपोरी का संतूर वादन। दिन में 12:15 पर उस्ताद साबरी खां का सारंगी वादन। और शास्त्रीय संगीत के ही कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कमला बोस का गायन। नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम आप सुनते हैं सुबह 8:45 पर। वॉइस ऑफ प्रयागराज सुनिएगा 10:05 पर। 10:30 पर आप सुन सकते हैं लोकगीत, गायक कलाकार होंगे अखिलेश कुमार यादव और साथी। हेलो गृहलक्ष्मी कार्यक्रम हम लेकर के आएंगे 1:15 पर। शाम 5 होगा कार्यक्रम नन्ही दुनिया। और युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 5:15 पर। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण भाई सुनेंगे हेलो पंचायत घर। इसमें जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी के साथ नीलकांत तिवारी और अरविंद कुमार की बातचीत होगी। संस्कृत कार्यक्रम में शाम 7:31 पर सुनिएगा डॉक्टर अरुणेय मिश्र की वार्ता, संस्कृत वांगे चिकित्सा विज्ञानम। अंग्रेजी कार्यक्रम में रात्रि 8:30 पर डॉक्टर राशि कुमार की एक टॉक प्रसारित की जाएगी। इसका विषय होगा जेन जेड ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा सुनिएगा रात 9:30 पर। और रात 10 होगा नाटक छोटी भाभी, लेखक नरेश मिश्र। रात्रि 11:10 से आप सुनेंगे लखनऊ स्थित इमामबाड़ा गुफरो मुआब में होने वाली मजलिसे शामे गरीबा पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। इसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। कल यानी 26 जून 2026 को शाम 6:30 से 7:15 तक विशेष फोन इन पंचायत घर कार्यक्रम हेलो पंचायत घर सजीव प्रसारित किया जाएगा। सभी ग्रामीण भाइयों बहनों से अनुरोध है कि वे अपने गांव संबंधी समस्याएं अथवा यदि कोई संदेश धन्यवाद उपस्थित अतिथि जिला पंचायत राज अधिकारी श्री रविशंकर द्विवेदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो वे कल यानी 26 तारीख को शाम 6:30 से 7:15 के बीच हमारे फ़ोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर बता दें आपको, प्रयागराज का एसटीडी कोड है 0532 और नंबर है हमारा 2970462। दूसरा नंबर है 2423649। व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर आप अपने संदेश भी हम तक भेज सकते हैं। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, प्रयागराज का एसटीडी कोड 0532, फोन नंबर 2970462 और दूसरा नंबर है 2423649। व्हाट्सएप नंबर 8004926250। सूचना समाप्त।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: तू शायर है, मैं तेरी शायरी।
2: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
1: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: गीत जो कह जाते हैं कहानी, कार्यक्रम बोलते नगमे की जबानी।
1: बार हुआ तुम इतने दिन की कहा, मैं ढूंढता ही रहा।
0: कहा?
1: कभी लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, कभी कैडल रोड, कभी पेडल।
2: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: पहली बार हुआ।
0: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। दिनांक 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में हमारा भोजन और पोषण विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी डाइटिशियन अपर्णा सक्सेना। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फ़ोन नंबर 0532-2970-462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रयागराज का एसटीडी कोड 0532 और हमारा नंबर है 2970462 और हमारा दूसरा नंबर है

2423649। आप अपने प्रश्न हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। दिन याद रखिएगा 30 जून 2026 को और समय दोपहर 1:15 से 2 बजे के बीच। सूचना समाप्त हुई। अब प्रस्तुत है देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः।

0: खेले जाने वाले आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: Bangladesh of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
2: First Ball 20.
3: 25 जून वो तारीख जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज है, क्योंकि आज ही 1983 में इंग्लैंड की भूमि पर भारत पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना था। 2026 में उसी इंग्लैंड की भूमि पर हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम टी20 विश्व कप जीतने का ख्वाब देख रही है। लेकिन पिछले दिनों इस राह में मिला एक स्पीड बंप, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार। पर कहते हैं, हीरो वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो होता है जो गिरकर फिर खड़ा हो उठता है। आज फिर वही मैनचेस्टर का मैदान है, सामने बांग्लादेश है और अपनी गलतियों से सीख बाउंस बैक करने की चुनौती है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 20, मेरा नाम है दर्पण और मेरे साथ है मुदिता।
4: शुक्रिया दर्पण, हेलो एंड वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल। दर्पण, आपने 1983 के वर्ल्ड कप का जिक्र किया, तो हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स में मौजूद है चेतन शर्मा, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, जो नाम हर भारतीय फैन के दिलो दिमाग पर आज भी है, क्योंकि 1987 के वर्ल्ड कप में वो पहले भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने हैट्रिक ली थी। चेतन, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
4: इसके अलावा हमारे साथ हैं विजय दहिया, जो फॉर्मर क्रिकेट खिलाड़ी होने के साथ ही अब एक बहुत सक्सेसफुल कोच की भूमिका में हैं। वेलकम विजय।
6: शुक्रिया।
4: और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शशांक शेखर। शशांक, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
7: थैंक यू सो मच।
3: तो एक्सपर्ट से पूछेंगे कि कैसी होने वाली है भारत के लिए आज चुनौती, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे सीधा मैनचेस्टर, जहां पर टॉस होने जा रहा है।
8: Are in the hunt for one of those top two spots. I've got Trudy Anderson, match referee, alongside the captains. I think Harmon, I think you've got the coin. Jolty, head. Your call. It's fallen your way. You've won. What are you going to do today?
9: We wanted to bat first because in this sort of game, we really wanted to put some score in the board.
8: I'm just watching your team warming up and they are up and about. There seems like a real energy about the group as well because of the two wins. Yeah. Do you just let the players sort of run with that, or do you want to try and keep them nice and calm?
9: I think this is a really important game for us, and I think it's a huge opportunity for all of us to being in the top side. So I think we just wanted to give our everything in this game, and we are so happy that we are in a moment where we are count.
8: You've played this team a lot. That hasn't always gone your way. How do you approach this with a game plan? Is it what's worked for you well so far in this tournament? Are you going to change things up a little bit?
9: I think our batters been in a bad patches, but I guess they will come back in this game, that we hope. But our bowlers been very consistent in the last three games, so we will definitely looking forward for that.
8: Okay, any changes to your side today?
9: No, we are going with the same 11.
8: Okay, all the best for this big clash.
9: Thank you so much.
8: Harmon, I'll get you to come in. Bowling first, I just saw you rolling the arm over. Is that what we're going to expect to see?
9: Not really, I was just warming up myself.
8: Okay. You're going to be bowling first, not here on this pitch. It's a run scoring, it's very, very flat. What's your thoughts on that?
9: Yeah, I think it's a good wicket to bat on, but if you keep yourself in the game and, you know, spend some time on the wicket, it's a really good wicket. But I think for bowling also, if you, you know, spin your fingers, there is something you can, you know, take from this pitch, and hopefully our bowling group will come up strong today.
8: A little bit in your favour is that you have played here. You've also played on this pitch against South Africa. What did you learn from that?
9: Yeah, I think that was a very good pitch to bat and ball. And I think, as I mentioned, you know, you just have to read the pitch and react accordingly.
8: Okay. Is it just about the win, or is a little bit of net run rate in there as well?
9: I think first to win, and then let's see how it goes.
8: Okay, let's see how it goes. Thanks a lot. All the best today.
9: Thank you.
8: Bangladesh have won the toss. They're going to be having a bat first.
3: तो टॉस बांग्लादेश ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश टी20 क्रिकेट में, वुमेन्स क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, 23 बार आमने सामने हुई है। केवल 3 बार बांग्लादेश को जीत मिली है और तीनों बार चेज करते हुए मिली है, लेकिन यहां पर फैसला पहले बल्लेबाजी करने का किया है। चेतन, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को?
5: देखिए, जैसे अभी तक खबर आ रही है मैनचेस्टर से कि विकेट थोड़ा सा लो एंड स्लो विकेट रहेगा, और जब आपको ये अनुमान रहता है कि लो एंड स्लो रहेगा, तो चेज करना विद स्पिनर्स आप

0: टीम के अंदर, तो यकीनन कहीं ना कहीं आप ये आपके मन में यह है कि अगर जितना बैटिंग के लिए अभी तक विकेट अच्छा है उसके बाद थोड़ा डस्टी की संभावना, हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया यही साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था और हार का सामना करना पड़ा था, तो वो चीज़ें आप कैलकुलेट करते हैं एज ए टीम। आप वो देखते हैं कि पिछला मैच भारतीय टीम ने कैसा प्रदर्शन किया, क्या उनकी रणनीति थी, उसके अकॉर्डिंग बांग्लादेश ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया कि अगर बाद में स्पिनर्स को कहीं मदद मिलेगी उसका पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट गेम में मैं हर समय कहता हूं विन द टॉस एंड डिसाइड टू बैट, रन ऑन बोर्ड हर समय अच्छा रहता है टीम के लिए।
1: जी चेतन बिल्कुल, लेकिन पिछला मैच अगर हम देखें तो विन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट भारत ने यही निर्णय लिया था। हम क्योंकि बॉलिंग भारत करने जा रहा है तो पावर प्ले बॉलिंग की अगर हम बात करें हमारी तो बहुत सारे इश्यूज हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिछले मैच को अगर हम खास करके देखें तो पावर प्ले में बहुत सधी हुई बॉलिंग की थी भारतीय बॉलर्स ने, केवल 25 रन और आखिरी ओवर तो चर्नी का मेडन विकेट, लेकिन उसके बाद भारत इस बढ़त को कैपिटलाइज नहीं कर पाया। विजय,

0: भारत करने जा रहा है, तो पावर प्ले बॉलिंग की अगर हम बात करें हमारी, तो बहुत सारे इश्यूज हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पिछले मैच को अगर हम खास करके देखें तो पावर प्ले में बहुत सधी हुई बॉलिंग की थी भारतीय बॉलर्स ने, केवल 25 रन और आखिरी ओवर तो चर्नी का मेडन विकेट। लेकिन उसके बाद भारत इस बढ़त को कैपिटलाइज नहीं कर पाया। विजय,
1: अगर आप देखें जिस तरीके से आप गेंदबाजी का जिक्र कर रहे हैं, एक जो चीज़ जो भारतीय टीम के साथ जानी चाहिए या कंडीशंस के बारे में आप बात करें, तो जब आप अपने मीडियम पेसर्स की तरफ देखते हैं तो शायद उस तरीके का ये वर्ल्ड कप अब तक नहीं रहा है जहाँ गेंदबाजी के बारे में आप बात करने की कोशिश करते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला जिसके बारे में हमने अभी जिक्र भी किया, साउथ अफ्रीका, उसमें अगर आप देखें तो आप बड़े मैचों के हिसाब से जितने रन आपको बोर्ड पर लगाने चाहिए थे वो थे वहाँ पर, वो गेंदबाजों के लिए था मैच जीत के वहाँ से मैच भारतीय टीम को जिताना। तो वो एक चीज़ है जो बहुत अहम रहेगा आपका इस टूर्नामेंट में आपको बनाए रखना या यहाँ से इम्पोर्टेंट मैचेस के अंदर जीत दिलाना।
2: आपने बात की कि अभी तक सीमर्स ने शायद उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया और इसके चलते कुछ बदलाव भी हमें टीम में देखने को मिल रहे हैं। रेणुका सिंह ठाकुर जो कि सबसे अनुभवी सीमर है उनको प्रथम एकादश में आज शामिल कर दिया गया है। साथ के साथ राधा यादव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। शशांक, लास्ट टाइम इंडिया वेंट टू बांग्लादेश दे डिड अ क्लीन स्वीप, राधा यादव वॉज द प्लेयर ऑफ द सीरीज, शी पिक्ड अप 10 विकेट्स, दोज हैप्पी मेमोरीज मस्ट हेल्प हर अगेंस्ट बांग्लादेश।
3: होपफुली सो, this is a match which India are supposed to win and I don't see any problems for India. I think it's going to be the spin department which will again do the needful for India. It's a very interesting stat that I would like to share. In the three matches that India have played, they have taken 24 wickets. 22 of them have been taken by the spinners.
2: Right.
3: Nandini Sharma has taken 2 wickets.
2: Right.
3: Kranti Gaur and Arundhati have not taken a single wicket. You know, so Manchester, this pitch, even Australia, for Australia, Sophie Molyneux, Wareham and all, their spinners took wickets against South Africa. So this is going to be a spinner's track. And as far as Radha is concerned, she's also a good left-arm spinner. Mm-hmm. She's a very good fielder and a competent batsman. Mm-hmm. But, it shouldn't be a problem for India today. The problem will be against Australia in the last game of the group stage.
2: विजय, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं?
1: हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप देखें किस तरीके से भारतीय टीम की थिंकिंग रही है, राधा की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी खिलाड़ी जो पिछले कुछ समय में हर एक लिहाज से, अगर आप उनकी फिटनेस देखें, मैं मानता हूँ वन ऑफ द बेस्ट फील्डर हैं इस समय वो वुमेन क्रिकेट में, अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट की बात करते हैं। उनका पहला मैच है और आपकी सोच कहीं ना कहीं ये चल रही थी कि जो हम स्पिनर्स खिला रहे हैं वो इनफ है, लेकिन यहाँ पर आकर आपको ये लग रहा है कि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी और हमें चाहिए। शायद
2: श्रियंका पाटिल की इंजरी उसमें एक बड़ा
1: नहीं, बहुत बड़ा
2: जी,
1: क्योंकि जिस समय पर ये इंजरी उनको हुई है, सिर्फ गेंदबाजी नहीं, जिस नंबर पे वो बैटिंग करती हैं वो नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो एक ऐसी यंगस्टर इस टीम के अंदर रही है पिछले कुछ समय में, अगर आप देखें WPL के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली पिछले सीजन में इंजरी की वजह से पूरा सीजन बाहर हो गई थी, यहाँ पर आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, फ्रीक इंजरीज ज़्यादा रही हैं उनको, तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो वो एक बड़ा लॉस ज़रूर है। लेकिन इतनी सक्षम है ये भारतीय टीम कि अगर आप किसी भी कंडीशन के बारे में बात करें, इस फॉर्मेट के बारे में बात करें, जो दो बचे हुए मैचों के बारे में बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए।
0: जी, सक्षम है भारतीय टीम जैसा विजय ने कहा, और दर्पण क्यों ना कुछ श्रोताओं को भी हम शामिल कर लें। तो अगर आपके पास हमारे एक्सपर्ट्स के लिए कुछ सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स हैं 0112341083 और 0112341085। चेतन, रेणुका सिंह ठाकुर को शामिल किया गया है आज प्लेइंग 11 में, सबसे अनुभवी बॉलर्स में है वो भारत की, एंड शी हैज़ अ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड हैज़ द एबिलिटी टू स्विंग द बॉल अर्ली एंड स्ट्राइक अगेंस्ट देयर टॉप ऑर्डर। क्या ये सबसे बड़ा कारण बना है उनको प्लेइंग 11 में शामिल करने का?
4: देखिए, जितना मैंने अभी तक पूरा देखा, एक महीना पहले भारतीय टीम वहाँ पहुँची
2: जी,
4: आपके मिडिल ऑर्डर में अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं है, आप रीशफल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और हमारा एक स्पिनर की अगर हम बात करें, जो अभी आप बात करें श्रियंका पाटिल, वो इंजर्ड हुई, वहाँ से एक झटका लगा और अभी तक आप अपने तेज़ गेंदबाजों के साथ सेटल नहीं हो पाए। देखिए, वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप जितना शफल करते रहेंगे, जितना टीम में बदलाव करते रहेंगे, तो एक चीज़ है जो कंसिस्टेंसी हम कहते हैं ना क्रिकेट के अंदर, एक

0: भरोसा वो प्लेयर्स को आप नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके सामने प्रॉब्लम्स होंगी। तो रेणुका को मौका मिला है, तो जितना रेणुका को हमने गेंदबाजी करते देखा, इनको तो आपको शुरू में मौके दे देने चाहिए थे। देखिए, इस कंडीशंस के अंदर आप वो तेज गेंदबाज को लेकर आते हैं जिसके पास एबिलिटी है स्विंग कराने की। देखिए, इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है, आप 120 पे गेंदबाजी कर रहे हैं ना, अगर आप में एबिलिटी है स्विंग कराने की, आप किसी को भी आउट कर देंगे, बड़े से बड़े प्लेयर को आउट कर देंगे। लेकिन आप गति आप जितनी मर्जी कर लीजिए, लेकिन स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी आपने कहा कि स्विंग बहुत अच्छा करती है, तो ऑब्वियसली आप इन कंडीशंस में उसी गेंदबाज को खिलाते हैं जिसके हाथ में अच्छा खासा स्विंग है।
1: लेकिन चेतन, इससे जुड़ा एक सवाल है। अभी हम देख रहे हैं जो वेदर फोरकास्ट है, हीट वेव की वार्निंग दी गई है, 31 डिग्री अभी टेम्परेचर है, और हम देख रहे हैं मैदान में धूप खिली हुई है। ऐसे में आपको लगता है कि वो उस तरह का स्विंग प्राप्त होगा?
0: देखिए, उस कंडीशन में इंग्लैंड 45 डिग्री तो है नहीं, इंडिया जैसी हालत है नहीं, और दोनों ऐसी कंट्रीज है जिनको गर्मी की आदत है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल गर्मी है। बेशक इंग्लैंड के अकॉर्डिंग 30 डिग्री बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप में क्षमता है स्विंग कराने की, आप स्विंग करा सकते हैं। ये नहीं कि वहां के अकॉर्डिंग गर्मी है, अगर आप तो इंडिया में सारी उम्र क्रिकेट खेले, अगर आप यहाँ स्विंग कराते हैं तो वहां तो आपको ऑटोमेटिकली स्विंग कराना चाहिए।
2: फॉर मी द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ शी इज बोलिंग रियली वेल इन द नेट्स, हाउ कम शी डिडंट प्ले अर्लियर? सो देयर इज समथिंग, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द स्विंग, इट्स अबाउट समथिंग दैट काइंड ऑफ रिदम, मे बी शी इज नॉट फाइंडिंग हर रिदम देयर। अदरवाइज व्हेन यू वेंट फॉर अ टूर लाइक दिस एंड यू आर मोस्ट experienced bowler not finding her place in the playing 11 in all the games, there's something going on where the team management feel that she's not in that kind of rhythm, and come this game they feel if they qualify, get into the semi-finals, they'll be needing her, and that's the reason why they're introducing her in this game.
1: But tell you who is always in rhythm, it's our listeners. Mudita ek shrota hamare sath jud chuke hain, aaiye unse baat karte hain.
3: Ji, apne naam bataye aur aap kahan se hamare sath jud rahe hain? Good evening.
2: नमस्कार विपिन जी।
1: नमस्कार। चलिए शशांक, हम चाहेंगे कि आप ये सवाल लें और विपिन जी को इसका जवाब दें।
4: जी, तो जैसा आपने पूछा है विपिन जी, 160-170 का टोटल अगर होता है तो हम चेस कर पाएंगे कि नहीं, तो जहाँ तक मुझे लगता है इतना स्कोर शायद बांग्लादेश नहीं बना पाएगी। ये स्लो विकेट है जहाँ स्पिनर्स बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और हमारी स्पिन अटैक अच्छी है। पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारे स्पिनर्स ने ही संभाला है, तो मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश 160-170 का टारगेट दे पाएगी। अगर 160-170 बना लेती है बांग्लादेश तो उतना आसान नहीं होगा, लेकिन देखते हैं क्या स्कोर बनता है। और जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है, अगर हम आज का मैच जीत भी लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस फॉर्मेट में वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, इस फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया को हराना हमारे लिए मुश्किल है, असंभव तो कुछ भी नहीं है। हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, और साउथ अफ्रीका आज रात में 11 बजे से हॉलैंड के साथ खेल रही है, नेदरलैंड्स के साथ, और लास्ट मैच उनका बांग्लादेश के साथ है। तो ये वो दे आर एक्सपेक्टेड टू बीट बांग्लादेश एंड हॉलैंड। उस केस में अगर हम ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएंगे और हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो स्थिति अभी गंभीर है हमारी टीम की, देखते हैं आगे क्या
1: जी,
4: होता
1: सभी
4: है।
1: समीकरण आपके सामने पेश कर दिए गए हैं विपिन जी, मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल सैटिस्फाई हो गए होंगे आप हमारे इस आंसर से। लेकिन सैटिस्फैक्शन की बात करते हैं विजय, बॉलिंग की हमने बात की, आप मौजूद हैं हमारे पैनल पर, विकेट कीपिंग पर बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ऋचा घोष पहले मुकाबले में थोड़े से फंबल्स हमें देखने को मिले, उसके बाद लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, उनकी ग्लव वर्क को आप कैसे आंकते हैं?
2: ऋचा घोष अगर मैं उनकी तरफ देखता हूं तो बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर हैं, और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं अगर आप उनकी तरफ नज़र डालेंगे तो आपको लगता है कि ये एक बनती हुई टीम है। हम अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें और कह रहे हैं कि वो प्रबल दावेदार है खिताब की, तो वो इस वजह से है कि उसका जो न्यूक्लियस है उसके कुछ 7-8 खिलाड़ी हैं वो पिछले कुछ समय से इस फॉर्मेट में लगातार खेलते हुए आए हैं। हम 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीते हैं, हमारे यहाँ पर जैसे ही जीतते हैं वो हर जगह की एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपको कंडीशंस देखनी बहुत ज़रूरी हैं, आप किनके खिलाफ खेल रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये टीम इस फॉर्मेट के लिए अभी भी आपकी एक सेटल्ड

0: आपको मैचेस बल्लेबाज जिताते हैं, आपको टूर्नामेंट गेंदबाज जिताते हैं। आपने बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं किया, पिछले कुछ मैचेस में आपने हमेशा गेंदबाजी में बदलाव किया है। तो आपकी जब बोलिंग यूनिटी सेट नहीं है, और आप ये नहीं कह सकते कि आप खिताब के दावेदार हैं। हम कह जरूर रहे हैं जब भी आप टूर्नामेंट में जाते हैं, लेकिन एक बनती हुई टीम है और धीरे धीरे समय लगता है बनते इस टीम को बनने के लिए। क्वालिफिकेशन का भी जो पिछला सवाल वहाँ पर पूछा था, बांग्लादेश भी तो 4 पॉइंट पे है।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं तो बांग्लादेश, और सबसे अच्छी चीज मुझे उनकी आज क्या लगी है कि उनकी सोच, क्योंकि आप वही हैं जो आप सोचते हैं, रन ऑन द बोर्ड वो टीम सोचती है कि हम यहां से जीत सकते हैं। उनकी नेगेटिव सोच नहीं थी या डिफेंसिव सोच नहीं थी कि हम इंडिया पहले खेल ले, अगर उनका ठीक दिन नहीं रहा तो हम उनको पकड़ सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी काबिलियत पे खेलते हैं, हम रन बोर्ड पे लगाएंगे और वहां से फिर गेम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ भारतीय टीम के लिए नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बांग्लादेश के लिए भी है।
2: जी बिल्कुल, और जैसा चेतन कह रहे हैं कि बांग्लादेश बिल्कुल डिफेंसिव मूड में नहीं है। Today's match, Chetan, will not be a piece of cake for India. कई अच्छे स्पिनर्स भी हैं बांग्लादेश के पास जो आपको पुश करेंगे, खास करके ऑन अ विकेट लाइक ओल्ड ट्रैफर्ड।
3: नहीं बिल्कुल, देखिए पीस ऑफ केक तो क्रिकेट में कुछ नहीं होता, आप जिस मर्जी टीम के, दिस इज इंटरनेशनल, दिस इज वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप के अंदर कोई भी आपकी सामने जो टीम है वो कमजोर आप नहीं हांक सकते उनको। देखिए जो विजय अभी बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसको और जोड़ने की कोशिश करूंगा। जब आपके बॉलिंग कोच ये स्टेटमेंट देते हैं ना, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, तो उसका ये मतलब होता है कि आपका जो बॉलिंग लाइनअप है वो सेटल नहीं है। ये वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पे आके अगर आप ये कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, क्योंकि सबको मालूम है कंडीशंस कैसी है इंग्लैंड में, आप अपना लाइन वन लाइन टू हर समय तैयार रखते हैं गेंदबाजी, और गेंदबाजी एक आपकी ऐसी है जो आपको टूर्नामेंट्स जिताएंगी, जो आपको ट्रॉफीज जिताएंगी, और आप बेशक 200 रन 220 रन कर देंगे, अगर आपकी गेंदबाजी में दम नहीं है तो ऑपोजिशन 220 रन चेस कर लेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप किसी को भी हरा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को आराम से हरा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अपने सेटअप को थोड़ा ठीक कीजिए। मिडल ऑर्डर में इतने शफल की जरूरत नहीं है, जमीमा पीछे जाएगी, 3 नंबर खेलती आई है, आप जमीमा को पीछे नहीं कर सकते। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं विच द इंडियन मैनेजमेंट हैज टू कीप इन ऑर्डर। हमारे लिए बहुत ईजी है यहाँ से बैठकर बोलना, आई डोंट नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, बट वी आर जस्ट होपिंग कि इंडियन टीम डू वेल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई वर्ड नहीं होता क्रिकेट के अंदर, बांग्लादेश के लिए बात करें या इंडिया की बात करें,
1: एक बात बहुत आपने ठीक कही कि कम नहीं आ सकते बांग्लादेश को, क्योंकि भारतीय वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो करने वाले जानते हैं कि 2018 में ये गलती हम कर चुके हैं, एशिया कप के फाइनल में इसी बांग्लादेश की टीम से हमें हार मिली थी। खैर एक बड़ा रोचक विजुअल चेतन अभी हमने देखा, सू रेडफर्न जो कि रिजर्व अंपायर है वो एक बक्सा लेके आई और रेणुका ठाकुर को बोला उन्होंने कि आप गेंद का चयन कीजिए, किस गेंद से आप गेंदबाजी करना चाहेंगी। थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या देखता है गेंदबाज जब गेंद का चयन करता है, क्या क्या वो चीजें होती है, क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिस पर वो ध्यान देता है।
2: इस सवाल पर हम आते हैं दर्पण, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अपना परिचय दीजिए और अपना सवाल पूछे। वेलकम बैक वेंकट रेड्डी जी, अपना सवाल पूछे।
0: सर इंडियन टीम बॉलिंग के बिना चल सकती है, लेकिन ये शो आपकी कॉल के बिना नहीं चल सकता है।
1: जी चेतन, मैं चाहूंगा आप दोनों सवाल को कंबाइन करके हमें एक जवाब दें, क्योंकि फास्ट बॉलिंग एक्सपर्ट आप ही हैं।
3: आज रेणुका यादव, रेणुका ठाकुर को मौका मिला है, तो वहां से अनुमान लगाया जा सकता है जो अभी हमारे कॉलर कह रहे थे कि गेंदबाजी में कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा लग रहा है कि वीक है। और जहाँ तक आपने गेंद का बात की ना, देखिए आप तेज गेंदबाजों के हाथ में वो बॉक्स दे देते हैं, वो अपने आइडिया से कि उनके हाथ का साइज क्या, मतलब मैं अपने ज़माने में तो ऐसा करता था कि मेरे हाथ में ग्रिप मेरा ठीक आ रहा है। कभी कभी होती है कि बॉल थोड़ी बड़ी होती है, आपके हाथ में वो सेटल नहीं होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ रेणुका ठाकुर नहीं करेंगी, वो दूसरे जो तेज गेंदबाज होंगे उनको भी दिखाई जाएगी। बट उसकी सीम पोजीशन की आप बात करें, कितना कंफर्टेबल आप उसको फील कर रहे हैं, हर समय आपने आपने देखा उल्टा ऐसे करके ऊपर फेंकते हैं कि वो सीम से वापस आ रहा है, कि कभी कभी होता है कि नहीं सीम से अच्छा आ रहा। तो ये गेंदबाजों की अपनी अपनी सोच रहती है सब।
0: इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं जोड़ूंगा आपको, इसमें एक खिलाड़ी टीम के अंदर रहता है, एक गेंदबाज रहता है जिसकी जिसके ऊपर ये जिम्मेवारी रहती है कि आप जाके गेंद देखेंगे, तभी आप देखिए ज्यादा लोग नजर नहीं आते। वो एक फील रहता है, और सिर्फ एक नहीं।

0: आजकल अगर आप देखें तो थर्ड अंपायर फोर्थ अंपायर जो आता है वो एक और बॉल आपको हमेशा बोलता है कि दो बॉल होनी चाहिए रखने के लिए, कई बार डी शेप हो जाती है, कई बार गेंद जाके कहीं टकराती है, तो उसके लिए दो बॉल आपको बोलते हैं हमेशा रखने के लिए। तो ये भी होता है, लेकिन चूज एक ही खिलाड़ी करता है और उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड ये करता है कि उसको किस तरीके से फील रहती है, और बाकी सारे उस पर विश्वास रखते हैं कि ये जो भी पिक करेगा ना वो हम सब उसके साथ चलेंगे।
1: मेरे समय में मैं कपिल पाजी को कभी बॉल उठाने नहीं देता था, क्योंकि मेरा हाथ और उनके हाथ में जमीन आसमान का फर्क था, और जब उनके हाथ की गेंद करते तो मेरे हाथ में फिट ही नहीं होती थी, तो मुझे बोला जाता था आप चूज करो, जैसे विजय बोल रहे हैं, तो एक को ड्यूटी लगती है आपकी करने के लिए।
2: जी, और क्योंकि बॉलिंग की बात चल रही है, विजय, शेफाली वर्मा के रूप में भारत को एक नया ऑलराउंडर मिल गया है, ये जो सफलता मिल रही है शेफाली को बॉलिंग में, क्या वो इसलिए कि शेफाली को रीड करना बैटर्स के लिए उतना इजी नहीं हो रहा है? वुड यू लाइक टू डीकोड शेफाली'स बॉलिंग फॉर आवर लिसनर्स?
0: इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डीकोड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज शी वाज नॉट बॉलिंग फोर ओवर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस अर्ली ऑन, आई लाइक शी वाज यूज्ड एज अ पार्ट टाइमर एंड शी इज डन अ फिनोमिनल जॉब एज अ पार्ट टाइमर, शी इज अ विकेट टेकर, यू नॉर्मली सी दैट। व्हेन आई सी अ टॉप order batter bowling, I always feel you think like a batter and then you bowl. What I don't want to face, that's what you try to deliver, and I think that works in a favor when a top order batter is used as an all rounder.
3: चलिए गेंदबाजी के विकल्पों की हमने बात की, but there's this thing called utilization of resources. शशांक, नंदिनी शर्मा बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल के लिए जानी जाती है, डेथ ओवर्स बॉलिंग के लिए जानी जाती है, पिछले मैच में हमने देखा डेथ ओवर्स में उनको गेंद नहीं थमाई गई, तो जिस तरह से यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ है, क्या आप उससे अभी तक सेटिस्फाइड है या इंडिया को उसमें अपना आउटलुक बदलने की जरूरत है?
4: यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ओके, यू नो आई थिंक इट्स अबाउट द परफॉर्मेंस of your resources. You know, so the entire middle order has not performed. You know, the captain herself, she came into the tournament on the back of a very good form, but hasn't been able to make her mark. Jemima has disappointed. Richa has not been her own self. So it's all, the entire onus is now on Smriti and Shefali through the tournament to score runs, and on Sri Charani to take wickets. So these are the three players who have carried the team, but it's a game of 11 players, you know, so only three players performing, and Deepti Sharma of course took 5 for 10 against Pakistan, but she gave 44 runs of her in her 4 overs against South Africa. You know, as the leading all-rounder in world cricket, she's supposed to do her best against the top teams. So there she couldn't deliver the goods. So it's all about how the resources perform, and there is the problem, and because of that there has been tinkering with the team, and as Chetan bhai said, in a big tournament it is very important to have a settled team, you know, because of injury or because of unexpected slump in form, you may change one player here and there, but in a big tournament you need to have a settled army, so that has not been the case with India.
3: जी, और आज हम उम्मीद करते हैं कि उन सारी गलतियों को भारतीय टीम पीछे छोड़ाएगी। इस वक्त हम मैदान पर देख रहे हैं कि टीम्स लाइंड अप है नेशनल एंथम्स के लिए, और कोइंसिडेंटली दोनों ही देशों के नेशनल एंथम्स रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं, तो इस वक्त नेशनल एंथम्स की प्रक्रिया जारी है। मुझे तो आप कुछ पूछना चाह रही हैं।
2: जी बिल्कुल, क्योंकि विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है और इसी बीच में ICC ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है, रिटर्न टू प्ले पोस्ट प्रेगनेंसी गाइडलाइंस जो है, और साफ कह रहे हैं कि मदरहुड इज Not the end of the innings, it's just a pause. Pregnancy की वजह से अभी तक हम जो देखते थे कि महिला क्रिकेटर्स को करियर ब्रेक या रिटायरमेंट लेना पड़ता था, लेकिन अब ICC ने फीमेल क्रिकेटर्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए गाइडलाइंस बनाई है। 16 हफ्तों का पूरा फ्रेमवर्क बनाया है जिससे माँ बनने के बाद खिलाड़ियों पर डायरेक्ट प्रेशर नहीं हो, बल्कि स्टेप बाय स्टेप रिकवरी, मेडिकल सपोर्ट और ग्रेजुअल कमबैक हो सके। ICC प्रेसिडेंट जय शाह ने कहा कि किसी भी प्लेयर को माँ बनने और देश के लिए खेलने के बीच चुनाव न करना पड़े, इसलिए ये गाइडलाइंस लाई गई हैं। विजय, एक्सेप्शनल स्ट्रोक बाय द ICC।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। अभी आपने कहा कि मदरहुड स्टॉपेज नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक पॉज है। बिल्कुल, मुझे लगता है, और ये चीज़ ऐसी है जहां पर आप ये एक स्टेटमेंट देने की कोशिश करें कि किस तरीके से ICC वुमेन्स क्रिकेट की तरफ देखता है और उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है।
2: जी बिल्कुल, चेतन, मिडिल ऑर्डर की क्योंकि आप बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ एक जो और हमने पहले भी बात की, स्ट्राइक रोटेशन जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है हमको। पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट

0: पावर प्ले में 59 रन्स, डेथ ओवर्स में 36, जो कि साउथ अफ्रीका ने 39 जहां पर स्कोर किया था, और पावर प्ले में 25 रन बनाए थे। असली फर्क जो बनाया जाकर के वो मिडिल ओवर्स का था। भारत ने जहां पर 63 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, वहीं साउथ अफ्रीका ने 97 रन बनाए बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
1: देखिए, आपने विकेट्स गवाए हैं, आप सेट होकर आउट हुए। अगर आप जमीमा की बात करें, 36 रन बनाकर आप आउट हो रहे हैं, 47 रन बनाकर हरमनप्रीत कौर आउट हुई है। तो अगर आप यहां से दोनों में से एक भी आखिर तक अगर इंडियन टीम को ले जाता लास्ट ओवर्स तक, तो ऑब्वियसली आपके 15-20 रन एक्स्ट्रा जुड़ते हैं। देखिए, हर समय क्रिकेट के अंदर ये है, जैसे ही आप विकेट्स गवाएंगे कहीं ना कहीं रनों पर अंकुश लगेगा, वो कहीं आपको आएगा, नया बैटर अंदर आएगा, आपको सेटल होने के लिए समय लगेगा। तो देयर कपल ऑफ थिंग्स विच आई थिंक, देखिए जो चीज़ गई उसके ऊपर ज़्यादा सोचने का अब जरूरत नहीं है। आज जो है डिफरेंट ग्राउंड, डिफरेंट टीम, डिफरेंट एटमोसफेयर ऑल टुगेदर, आप अपनी जाकर नॉर्मल क्रिकेट खेलिए एंड कॉन्सेंट्रेट कि आगे क्या होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो बहुत दूर है। आज आपके सामने क्या चीज़ है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, प्ले योर बेस्ट क्रिकेट एंड रेस्ट। अच्छी क्रिकेट खेलेंगे आप, अपने आप जीतेंगे। जी
0: बिल्कुल, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और आप जीतेंगे। तो चलते चलते आप लोगों से हम प्रेडिक्शंस लेना चाहेंगे कि बांग्लादेश का क्या आपको लग रहा है, कि क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप स्कोर?
1: आपको लगता है कि हम उस तरफ जाएंगे? इंडिया का मैच है तो ऑब्वियसली इंडिया ऑल द वे।
0: तो कहां पर रोकना चाहिए भारत को, बांग्लादेश की टीम को?
2: मुझे लगता है कि अगर बहुत अच्छा बांग्लादेश अगर खेलेगी तो कहीं शायद 100-110।
0: जी शशांक, आप भी इसके आसपास ही?
3: 120 उन्होंने 124 बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ।
0: जी
3: मुझे लगता है उससे कम में हिंदुस्तान को उन्हें रोक देना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, उससे कम में रोक देना चाहिए। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर से हाजिर होंगे मिड इनिंग्स ब्रेक में, और आप चलते हैं हमारी कमेंट्री टीम की ओर। फर्स्ट बॉल 20।

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: 2020 महिला विश्व कप में आज भारत का बहुत बड़ा मुकाबला बांग्लादेश के साथ, और भारतीय टीम को ये मैच जीतना ही होगा अगर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बनाए रखना है। बहुत जरूरी है भारत के लिए इस मुकाबले में जीत, क्योंकि साउथ अफ्रीका से हार के बाद भारत का समीकरण थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। स्वागत है आप सभी का भारत और बांग्लादेश के बीच T20 विश्व कप के इस मुकाबले में, जो ग्रुप ए का मुकाबला है, और मैं हूं आपके साथ हिंदी कमेंट्री के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश। हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर हैं देवायन सेन, स्टैटिस्टिशियन हैं रमेश अर्जुन परब, स्कोरर वेंकट बाल रेड्डी। तो ये मुकाबला आज बहुत जरूरी है भारत के लिहाज से, बहुत जरूरी है इस सेमीफाइनल की रेस को बनाए रखने के लिए, सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए। देवायन स्वागत आपका, बहुत जरूरी ये मैच भारत के लिए।
2: Absolutely. Thanks for the warm welcome and a very good evening to everybody who's tuning in as well. It's an important match. It's being played on the same pitch on which India played their last match as well, against South Africa at Old Trafford, Manchester. And of course, the toss has been won by the Bangladesh team, which is unchanged from their last match, which featured a good victory against Pakistan. So technically, even Bangladesh in the running for a spot in the Final Four. And India with two interesting changes, because they brought in the experience of Renuka Singh and Radha Yadav and left out Prema Rawat, as well as the Seema from the previous game, Arundhati Reddy. So those are the two changes. One would have thought that maybe they would have thought of including an extra bowler, but they've gone in with those five specialist bowling options and Shefali Verma, of course, also as a backup.
1: Yeah, and in this match, Bangladesh has toss won, that's why Ballebazi has decided that पहली पारी में बल्लेबाजों को थोड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। क्रैक्स हैं पिच में और उम्मीद की जा रही है कि ये थोड़े से बढ़ सकते हैं। सेकंड पारी में थोड़ी सी भारतीय टीम को परेशानी हो सकती है। इसी को देखते हुए बांग्लादेश की कप्तान जो हैं उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने कितना सही फैसला लिया है ये जब मैच का परिणाम आएगा तब देखना होगा। लेकिन भारत के लिहाज से ये टूर्नामेंट अभी तक मिला जुला रहा है। पाकिस्तान को 64 रन से हराया था पहले मुकाबले में 14 जून को, 17 जून को नीदरलैंड्स को 95 रन से हराया, लेकिन 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से 6 विकेट से हार मिली, और वहीं से थोड़ा सा समीकरण भारत के लिए पलटा। हालांकि नेट रन रेट के लिहाज से दिवाइन अभी भी भारत दक्षिण अफ्रीका से आगे है और पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है।
2: Yes, it's a positive for India, and it'll all probably boil down to that Sunday's match against Australia. But for the moment, they have to take on the two openers from Bangladesh who have made their way out to the middle, Dilara Akhtar and Juwairia Firdaus. And it does look like Shefali Verma is going to deliver the first over. So that sixth bowling option coming into play straight away.
1: बड़ा दिलचस्प है ये, क्योंकि शेफाली आमतौर पर नियमित गेंदबाज नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में भरपूर उपयोग हुआ है उनका, और पहला ओवर लेकर आ रही है। दिलचस्प होगा ये देखना कि किस तरह से उनका ये पहला ओवर चलता है। और इस समय स्ट्राइक पर बांग्लादेश की सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं, फील्ड पूरी तरह से तैयार है, और दिलारा अख्तर इस समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रही है। धूप पूरी तरह से खिली हुई है और बस कुछ ही सेकेंड्स में ये मुकाबला शुरू होने वाला है। भारत को अपना अंतिम मैच 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है। तो भारत अगर दोनों मुकाबले जीत लेता है, नेट रन रेट बेहतर रहता है, जो अभी दूसरे स्थान पर है उसको बनाए रखता है, तो सेमीफाइनल में पहुंचने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। पहली गेंद इस ओवर की और इसको सुरक्षित खेलना चाहती थी, बीट हुई पूरी तरह से, ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर निकली ये गेंद और चारों खाने चित हो गई। ये पहली गेंद कैरम बॉल थी और इस पर पूरी तरह से चकमा खा गई।
2: या ऑलमोस्ट प्लेइंग फॉर द टर्न व्हिच वाजंट देयर, सो वेल बॉल्ड बाय शेफाली।
1: जी हाँ, और शुरुआत भारत के लिए अच्छी हुई है। स्पिनर्स की मददगार पिच पर भारत क्या कमाल करेगा ये देखना होगा। और इस गेंद को खेलना चाहती थी, ड्राइव करना चाहती थी कवर की तरफ, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लिया इस गेंद ने। किस्मत वाली रही कि विकेट कीपर की तरफ नहीं गई ये गेंद, एक रन लिया और फिर दूसरे के लिए भी पलटी है और ये दो रन पूरे हुए हैं। इन दो रनों के साथ बांग्लादेश की स्कोरिंग की शुरुआत हुई है, और भारतीय टीम चाहेगी कि जल्दी से जल्दी बांग्लादेश की पारी को समेटा जाए। इस पिच पर 130 के आसपास का रन भी काफी सुरक्षित माना जा रहा है। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर दिशा में परिवर्तन किया था, जिसको हल्के हाथों से खेला ऑन साइड में, इस बार एक रन मिलेगा और इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 3 बगैर किसी नुकसान के। जैसा बताया देवायन ने कि आज भारतीय टीम में दो परिवर्तन हुए हैं। राधा यादव और रेणुका सिंह की टीम में एंट्री हुई है, जबकि अरुंधति रेड्डी और प्रेमा रावत को विश्राम दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए मुकाबला। रेस में बांग्लादेश की टीम भी बनी हुई है। ग्रुप ए से जो दो टीम बाहर हुई है वो है नीदरलैंड्स की टीम और उनके साथ साथ पाकिस्तान की टीम। अगली गेंद इस बार फिर से लेग स्टंप पर, दिशा से थोड़ी सी भटकी हुई गेंद, हालांकि बल्लेबाज ये देख रही थी कि अंपायर क्या इस गेंद को वाइड बॉल करार देते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल फेयर डिलीवरी और इस पर कोई रन नहीं। ये ओवर चलता हुआ, चार गेंदें हो चुकी है, पांचवी गेंद के साथ तैयार। इस बार शेफाली वर्मा की यह गेंद फिर से पूरे आत्मविश्वास के साथ नहीं खेल पाई। ऑफ स्टंप पर थी गेंद, इस बार परिवर्तन के तौर पर धीमी रफ्तार की गेंद और पिच का पूरा फायदा उठाते हुए। इस पिच पर अनुमान यही है कि गेंद थोड़ी सी रुक कर आएगी, अनइवन बाउंस भी देखने को मिल सकता है और अभी तक इस ओवर में परेशानी हुई है बांग्लादेश के दोनों सलामी बल्लेबाजों को। दिलारा नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं, तीन रन बनाकर, और इस समय फिरदौस ने इस गेंद को खेला कवर की तरफ, कोई रन नहीं और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में बांग्लादेश ने बनाए तीन रन बगैर किसी नुकसान के।
2: Three without loss, tidy start, and Shefali Verma just getting a couple of balls to spin, which will be encouraging news not just for the Indian spinners but also for the Bangladesh spinners themselves. A little bit about the two openers for Bangladesh: Dilar Akhtar, 22 years of age; Juwaria Firdaus, 20 years of age. Both right-handed batters and players who have a slightly better strike rate in terms of their careers. Dilar Akhtar, this is her 41st match. She has a strike rate of 115. And Firdaus, in her 18th match, also possesses a strike rate of 113, which is relatively better than many of their teammates. And that's why they have formed this combination. And in early June, Dilar actually scored 50 of 22 balls in a match against the Netherlands, which is the fastest 50 for Bangladesh in women's T20Is. They'll be hoping for that kind of explosive start if possible. But in that first over, we did see some tidy bowling from Shefali, just looking to attack the stumps. The odd ball turned a little, the odd ball also bounced a little, and the very first one just left the batter after pitching. Dilara Akhtar was beaten all ends up, and for the second ball, skipper Harmanpreet Kaur actually brought in a slip. Now Renuka Singh Thakur, with her first over of this entire World Cup, her first match in fact, little short of a length, pulled away on the onside by Dilara, and she picks up a single to move along to four, and takes the Bangladesh score along to four as well without loss. Second over in progress, Renuka Thakur making her first appearance.

0: टेबल में अंकों के लिहाज से दोनों टीमें बराबरी पर हैं। नेट रन रेट में भारत जरूर बांग्लादेश से ऊपर है। फिलहाल बांग्लादेश की टीम चौथे स्थान पर है नेट रन रेट के लिहाज से, भारत दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका की टीम है, नेट रन रेट में वो भारत से पीछे है। अंक इन तीनों टीमों के बराबर हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप ए में चार में चारों जीत के साथ टॉप पर है। और अब नए ओवर की शुरुआत हुई है, पहली गेंद, और इस गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से खेला पॉइंट की तरफ, बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया। श्री चढ़नी आई हैं परिवर्तन के तौर पर शेफाली वर्मा की जगह। शेफाली ने भी पहला ओवर अच्छा डाला था, रन उन्होंने ज्यादा दिए नहीं थे, 3 रन दिए थे, लेकिन श्री चढ़नी सबसे भरोसेमंद गेंदबाज इस समय भारत के लिए। इस बार गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहती थी, बल्ले का बाहरी किनारा लिया है, गेंद ने थर्ड मैन की तरफ जा रही है, फील्डर भाग रही है, 1 रन लिया, दूसरे के लिए पलटी है और 2 रन आए जरूर हैं लेकिन आत्मविश्वास भरे ये रन निश्चित रूप से नहीं
1: है। Absolutely, a little bit of a across the line hike from Firdaus, but just shows the tentativeness or the excitement, the anxiety that the Bangladesh batters are feeling because of this tight start by the Indian bowlers.
0: और अपने इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए श्री चढ़नी, उनकी ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर खेल दिया सुरक्षित तरीके से। गेंद की उछाल बल्लेबाजों को परेशान कर रही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। थोड़ा बहुत टर्न भी देखने को मिला है, हालांकि बहुत ज्यादा टर्न अभी नहीं दिखा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे पारी आगे बढ़ेगी स्पिनर्स के लिए और भी मददगार होती जाएगी ये पिच। मैनचेस्टर की अगली गेंद को इस बार फिर से सुरक्षात्मक तरीके से खेला, कोई रन नहीं। दबाव लगातार बनता हुआ बांग्लादेश के लिए और उसी दबाव में पहला विकेट भी बांग्लादेश ने गंवाया क्योंकि रन नहीं आ रहे थे। अभी तक कोई चौका बांग्लादेश की तरफ से लगा नहीं है, तीसरा ओवर चल रहा है।
1: Absolutely no boundaries and no boundary balls. Even the fielding has been quite tidy thus far from India.
0: और क्षेत्ररक्षण की बात भारत की हो भी रही थी, पिछले मुकाबले में 2 कैच छूटे थे और वहां से भारत मैच गंवाया था। हवा में इस बार गेंद, पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, लेकिन ये मौका भारत के हाथ से जाता हुआ, 1 कैच छूटता हुआ और फील्डर
1: यस्तिका
0: भाटिया, उन्होंने गेंद का पीछा किया था। विकेटकीपर खुद इस गेंद तक जाना चाहती थी लेकिन गेंद तक पहुंची नहीं, इस बार पुल करने का प्रयास था, पीछे फील्डर भागी तेज रफ्तार के साथ, विकेटकीपर और एक फील्डर के बीच थोड़ी सी बातचीत, लेकिन कैच वो पकड़ा नहीं जा सका। 12 इस समय बांग्लादेश के स्कोर 2-1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, श्री चढ़नी की थोड़ी सी टर्न लेती हुई गेंद और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 3 ओवरों के बाद बांग्लादेश का स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
1: Yeah, tidy start by the world number 1 ranked women's T20I bowler, recently crowned N. Sri Charani, also the most wickets thus far in this T20 World Cup. 10 wickets, should have been 11 really, but Yastika Bhatia making a meal of that chance. Herself a fielder, or rather herself a keeper normally, maybe that's what played a role in her opting to go for that catch. She was fielding at square leg and hence was closer to the ball, but in the end didn't really judge it to perfection at all in chasing it down. And Richa Ghosh went with her gloves. Maybe she would have been the better option to go on for that catch. But anyway, that chance has been missed. Juwaria Firdaus getting that lifeline at 3. Now, Shobana Mustari has walked in at number 3. She's an experienced player, 24 years of age. 65th match for her as she faces up to Renuka. The very first ball glided away on the onside. That single incidentally takes her along to 996 career T20I runs. If she gets 4 more, then she'll become the 3rd Bangladeshi batter after her captain Nigar Sultana Jyoti and Farhana Hawk, who will also go across the 1,000 mark. Renuka coming in for a 2nd over. The 1st over was slightly wavered at times. 3 wides in that, 5 runs in all, but also picked up a wicket. So that will definitely do her confidence a lot of good. 13 for 1 Bangladesh, as again she strays way down the leg side. Firdaus looking to whip it away but misses out entirely. It leads to yet another extra run, 14 for 1. As Renuka now concedes 7 from 1.1 overs. And Shobana Mustari, as I was mentioning, just about 4 runs away. She's had a bit of a lean run in this tournament. 4-4 and 22 not out in the previous match. But has that experience behind her. Has a highest score of 59 in T20Is. And she's come in ahead of the likes of Sharmeen Akhtar as well as the skipper Nigar Sultana, who's widely considered one of their best batters. This is driven down the ground and this could go for the very first boundary. It is 4 runs.
2: Ye laga Abha ka choka.
1: Renuka having strayed in her line a few times, this time just pitching it up a little bit, and that's what allows Firdaus to just...

0: punch it way down the ground and pick up the first boundary, Dharmendra.
1: Yeah, बहुत बढ़िया चौका सीधे बल्ले से खेला गया सामने की तरफ और फील्डर ने प्रयास भी किया लेकिन पहुंच नहीं सकी कोई भी फील्डर बढ़िया चौका आता हुआ बांग्लादेश के लिए
0: 18 for 1 as Firdaus reaches 9 from 11 balls not always looked at her most comfortable also given a lifeline of course in the last over but she has the potential to bother this Indian bowling lineup next ball just back of her length punched it straight towards covers where it's fielded by Smriti Mandhana who's got herself in that position. So in this over thus far, one wide, four and then a dot ball. Renuka Singh coming back into the Indian 11 after a little bit of a hiatus, hasn't played too many matches. If I recall correctly, last probably played against South Africa in April of this year when India had toured there. And because of that, she has been left out of the 11, but they've just gone back to her experience. The next ball again swinging in, just seaming in off the pitch and then driven very nicely straight down the ground but fielded by Shefali Verma. In fact, a bit too well because it went so fast to Shefali Verma at mid-on that there was no possibility of a run at all. So yet another dot ball, 3.4 overs completed, 18 for 1, Bangladesh winning the toss, electing to bat in this significant encounter for both teams. On a significant date, may I remind all the viewers, 25th June, synonymous with Indian cricket on two counts. We'll come back to that after the next ball. Again, driven in the same direction, goes straight towards Shefali Verma. 1932, 25th June, of course, India's first ever test match, which was played in England. And then 1983, 25th June. That's a date that we cannot forget, Dharmendra.
1: Ji haan, aur aaj ka din bhi bada hai Bharat ke liye, toh Bharat ke haath jeet aaye.
0: Absolutely. The last shot, in fact, just taking a little bit of a deflection of the non-striker Shobhana, and that's what made it go a little quicker and faster straight towards Shefali. May well have found the gap otherwise. Three dot balls. Renuka will be looking to finish this over tightly. The next one is thwarted away but played on the onside, dropped by Radha Yadav. It goes for four.
2: Ye laga abha ka choka.
0: India are being very, very generous with Firdaus. Dropped on 3 and now on 9 as Radha Yadav shells a pretty simple one at deep mid-wicket and it leads to a boundary. And that finishes the over at 21, 22 for 1.
1: जी ये एक मौका राधा यादव के हाथ से और फिसलता हुआ पिछले मुकाबले को अगर याद करते हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वहां पर भी राधा यादव से दो कैच छूटे थे और दो महत्वपूर्ण कैच छूटे थे उसकी वजह से उस मुकाबले में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था ये कैच छोड़ना भारत के लिए कितना भारी पड़ेगा ये जरूर देखना होगा राधा यादव थोड़े से मानसिक दबाव में निश्चित रूप से दिखाई दे रही हैं पिछले मुकाबले में वो अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में मैदान पर थी इस मैच में वो 11 में शामिल हैं उनको गेंदबाजी भी करनी है लेकिन ये कैच भारत के लिए थोड़ा सा मुश्किल बढ़ा सकता है दो कैच अभी तक भारत के छूट चुके हैं इस मुकाबले में नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद और अश्री चरणी की पहली गेंद को सुरक्षित तरीके से शॉर्ट कवर की तरफ खेला कोई रन नहीं बहुत हड़बड़ाहट में बांग्लादेश की टीम है नहीं लेकिन मौके निश्चित रूप से दो दिए हैं और अगर आप मौकों को लपकेंगे नहीं तो फिर आपके लिए मुसीबत बढ़ सकती है मुश्किलें आपके लिए और ज्यादा हो सकती हैं अगली गेंद को इस बार बाहर निकलकर ड्राइव करने का प्रयास कवर में गई थी गेंद हवा में थी थोड़ी देर के लिए क्या ये मौका भी छूटा है जी हाँ एक और कैच छूटता हुआ फील्डर वहां पर फिर से अगर हम कहें तो एक रन जरूर लिया है ये दे इस बार इस कैच को हवा में खेला था सीधा एक आसान सा कैच था मुश्किल ज्यादा नहीं थी और एक और कैच जमीन पर टपकता हुआ
0: आई थिंक दिस वन मे हैव बीन नंदिनी शर्मा एट कवर्स
1: अगली गेंद इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास फिर से हवा में गेंद फिर से कैच छूटा एक और कैच छूटता हुआ भारत के लिए चौथा ये मौका जब भारत ने कैच छोड़ा है भारत के खिलाड़ियों ने कैच छोड़ा है नंदिनी से ये कैच छूटा है
0: Second successive ball and second successive catch which has gone to Nandini and the ball is following around because she's been moved now to short third and that's exactly where the ball went off the outside edge and she made a good effort.
3: लखनऊ में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को किया संबोधित कहा सबका साथ सबका विकास का भाव है लोकतंत्र का आधार मुख्यमंत्री ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ कहा सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप की समीक्षा कहा किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने वाराणसी एयरपोर्ट में पहली इजी कनेक्ट उड़ान का किया शुभारंभ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिविल एविएशन सेक्टर में आया है बड़ा बदलाव नमस्कार प्रदेश।

0: समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आपातकाल की 51वीं बरसी संविधान हत्या दिवस पर लखनऊ में आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश सरकार लोकतंत्र सेनानियों के लिए जल्द ही 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ समाज के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है और यही लोकतंत्र का आधार है।
1: एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का वह अभियान जिसमें जनता ही सब कुछ है। लोकतंत्र का मतलब भी यही है, जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए योजना का लाभ, वो अंतिम पायदान पर बैठे हुए जनता जनार्दन के व्यक्ति को इस योजना के साथ जोड़ना। परिणाम 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त होकर के एक नए मध्यम वर्ग के रूप में उभर करके अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देते हुए दिखाई देते हैं।
0: वरिष्ठ भाजपा नेता और डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने आपातकाल की बरसी पर मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश के हर जनपद का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पूर्वजों की विरासत को संरक्षित किया है। आज सुशासन और सुरक्षा के माहौल के साथ प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है।
2: ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप, कृषि क्षेत्र की विभिन्न केंद्रीय और राज्य की योजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की संयुक्त समीक्षा की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए समृद्ध उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान अलनीनो के प्रभाव से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में श्री चौहान ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा जिससे किसानों को बेहतर पौधे मिल सकें।
3: क्लीन प्लांट सेंटर यहाँ लगाएंगे जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उनको अच्छे पौधे मिल जाए। अगर पौधा खराब मिला, उनको प्लांट खराब मिला, तो 2 साल 3 साल या 4 साल बाद पता चलता है कि ये तो वैसा उत्पादन ही नहीं दे रहा। तो वो क्लीन प्लांट सेंटर भी हम खोलेंगे, लेकिन अच्छे बीज और अच्छी रोपण सामग्री उसका इंतजाम करना हम लोग भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
0: इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद की अवधि बढ़ाए जाने की मंजूरी भी प्रदान की। उन्होंने इस संबंध में स्वीकृति का आशय पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के अधिकाधिक किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिलेगा और उनके हितों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होगा। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने अयोध्या पहुंचकर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मखाने की खेती का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद भी किया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने आज वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है।
4: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके

0: एयरपोर्ट्स को भी यही इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
1: इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर पूरा कर सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति वीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता को आश्वासन दिया है कि मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 8 महामंत्री 19 उपाध्यक्ष और 19 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम ब्रज कानपुर अवध काशी और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है।
2: देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है, युवाओं को भी लेकर, महिलाओं को भी लेकर के, और हम लोग ख्याल रखे हैं कि सभी का समायोजन उसमें हो जाए और सभी क्षेत्र का जो हमारे कार्यकर्ता है उनका सबका हर क्षेत्र से करीब करीब बराबर बराबर सबका समायोजन हो जाए, ऐसा प्रयास किया गया।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नए पदाधिकारी संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने, राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने और जनसेवा के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में कोचिंग सेंटरों और अन्य इमारतों में अग्निशमन व्यवस्था की जांच की जा रही है। इसी क्रम में गौतम बुद्ध नगर में पुलिस, जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने 7 और कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है। वहीं 2 कोचिंग संस्थानों में आग से बचाव के इंतजाम मानकों के अनुरूप न मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं प्रयागराज मंडल प्रशासन ने विशेष अभियान के तहत अब तक प्रयागराज और कौशाम्बी में कुल 10 कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों को सील किया है। मुहर्रम महीने की नवी तारीख पर आज लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में इमाम हुसैन की याद में मजलिसों और मातम का सिलसिला जारी है। लखनऊ में आज देर रात आलमे शबे आशूरा का जुलूस इमामबाड़ा नाजिम साहब से दरगाह हजरत अब्बास तक निकाला जाएगा। कल 10वीं मुहर्रम पर घरों में रखे ताजियों को सुपुर्द खाक किया जाएगा, साथ ही आलमे आशूरा का जुलूस भी निकाला जाएगा। इन जुलूसों के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। प्रदेश के कुछ पूर्वी जनपदों में आज हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी जनपदों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल की 51वीं बरसी पर लखनऊ में लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह को किया संबोधित। कहा, सबका साथ सबका विकास का भाव है लोकतंत्र का आधार। मुख्यमंत्री ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने वाराणसी एयरपोर्ट में पहली इजी कनेक्ट उड़ान का किया शुभारंभ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सिविल एविएशन सेक्टर में आया है बड़ा बदलाव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब आप सुनेंगे भारत और बांग्लादेश के मध्य ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर इंग्लैंड में खेले जा रहे ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। मैच का आंखों देखा हाल हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: पाया, जो 8 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुई थी। नए ओवर की शुरुआत नंदिनी की पहली गेंद पैट पर टकराई, एक हल्की सी अपील, थोड़ी सी बातचीत इस समय कप्तान और गेंदबाज के बीच, विकेटकीपर भी इस बातचीत में शामिल हुई हैं और वरिष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा भी पहुंच गई हैं। डीआरएस क्या लेंगी, एक लंबी बातचीत चलती हुई, ऐसा लग नहीं रहा कि डीआरएस लिया जाएगा क्योंकि संभवतः गेंद लेग स्टंप को छोड़ रही थी।
1: या एग्जैक्टली व्हाट ऋचा घोष अपीयर टू बी इंडिकेटिंग व्हेन शी वाज कॉल्ड इन फॉर दैट लिटिल कॉन्फ्रेंस, नंदिनी वाज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड दैट दैट वाज गोइंग ऑन टू हिट लेग स्टंप, but it would have started around middle and leg and was also shaping down the leg side, so at best it might have stayed marginal because the on-field decision was not out, at best it probably would have been an umpire's call, so maybe it was just okay that they didn't go for it eventually, and the umpire Kim Cotton now just having a word with Harmanpreet Kaur about something, maybe about follow through perhaps, just running onto the danger area or something, because she was also pointing towards Nandini Sharma in the process. But it's a dot ball to begin with.
0: Nandini Sharma ka ye over aage badhta hua, dusri gend is over ki, karne ke liye tayyar, over the wicket.

0: they didn't go for it eventually. And the umpire Kim Cotton now just having a word with Harmanpreet Kaur about something, maybe about follow-through perhaps, just running onto the danger area or something, because she was also pointing towards Nandini Sharma in the process. But it's a dot ball to begin with.
1: Nandini Sharma ka ye over aage badhta hua dusri gend is over ki karne ke liye taiyar, over the wicket gendbazi kar rahi hai samay, aur is baar gend ko khelna chahti thi, onside mein balle ka kinara liya aur gend 4 run ke liye.
2: Ye laga aabha ka chauka.
1: यह आत्मविश्वास वाला स्ट्रोक था नहीं, खेलना चाहती थी लॉन्ग ऑन की तरफ, बल्ले का मुंह उसी तरफ था लेकिन बल्ले का किनारा लिया इस गेंद ने, थर्ड मैन पर गई ये गेंद, फील्डर थी वहां पर लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर थी, और चार रन उपयोगी इस समय आता हुआ बांग्लादेश के लिए. बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन, एक विकेट के नुकसान पर चिंता की लकीरें भारतीय खेमे में गहरी होती हुई. सातवां चौका था बांग्लादेश की इस पारी का, 55 एक विकेट के नुकसान पर. नंदिनी शर्मा इस ओवर की अगली गेंद के साथ, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को हवा में खेला है, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, खाली जगह में, नो मैन्स लैंड में ये गेंद गिरी है और इस पर एक रन आया है बांग्लादेश के लिए. बढ़ता हुआ स्कोर 56 एक विकेट के नुकसान पर. आसमान पूरी तरह से साफ, बादलों का कहीं नामो निशान नहीं, और इस बीच में अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल का, यानी फ्री हिट बांग्लादेश के लिए तोहफा.
0: एब्सोल्युटली द इंडियन डिसिप्लिन नाउ एक्सटेंडिंग टू द बोलिंग एज वेल. इट्स अ वेरी मार्जिनल कॉल बट इट्स अ कॉल नॉनदलेस. इट इज अ नो बॉल. इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दैट्स वेयर नंदिनी'स फुट, नॉट एनफ ऑफ इट वॉज जस्ट बिहाइंड द क्रीज, द लाइन ऑल्सो बिलोंगिंग टू द अंपायर. सो नाउ दिस पुट्स प्रेशर ऑन मुस्तारी, because she was not on strike but she has the license to really go for it and just rub some salt into the Indian wounds.
1: Bangladesh ki pari ka ye atirikt 5th run zarur tha lekin free hit hi bhi ab mila hai aur us par kya kuch hoga Mustari ki pratikriya. Aur is baar bahut zyada bahar off stump ki ye gend, wide ball ka ishara umpire ka, ek aur atirikt run aur jo wo free hit hai wo jari rahega. To atirikt run तोहफे में जरूर आया है, और जिस गेंद की हम चर्चा कर रहे थे कि लेग स्टंप को गेंद छोड़ सकती थी, जहां पर बातचीत हुई थी थोड़ी सी कप्तान और गेंदबाज के बीच में, निश्चित रूप से वो गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी. 41 गेंदों में 50 रन की ये साझेदारी हो चुकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी है बांग्लादेश के लिए. भारत का आक्रमण इस समय उतना प्रभावी साबित नहीं हो रहा है, पर इसकी वजह वो कैचेस भी हैं जो भारत की तरफ से छूटे हैं. 4 कैच इस मुकाबले में अब तक छूट चुके हैं. अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेलना चाहती थी विकेट कीपर के सिर के ऊपर से, धीमी रफ्तार की गेंद थी, चकमा खा गई, उछाल थी इस गेंद में, और इस गेंद पर जो फ्री हिट था उसका कोई फायदा हुआ नहीं बांग्लादेश को.
0: Yeah, very close to actually being a wide, and the batter will feel a little hard done by. It was a short bouncer. It was called one for the over, but seemed to have gone over the head height even as the batter was trying to get up to it. So, just a little unlucky on that occasion.
1: 58 एक विकेट के नुकसान पर इस बार फिर से धीमी रफ्तार की गेंद लेग और मिडिल स्टंप पर, जिसको हल्के हाथों से खेला, गेंदबाज खुद गेंद के पीछे भागी, लेकिन एक रन लेने का पूरा मौका था. अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, और उस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 59 एक विकेट के नुकसान पर. हालांकि रन रेट की बात करें तो थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है उसमें, जिस रफ्तार से 7 के आसपास रन रेट था उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है. बातचीत इस समय एक बार फिर से अंपायर कप्तान और गेंदबाज के बीच में कुछ बताया है, और जो वो डेंजर जोन है वहां पर बार बार गेंदबाज जा रही हैं, वार्निंग अभी तक दी गई है.
0: Second verbal warning, perhaps official effectively, because that is definitely a source of concern. If it continues, then Nandini will not be able to bowl at all in this innings.
1: Nandini ke liye thodi chinta ki baat, dhyan rakhna hoga Nandini ko. Agli gend karne ke liye taiyar, is over ki 5th gend, aur is baar is gend ko follow through mein khela, seedhe gendbaz ki taraf, out! Badhiya catch lapka hai Nandini ne.
0: Yes, and she's made up for her own lapses, because a couple of those lifelines were given by her as a fielder, and this time she holds on. So that's the breaking news, that Firdaus finally has had to go back to the dugout after a catch was taken. Just a little change in pace perhaps, and she was looking to smack it straight down the ground, but just went off the toe end of the bat, and Nandini in her follow through did very well to just get across to it. So fine innings of 33 comes to an end. That excellent partnership between the two of them, Shobhana

0: वापसी की है। कुल मिलाकर 31 रन खर्च किए हैं अंतिम 5 ओवरों में और एक विकेट भी झटकने में कामयाबी मिली है। रन रेट में भी गिरावट आई है, पिछले 5 ओवर्स में 6.20 का रन रेट रहा है। तो अच्छी वापसी और ये दबाव भारत को बनाए रखना होगा। कहीं ना कहीं बांग्लादेश की टीम को इस मुकाबले में कम से कम स्कोर पर रोकना होगा ताकि भारत न सिर्फ इस मुकाबले को जीतने की बेहतर स्थिति में रहे बल्कि नेट रन रेट भी भारत का और ज्यादा बेहतर हो सके, इसकी भी गुंजाइश बनाए रखनी होगी। 11वें ओवर की शुरुआत, राधा आई है नई गेंदबाज, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कट करने का प्रयास और अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, तो राधा ने शुरुआत की है वाइड गेंद के साथ। अतिरिक्त रन बांग्लादेश के खाते में जाता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर। राधा यादव आज के मैच में शामिल की गई, इस बार थोड़ी सी फ्लाइट दी थी गेंद को, क्रीज से बाहर निकली और इस गेंद को आत्मविश्वास के साथ धकेल दिया एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर भागी उसके पीछे लेकिन आसानी के साथ 2 रन पूरे हुए और इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 66 2 विकेट के नुकसान पर। रेणुका सिंह ठाकुर थी फील्डर, अच्छी दौड़ उन्होंने लगाई थी और निश्चित रूप से 1 रन तो बचाए ही थे। इस बार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को अपने सामने की तरफ खेला, लॉन्ग ऑन पर गेंद जा रही है, फील्ड किया गया इस गेंद को, 1 रन और आता हुआ। राधा यादव अभी तक को कुछ खास प्रभाव नहीं डाल सकी है इस ओवर में, सीधी सीधी गेंद स्टंप्स पर डालती हुई, हालांकि पहली गेंद उनकी ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी। इस बार फुल टॉस गेंद, गेंद की लाइन को मिस किया बल्लेबाज ने पूरी तरह से, एक मौका चुका है मुस्तारी ने, क्योंकि इस गेंद को वो चाहती तो आराम से कहीं भी खेल सकती थी।
1: Yeah, I just got surprised. I almost got yorked by the length of it, playing from the crease, and that's been the problem when playing against spinners.
0: Agli gend, is baar fir se flight thi gend mein, crease se bahar nikal kar is gend ko khelne ka prayas, lekin fir se short extra cover ki taraf is gend ko khela, fir se koi run nahi milega. Achha over, pehla gend wide dalne ke baad thoda sa dabav tha Radha ke upar, lekin wapsi ki hai unhone is over mein. और इस ओवर की उनकी ये 5वीं गेंद, इसको हवा में उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर वहां पर पहुंच पाएंगे? जी हां, शेफाली वर्मा पहुंची हैं, सिर्फ 1 रन मिलेगा और इस 1 रन से स्कोर हो गया अब 68 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा ओवर चलता हुआ राधा यादव का, कुल मिलाकर अभी तक उन्होंने 5 रन खर्च किए हैं और 1 गेंद अभी आनी बाकी है। अंतिम गेंद इस ओवर की राधा यादव की, इस बार फिर से फ्लाइट थी गेंद में, इसको सामने खेला है फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन मिलेगा। इस रन के साथ ओवर की समाप्ति, 11 ओवरों के बाद बांग्लादेश का स्कोर 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
1: Yeah, those middle overs, that phase where teams often look to consolidate, just look to milk the bowling, try and work around the pitch for those ones and twos and the odd boundaries if available, and that's where the Indians have to be careful. They cannot let that big partnership prosper because these two batters are perhaps the most senior batters, the two players in this 11 in any case who have more than 1000 runs in this format. And that's why if they get set, then they can push on and punish those final few overs. India need to consistently keep looking for wickets in that sense. And that's why Radha Yadav will be a little bit disappointed with that first over, while she was able to put some of those Yorkers in. But apart from that, she was also slightly wavered with her line on a couple of occasions. However, 6 runs conceded of that first over. She's also not had too much exposure in the 11 in this World Cup. As Renuka now comes back for a third over, 2 overs, one of which produced a wicket. Very first ball outside of stump, Nigar plays it with the outside edge of the bat and it runs away for 4 towards third.
2: Ye laga Abha ka choka.
1: Both these batters, Dharmendra, they have shown that they know how to use the pace, especially off seam, and work it behind the wicket.
0: Yes, absolutely. This time, jaan-boojhkar ek tarah se khela gaya stroke tha, kyunki pata tha ballebaaz ko ki khali jagah hai third man par, aur uska pura fayda uthakar 4 run jutane mein kamyab rahi.
1: Bangladesh moving along to 73 for 2, and Nigar Sultana Jyoti very quickly has moved into double figures, 10 of 9 balls. Mustari is also batting well, 19 of 20 balls. This partnership at the moment, 15 or 14 runs, in fact, they came together at 59 for 2. Just outside off stump, opening the face of the blade, playing it away towards Deepthi Sharma, who's fielding at point. No possibility of a run, as Deepthi rifles that throw in straight into the gloves of Richa Ghosh. India also looking around the field for some kind of inspiration. Bangladesh still consistently scoring at more than 6 runs per over, which is a positive for them. If they can keep that going towards at least the 14th or 15th over, we know that they have the firepower to go possibly at 10 or even 12 runs per over in those phases. The next ball just jags in, and she didn't know a lot about that. Goes up the inside edge, and they think about coming in for a second, but that's exceptional fielding from Radha Yadav.

0: comes in from deep square leg and fields it in front of mid-wicket and is able to keep the run scoring down to just that single. So Nigar Sultana Jyoti moves along to 11 of 11 balls. Bangladesh at 74 for 2 as it brings Shubhana Mustari back on strike. The senior pros out in the middle for Bangladesh, desperately looking to forge some partnership from where which will put them into a position from where they can dictate terms, especially considering the fact that they won the toss and elected to bat. Outside off stump yet again, looking for that cut, but cannot beat Yastika Bhatia, who's fielding at short third this time around. It goes straight to her. It was a good shot, but not placed well enough. Two dot balls already in this over, in addition to 1-4 and a single. And that has meant that Bangladesh are at 74 for 2, continue to be at 74 for 2 after 11.4 overs. Two balls left in the 12th over, if there are no wides or no balls. We've seen a few wides from Renuka. Richa Ghosh is standing up to the stumps, almost on cue, almost a wide, but played away on the onside, but straight towards Sri Charani, who's fielding at short fine, and it's gone so quickly that there's no possibility of a run. Mustari now just standing with a half teapot, one hand on her waist, the other alongside her bat, just looking away, thinking about where she needs to get the runs away from, because in the last couple of balls she's played, a couple of good shots, but straight to the fielders. And that has meant that Renuka Singh has bowled dot balls. This time a slower ball just outside off stump, cutting it away towards Deepthi Sharma. But as she dives, they have enough time to cut through for a single. 12 overs completed. Bangladesh at 6.25 runs per over have gone up to 75 for 2.
1: Renuka ka ek aur badhiya over samapt hua. Halanki pehli gend par jab unko chauka laga tha, to thoda sa dabav tha unke upar. Lekin achhi wapsi ki unhone us dabav ke bawajood. Aur इस ओवर में ज्यादा आजादी दी नहीं बांग्लादेश की बल्लेबाजों को. शोभना मुस्तारी 23 गेंदों में 20 रन बनाकर खेल रही है, दो चौके अभी तक उनकी इस पारी में, और निगार सुल्ताना ने 11 गेंदों में 11 रन बनाए हैं. नए ओवर की शुरुआत होगी. आज बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. कोई परिवर्तन बांग्लादेश की टीम में पिछले मैच की जो टीम थी उसमें नहीं किया गया, वही टीम उन्होंने उतारी है इस मुकाबले में भी. और हम बार बार बात कर रहे हैं कि भारतीय टीम ने किस तरह से इस बीच के ओवरों में वापसी की है. अभी तक अगर पिछले 5 ओवर के आंकड़ों को देखें तो 28 रन सिर्फ खर्च किए हैं, एक सफलता अर्जित की है. 5.80 की औसत से रन बने. अगली गेंद, नए ओवर की शुरुआत राधा यादव की तरफ से, पहली गेंद, और इस गेंद को खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ. एक रन और मिलेगा, इस एक रन से स्कोर में इजाफा और होता हुआ बांग्लादेश के 76 हो गया स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर. खास बात दिबायन ये भी है कि अभी तक जो 2 सफलता मिली है भारत को, दोनों 30 गेंदबाजों की तरफ से मिली है. जबकि हम बार बार चर्चा कर रही हैं कि स्पिनर्स के लिए ये पिच काफी मददगार है, उस लिहाज से अभी तो कुछ कामयाबी आई नहीं है. अगली गेंद इस बार खेला है ऑन साइड में डीप मिड विकेट से, जब तक फील्डर आगे की तरफ आए उठाकर गेंद को वापस करें, एक रन और आता हुआ.
0: Yes, and it's also a function of how well Bangladesh, in a sense, have played against the spinners. Not too many risks taken, played from the crease, allowed the ball to turn. But things could be different in the second innings.
1: अगली गेंद इस बार सुरक्षात्मक तरीके से हल्के हाथों से खेला, गेंद को रन को चुरा लिया है फील्डर के सामने से. थोड़ी सी धीमी रफ्तार से फील्डर तक गेंद पहुंच रही थी और उसका पूरा अनुमान लगाते हुए इस मौके पर रन को चुराया. एक रन और जुड़ता हुआ इस समय बांग्लादेश के लिए 78 2 विकेट का नुकसान पर. कैच जो आज भारत ने छोड़े हैं 4, उसका क्या नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन दबाव निश्चित रूप से भारतीय गेंदबाजों के ऊपर था, वापसी की है भारतीय गेंदबाजों ने. एक रन और इस बीच में आया है, स्कोर हुआ 79 2 विकेट के नुकसान पर. रन रेट 6.24 का. 13वां ओवर चल रहा है, राधा यादव गेंदबाजी कर रही हैं, जिन्हें आज खास तौर पर टीम में शामिल किया गया. 4 गेंदों में 4 रन अभी तक उन्होंने दिए हैं. और इस गेंद को क्रीज से बाहर निकलकर लाभ किया, सीधे फील्डर के हाथों में एक कैच, आसान सा मिडा पर, और दीप्ति शर्मा ने यह कैच लपका, भारत की अनुभवी फील्डर, बहुत आसान सा कैच.
0: Yes, very well taken and well bowled by Radha, just changing the length of it. For a change, we saw Mustari using her feet, trying to be positive, just skipping down the wicket and almost pulling it off. But I suspect that's what made Radha just change, alter the length a little bit, and that's forced her to almost yoke herself and not quite get the right kind of elevation. The idea was right, the execution not quite so. Wanted to clear mid-off, but ended up chipping it straight to Deepthi Sharma. Big wicket because she was looking dangerous and she was dropped on one. So that will make Nandini Sharma feel a lot better now that Shobhana Mustari has to go back. 22 from 26 balls, caught Deepthi bowled Radha.
1: जी हाँ, ये तीसरी सफलता भारत के लिए. और हम चर्चा कर रहे थे कि स्पिनर्स को अभी तक भारत की तरफ से कोई कामयाबी नहीं मिली है. राधा यादव ने वो सफलता स्पिनर्स की तरफ से भारत को दिलाई है और तीसरा विकेट

0: सुल्ताना ज्योति।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: Really exceptional at this shot, Dharmendra.
2: बिल्कुल खाली जगह है, बिल्कुल तलाशी और बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट के साथ लगाया गया ये स्ट्रोक। चार रन आए हैं इस ओवर में एक और दबाव नंदिनी के ऊपर।
0: And just the way that particularly Yastika Bhatia has been running after the ball, she has just recovered not too long ago from a knee injury. It's quite obvious that she's not 100% fit, which begs the question, why are India continually investing on her? This time it's a full toss on the pads and it's been whipped away towards deep square leg for yet another four.
1: Ye laga aabha ka choka.
0: Massive over the 17 of it. It's 96 for 3 after the 14th.
2: बहुत महंगा ओवर ये भारत के लिहाज से नंदिनी का। हालांकि नंदिनी ने एक सफलता ज़रूर दिलाई थी, लेकिन ये ओवर एक तरह से वापसी कराने में बांग्लादेश को कामयाब रहा है। इस मैच में एक दबाव बढ़ रहा था, बन रहा था बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन नंदिनी के इस ओवर से जो 17 रन का ओवर रहा है वो दबाव काफ़ी हद तक हटता हुआ और स्कोर बांग्लादेश का बढ़ता हुआ 96 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस मुकाबले में अगर 140 के आसपास स्कोर हो गया तो इतना आसान होगा नहीं भारतीय टीम के लिए भी। हालांकि स्पिनर्स को अभी तक कुछ खास मदद भारतीय स्पिनर्स को खास तौर पर नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दूसरी पारी में ज़्यादा गेंदबाजों के लिए मदद होगी इस पिच में।
0: Absolutely, and the other concern, Dharmendra, is that India shouldn't start thinking about the net run rate. First aim should be whatever Bangladesh make, their first aim should be to try and get past that, irrespective of how many overs it takes. Because if they start obsessing over trying to get there in a specific number of overs, then there's every likelihood that they'll bring some of the Bangladesh bowlers into this particular equation. And on this pitch, I suspect the Bangladesh attack, which is quite spin heavy, will also enjoy themselves. There's a lot of experience in their spinners. And just the one experienced off spinner which they didn't pick today, Sultana Khatun, who has a very good record against India. I was expecting them to perhaps pick her, but they've gone with the combination which won or did the trick against Pakistan in the previous match.
2: जहाँ तक इस मुकाबले की बात है, टॉस बांग्लादेश ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिलारा अख्तर और जुआरिया फिरदौस ने पारी की शुरुआत की, जल्दी आउट हो गई अख्तर जिन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए और रेणुका सिंह की शिकार हुई। शिचरणी ने उनका कैच लपका था, उसके बाद एक अच्छी साझेदारी हुई 50 से अधिक रनों की फिरदौस और शोभना मुस्तारी के बीच में। दूसरा विकेट बांग्लादेश ने जब गंवाया तो वो विकेट था फिरदौस का, जो 33 रन बनाकर आउट हुई। अच्छी पारी उन्होंने खेली, 31 गेंदों में 5 चौके उन्होंने लगाए थे, 106.45 की स्ट्राइक से रन रेट बनाए। और उसके बाद शोभना मुस्तारी तीसरा शिकार भारत के लिए हुई और भारत की तरफ से उनको राधा यादव ने आउट किया। दीप्ति शर्मा ने उनका कैच लपका था, 26 गेंदों में 22 रन बनाए थे, 2 चौके लगाए थे। इस समय क्रीज पर कप्तान निगार सुल्ताना और उनके साथ शर्मिन अख्तर दोनों इस समय बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं और इस पहली गेंद का नए ओवर की शुरुआत कर रही हैं श्रीचरणी के शर्मिन, और इस गेंद को स्वीप किया है स्क्वायर लगम पार के पीछे की तरफ। एक रन और जोड़ने में कामयाब रही हैं इस नए ओवर की पहली गेंद पर। स्कोर बढ़ता हुआ 97 3 विकेट के नुकसान पर। 15वां ओवर शुरू हुआ है, अभी भी बहुत सारे ओवर बचे हुए हैं बांग्लादेश के लिए, और इस अंदाज में अगर बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करती रही, विकेट सुरक्षित रहे, तो 150 तक बेस स्कोर जा सकता है। दूसरी गेंद इस बार धीमी रफ्तार की गेंद, हवा में थोड़ी सी ज्यादा गेंद को छोड़ा था इस मौके पर शिचरणी ने, और अंत में सिर्फ आ गया कर बल्ले को दिखाते हुए, मुंह उसका खोलते हुए सामने की तरफ खेला। कोई रन इस मौके पर नहीं बनेगा। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेला है सामने की तरफ सुरक्षात्मक तरीके से फॉलो थ्रू में। 7 से 14 ओवरों के बीच की अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर 56 रन बनाए बांग्लादेश की टीम ने और 2 विकेट गवाए थे। धन्यवाद स्कोरर हमारे वेंकट बाला रेड्डी इस जानकारी के लिए। अगली गेंद इस ओवर की, और इस बार क्रीज से बाहर निकलकर खेलने का प्रयास पूरी तरह से गेंद की पिच तक नहीं पहुंच सकी। अंत में बल्ला भर अड़ाया, अंदरूनी निगी किनारा लिया इस गेंद ने बल्ले का और मिड ऑन की तरफ गेंद गई 1 रन के लिए। धीरे धीरे बांग्लादेश 100 रन के आंकड़े की तरफ बढ़ता हुआ, ये 15वां ओवर चल रहा है। लक्ष्य निश्चित रूप से बांग्लादेश के दिमाग में, उनके बल्लेबाजों के दिमाग में 150 का होगा। अगली गेंद

0: सबको सफलता मिली है। राधा यादव ने बल्लेबाज को निमंत्रण दिया आगे निकलने का। इस मौके पर कप्तान निगार सुल्ताना क्रीज से बाहर निकली बड़े स्ट्रोक के लिए, पूरी तरह से लाइन को चूकी और विकेट के पीछे ऋचा घोष ने कोई गलती नहीं की, स्टंप बिखेर दिया, गिल्लियां बिखेर दी, फ्लाइट से पूरी तरह से इस मौके पर चकमा खा गई और भारत के लिए चौथी सफलता एक अहम मौके पर।
1: Yeah, this was that intent, that aggressive intent shown by the skipper looking to skip down the wicket, but Radha may have spotted that, just fired it in a little quicker, a little wider, and that's what made the difference. She missed it altogether, sweeping it under the bat, and she goes for 32 from 27. It's been a quality innings, but the first mistake has led to her wicket, and it's a smart bit of keeping and stumping as well from Richa Ghosh. And now that she is gone, a lot of responsibility now on the remaining batters to try and get them to somewhere in the vicinity of 140. Even a 135 from here looks like it could be a good total. But this has probably meant the difference between 140 and 150. Had Nigar Sultana Jyoti been out there, the chances of that extra 15 or 20 runs would always have loomed over the Indians.
0: निश्चित रूप से यहाँ पर एक मौका जरूर इस विकेट के बाद बांग्लादेश ने गंवाया है। कप्तान का आउट होना परेशानी का कारण बन सकता है और वो जो रन है 10 से 15 रन पीछे रह सकती है बांग्लादेश की टीम। और अगली गेंद को इस बार नई बल्लेबाज ने ऑन साइड में खेला एक रन के लिए। शोरना अख्तर नई बल्लेबाज आई है और इस एक रन से अपना खाता खोला। स्कोर बढ़ता हुआ 107 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शर्मिन के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी अब आन पड़ी है। इस बार उन्होंने लेग स्टंप की तरफ हटकर थोड़ा सा स्ट्रोक के लिए जगह बनाई थी, खेला इस गेंद को स्वीपर कवर की तरफ, एक रन इस मौके पर उनको मिला है और इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 108 रन 4 विकेट के नुकसान पर। राधा यादव की अच्छी गेंदबाजी, अभी तक भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज, हालांकि एक कैच आज भी उनसे छूटा था, लेकिन उस दबाव से बाहर निकलते हुए दो सफलताएं अब तक अर्जित की। अगली गेंद को इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, एक रन दूसरे रन के लिए पलटना चाहती थी, लेकिन फील्डर तेजी के साथ इस गेंद पर हावी हुई, दूसरे रन की संभावना को तत्काल समाप्त किया। इस एक रन से स्कोर हो गया 109 रन 4 विकेट के नुकसान पर। राधा यादव को थोड़ी सी मदद मिली है, जब गेंद को उन्होंने हवा में छोड़ा है, फ्लाइट दी है, तो टर्न भी थोड़ी बहुत उनको हासिल हुई है। इस बार लगभग फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया, एक रन और आता हुआ, बढ़ता हुआ स्कोर 110 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने सफलता अर्जित की थी और अभी तक स्कोर 110 हुआ है। एक गेंद अभी भी इस ओवर की आनी बाकी है। इस गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से हल्के हाथों से खेला, एक रन के लिए भागी गेंदबाज, खुद पहुंची गेंद तक, थ्रो किया स्टंप्स की तरफ, लेकिन स्टंप पर गेंद टकराई नहीं, सुरक्षित अपनी क्रीज में दोनों बल्लेबाज। इसके साथ ही 17वें ओवर की समाप्ति, स्कोर 111 है 4 विकेट के नुकसान पर। रन रेट इस समय बांग्लादेश का 6.53 का, और ये जो विकेट गंवाया बांग्लादेश ने पिछले ओवर में कप्तान का, ये कुछ रनों में कटौती कर सकता है बांग्लादेश के लिए।
1: It certainly could, absolutely, but let's not forget Shorna Akhtar is the player in form in the match against Pakistan, scored 39 not out from 22 balls. Just 19 years of age, primarily plays as a leg spinner, but has the ability to hit it long and wide. And that's what the Indians must be wary of. And who knew? Radha Yadav, restored to the team today, is currently the best bowler with 2 wickets against her name. Those wickets coming of Shobana Mustari for 22 and Nigar Sultana Jyoti, the skipper, for 32. One of them caught by Deepti Sharma and the other stumped by Richa Ghosh. So India, in spite of some lapses in the field, now seem to have got their house in order as Deepti Sharma now comes in for her third, or rather for a fourth and final over, the 18th of the innings. Perhaps we'll be looking to finish with seam then, with one over each left for Renuka as well as Nandini after this. This one was played in towards deep mid wicket, which picks up another single and takes the score with that particular single along to 112 now for those loss of 4 wickets that they have lost in the past. 112 for 4, 17.1 overs bowled. The maximum that they've ever managed against India was 142, but that was chasing one of those 2 victories, or one of those 3 victories that they have had against the Indians in this format. That was in the 2018 Women's Asia Cup. Next ball played away on the onside, picks up a single. The boundaries certainly have dried up, almost 4 overs since the last boundary was scored. And that's meant that the Indian discipline has been in evidence, especially from the bowlers, and their spinners in particular doing a very good job. Deepti Sharma into her fourth and final over, none for 16 from her. Radha Yadav 2 for 15 from her 3 overs, and N. Sri Charani 3 tidy overs for 18 runs, no wickets taken. Next ball played away on the onside, but Deepti is very quick across the turf, very good fielder as it is, but especially of her own bowling.

0: gets across to it and makes sure that there's no possibility of any runs. If there are no wides or no balls, there are still 15 balls to come. And how well can Bangladesh maximize this? Oh no, in the meantime, another no ball signaled, which will mean that despite a dot ball, it is a free hit now for Shorna Akhtar. And she needs no second invitation, but this will probably just help her free herself up a little bit more. The youngster, the teenager, 19 years of age, takes strike. Skips down the wicket, plays it away on the offside, and it's just got in through the infield, and this is running away for a four after a long time. India have bowled a few no balls, and this is the first one perhaps which has been properly punished.
1: बिल्कुल, और खास तौर पर दीपी शर्मा का ये दूसरा नो बॉल था, और इस मौके पर जरूर फायदा उठाने में बांग्लादेश की बल्लेबाज कामयाब रही हैं.
0: Shorna Akhtar is a danger woman in this situation because she can wield the long handle effectively, as she showed. She was able to access the offside with a strong ring of fielders. This time looking to go leg side with the turn and plays it away on the onside. Wants to, but very quick fielding yet again from the Indians. N. Sricharani was very quick to get across from square leg. And that single takes the score along to 119 in the process. 119 for 4 at the moment. And thanks to that no ball, this is turning out to be a remarkably good over from the Bangladeshi perspective, because they've already picked up 8 runs and there are still 2 balls, legal balls to come. Deepthi round the wicket, worked away on the onside, almost returning to her on the bounce, and then she whips in a throw at the striker's end, almost as if to tell Sharmeen Akhtar that there's no getting away from me, let's not think about pinching a single of that one. Last ball of the spell from Deepthi. Remember, poised on 355 international wickets, needs that one wicket to move ahead of Julan Goswami, but looks like the legend will hold on to that record, joint record, for the moment, unless something happens of this last ball. Deepthi comes down the wicket, just past Deepthi, and this has been struck nicely enough, but it won't run away for four because Jemima Rodriguez is very good to clean up and restrict the scoring to just one. 120 for four, 18 overs bowled, just 2 overs to come.
1: तो 2 ओवरों की बल्लेबाजी और बांग्लादेश की टीम को करनी है, और इस समय बांग्लादेश की टीम अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है. रनों के लिहाज से अगर बात करें, 120 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर. दीप्ति शर्मा को इस मैच में कोई भी विकेट नहीं मिला, 4 ओवरों की गेंदबाजी उन्होंने कर ली है, जो अधिकतम गेंदबाजी की जा सकती है. 23 रन खर्च किए, कोई सफलता उनके खाते में आई नहीं. इकॉनमी उनकी 5.75 की रही. राधा यादव सबसे सफल गेंदबाज, 3 ओवरों में 15 रन देकर उन्होंने 2 विकेट लिए हैं. लेकिन अब जो ये नया ओवर होगा, 19वां ओवर बांग्लादेश की पारी का, ये जिम्मेदारी किसके कंधे पर होगी? क्या राधा यादव पर दाव लगाएंगी कप्तान हरमनप्रीत कौर? ये देखना दिलचस्प होगा इस समय, क्योंकि अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो उसमें रेणुका सिंह ठाकुर का ओवर भी बचा हुआ है और नंदिनी शर्मा का भी ओवर बचा हुआ है. तो इंतजार इस बात का कि गेंदबाजी किसके हाथों में सौंपी जाती है. शर्मिन अख्तर 12 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रही हैं, और शोरना अख्तर ने 7 गेंदों में 9 रन बनाए हैं. कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता इस समय बांग्लादेश के लिए, अगर उनको स्कोर को 230 से 240 के बीच में कहीं पहुंचाना है. 250 का लक्ष्य अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहां से 2 ओवरों में 30 रन बनाने होंगे अगर 250 तक पहुंचना है, और 15 रन प्रति ओवर थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर लग रहा है.
0: Absolutely, it looks like it will probably be in the vicinity of 130-135 at the moment, and that will be a good total considering the strength of Bangladesh lies in its spinners. However, India has a power-packed batting lineup as well, make no mistake. In that top 6 or top 7, there are at least 6 players who have more than 1000 runs in this format.
1: और नए ओवर की शुरुआत, और पहली गेंद पर ही भारत को क्या यहाँ पर कामयाबी मिली है. अगली गेंद की तैयारी, और इस गेंद को खेला है ऑन साइड में 1 रन के लिए. 122, 5 विकेट के नुकसान पर. 3 के साथ ये रन पूरा किया. थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर हुई थी, लेकिन तेजी के साथ रन के लिए भागी. 122, 7 विकेट के नुकसान पर. 19वें ओवर की ये दूसरी गेंद, हवा में इस गेंद को उठाकर खेला है. फील्डर वहां पर थी, लेकिन अनुमान उतना सही था नहीं. 1 रन, और फिर दूसरे रन के लिए भी तेजी के साथ पलटी. 2 रन, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 124 5 विकेट के नुकसान पर।

0: राधा यादव के हाथ में ही गेंदबाजी है। राधा की अगली गेंद को इस बार खेला है ऑन साइड में, फील्डर पहुंच पाएंगी क्या? नहीं, जी नहीं, इस मौके पर नहीं पहुंच पाए। 4 रन आता हुआ।
1: ये लगा आभा का चौका।
2: Yeah, it looks like an interesting decision because from the look of things, Sharmeen Akhtar has been retired out. So that has meant that Ritu Moni has come in and she's been more than effective. 8 of 3 balls. So perfect start for this little cameo from Ritu.
0: जी हाँ, तो एक विकेट हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश ने गेंदबाज के जरिए नहीं गंवाया बल्कि रिटायर्ड आउट हुई हैं बल्लेबाज। अगली गेंद और इस बार स्टंप्स पर जाकर सीधी टकराई है गेंद। एक और सफलता इस समय राधा यादव के लिए, भारत के लिए एक और कामयाबी और बांग्लादेश ने इस बीच अपना 6th विकेट गंवाया।
2: Radha firing it in. She's done this well. She's actually stuck to this fuller length, almost a block hole delivery. And Ritu Moni was just looking to make some room and access the offside. But as a result of the accuracy of the ball, it's the old dictum, you miss, I hit. And that's exactly what happened. A little bit of turn and that put paid to all hopes of Ritu. But she's done a good job. She's scored 8 of 4. And it's just the kind of finishing kick which this Bangladesh innings needed as the 6th wicket falls eventually for 128.
0: तो रितु मुनी इस गेंद को यॉर्क करा बैठी और अपना विकेट उन्होंने गंवाया है। बहुत जोरदार वापसी भारत की कुल मिलाकर। हालांकि रन पिछले 5 ओवर में बांग्लादेश ने तेज गति के साथ बनाए हैं, 42 रन बनाए हैं, 3 विकेट भी गंवाए हैं। इस वजह से थोड़ा सा दबाव बढ़ा है बांग्लादेश के ऊपर। क्या लक्ष्य होगा भारत के लिए इस मुकाबले में, ये देखना दिलचस्प होगा। सूर्ना अख्तर अभी भी मैदान पर मौजूद हैं, 7 गेंदों में 9 रन बनाए हैं। नई बल्लेबाज राबिया आई है मैदान पर, राधा यादव की गेंदबाजी का सामना करेंगी। 3 विकेट ले चुकी हैं राधा यादव। अगली गेंद इस बार स्वीप किया है इस गेंद को बैकवर्ड स्कारले की तरफ, फील्डर पीछे मौजूद हैं। 1 रन जरूर मिलेगा और इस 1 रन से खाता खोला नई बल्लेबाज राबिया ने और स्कोर बढ़ता हुआ 129 6 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी जो एक लक्ष्य माना जा रहा था कि हो सकता है इस मैदान पर कठिन 130 135 के आसपास का, उस तरफ तो बांग्लादेश की टीम पहुंच गई है। उनकी गेंदबाज कितनी प्रभावी रहेंगी भारतीय टीम की मजबूत बल्लेबाजी के खिलाफ, यह देखना होगा। इस बार क्रीज से बाहर निकलकर इस गेंद को हवा में खेला था, मिस फील्डिंग या कहीं की गेंद तक पहुंच नहीं सकी। 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: मिड ऑफ पर जो खिलाड़ी मौजूद थी लगभग उनके हाथों में गेंद पहुंच गई थी। डाइव जरूर लगाई इस गेंद के पीछे लेकिन पहुंच नहीं सकी, लगभग उनकी उंगलियों को छूते हुए गेंद पहुंची 4 रन के लिए।
2: And this is why somebody like Shobana Akhtar is so useful for these particular situations because she can be unpredictable as a batter. We've seen 2 of those boundaries in that similar position, just coming down the wicket and then making sure that she pierces the offside field with a lot of power. And it was that power and the placement which completely foxed Deepti Sharma, who was fielding at that mid-off position, diving away to her left but in vain. So Radha Yadav finishes her 4 overs. Outstanding effort from her, 3 for 28 from her 4 overs. The other bowlers to have bowled out Deepti, none for 23 from 4. And apart from that, Nandini, N. Sricharani, Renuka, all with 3 overs against their name, and Shefali Verma with 2. So the big question will be who comes back for that final over. Maybe Sricharani, considering she has been the form bowler. And indeed, the ball has been handed to her, but it also hands the opportunity to the Bangladeshis to perhaps go for a few big shots against spin. It's Rabia, who herself is a leg spinner, now goes for the sweep of the very first ball, nails it straight towards Radha Yadav, fielding at deep backward square leg. 1 of the first over, first ball of the last over. 134 for 6, Rabia on to 2 from 2 balls and brings Shobana Akhtar back on strike, 13 from 8 inclusive of those 2 outstanding boundaries that we saw right through the offside. 6.99 the current run rate, they'll be quite pleased with it, Bangladesh. It sees them on course to reach that 140 mark, which we have mentioned a few times on this commentary. Whether that is enough or not, time will tell. But as a fielding side or as a captain, Nigar Sultana Jyoti will be very happy with the kind of start that they've made after winning the toss and batting. Sricharani comes in again, looks for the Yorker, but it's very well bowled. Shobana Akhtar was making room away on the offside, on the onside rather, and because of that, she almost accessed too much room and ended up playing it straight towards point. Another dot ball, vital for India at this stage. 10 dot balls delivered by Sricharani, 10 also by Renuka, and 7 by Deepti Sharma in this innings. Harmanpreet has a quick chat, makes a couple of changes to the offside field because that is where Shobana Akhtar has been looking to go big.

0: कप्तान निगार सुल्ताना के 32 रन और ओपनिंग बैटर फिरदौस के 33 रन की बदौलत बांग्लादेश ने भारत को लक्ष्य दिया है 137 रन का। नमस्कार, मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट दर्पण तिखिया
1: और हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा मौजूद है। चेतन, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका।
2: धन्यवाद।
1: विजय धैया हमारे साथ मौजूद है जो एक और पूर्व भारतीय क्रिकेटर है और आजकल आपको कोचिंग के रूप में एक बतौर एक कोच T20 सर्किट में बड़े सक्रिय नजर आते हैं, कॉमेंटेटर है, ब्रॉडकास्टर है और आज हमारे एक्सपर्ट पैनल में मौजूद है। विजय, बहुत बहुत स्वागत आपका।
3: शुक्रिया।
1: और साथ साथ जाने माने खेल पत्रकार शशांक शेखर भी हमारे साथ मौजूद है। शशांक, बहुत बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद।
1: सो 136/8 इज व्हाट बांग्लादेश हैव मैनेज्ड। चेतन, सबसे पहले आपके तरफ, योर फर्स्ट रिएक्शंस टू दिस स्कोर एंड हाउ द इनिंग्स पैंड आउट।
2: देखिए, अगर आप बात करें, बीच में एक आधा बॉलर तो ऐसा होता है जो रन ज्यादा लौटाता है। अगर आप बात करें, नंदनी काफ़ी एक्सपेंसिव आज रही, लेकिन जैसी फील्डिंग भारतीय टीम की थी, अगर आप 136 की बात करें, 137 का टारगेट है, ये कम से कम 115-120 के आसपास का टारगेट होता है अगर सारे कैचेस पकड़े जाते। देखिए, कैचेस विन मैचेस, ये हर समय कहा जाता है, कैचेस ही हैं, विकेट्स गिरेंगी, रनों पे अंकुश लगेगा। तो आज मुझे लगता है कि भारतीय टीम अपनी फील्डिंग से बिल्कुल नाखुश होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी भारतीय टीम ने कैचेस छोड़े थे, हमने देखा नतीजा क्या हुआ और आज हमने कैचेस छोड़े हैं। और कोई एक दो कैचेस नहीं, मैं कहता हूँ पूरा बैग भर के आज कैचेस छोड़े हैं। एक हो मतलब चार गेंदों में आपने तीन कैचेस छोड़ दिए, तो वो कहीं ना ड्रेसिंग रूम में चीजें जाती हैं, वो आपको आपके बैक ऑफ योर माइंड रहती है। जिसने कैच छोड़ा वो अगर बल्लेबाज है तो उसको वो चीजें अफेक्ट करती है। लक्ष्य 136 रन, 137 का टारगेट, भारतीय टीम आराम से इसको पूरा कर ले।
0: जी बिल्कुल, ड्रॉप कैचेस भारतीय टीम के लिए एक बार फिर से चिंता का विषय है। लेकिन विजय, एक जो पॉजिटिव आज देखने को मिला है वो है राधा यादव की वापसी। अपने पहले ही मैच में उन्होंने तीन विकेट, वो भी तीन इम्पॉर्टेंट विकेट, पहला शोभना मुस्तारी का, उसके बाद कप्तान निगार सुल्ताना का विकेट और फिर बाद में रितु मोनी का विकेट। शानदार कमबैक।
3: बहुत ही बढ़िया कमबैक और आई थिंक ये एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ उनका प्रदर्शन हमेशा बहुत बढ़िया रहता है और इसी वजह से शायद जो भारतीय थिंक टैंक है उन्होंने ये सोचा होगा कि आप एक उस खिलाड़ी को जिसका कॉन्फिडेंस एक अपोजिशन के खिलाफ बढ़िया रहता है उनको आप ये मौका दें। लेकिन एक और चीज़ की फिर से यहाँ पर पुष्टि हुई है कि एक स्पिनर को खिलाया गया इस मैच में, जो इस टूर्नामेंट में उनका पहला मैच है, वो आके अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आप बॉलिंग कार्ड की तरफ नज़र डालेंगे तो दो मीडियम पेसर्स आपके आपको वहाँ दिखेंगे जिन्होंने अपने चार ओवर पूरे नहीं किए। तो जो चिंता का सबब आपके लिए बना हुआ है आज, वो प्रेशर जो आप हम बात कर रहे हैं, वो पहले छः ओवरों में बहुत बढ़िया बैटर्स ने जो थे बांग्लादेश के, उन्होंने भारतीय टीम के ऊपर डाला। मुझे लगता है कि अगर आप मैच शुरू होने से पहले उन्हें इतने रन देते तो शायद वो ले लेते, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर वो ये डिसअपॉइंटेड होंगे कि उन्होंने 150 का आंकड़ा पार नहीं किया।
1: और इसी चीज की हम चर्चा पहले प्रोग्राम में भी कर रहे थे। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 16 खिलाड़ियों का इस्तेमाल भारतीय टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में कर चुकी है। 15 का स्क्वाड होता है, श्रेयंका पाटिल चोट के चलते बाहर हो गई, 16 खिलाड़ियों का प्रयोग भारतीय टीम कर चुकी है। और शशांक, हमने देखा कि कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसने अपने 15 के 15 खिलाड़ी अभी तक इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल किए हों। कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि शायद अभी भी हम खोज कर रहे हैं उस परफेक्ट कॉम्बिनेशन की।
4: डेफिनेटली बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इससे ये भी पता चलता है कि प्रिपरेशन के लेवल पे कुछ कमियां रह गई थी, सिलेक्शन और प्रिपरेशन और एक वेल इंटीग्रेटेड विजन के साथ इस टूर्नामेंट में हम शायद नहीं आ पाए, या पहले मैचेस में खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो था उम्मीद से नीचे रह गया। तो ये तय बात है कि आप इतने सारे खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, फिर वापस ला रहे हैं।

0: मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, तो एक तो खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी घटता है, दूसरा कि वो एक जो 11 खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन होता है जो सब एक साथ टीम में मैदान में उतरती हैं और फिर खेलती हैं, वो भी कई बार वो ब्रेक होता है। तो कुल मिलाकर के ये कहीं से भी आदर्श स्थिति नहीं है, और चैंपियन टीम्स इस तरह से तो डेफिनेटली नहीं उतरती हैं मैदान में।
1: जी चेतन, आपने बात करी क्योंकि ड्रॉप कैचेस हमारी फील्डिंग की, लेकिन तारीफ करनी होगी बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्तान।

0: डिफरेंट टीम्स इस तरह से तो डेफिनेटली नहीं उतरती हैं मैदान में।
1: जी चेतन, आपने बात करी क्योंकि ड्रॉप कैचेस हमारी फील्डिंग की, लेकिन तारीफ करनी होगी बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना की भी। कई सारे रिकॉर्ड्स हैं T20 में उनके नाम, बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने का रिकॉर्ड उनके नाम है, सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है, और T20 में शतक जड़ने वाली पहली बांग्लादेशी खिलाड़ी भी हैं वो।
2: देखिए आज 32 रन बनाए, और अगर हम उनका स्ट्राइक रेट की बात करें तो 118 के स्ट्राइक रेट से जब आप रन्स बनाते हैं वहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं मिडल ऑर्डर की तरफ से रन्स बने हैं। देखिए हर समय कहते हैं कि अगर ऊपर से अगर आपको रन ना मिले, जैसे पहली विकेट 8 रन पर गिर गई थी, उसके बाद आपको एक स्टेबिलिटी की जरूरत थी, साझेदारियों की जरूरत थी। साझेदारियों को आप बुनेंगे तभी आप मैच में आगे जा पाएंगे। और आप बांग्लादेश की बैटिंग देखें, नंबर 2, 3, 4 सबने आके रन बनाए हैं, बेशक 33, 22, 32। तो अगर आप उस स्थिति में टीम को लाकर खड़ा कर देते हैं, जैसे विजय ने भी कहा कि 15 रन 14 और 15 रन, 150 साइकोलॉजिकल आपके मतलब जहन में चीज चलती रहती है कि 150 का टारगेट है, बट 137 जो चेज करना है वो भी चीज़ें इतनी आसान होगी नहीं। देखिए बनाना पड़ेगा, उन्होंने रन्स ऑन बोर्ड लगा दिए हैं, आपको करने पड़ेंगे, और चेज हर समय प्रेशर में चीज़ें आसान नहीं होती। तो लेट्स होप एक अच्छी साझेदारी ऊपर से पन पे अगर आप एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे मिडल ऑर्डर के लिए, यू विल डेफिनेटली विन दिस गेम।
3: मैं एक बार ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आपने बांग्लादेशी कप्तान के बारे में बात करी, कुछ लोग कप्तान होते हैं और कुछ लोग नायक होते हैं, ये उनमें से हैं। इनकी तरफ अगर आप देखेंगे तो इनका रोल सिर्फ वही नहीं है जो फील्ड में नज़र आता है, इनका रोल फील्ड के बाहर भी है। कुछ ऐसे खिलाड़ी रहते हैं जो आप जिनको आप आदर्श मानकर वो इंस्पायर करते हैं। तो अगर बांग्लादेश वुमेन क्रिकेट के बारे में आप बात करेंगे तो ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी यंग लड़कियों को वहाँ पर इंस्पायर किया है इस गेम को खेलने के लिए। तो इनका जो कद है वो और ज़्यादा बड़ा है उनके ड्रेसिंग रूम के अंदर, और वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर भी जब आप बात करते हैं कुछ नायकों की तो इनका वहाँ जिक्र होता है, ये उस तरीके की खिलाड़ी हैं।
1: जी नायकों पर हम फिर से आएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अपना सवाल पूछे।
4: जी तो भारत ने कैच ड्रॉप किए, लगातार ये चर्चा का विषय है। और शशांक आपकी तरफ आऊंगा मैं, पहले 6 ओवर में हमने देखा 4 कैच ड्रॉप हुए, पाकिस्तान के खिलाफ भी 3 कैच ड्रॉप हुए थे, कैसे देखते हैं आप इसको और ऐसे में फील्डिंग कोच की भूमिका को कैसे देखते हैं?
0: ये बड़ा दिस इज रियली ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि एक भारत की टीम डेफिनेटली 3-4 जो बड़ी टीम्स हैं महिला क्रिकेट में वर्ल्ड में उनमें से एक टीम है, इस प्रकार की फील्डिंग का प्रदर्शन जो है, मुझे लगता है कि पहले भी कैचेस छूटते हैं मैचेस में और मिस फील्डिंग्स होती है, लेकिन कंसिस्टेंटली इतना ज़्यादा ख़राब प्रदर्शन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी राधा यादव जो हमारे वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स हैं उन्होंने 2 कैच छोड़े थे और आज भी उन्होंने एक आसान सा कैच छोड़ा, तो और बहुत सारी मिस फील्डिंग्स हुई, तो इससे ये क्यों हो रहा है ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगता ही है फील्डिंग कोच पे। लेकिन इतने सीनियर प्लेयर्स हैं और अनुभवी खिलाड़ी हैं, बड़े मैचेस का इनको अनुभव है, तो ये और ये एक ऐसी टीम से खेल रही हैं जहाँ पे इनके ऊपर बहुत प्रेशर नहीं है, दे आर बिग फेवरेट्स टू विन दिस मैच, और बांग्लादेश को 23 में 20 मैचेस में हराया हुआ है इंडिया ने इसके पहले, तो इससे मुझे लगता है कि एक जिसको डिस्पिरिटेड टीम बोलते हैं ना, डिस्पिरिटेड और ये हारी हुई टीम जैसे कि इनको लगता है कि अब ये टूर्नामेंट में इनका कोई भविष्य नहीं है, और जो फील्डिंग प्रदर्शन है इस मैच में उनकी बैटिंग पे शायद असर पड़ सकता है, और ये 137 रन जो हैं वो उतने आसान नहीं होंगे, और यही अगर ऐसा ही प्रदर्शन भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहा तब तो कोई मतलब क्या कहें आप समझ सकते हैं जो सबसे अच्छी टीम है।
4: जी तो अपने श्रोताओं को बता दें कि बांग्लादेश के द्वारा बनाया गया भारतीय टीम के खिलाफ ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

0: G20 आईज में, तो 137 की चुनौती है, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं डिस्कस करने लायक विजय, फटाफट उन पर नजर डालेंगे। श्री चरणी ने आज एक बार फिर इंप्रेस किया, फिर 3 विकेट लिए हैं, 2 विकेट लिए माफ कीजिएगा, और इसी के साथ T20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली वो खिलाड़ी बन गई है,
1: पहला वर्ल्ड कप खेल रही है अपने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप है उनकी तरफ अगर नजर डालेंगे तो वो कौन से ओवर डालती हैं, सबसे मुश्किल ओवर आपको डालती हुई नजर आती हैं, पहले 6 ओवर में डालती हैं और उसके बाद बहुत कम है वर्ल्ड क्रिकेट में आप देखें कि आखिरी ओवर में T20 क्रिकेट के अंदर आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी करते हुए दिखे, और वो भी एक ऐसी खिलाड़ी जो अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आई है, नंबर वन बॉलर है इस समय T20 क्रिकेट में। जहां तक वर्ल्ड क्रिकेट के बारे में बात करें, ये सिर्फ स्किल के बारे में नहीं बताता है, ये इस यंगस्टर के माइंड सेट के बारे में भी बताता है कि वो मानसिक रूप से भी कितनी मजबूत है।
2: जी जितन, अभी बात की विजय ने नायकों की, जैसे आज निगार सुल्ताना की परफॉर्मेंस रही है, और पिछले कुछ मैचेस में हम और खिलाड़ियों को देख चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए मारिजान काप ने वो काम किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिस पेरी ने वो काम किया पाकिस्तान के विरुद्ध अपने मैच में। अगर हम बात करें भारतीय टीम की, तो भारत के सबसे अनुभवी प्लेयर हरमनप्रीत कौर, 201वां T20 उनका ये होगा, उनको स्टार्ट हर बार मिल रहा है हम देख रहे हैं, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रही हैं, एंड शी इज नॉट प्लेइंग हर नेचुरल गेम, एक शेल में दिख रही हैं।
3: देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कोशिश करते हैं, वो कोशिशें आपकी कामयाब होती नहीं है। हरमनप्रीत मतलब 200 अभी आपने भी कहा 201 का इंटरनेशनल गेम्स खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, वर्ल्ड कप का प्रेशर है और ये एक प्लेयर आपको मैचेस जिता नहीं पाएगा, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं ला पाएगा। देखिए, इट हैज़ टू बी ए कलेक्टिव एफर्ट। स्मृति की आप बात करें, शिफाली की बात करें, जमीमा की बात करें, दे हैव टू कम कलेक्टिव। देखिए, बहुत भरोसा है, मैं जैसे बार बार कहता हूँ कि ऊपर के क्रम के बल्लेबाज जब तक एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे ना, आप मैचेस नहीं जीत पाएंगे। आज भी ये अप्लाई कर
4: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपये होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। आईसीसी क्रिकेट टी20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत

0: इन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा की देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
0: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना

0: करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. India-UK free trade agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hiked to 2,500 rupees from 1st of July. Tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, which will enter into force from July 15. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
3: partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to

0: External Affairs Ministry said in a statement that the contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. In the ICC Women's T20 World Cup, Bangladesh set a target of 137 runs against India in Group A clash of the Emirates Old Trafford in Manchester. Chasing the target, India were 47 for 1 in 4.3 overs when reports last came in. Earlier, Bangladesh won the toss and opted to bat first. While batting, Bangladesh scored 136 runs with a loss of 8 wickets in the stipulated 20 overs. In the FIFA World Cup, Curaçao will take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia in US today, late night. The match is scheduled to begin at 1:30 a.m. IST. In another Group E fixture, Ecuador will face Germany at East Rutherford in US. The match will begin at 1:30 a.m. IST. Later, Japan will take on Sweden in Group F match in Arlington, US tomorrow early morning. The IMD has said that the conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into parts of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh and Uttarakhand during the next 3 to 4 days. The IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim for the next 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India-UK Free Trade Agreement, most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hike to 2,500 rupees from 1st of July, tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया आजाद तिजारती मुआहदा अब तक का सबसे जामे मुआहदा है। वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 164 हो गई है। वजीर आजम मोदी ने ताजियत का इजहार करते हुए बचाव और इमदादी कार्रवाइयों में ताउन की पेशकश की है। राम मंदिर अतियात में खुर्द बुर्द के मामले में उत्तर प्रदेश SIT की इब्तदाई रिपोर्ट की सिफारिश के बाद FIR दर्ज कर ली गई है। यकुम जुलाई से 36 सफात वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। इसी तरह तत्काल फीस अब 5,000 रुपये होगी। भारत 28 जून से बांग्लादेश के शहरियों के लिए सियाहती वीजा जारी करने का अमल दोबारा शुरू करेगा। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात फिलाडेल्फिया में ग्रुप ई के एक मैच में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब खबरें तफसील से। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी व तजारती मुआहदा CETA आलमी मईशत को तकवियत देने में अहम रोल अदा करेगा। आज लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम IGF UK इंडिया वीक से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बरतानिया के साथ आजाद तजारती मुआहदा FTA भारत की जानिब से अब तक किए गए मुआहदों में सबसे जामे मुआहदा है। जनाब पीयूष गोयल 15 जुलाई से भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी व तजारती समझौते के नफाज के लिए दोनों मुल्कों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 3 रोजा दौरे पर बरतानिया पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों मुल्कों को आलमी वैल्यू चेन से मजीद जोड़ेगा और इक्तिसादी ताउन और तरक्की के नए मौके फराहम करेगा। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक दिफा, अहम मादनियात और दिगर कलीदी शोबों में ताउन को मुसलसल बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और बरतानिया दहशतगर्दी के खात्मे और आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग की खातिर मुश्तरक अज़्म रखते हैं।

0: कोच को, जैसा देवायन ने बताया कि संभवतः इसी सोच के साथ मैदान पर भेजा गया है कि भारत जल्दी से जल्दी इस मुकाबले को समाप्त करना चाहता है ताकि नेट रन रेट और बेहतर हो सके। भारत का नेट रन रेट के मामले में अभी भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया के बाद, दक्षिण अफ्रीका उससे नीचे तीसरे स्थान पर है। इसी वजह से अंक तालिका में अंक बराबर होने के बाद भी जो है वो भारतीय टीम आगे है।
1: One more catch drop because this was played straight back at Rabia but just not able to hold on. Yastika Bhatia living dangerously.
0: जी हाँ, एक और मौका भारत के विकेट का था, बांग्लादेश की गेंदबाज राबिया के पास फॉलो थ्रू में एक आसान सा मौका आया था। यास्तिका ने सीधे सामने की तरफ सीधे बल्ले से खेला था, आसान सा कैच हो सकता था लेकिन ये मौका हाथ से जाता हुआ। दो कैचेस तो अभी तक बांग्लादेश ने भी कम से कम टपकाए इस बार। इस गेंद को पैडल स्वीप कर दिया है विकेट के पीछे की तरफ और ये 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: बिल्कुल आसान सी ये गेंद थी यास्तिका के लिए, दिशा से भटकी हुई गेंदबाजी, बढ़िया ओवर की शुरुआत की थी, फॉलो थ्रू में एक मौका आया था और इस बार लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर गेंद। आसानी से इस गेंद को देखा, छोटी गेंद भी थी और पूरा फायदा उठाया, खेल दिया इस गेंद को 4 रन के लिए। इस चौके के साथ अब भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 80 दो विकेट के नुकसान पर। दो विकेट भारत ने दोनों सलामी बल्लेबाजों के गंवाए हैं, पहले स्मृति मानधना का विकेट गंवाया और उसके बाद शेफाली वर्मा आउट होने वाली बल्लेबाज थी। ऋचा घोष ने अभी तक कोई रन नहीं बनाया है, दो गेंदों का सामना किया जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा वो समय दूर नहीं है जब उनके बल्ले से बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिल सकते हैं। 57 रन अब चाहिए भारत को, 64 गेंदों का सामना करना है। 10वां ओवर चल रहा है भारतीय पारी का। अगली गेंद इस बार कट किया इस गेंद को और तेज गति से गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, पीछे भाग रही है तो फील्डर क्या रोक पाएंगी, गेंद की रफ्तार खुद ब खुद कम हो गई है और डाइव लगाते हुए इस गेंद को रोका गया है। 2 रन और फिर क्या ये 3rd रन के लिए पलटेंगी? जी हाँ, 3rd रन भी पूरा कर लिया आसानी के साथ, 1 रन जरूर इस मौके पर बचाया फील्डर ने। 3 रन और आता हुआ यास्तिका के बल्ले से, 83 हो गया भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। यास्तिका भाटिया पहुंच गई 15 गेंदों में 21 रन पर, उनकी पारी में अभी तक 3 चौके आए हैं। आज फील्डिंग दोनों ही तरफ से उतनी अच्छी हुई नहीं है, भारत को भी सोचना होगा अपनी फील्डिंग पर ऑस्ट्रेलिया जैसे महत्वपूर्ण मैच से पहले, क्योंकि उस मैच में एक भी मौका गंवाना यानी पूरे मैच का परिणाम बदलने के समान हो सकता है। अगली गेंद इस ओवर की 4th गेंद और इस गेंद को इस बार खेला है पॉइंट की तरफ, डाइव लगाकर रोकने का प्रयास और गेंद को रोक लिया गया, रन इस मौके पर कोई भी नहीं बनेगा। इस ओवर में अभी तक 7 रन आए हैं, 4 गेंदें हुई हैं, 2 गेंदें अभी भी राबिया की बची हुई हैं। ऋचा घोष स्ट्राइक पर हैं, 3 गेंदें खेल चुकी हैं, ऋचा के बल्ले से अभी तक कोई रन नहीं आया है। यास्तिका दूसरे छोर से वो काम कर रही हैं जिस भूमिका के लिए ऋचा को मैदान पर बुलाया गया है। 15 गेंदों में 21 रन बनाए हैं यास्तिका ने। रिक्वायर्ड रन रेट भारत के लिए 5.22 का और वर्तमान रन रेट 8.58 का। अंतिम गेंद इस ओवर की और इसको खेला है ऑन साइड में 1 रन के लिए और फिर 2 रन के लिए पलटने का प्रयास लेकिन 2 रन यहां पर है नहीं। इसके साथ ही 1 रन और जुड़ता हुआ भारत के खाते में, बढ़ता हुआ स्कोर 84 2 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर इस ओवर में अभी तक 8 रन, जिस गति से भारत रन बनाता चला जा रहा है उसको अभी तक लगातार कायम रखने में कामयाबी। इस बार क्रीज से बाहर निकलकर खेलने का प्रयास, खेला इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन और आता हुआ ओवर की समाप्ति। राबिया के इस ओवर में कुल मिलाकर 9 रन आए और भारत का स्कोर हो गया 10 ओवर के बाद 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
1: मच मोर कम्फर्टेबली प्लेस देन व्हाट बांग्लादेश वर एट दिस स्टेज, 52 नाउ रिक्वायर्ड फ्रॉम 60, इट डज लुक लाइक अ मेयर फॉर्मेलिटी बट दे आर स्टिल ऑफरिंग चांसेस एंड यू नेवर नो बांग्लादेश इफ दे कैन कन्वर्ट सम ऑफ दोस समथिंग कुड स्टिल गिव फॉर देम। But not a surprise to see Richa Ghosh in at number 4 because when she was 16 years of age, she made her T20I debut in February 2020 against Australia in Australia. And in a very first match, the Indian team management thought it fit to send her in at number 3. She played as a specialist batter in that match, only made 17, but showed signs of the kind of courage and the kind of ability that she had. And also came on as an impact sub, or rather a concussion sub, in fact, in that World T20 final that year. Naid Akhtar begins a fresh over, yet again driven straight back towards the bowler, wasn't very far away yet again from perhaps being a

0: away fiercely all the way for four to backward point.
1: ये लगा आभा का चौका.
0: Just a bit of room on offer and that's all it takes. Richa Ghosh has very strong wrists and those came into action and just made sure that she flayed it away. And once she did that, once she found the gap, there was absolutely no way that deep point was catching up with it. Nahida Akhtar was a little unhappy, but she really should be more unhappy about the fact that she was offering width to Richa Ghosh. So that boundary takes India along to 90 for the loss of that those two wickets. The two openers dismissed, Smriti Mandana for 8. And Shefali Verma, after scoring a fantastic 53 from 34 runs, her second half century of this ICC World T20 2026. Outside of some cutaway yet again, finds the gap, threads the needle, 4 more.
1: Ye laga abha ka choka.
0: And now that Richa Ghosh, Dharmendra, has come to terms with the pace of this wicket, she's figuring out what Nahida is doing and responding accordingly, playing it very late.
2: बस वक्त की ही तो बात थी. इस बात का पूर्वानुमान था कि जैसे उनको मौका मिलेगा वो मौका गंवाएंगी नहीं और लगातार दो चौके इस बात का इशारा कर रहे हैं कि अब उन्होंने पिच के मिजाज को भांप लिया है और इस तरह के स्ट्रोक्स उनके बल्ले से आते रहेंगे.
0: Just 43 runs required now as India move along to 94 for 2 and from 1 from 5 balls she's on 9 from 7. The next ball looks for the sweep. It's a big LBW appeal. It's been given. India immediately review. It did look interesting, but well, it might stay umpire's call. That is the only concern. Otherwise, it seemed like it straightened, but may have been just about impacting somewhere around off stump, if not outside. What do you think, Dharmendra? That was close.
2: जी बहुत नजदीकी ये मामला है और चूंकि umpire का इशारा आया है बांग्लादेश के पक्ष में तो ये थोड़ी सी परेशानी की बात हो सकती है. बल्ले का किनारा क्या लिया है इस गेंद ने ये भी देखना होगा. बहुत करीब बहुत नज़दीक से बल्ले के गई है गेंद और ऑफ स्टंप के बाहर भी ऐसा लग रहा है एक बार की ये गेंद जा रही थी. ऊंचाई भी थी इस गेंद में तो yeah. अभी तीसरे अंपायर के फैसले का इंतजार करना होगा.
0: Yeah, definitely not taking any of the bat. In fact, the bat moving quite quickly and beaten by the pace of that lack of pace. Richa Ghosh was completely committed to that sweep shot. But the question is, where is that impact and is it actually going on to hit the stumps? The one factor in her favor, as we mentioned before, is that it has already been given out. So if it even as much as just glances a little bit of the off stump, then that will remain out. But there was a shuffle across. For the moment, it does look like the impact is outside off. So it would have gone on and missed the off stump in any case, perhaps. But yeah, impact outside off. India earn a reprieve. And Richa Ghosh given out. LBW at 9 is spared because of the timely review that she took.
2: जी हाँ, बहुत सही समय पर उन्होंने वक्त गंवाए बिना रिव्यू लिया और उनके पक्ष में गया ये रिव्यू और इस तरह से जो भारत के ऊपर खतरा मंडरा रहा था वो टल चुका है.
0: नाहिदा अख्तर इन अ सेकंड ओवर सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम दैट शी हैज ऑलमोस्ट पिक्ड अप अ विकेट एंड अगेन इट बेग्स द क्वेश्चन व्हाट वाज शी डूइंग कमिंग इन एज द फिफ्थ बॉलर. सो सम स्ट्रेंज डिसीजंस फ्रॉम बांग्लादेश परहैप्स अ लिटिल बिट टू डिफेंसिव इन देयर ओवरऑल अप्रोच स्पेशली व्हाइल डिफेंडिंग 137. लास्ट बॉल played back towards the bowler and she does a great job diving away to her right and making sure that there's no runs on offer. 11 overs bowled, 94 for 2 India.
2: तो ये ओवर काफी कुछ घटनाओं भरा रहा. एक ऐसा मौका भी आया जब रिचा घोष को अंपायर ने आउट करार दिया. उन्होंने रिव्यू लिया और उस रिव्यू में ये साफ तौर पर सामने आया कि इंपैक्ट जो था गेंद का वो ऑफ स्टंप के बाहर था और रिचा घोष बच गई. हालांकि अंपायर का फैसला बांग्लादेश के पक्ष में जरूर गया था लेकिन इंपैक्ट की वजह से रिचा घोष मैदान पर अभी भी मौजूद हैं और भारत का स्कोर 94 रन 2 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर्स के बाद रन रेट अभी भी भारत का 8.54 का रिक्वायर्ड रन रेट 5 से भी नीचे आता हुआ 4.77 का और अंतिम जो 5 ओवर रहे हैं भारत के लिए उसमें 31 रन आए हैं. 1 विकेट का नुकसान हुआ है और वो विकेट था शेफाली वर्मा का. 2 विकेट पर 94 रन बनाए हैं. नए ओवर की शुरुआत. पहली गेंद और इस गेंद को लॉब किया है सीधे फील्डर के हाथों में. ये गेंद जाकर समाई है. ये नुकसान भारत के लिए बहुत बड़ा. यस्तिका भाटिया का विकेट भारत ने इस मौके पर गंवाया है. क्रीज से बाहर निकलकर इस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास था. रितु मोनी ने चतुराई भांप ली थी बल्लेबाज की. गेंद की लंबाई को थोड़ा छोटा कर दिया. गेंद तक पहुंच नहीं पाई बल्लेबाज और सीधे एक आसान सा कैच

0: पकड़ा गया मिड ऑफ पर। इस तरह से भारत के लिए तीसरे विकेट का नुकसान 94 पर, और यस्तिका भाटिया इस समय मैदान से बाहर जा रही हैं। 18 गेंदों में 23 रन उन्होंने बनाए, 3 चौके लगाए, लेकिन भारत के लिए एक बढ़िया पारी खेल रही थी। उनके विकेट के पतन से निश्चित रूप से जो रनों की गति है उस पर असर पड़ सकता है, और भारत का जो लक्ष्य है इस समय कि न सिर्फ मैच को जीता जाए बल्कि रन रेट, नेट रन रेट जो है उसको और बेहतर किया जाए, उस पर थोड़ा सा विराम लग सकता है।
1: एब्सोल्युटली, यस्तिका भाटिया अगेन जस्ट प्रॉमिसिंग अ लॉट बट डिलीवरिंग नॉट इनफ। 8 of 2 at one stage, so consequently she faced another 16 balls and she was only able to add 15 runs to that. And that sums up some of the issues that she has had in her career in T20 cricket. It brings in Jemima Rodrigues though, and I just think even though she's come in at number 5, she's probably best suited to bat at number 3. If you recall in the 50 over World Cup as well, India played its best cricket when Jemima Rodrigues came in at number 3.
0: और उसकी वजह शायद ये हो सकती है पीछे भेजने की कि इस टूर्नामेंट में उनकी फॉर्म उतनी अच्छी रही नहीं है। इस बार गेंद को ड्राइव किया उन्होंने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, एक रन के लिए खाता खोला जेमिमा रॉड्रिग्स ने, और इस एक रन से भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 95 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सफलता निश्चित रूप से बांग्लादेश की उम्मीदों को बढ़ा रही है, 3 विकेट उन्होंने लिया है। इस मैच में संभावनाएं उनके लिए तभी बनती हैं जब वो लगातार विकेट लेते रहें, और आश्चर्यजनक कोई परिणाम उनके पक्ष में। एज भी गेंद को कट करने का प्रयास किया था रिचा ने, लेकिन गेंद बल्ले से काफ़ी ज़्यादा दूर थी, थोड़ी सी नीची भी रही और पूरी तरह से चकमा खा गई रिचा घोष। 10 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रही हैं, एक बार फिर से अंपायर से स्टांस ले रही हैं अपना, और अब खेलने के लिए तैयार हो रही हैं। लेग स्टंप का स्टांस उन्होंने लिया है, जगह चाहती हैं ऑफ स्टंप के बाहर कि मिले उनको और कोई बड़ा स्ट्रोक वो लगा सकें। उनकी बल्लेबाजी की शैली भी यही है, बड़े स्ट्रोक्स लगाती हैं, तेजी से रन बनाती हैं, और अब अगली गेंद का सामना करेंगी रितु मोनी की अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेल दिया है ऑन साइड में मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, एक रन आसानी से, फील्डर पीछे मौजूद हैं। इस एक रन से स्कोर अब भारत का हो गया है 96 3 विकेट के नुकसान पर, जो भारत ने 3 विकेट गंवाए। दोनों सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना, शेफाली वर्मा और अभी अभी यस्तिका भाटिया का विकेट भी भारत ने गंवाया। एक आसान सा कैच लपका गया था मिडॉन पर यस्तिका का। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को कट किया है खूबसूरत तरीके से, लेकिन पॉइंट पर मुस्तैद फील्डर डाइव लगाते हुए इस गेंद को रोका। निश्चित रूप से कुछ रन बचाने में कामयाबी मिली है इस बार। 96 अभी भी भारत का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। भारतीय खेमा थोड़ा सा निश्चिंत, क्योंकि उनको ये तो लग रहा है कि जीत तो उनके पाले में आने वाली है, लेकिन कितनी जल्दी आएगी इसकी भी एक संभावना भारतीय टीम तलाश रही है। अंतिम गेंद इस ओवर की, 49 गेंदों में भारत को चाहिए 41 रन। रितु मोनी की ये गेंद, और इसको ऑन साइड में खेला है मिड विकेट पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। एक रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई, 12वां ओवर समाप्त हुआ, और स्कोर भारत का 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
1: Yeah, 42 win from 8 overs, so exactly 5 runs per over required, but quiet overs will perhaps just put a little bit of pressure on the opposition. We saw that happen in the previous over where Rithu Moni gave just 3 runs and picked up that 1 wicket, and that kind of impact will help. If another bowler or two can deliver another couple of such overs, then we can suddenly see India staring at a situation where they need somewhere in the vicinity of 6 runs per over in the last 5 overs or so. But for the moment, they seem to have this chase well under control with two explosive batters out there in the middle, Richa Ghosh and Jemima Rodrigues, and still some batting firepower to come. They've got the skipper, Harmanpreet Kaur, they've got Deepti Sharma, and after that, it's basically the bowlers. So Bangladesh need wickets. Rabea has been a little inconsistent with her line and length. The leg spinner begins her third over, and the very first ball outside off stump, punched away by Jemima towards sweeper cover, where Fahima Khatun is fielding as the substitute fielder. Rabea's second over particularly was rather expensive, 9 runs of it, which began with a shot which was played by Yastika Bhatia behind the stumps, and from there on she gave another 3 to Yastika and then another couple of singles. But otherwise, it's been good tidy stuff. This time, looking for the sweep, this one will be given out, and this one I suspect will stay out. Although she has gone in for the review yet again, but this looked a lot closer, Dharmendra, because it kept a little low and after pitching it straightened as well.
0: Yeah, nishchit roop se is baar thodi si zyada mushkil hai Richa Ghosh ke liye. Sweep karne ka prayas kiya, gend ki line ko puri tarah se chuki,

0: गेंद पैड पर टकराई, अंपायर की उंगलियां आसमान की तरफ और मुश्किलें थोड़ी सी इस समय बढ़ती हुई ऋचा घोष की, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि गेंद लगभग स्टंप्स की लाइन में उनके पैड पर टकराई है, नीचे भी रही है गेंद, तो रिव्यू जरूर लिया है लेकिन उसका कितना फायदा मिलेगा ये इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि ऋचा घोष मुश्किल में है।
1: Absolutely no contact with the bat whatsoever, so missing the sweep by a huge distance on both occasions, and it probably just should serve as a little note that in that match against Australia, the sweep is a shot which, unless she's absolutely sure, she should probably not pull out of her shelf, because she's got so much of power and ability to go straight down the ground as well. Just across the line is where she winds up in a little bit of trouble. And just judging by her body language as well, now that she's seen a replay, she doesn't seem to convince that she will escape this time. In fact, the wicket stays at umpire's call. So the height was perhaps the only factor. It wasn't a bad review in that sense. But Bangladesh have struck yet again. Richa Ghosh up at number 4, but it doesn't come off. She has to go back for 10. And it's an important wicket for Rabia Khan, because she's the leg spinner. And now that she has that wicket behind her, in a third over, maybe she'll bowl with a lot more confidence. India rocked at 98 for 4.
0: इस बार अगर अंपायर का फैसला ऋचा घोष के खिलाफ न गया होता तो शायद इस बार भी लकी वो साबित हो सकती थी, लेकिन चूंकि अंपायर ने फैसला आउट कर दिया था, गिल्लियों पर गेंद टकरा रही थी और तीसरे अंपायर ने आउट करार दिया, इस तरह से भारत को लगने वाला ये एक और नुकसान और चौथा विकेट गवाया है भारत ने इस मौके पर। ऋचा घोष का विकेट बहुत महत्वपूर्ण विकेट भारत के लिहाज से, क्योंकि भारत के दिमाग में, भारतीय खेमे के दिमाग में जो जल्दी से जल्दी मैच को जीतने की एक रणनीति थी, उस पर काफी कुछ असर पड़ा है इस विकेट के गवाने के बाद।
1: हरमनप्रीत कौर द स्किपर कम्स इन एंड इमीडिएटली निगर सुल्ताना ज्योति हैज अ स्लिप इन प्लेस, बिकॉज शी डज लव प्लेइंग दोस लैप शॉट्स, दोस स्कूप शॉट्स एज वेल। Rabia with the very first ball right on the money, just about at middle and leg, and she taps it away on the onside, picks up a quick single. This will do Harmanpreet's cause a world of good as well, just getting off the mark immediately, because this can suddenly become a pressure situation. Just the way that Richa Ghosh wicket fell, India at that stage were coasting along not long ago. They were 94 for 2, but suddenly inside 4 runs, they have lost 2 wickets and now stare at 99 for 4. And perhaps the last recognized pair. There are all-rounders after this, the likes of Deepthi Sharma, as well as a couple of the bowlers who can bat quite usefully, but you don't want them coming in with too many balls left or too many runs left to get. Next ball outside off stump, Jemima drives it through towards long off, picks up a single and brings up the Indian 100. 12.4 overs. The first 50 had come very quickly. That had come off just about 28 balls. But the next one has taken a slightly longer route to get there. 100 for 4, 37 required now of 44. What Bangladesh wouldn't give for something like 15 or 20 runs more in the bag right now, but that hasn't happened. And that's why they have to work with the target that they have set, India. 137 today in this crucial Group 1 encounter of this 2026 T20 World Cup. Rabia comes in once again outside off stump. Harmanpreet goes for the cut and just about eludes the under edge. Now, there's always been a spicy rivalry between her and the Bangladesh skipper, Nigar Sultana Jyoti. And surely, Jyoti will be making herself as audible as possible. Just indicating to the bowler that she wants her to attack the stumps. This time it's on the stumps, but it's driven down the ground. Harmanpreet retains strike with a single. She moves along to 2. And after 13 overs, India are at 101 for 4.
0: So, 13 overs ke baad, Bharat ne bana liye hain 101 run. 4 विकेट के नुकसान पर कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान पर आई हैं जेमिमा रॉड्रिग्स का साथ निभाने के लिए। जेमिमा रॉड्रिग्स ने 5 गेंदों में 4 रन बनाए और हरमनप्रीत ने 3 गेंदों में 2 रन बनाए हैं। मान्यता प्राप्त भारतीय बल्लेबाजों की अंतिम साझेदारी, इसके बाद दीप्ति शर्मा बल्लेबाजी के लिए ज़रूर आएंगी, वो भी बहुत अच्छे रन बनाती हैं, अच्छी बल्लेबाज मानी जाती हैं, बहुत मौकों पर उन्होंने भारत के लिए अहम पारियां खेली हैं। राधा यादव भी भारत की बल्लेबाजी में एक अहम नाम है, उन्होंने भी, आपको याद होगा कि जो पिछला विश्व कप खेला गया था उसमें कई भारत को मैच जिताने वाली पारियां खेली थी। फिलहाल स्ट्राइक पर हरमनप्रीत कौर, 42 गेंदों में 36 रन की आवश्यकता भारत को इस मुकाबले को जीत कर 2 अंक अर्जित करने के लिए। और इस नए ओवर की पहली गेंद जिसको कट

0: किया, लेकिन पॉइंट पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग के बावजूद एक रन जरूर लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज, और इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 102 रन 4 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर की शुरुआत हुई है। बांग्लादेश को अपना अंतिम मैच लॉर्ड्स में खेलना है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 28 जून को, और उसी दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को अपना मुकाबला खेलना है। अगली गेंद, इस बार इस गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है ऑन साइड में, जब तक मिड विकेट की फील्डर आ गया है गेंद को उठाकर वापस करें, एक रन और जुड़ता हुआ भारत के खाते में, बढ़ता हुआ स्कोर 103 रन 4 विकेट के नुकसान पर। भारत ने पिछला विकेट 98 के स्कोर पर ऋचा घोष का गंवाया था, और उसके बाद से यह साझेदारी भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस बार स्वीप करने का प्रयास, बल्ले पर पूरी तरह से गेंद आई नहीं, जड़ पर टकराई, एक रन आउट का मौका, लेकिन मौका हाथ से जाता हुआ बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर खड़ी हो गई थी, और वापसी की कोई संभावना दूर दूर तक दिख नहीं रही थी। थ्रो आया और थ्रो पकड़ा नहीं जा सका, गेंदबाज ने उस थ्रो को पकड़ा नहीं, और फिर वापस जेमिमा लौट आई अपनी क्रीज में। ये किस्मत यहां पर जेमिमा के साथ,
1: कॉमेडी ऑफ एरर्स एवरीवेयर। फर्स्ट हरमनप्रीत लुकिंग फॉर द स्वीप, जेमिमा वाज वेरी क्विक टू रिस्पॉन्ड, ऑलमोस्ट रीच द अदर एंड, देन हैड टू पुट द स्किड्स ऑन एंड कम ऑल द वे बैक, एंड इट वाज अ पुअर थ्रो टू बी फेयर, एंड नाहिदा जस्ट कुडंट गेट इनफ कंट्रोल ओवर दैट। हैड इट बीन ऑन द स्टंप्स, दैट वुड हैव बीन अ फिफ्थ विकेट फॉर बांग्लादेश।
0: अगली गेंद, इस ओवर की चौथी गेंद, और इस बार इस गेंद को सीधे बल्ले से सामने खेला लॉन्ग ऑन की तरफ, एक रन के लिए कप्तान हरमनप्रीत ने। ये विकेट अगर भारत ने रन आउट के रूप में गंवाया होता तो निश्चित रूप से बांग्लादेश की वापसी जोरदार तरीके से इस मुकाबले में हो सकती थी, लेकिन ये एक आसान सा मौका बांग्लादेश के हाथों से फिसला है। भारत के लिए राहत की बात कि अभी भी जेमिमा मैदान पर है और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रही है। इस बार फुल टॉस गेंद, को खेलना चाहती थी ऑफ साइड में, हालांकि जड़ में गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉक होल में, यॉर्कर गेंद एक तरह से हो गई थी जेमिमा के लिए। किसी तरह से अपने विकेटों से दूर ढकेला इस गेंद को, रन कोई नहीं मिलेगा, 104 अभी भी स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट 5.35 का। अगली गेंद, इस बार रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, गेंद की लाइन को चुकी है, एक अपील हुई है विकेट कीपर की तरफ से, और क्या ये तीसरे अंपायर को फैसला रेफर किया जाएगा, इस बात का इंतजार। हालांकि जेमिमा के शारीरिक भाषा से ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि क्रीज में अपने मौजूद थे।
1: यस, बट अनदर टाइडी ओवर धर्मेंद्र, सो एग्जैक्टली व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट 3-4 ओवर्स अगो, दैट यू हैव अ फ्यू टाइडी ओवर्स एंड यू सडनली पुश दैट रिक्वायर्ड रन रेट अप टू द विसिनिटी ऑफ 6, एंड नाउ फ्रॉम 6 ओवर्स इंडिया नीड 33. And you have two players who are high quality, high pedigree, but just short on runs in this World Cup campaign. And it's being reflected in the way that they're batting. Harmanpreet Kaur, her batting ability or her batting form has been a topic of discussion. 36, 12 and 4, 24 thus far in this World Cup. Jemima Rodrigues 1, 19 and 12. And they're batting like they're under pressure. That run out chance also created because they were so desperate to switch ends. And it's just the moment that Bangladesh were probably looking for in this successful defense, if they are to get there, to get a couple of out of form batters in there and put the squeeze on them, and that's begun happening. This partnership has just about come into form the last few overs or so. Just 6 runs, how many balls faced between the two of them, if we can get those numbers in as well. But yes, just a tight squeeze coming in. 10 balls faced, so that just tells you that they are feeling that pinch, and India not being able to maintain the momentum which was provided early on, especially by Shefali Verma. So since her wicket, it's been a pretty different story. Astika Bhatia losing a wicket, then Richa Ghosh also falling, and in that last over we nearly saw a rather tragicomic moment, but it turned out well for India, but it could so easily have led to the dismissal of Jemima Rodrigues, Dharmendra.
0: Yeah, ye wicket भारत के लिए कहा जा सकता है कि तोहफे की तरह आया, क्योंकि एक ही छोर पर लगभग दोनों बल्लेबाज खड़ी हो गई थी, और वहां से वापसी की संभावना तो न के बराबर थी। अगर वो थ्रो दूर न गया होता और उस थ्रो को गेंदबाज ने सफाई से पकड़ लिया होता तो फिर जेमिमा इस समय मैदान पर नहीं, पवेलियन में होती। लेकिन सुरक्षित हैं अभी और 5 रन बनाकर खेल रही हैं हरमनप्रीत कौर,

0: वापस संजोया है और भारत का स्कोर पहुंचा दिया 119 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब 30 गेंदों में भारत को चाहिए 18 रन, अभी भी 6 विकेट सुरक्षित हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 3.60 का और स्ट्राइक पर अब कप्तान हरमनप्रीत कौर। रितु मोनी गेंदबाज के तौर पर आई है एक बार फिर से आक्रमण के लिए। बांग्लादेश की टीम चाह रही है कि साझेदारी को तोड़कर थोड़ा सा वापस लौटा जा सके इस मैच में। उम्मीदें लगभग समाप्त होती हुई सी बांग्लादेश के लिए। ये पहली गेंद और इसको एक रन के लिए खेल दिया। फिर से एक बार विकेटों के बीच में खराब दौड़ दोनों खिलाड़ियों के बीच में, आपस में टकराते टकराते दोनों बची हैं। निगाह बिल्कुल एक दूसरे पर नहीं, गेंद पर दोनों की निगाह और वहां पर टक्कर होते होते बची है। ये तीसरा मौका है जब रन लेने के दौरान दोनों के बीच तालमेल की काफी कमी दिखाई है देवायन।
1: एब्सोल्युटली, एंड टू सीनियर प्लेयर्स एंड हरमनप्रीत इन पर्टिकुलर जस्ट लुकिंग सो ऑफ कलर। शी इज गोइंग फॉर रिस्की सिंगल्स, शी इज रनिंग अ लिटिल ऑल ओवर द प्लेस, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट इनिंग्स फॉर हर। इफ शी स्टेज नॉट आउट देन इट विल डू हर कॉन्फिडेंस अ लॉट ऑफ गुड।
0: अगली गेंद और इस बार सीधे बल्ले से सामने की तरफ, गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाकर खेला है गेंद को, मिसफील्डिंग चालन।
2: ये लगा आभा का चौका,
0: सीधे बल्ले से खेला था इस मौके पर जिमीमा ने, और जिमीमा ने यह ठान लिया है कि अब कुछ भी हो बड़े स्ट्रोक्स लगा नहीं है, जल्दी से जल्दी मैच को समाप्त करना है। इस बार लगभग ओवर पिच गेंद थी, गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाकर खेला, रोका जा सकता था इस गेंद को लेकिन थोड़ी सी गेंद घूम गई पड़ने के बाद और गेंदबाज काफी निराश थे। इस चौके के साथ भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 128, 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार फिर से उठाकर खेलने का प्रयास और इस गेंद को फिर से 4 रन के लिए खेला है।
2: ये लगा आभा का चौका,
0: फिर से सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक सामने की तरफ लगभग उसी दिशा में और यह चौका एक और आता हुआ जेमिमा के बल्ले से। स्कोर भारत का बढ़ता हुआ 128, 4 विकेट के नुकसान पर। अब सिर्फ 9 रन चाहिए, 27 गेंदें बची हुई हैं। महंगा ओवर एक और चलता हुआ इस समय रितु मोनी का। रितु मोनी को एक सफलता जरूर मिली है लेकिन इस ओवर में अभी तक 2 शानदार चौके जेमिमा ने जड़ने में कामयाबी हासिल की है। दबाव गेंदबाज के ऊपर, कुल मिलाकर इस ओवर में अभी तक 9 रन आ चुके हैं और अब अगली गेंद खेलने के लिए तैयार जेमिमा। बहुत लाजवाब बल्लेबाजी इस समय जेमिमा की तरफ से। दोनों के बीच अभी तक 19 गेंदों में 30 रन की साझेदारी, बहुत तेज तर्रार साझेदारी।
1: Absolutely, and 24 of the last 9 balls, but that first run of that 9 balls could have resulted in a run out.
0: अगली गेंद को इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, हवा में गेंद और ये कैच लपका गया। जेमिमा का विकेट आखिरकार भारत ने गंवाया है। खेलना चाहती थी ऑन साइड में, बल्ले का बाहरी किनारा लिया गेंद ने, पॉइंट पर गई गेंद और एक आसान सा कैच। इस तरह से जेमिमा की एक तेज तर्रार पारी का समापन हुआ है। जेमिमा रॉड्रिग्स कुल मिलाकर 15 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुई हैं। 3 चौके और 1 छक्का उनकी इस पारी में। लग रहा था कि उन्होंने जो निराशा का दौर था उससे पार पा लिया है लेकिन उनकी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी मैच जीत कर भारत को नेट रन रेट में और बेहतर स्थिति में लाया जा सके, उसी कोशिश में उन्होंने अपना विकेट गंवाया है। हालांकि भारत के सामने अभी भी कोई खास परेशानी नहीं, 26 गेंदों में अब सिर्फ 9 रन चाहिए, 128 पर भारत ने 5वां विकेट गंवाया है।
1: Absolutely unselfish batting from Jemima, going for the big hit, and it looked initially that she had absolutely middled it but went off the leading edge and was gleefully accepted at backward point inside the circle by Maruf Akhtar. And that brings the all-rounder Deepti. Didn't quite get that 356th international wicket today with the ball. It was more than handy. 4 overs, none for 23, and now has a chance to put the finishing touches. But what Jemima, especially in that last short burst across the last 2 overs, has done is made this a much, much more favorable equation. Had Harmanpreet's wicket fallen when she went for that almost suicidal-looking single, then things would have been completely different. But Bangladesh have missed a lot of opportunities today.
0: अगली गेंद दीप्ति शर्मा के लिए। दीप्ति ने इसको हल्के हाथों से खेला है 1 रन के लिए और फिर दूसरे रन को तलाश रही थी लेकिन उसकी संभावना थी नहीं। 1 रन से और बढ़ता हुआ स्कोर भारत का 129, 5 विकेट के नुकसान पर। अब 8 रन चाहिए 25 गेंदों में, 1 गेंद अभी भी इस ओवर की बची हुई है। दीप्ति शर्मा ने पहली गेंद पर ही अपना खाता खोला। जेमिमा एक अच्छा बल्ले का जोर दिखाते हुए वापस मैदान से लौटी है। इस गेंद को 1 रन के लिए अंतिम गेंद को खेला है इस मौके पर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने और इसे

0: and of course Harmanpreet Kaur and Deepti Sharma, the two not out batters at the end. So two wickets for Ritu and one wicket for Nahida, one wicket for Maroofa Akhtar and one wicket for the leg spinner Rabia Khan. India win this match by 5 wickets and move along to 6 points in this World T20 as well. And now we'll take you through to the post-match show. Kaun Banega Player of the Match?
1: महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार, मन की बात में आप सबका स्वागत है।
1: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात, आत्मनिर्भर बनते विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात जिसमें है एक भाव नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की।
3: मेरे लिए मन की बात ये कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था पूजा व्रत है।
1: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।
4: प्लेयर ऑफ द मैच
5: शफाली वर्मा के 53 रनों की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर
6: मैच जीता है और शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच से भी नवाजा गया है। सीधा चलेंगे मैनचेस्टर जहां पर सुनेंगे कि क्या कह रही है प्लेयर ऑफ द मैच शिफाली वर्मा।
7: 3 of 34, top scored in the last game and in this one. How pleased are you with your batting this tournament?
8: Yeah, of course, very happy the way I batted today. But if I will be no doubt, that will be so happier for me. But yeah, good confidence today and so happy I can grab some runs.
7: 136. I think it's fair to say you might have thought you'd be chasing a little less. What was the chat when you went out to chase, and what was the plan in the power play?
8: Nothing much, just backing our batting, just whatever loose ball will come, we'll just go for the 4 or maybe 6, or otherwise we'll go 1 run. So it's just a normal talks, not the different thing.
7: Any particular shots that you've been working on that you feel are now coming out very nicely?
8: Well, just try to choose the right ball, whatever come in my in my zone, just go for that. Otherwise, take single. It's just a very simple thing, but sometimes it's complicated a lot. But I just talk to myself a lot this time, and yeah, it's going good. I'm so happy for that.
7: What did you feel about when you got out and how you got out?
8: Of course, sad. The way I got out, as I said earlier, if I will be the not out and. That will be more happier for me.
7: I want to ask you one quick question on your bowling. You're now India's opening bowler as well. How much are you working on your bowling? At what point did this become a regular plan that yes, Shifu's going to play a big role with the ball?
8: Well, of course, in the nets I used to bowl with the new ball and with the old ball. Sometimes I laugh a lot. But in the end, whatever team need, I am there for that. And thanks to Harmandeep, she always give me a lot of confidence when I bowl, give me a very good field set. So just thanks to her.
7: Ready for Australia?
8: Yeah, of course. So we'll go to London and see them.
7: All right. Well done today. Good luck for that one, Shefali.
8: Thank you.
5: ये थी प्लेयर ऑफ द मैच शफाली वर्मा और हम हाजिर हैं इसी कार्यक्रम में इसी नाम से प्लेयर

0: रॉबदम्बा जो अब आप सबको पता है कि कौन है। मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट दर्पण तिखिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुदिता। और हमारे साथ है एक्सपर्ट्स का एक पैनल जिसमें हमारे साथ आज जुड़े हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्व भारतीय सेलेक्टर चेतन शर्मा। बहुत बहुत स्वागत चेतन, एक बार फिर आपका
2: धन्यवाद।
1: साथ में साथ के साथ हमारे साथ जुड़े हैं विजय धैया, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। विजय, वेलकम टू द शो वंस अगेन।
3: थैंक यू सो मच।
1: और उसके साथ साथ क्रिकेट जगत पर अपनी पैनी नगाह दशकों से रखने वाले शशांक शेखर भी हमारे साथ मौजूद है, जाने माने खेल पत्रकार। शशांक, बहुत बहुत स्वागत आपका भी।
4: धन्यवाद।
1: चेतन जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे और वहीं से उठाएंगे जहां पर शेफाली ने छोड़ा। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। उन्होंने कहा बड़े हरफन मौला अंदाज में कि विल गो टू लंदन एंड देन वी विल सी देम। ये जो एटीट्यूड है ये कितना जरूरी है।
2: मैं कॉन्फिडेंस कहूंगा इसको। देखिए, बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस है। जब जीत, देखिए हर समय इम्पोर्टेंट है कि आप जीतते हैं, जीत से सीखते हैं। क्या भारतीय टीम ने सीखा ये तो हमें नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रेसिंग रूम की बातें हैं, वो बाहर आएंगी नहीं। लेकिन एक कॉन्फिडेंस देख के मुझे बहुत अच्छी बात लगी। मतलब शेफाली, मैं पहले से बात कर रहा था जब हम मिड शो में बात कर रहे थे, ऊपर से स्टार्ट मिलेगा, आप इस मैच को जल्दी ख़त्म कर देंगे। नेट रन रेट का मुझे चिंता ज़्यादा नहीं है। देखिए, आप मैच जीतते चले जाएंगे, नेट रन रेट तो आएगा ही नहीं सामने। तो अब आपने बांग्लादेश को मात दी, अब आपकी ऑस्ट्रेलिया की बारी, आपको रणनीति प्लान करना है। अच्छी बात है, कुछ जो मुझे समझ आई है, जमीमा का बल्ला चला आज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेफाली ने ऊपर से रन बनाए, स्मृति की कोई टेंशन नहीं है। देखिए, वो अपना रन्स बना देती है, वन ऑफ आप आउट हो गए आज। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो रन्स बने हैं आपके, तो जब रन्स बनते हैं तो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कुछ चीज़ें जो बीच में हुई हैं, रनआउट्स, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, जो आप तालमेल आपका नहीं है, वो थोड़ा सा बना के रखिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको ऐसे मौके नहीं देगा जो बांग्लादेश ने आपको मौके दिए। ऐसे रनआउट्स कभी वो छोड़ेगा नहीं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट है। हर समय क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट आप करते हैं। देखिए, कभी आप परफेक्ट नहीं है, आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इम्प्रूव करते जाइए, जीतते चले जाइए।
0: जी बिल्कुल। शेफाली खुश नहीं थी आउट होने से और उन्होंने कहा कि मैं तो चाहती हूँ मैं मैच फिनिश करके जाऊँ, शायद ये हम सब भी देखना चाहते हैं। विजय, चेतन ने बात की शेफाली के कॉन्फिडेंस की, इसके अलावा मैच्योरिटी और इंटेंट भी दिखता है अब उनकी इनिंग में।
3: आई थिंक इंटेंट आपको हमेशा नज़र आएगा, पर जिस तरीके से जो स्ट्रोक प्लेयर होते हैं ना, जब ये खेलते हैं तो मिलियन डॉलर लगते हैं, जब आउट होते हैं तो कई बार आपको ये लगता है कि इस नादानी की ज़रूरत थी क्या, पर वो खेलते ही इसी तरीके से हैं। आप किस इस फॉर्मेट में किसी भी तरीके को खिलाड़ी के देखेंगे जो इस इंटेंट से खेलेगा, जो आपको पारी की इस तरीके की शुरुआत देगा, उसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी कम नज़र आएगी, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क उठाते हुए आपको नज़र आते हैं, वो इस तरीके की क्रिकेट ज़्यादा खेलते हुए नज़र आते हैं। आप जब इस स्टेज पे लगातार रन बनाने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। उनको कॉन्फिडेंस शायद इस बात से भी अब देखने को लग रहा है कि जिस तरीके से उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिंग में भी दी जा रही है। सिर्फ यही है कि प्लेयर सारे बढ़िया ही होते हैं, उनको किस तरीके से आप महसूस कराते हैं और उनसे बेस्ट कैसे ले सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर वो अपने आप को एक प्रमुख अंग उस टीम का मानने लगते हैं, जो मुझे लगता है धीरे धीरे शेफाली को वो महसूस हो रहा है कि मैं सिर्फ इस टीम में खेल नहीं रही हूँ, मैं एक प्रमुख उस तरीके की खिलाड़ी हूँ कि जिसके ऊपर सबकी नज़र रहती है और मेरा योगदान बहुत महत्वपूर्ण है।
1: और नज़र हो भी क्यों ना, नोवा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड है उनका। और वुमेन्स T20 आईज में सिर्फ हरमनप्रीत कौर, मिथाली राज और स्मृति मांधना के पास उनसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं। लिव बाय द स्वॉर्ड, डाई बाय द स्वॉर्ड, दैट्स व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर शी इज। बट अनदर गुड पॉइंट दैट चेतन रेज्ड शशांक वॉज जमीमा स्कोरिंग दोज रन्स, बिकॉज अर्लियर वी सॉ इन द लास्ट थ्री मैचेस शी लुक्ड अ लिटिल बिट स्क्रैची, बट द बाउंड्री स्टार्टेड फ्लोइंग टुवर्ड्स द एंड।
4: यस, दैट boots well for India as they take on Australia come Sunday. Jemima, you know, she looked as if she wants to finish the match as early as possible, also keeping in mind probably the run rate. But she took on the spinners and hit some lusty blows, and she was trying another which got her out. So this is not a typical Jemima innings. It was a breezy cameo, but it came at the right time for India, and it helped India finish the match well before the final over. So that's, and she was timing the ball well. She came in the middle order. Earlier she used to bat at number 3, where she had more time to build an innings and all. But if she's coming at 4 or 5 or even 6, then she needs to start hitting from the word go, and she tried to do that, and she was successful to a large extent today, which is good for India.

0: जी, और अगर हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके पास भी हमारे एक्सपर्ट्स के लिए कोई सवाल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स है 2342-1083 और 2342-1085। इसके पहले दिल्ली का कोड 011 लगाना ना भूले। बैटिंग की बात चल रही है विजय, तो यास्तिका भाटिया इस मैच में उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है। जो कहा जा रहा था कि जिसकी वजह से हम उनको प्रेफरेंस दे रहे थे कि एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनता है और पावर प्ले में बढ़िया प्रदर्शन वो कर सकती हैं, क्या लगता है कि अगले मैच के लिए उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है आज के परफॉर्मेंस के बाद?
1: जिस तरीके से अगर आप देखेंगे, पिछले कुछ समय में इंजरी के बाद उनकी वापसी हुई है, उनके ऊपर जो विश्वास दिखाया गया है, वो टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं वो आपके लिए, और उनकी जगह भी वही है। वो टॉप थ्री में ही बल्लेबाजी आपको करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बहुत सारे बदलाव आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जमैमा के हम बारे में बात करते हैं, जिस तरीके का उनका खेलने का तरीका है, वो जितने ज़्यादा नीचे बैटिंग ऑर्डर में जाएंगे उतनी ज़्यादा उनके लिए और ज़्यादा चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, क्योंकि वो इस तरीके की खिलाड़ी हैं कि थोड़ा सा समय ज़रूर लेती हैं, लेकिन फिर वो समय लेने की भरपाई आखिरी में आके ज़रूर कर लेती हैं। वो वैसे खिलाड़ी के लिए शुरू से ही अटैकिंग खेलना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। रिचा उस नंबर पर नहीं आती जिस नंबर पर आज बल्लेबाजी करने आई थी। नॉर्मली आप उन्हें चार पर बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखती, वो एक फिनिशर का रोल उनका रहता है। तो शायद आज टीम टैंक है, जो थिंक टैंक है, उनका ये सोचना था कि शायद इस मैच में आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। रिचा के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत बढ़िया नंबर हैं, तो शायद इस वजह से आप चाहते थे कि थोड़ा सा गेम टाइम उनको और ज़्यादा मिल जाए इस मैच के अंदर। पर वो खेलती एक ही तरीके से, उनको ये नहीं रहता ऑपोजिशन क्या है, उनको ये रहता है कि अगर बॉल मेरे हाफ में है तो वो अपने आप को बैक करती हैं, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना है तो तीन चार प्रमुख जो खिलाड़ी हैं आपकी बल्लेबाजी में, उनका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा उस दिन।
2: जी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनौती होने वाली है कड़ी, और मस्ट विन चुनौती होने वाली है। खैर, मस्ट चीजों की हम बात कर रहे हैं, मस्ट इज आवर कॉलर्स, एंड यू कैन आल्सो कॉल ऑन आवर नंबर्स एंड जॉइन इन इन द शो। वी हैव वन कॉलर ऑनलाइन, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, अपना सवाल बताइए। जी जी जी जी, हम आपका सवाल जरूर लेंगे, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। चेतन बाजी, वहीं पर बात घूम फिर कर आ गई है जो मिड इनिंग शो में हमने दोबारा डिस्कस की थी, और शायद सवाल वैलिड भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ अगर आप चार कैच छोड़ेंगे तो फिर वहां पर मुश्किलात हो सकती है।
3: देखिए, आप किसी के खिलाफ भी अगर मैच खेलते हैं, उनके खिलाफ आप कैचेस छोड़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप सोचिए, अगर आपने आज कैचेस सारे पकड़े होते तो 110 के आसपास टोटल होता, तो यू हैव इजीली वन दिस गेम 14-15 ओवर्स में आप मैच को जीत लेते। तो आज आपने जीत हासिल की है, वो इम्पोर्टेंट है।
2: जी, और अब सीधा लेके चलेंगे आपको मैनचेस्टर, वहां पर सुनेंगे कि कप्तान क्या कह रहे हैं। सबसे पहले सुनेंगे बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना को।
4: See, we have created a lot of chances in the middle, especially in the bowling, so we couldn't grab them, so they take this game away from us, and I think the way we actually bowled in the last game, we couldn't bowl.
5: How was 136 at halftime? Were you satisfied with the batting effort?
4: We are short of 15 to 20 runs, and we had a good start in the power play, what we are looking for with the last few games. So, but we couldn't carry on in the middle, and in the last few overs of the innings, I think what we should accelerate on that time, so couldn't capitalize ourselves.
5: Positives even after the power play when India were looking strong, you stayed in the game. In the second innings break also, you got your team around. India needed 33 of 36. What was your message then to still try and keep the game alive? You still had a foot in the game at that stage.
4: Yeah, we are talking about like anything can happen anytime, so just be positive and try to bowl in the right areas, and try to be so calm. If it is the opportunity come, you have to grab it. So somehow I think we lost the momentum, and they played really well.
5: Are you happy with the progress the team has made in your first international cricket in England? It's not like you've had a lot of experience over here. Are you satisfied with the progress overall?
4: See, it's not about success every time. I think the way this whole unit actually growing day by day, and a lot of young players come up each and every game individually. So it was a kind of a success for me, but still we are here to win. And we had a massive opportunity to do well here, but I think I'm really proud the way I actually played.
5: What will it mean for you and your team to play at Lord's on Sunday?
4: I guess this is a good opportunity.

0: panning out.
1: Every time they come into the ground, I'm talking about Australia, their hunger is always there. And they set the tone. In early 2000, their men team has set the tone for the rest of the world to catch up. The way they have played test match cricket around that time, everybody is trying to do the same thing. And then their men's team winning 3 World Cups is absolutely evident that kind of cricket they love playing. Same goes for the women's side as well. They're the most dominating side as far as the women cricket is concerned. And they take pride in that. I think they're not going to forget what happened in the Mumbai. They'll come with that sort of a mindset that they're not going to give an inch as far as the Indian team is concerned. And let's not forget, if you keep an opponent like India alive, if they beat Australia, they might meet them again.
0: Right.
1: So Australia must be thinking, let's finish one opponent here in the league stage itself. So I think the pressure is going to be on the Indian side playing against the top side, plus everything on stake.
0: एवरीथिंग ऑन स्टेक. और आपको ये बता दें कि उससे पहले एक और मुकाबला होने वाला है जो भारतीय दृष्टिकोण से अहम है, वो है दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच जो मुकाबला अब से कुछ देर में होने वाला है. ब्रिस्टल में ये मुकाबला है जिसका टॉस हो चुका है. नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. चेतन भाजी, ये थोड़ा सा भारत के लिए खतरे की घंटी है क्या, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के पास मौका है बड़ा स्कोर बनाने का और वो बड़ा नेट रन रेट बूस्ट पाने का.
2: देखिए, मुझे अगर आप मेरी अपनी सोच से मैं बात करूं, मुझे दूसरे मैच में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने मैच के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. ठीक है, अगर एंड ऑफ द डे साउथ अफ्रीका हार जाते हैं वो बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन आप उसके ऊपर वो नहीं कर सकते. आप निर्भर मत रहिए. देखिए, दूसरे के ऊपर निर्भरता और देन आप सोच रहे हैं वो हारेगा मैं जीतूंगा, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस. आपने आज अच्छी क्रिकेट खेली, यू डिड वेल. आप क्या यहाँ से सीख कर गए हैं, आपने क्या गलतियाँ की, उस पर सुधार कीजिए. एंड अगर जो नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका का होना है वो मालूम पड़ जाएगा आपको 3 घंटे के अंदर, लेकिन आप अपनी तैयारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कीजिए कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं वैसे ही आप थ्रू हैं, तो कोई टेंशन नहीं है. तो जो आपके हाथ में जो आपको करना है वो आप कीजिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है.
1: मुझे लगता है कि रन रेट तस्वीर में नहीं आने वाला है.
2: बहुत
1: हाँ, जिस तरीके से आप पॉइंट्स टेबल की तरफ नज़र डाल रहे हैं उसमें रन रेट बहुत बहुत मुश्किल है कि रन रेट वहाँ पर आए. सीधा सीधा है दोनों टीमों के लिए, आप अपने बचे हुए मैचेस जीतिए और जिंदा रहिए
3: जी. और अगला मैच नॉकआउट मैच हो सकता है भारत के लिए. विजय, अभी आप बात कर रहे थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया क्योंकि हर डिपार्टमेंट में एक्सेल तो कर ही रहा है इस टूर्नामेंट में भी, लेकिन साथ ही साथ वो जिस किलर इंस्टिंक्ट के साथ खेलने उतरता है, तो यू नीड दैट मेंटल स्ट्रेंथ, दैट माइंडसेट टू बीट देम.
1: वो मेंटालिटी ओवरनाइट नहीं बन सकती है, आपको उसकी तरफ अग्रसर होना पड़ता है. और जैसे ही हमने प्री शो में भी ये बात करी थी कि ये टीम एक बनती हुई टीम है, इस तरफ की तरफ आप नज़र डालें, बहुत सारे खिलाड़ी इस टीम के अंदर ऐसे हैं जिनके लिए पहला वर्ल्ड कप है. T20 वर्ल्ड कप से हमारी एक्सपेक्टेशन जो है, अगर आप उस तरफ नज़र डालेंगे तो उसमें आप कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसे बॉक्सेस हैं जिनको टिक करते हुए नज़र आएंगे. दूसरी तरफ आप अगर उस टीम की तरफ नज़र डालेंगे ऑस्ट्रेलिया, उसमें आपको ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसे नज़र आएंगे जिनके पास बड़े मैचेस खेलने का अनुभव है. तो जब आप बड़े मैचेस खेलते हैं वो तभी खेलते हैं जब लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और वो सिर्फ स्किल सेट नहीं है. एक बहुत चीज़ आपने यहाँ पर जिक्र की, मेंटालिटी. आई थिंक वो जिस मेंटालिटी से उतरते हैं वो एक विनिंग मेंटालिटी है. आप उनसे खेलते वक्त सिर्फ ये नहीं सोच रहे होते हैं कि हम अपने अच्छे दिन पे जीतेंगे, कई बार आप ये भी सोच रहे होते हैं कि हमारा अच्छा दिन तो होगा, क्या उस दिन ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा ख़राब दिन हो सकता है जहां पर हम उनको पकड़ सकते हैं. इस तरीके की धाक कुछ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पिछले कुछ समय में जमाई है, और इसी वजह से आप सिर्फ उनको स्किल से नहीं हरा सकते, आपके उस दिन मानसिकता भी उनसे बेहतर होनी चाहिए.
0: खैर, हम ये बैठे बैठे आकाशवाणी के स्टूडियो में ये सोच रहे हैं कि हमारे लिसनर्स क्या सोच रहे हैं, सीधा जुड़ते हैं एक लिसनर के साथ और पूछते हैं कि उनका क्या कहना है कि आज की जीत पर. नमस्कार, अपना नाम बताइए. राम अवतार जी, क्या सवाल करना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से?
4: सर, पहले तीनों क्रिकेट के तरफ गुरुओं को नमस्कार मेरा.
5: नमस्कार जी.
6: नमस्कार, नमस्कार जी.
4: सर, ये चाहता हूँ कि जैसे ही यस्तिका भाटी को हम 3 नंबर पे उतार रहे हैं, वो 3 नंबर पे उतार के और हरमन को उतार के और रोहित को उतार के फूलमाली को क्यों नहीं उतार सकते? वो भी एक बहुत बेहतर बैट्समैन है, आईपीएल में हमने देखा उसका चलवा.
0: जी जी जी, तो जी शशांक, आई कम टू यू विद दिस क्वेश्चन. भारती फूलमली स्टार्टेड ऑफ इन इंडियाज फर्स्ट प्लेइंग 11 व्हेन दे फीचर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, नाउ फाइंड्स हरसेल्फ आउट ऑफ द प्लेइंग 11. हाउ डू यू सी इट?
6: सो अभी जैसा कि हमारी कप्तान हरमनप्रीत ने कहा,

कि जब उनसे पूछा गया कि अब आपने बहुत सारे चेंजेस किए हैं अपने मैचेस में इस वर्ल्ड कप में, और 15 खिलाड़ियों को आपने खिलाया है, तो सारे खिलाड़ियों को आपने टेस्ट किया है, तो उन्होंने कहा कि हमने शुरू में ये सोच रखा था कि शुरू से ही कि जैसे मैच हम खेलेंगे, हमारी अपोजिशन जैसी होगी, उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से हम अपनी टीम चुनेंगे, जिसको हम हॉर्सेस फॉर कोर्सेस कहते हैं। तो उस फुलवनी ने पहला तो मैच खेला, उसके बाद इनको लगा कि शायद वो कॉम्बिनेशन जो वो उतारना चाहते हैं

0: कहते हैं। तो उस फुलवनी ने पहला तो मैच खेला, उसके बाद इनको लगा कि शायद वो कॉम्बिनेशन जो वो उतारना चाहते हैं वहाँ पे उनकी जगह नहीं बनती है। इसका अर्थ कहीं से भी ये नहीं है कि वो बहुत अच्छी खिलाड़ी नहीं है, इंडियन टीम में है, इंडियन स्क्वाड में है, इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में हम देखें उनको खेलते हुए, ये संभव है।
1: विजय, कुड इट बी द लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम स्मृति एंड दीप्ति देयर इज नो अदर लेफ्ट हैंडर इन दैट ऑर्डर, डू यू थिंक दैट इज व्हाई दे हैव हेज्ड देयर बेट्स ऑन यास्तिका भाटिया?
2: I think before left hand right hand combination, you need to understand, or as the team management for us sitting here need to understand what they feel, who they think is can give you the best at the moment. They feel that Yastika Bhatia can give them what they are looking for, then comes the combination, left hand right hand combination. You have to pick up the best batter in the side. In their eyes at the moment it's Yastika Bhatia, and that's the reason why they're going with them. It's very simple to understand sometimes. You know what happens is, whoever is not playing, it's very easy to advocate and say that person can play as well. But the people who matter at the moment, they think that this is the person who can do the job for us, and they back that person.
3: जी, और विजय थोड़ी देर पहले आपने रिचा घोष की बात की। रिचा नीड्स सम टाइम एंड देन शी एक्सप्लोड्स। व्हेन शी गेट्स मोर टाइम शी प्रूव्स टू बी मोर इम्पैक्टफुल, एंड ऑलमोस्ट सेम एज विद जेमी आल्सो। शी परफॉर्म्स बेस्ट व्हेन शी हैज टाइम टू रोटेट द स्ट्राइक एंड देन एक्सेलरेट। आज के मैच में रिचा घोष को ऑर्डर में पहले भेजा गया, क्या ऐसा ही कुछ आप अगले मैच में एक्सपेक्ट करेंगे या फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो डिसीजन लेगी?
2: अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही है, क्योंकि आज रिचा का उस नंबर पे आना आप नॉर्मली उन्हें देखते नहीं है। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें कोई भी फॉर्मेट रहा है, चाहे 50 ओवर की बात करें या T20 की बात करें, आपने हमेशा उनको एक फिनिशर के रूप में इस्तेमाल किया और उन्होंने वो काम किया भी है। लेकिन कई मैचेस ऐसे भी रहे हैं जहाँ पर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे थे और आपकी उतनी विकेटें नहीं गिरी थी, लेकिन वो मोमेंटम आपको चाहिए था, तभी रिचा का बैटिंग ऑर्डर हमेशा थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्योंकि उनकी पास जो एबिलिटी है, कई बार आपके पास बीच में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो आपको गेम सेटअप करके देते हैं। जेमी का आपने जिक्र किया, वो कुछ इस तरीके के खिलाड़ी हैं कि गेम सेटअप करके देती हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो गेम सेटअप करते हैं, कुछ होते हैं जो मैच को फिनिश करते हैं। पिछले कुछ समय में रिचा आपकी फिनिशर रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनका इस्तेमाल उसी तरीके से किया जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ बराबर की लड़ाई लड़नी है, तो आपके जो अपने इस तरीके के खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा प्रमोट करना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि वो फेयरलेस क्रिकेट खेलती हैं। उनको सिचुएशन और ऑपोजिशन से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को बैक करती हैं, और ऐसे ही खिलाड़ी बढ़िया टीमों के खिलाफ ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
1: एक बार पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे। ऑस्ट्रेलिया 4 में से 4 मुकाबले जीतकर ग्रुप ए में इस वक्त शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। भारत ने 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं, जिसके बाद आज भारत नंबर 2 पर है, और नंबर 3 पर दक्षिण अफ्रीका है, जिसने 1 मुकाबला कम खेला है। 3 में से 2 जीत उनके नाम अर्जित है, और अगर आज दक्षिण अफ्रीका नेदरलैंड्स को हरा देता है तो फिर भारत और दक्षिण अफ्रीका बराबरी पर आ जाएंगे। और बात आएगी इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वर्सेज बांग्लादेश, ये दोनों ही मुकाबले लॉर्ड्स के मैदान पर खेले जाएंगे। चेतन बाजी, थोड़ा सा हम चाहेंगे आप हमारे लिसनर्स को बताएं, क्योंकि आप तो लॉर्ड्स में खेले हुए हैं, बार बार चर्चा होती है लॉर्ड्स पर उस स्लोप की और अलग डायमेंशंस की, क्या परिस्थितियां रहती हैं वहां पर और क्या वो चीज़ें हैं जिनका ध्यान देना होगा, खासकर हमारे बॉलिंग यूनिट को?
4: देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप स्लोप के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दें, बिकॉज हम लोग एज ए क्रिकेटर्स स्लोप के यूज टू नहीं होते हैं। हर ग्राउंड का डिफरेंट डायमीटर्स है, तो हर ग्राउंड पे आप जाएंगे आपको डिफरेंट कुछ ना किसी का अप द हिल आपको गेंदबाजी करनी है, कोई डाउन द हिल है, और लॉर्ड्स में भी ऐसा है, एक डाउन द हिल है, एक अप द हिल है। वो प्लेयर्स को बहुत जल्दी अनुमान लग जाता है उस चीज़ों का। और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, देखिए लॉर्ड्स द मक्का ऑफ क्रिकेट का हर समय कहा जाता है। एक आपकी उम्मीद रहती है, एक तमन्ना रहती है कि आप लॉर्ड्स में जाएं और वहाँ प्रदर्शन करें। देखिए, लॉर्ड्स में खेलना एक अपने आप बड़ी बात है, लेकिन वहाँ पर खेलकर जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी आप अच्छा प्रदर्शन कुछ करते हैं लॉर्ड्स के ऊपर, वो बोर्ड के ऊपर आपका नाम जाता है, वो बोर्ड के ऊपर नाम सारी उम्र रहेगा, तय उम्र रहेगा, और जो भी वहाँ पर जाएगा हर क्रिकेटर आपका नाम वहाँ पड़ता है। तो एक आपके दिल में वो रहती है कि मैं यहाँ जाऊँ, अच्छा प्रदर्शन करूँ और इस बोर्ड में अपना नाम को शुमार करूँ, और वो तभी हो सकता है भारतीय टीम के लिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया को जाकर वहाँ मात देते हैं। तो मात देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने हरा दिया उनको तो ऑटोमेटिक आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए जो विजय अभी बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया विल गो फॉर ए किल बिकॉज दे डोंट वांट टू प्ले इंडिया अगेन। वो अगर

0: यहां से जीतती है इंडिया तो दे हैव टू प्ले इंडिया समवेयर और द फाइनल्स में मिल सकती है इंडिया, क्योंकि इंडिया में दमखम है तो दे विल गो फॉर ए किल, तो वो इंडिया को भी अपना पूरा दमखम के साथ क्रिकेट खेलनी जरूरी है
1: जी। विजय, अगर हम ऑस्ट्रेलियन टीम पे नज़र डाल लें तो मल्टीपल मैच विनर्स हैं उनके पास, हर मैच में एक नया नाम, एक नया खिलाड़ी उभर के सामने आ जाता है जो जम के खड़ा होता है, लेकिन बाकी प्लेयर्स भी उसका साथ दे रहे होते हैं, कभी कैमियोज में कर रहे होते हैं या फिर कभी कुछ और साथ में अच्छे स्कोर्स बना रहे होते हैं। भारतीय टीम को भी एक ऐसे एंकर की ज़रूरत पड़ेगी। हम जो स्कोर्स देख रहे हैं कि शेफाली वर्मा ने आज शानदार खेला, लेकिन 53 पे जाके वो पारी ख़त्म हो गई है। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपनर बेथ मूनी को अगर हम देखें नेदरलैंड्स के अगेंस्ट 74 वो बना चुकी हैं, पिछले मैच में एलिस पेरी 71 बना चुकी हैं। भारतीय टीम को इस एंकर रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
2: अगर आप इस फॉर्मेट की तरफ नज़र डालेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत कम रोल है एंकर का। होता क्या है कि जो आपके टॉप थ्री हैं उनके पास सबसे ज़्यादा समय है सबसे ज़्यादा बॉलिंग खेलने का, तो वो आपको इसलिए नज़र आते हैं सबसे ज़्यादा रन बनाते हुए, या कभी भी आप देखेंगे टॉप थ्री के पास है तो आप ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो शीट एंकर का रोल अदा करेंगे। लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर जो टॉप के तीन खिलाड़ी हैं उनका खेलने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। आपने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बात करी और जो दो नाम आपने लिए वो वर्ल्ड क्रिकेट में हर फॉर्मेट में अपना लोहा मनवा चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप धीरे धीरे खेलेंगे, शेफाली से आप कंसिस्टेंसी की उम्मीद नहीं कर सकते, उनसे आप इम्पैक्टफुल पारियों की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। जो कंसिस्टेंसी आएगी वो दूसरे छोर से किसी और खिलाड़ी को करनी पड़ेगी, क्योंकि शेफाली अगर इस तरीके का स्टार्ट आपको देती है तो वो प्रेशर गेंदबाजों के ऊपर डाल देती है, जिसका फ़ायदा दूसरे छोर से उठाना और बल्लेबाजों के लिए बहुत ज़रूरी है।
3: जी, और हम उम्मीद करेंगे 28 जून को लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा ही इंपैक्ट देखने को मिले। आज का दिन 25 जून भारतीय क्रिकेट में यादगार, क्योंकि लॉर्ड्स के ही मैदान में कपिल देव की उस टीम ने पहली बार विश्व कप उठाया था, और इसी कामना के साथ कि 2026 में T20 विश्व कप भारतीय टीम, भारतीय महिला टीम हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में उठाए, हम लोग आते रहेंगे इस विश्व कप का ब्रॉडकास्ट आपके साथ लेके। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम अपने एक्सपर्ट्स का धन्यवाद करना चाहेंगे। चेतन शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए,
0: धन्यवाद।
3: थैंक यू सो मच विजय भैया फॉर गिविंग योर टाइम,
2: मोस्ट वेलकम।
3: एंड थैंक यू सो सो मच शशांक शेखर फॉर बीइंग ऑन द
4: शो।
1: लेकिन साथ ही चलने से पहले दर्पण, हम अपनी टेक्निकल टीम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसमें शामिल थे जयराम, संदीप दहिया, सुशील कुमार, राम आशीष यादव, और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्शन टीम, जिसमें शामिल थी कविता वी, तन्मय पंत, अमीशा पटेल, और उस सब से भी ऊपर हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
3: इन सभी के एफर्ट से, सभी के मिले जुले प्रयत्न से ये ब्रॉडकास्ट संभव हो पाया है। उम्मीद करते हैं आपको सुनने में मजा आया होगा। मैं दर्पण, मेरे साथ
1: मुदिता,
3: और हम आपसे विदा लेते हैं 28 जून को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का लाइव ब्रॉडकास्ट लेकर वापस आएंगे, सुनना ना भूलिएगा। नमस्कार।
5: प्लेयर ऑफ द मैच।
6: अभी आप आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे।
7: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑफ द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
8: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आकाशवाणी वाद वृंद रचना।

अभी आपने सुनी आकाशवाणी वाद्य वृंद रचना। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक